FM 102.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 KHz पर। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 जून सन 2026 सुबह के 5:59 हुए हैं। अब हमारी आज की ये प्रसारण सभा आरंभ होती है।

FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार होंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देश एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और एक स्थिर साझेदार चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वे साझा किया जाएगा और प्रौद्योगिकी से मानवता को तभी सच्चा लाभ मिलेगा जब उस पर भरोसा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी।

0: 180 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चार राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि टेलीग्राम के बॉट स्वरूप और क्लाउड संचालन में लीक सामग्री को बड़े पैमाने पर फैलाने की क्षमता है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूह से बातचीत करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वैंस ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप के में मेक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102-103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

पारस पत्थर क्या करे मिटी न मन की प्यास, परम लाभ तो नाम है जिसमें प्रभु निवास।

श्रोताओं, इस भक्ति रचना के साथ ही आज की अर्चना अब संपन्न होती है। आज की अर्चना को अपने स्वरों से सुशोभित किया लखबीर सिंह लखा, हरिओम शरण, लता मंगेशकर, नरेंद्र चंचल और चित्रा सिंह ने।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना FM 102-103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान।

बेटी की विदाई का दृश्य जितने आनंद और संतोष का अवसर होता है, उतना ही करुण और मार्मिक भी। विवाह के हर्षोल्लास, उत्साह और उमंग के मांगलिक समापन के बाद विदाई की घड़ी आ ही पहुंचती है। श्री राम भाइयों सहित वधुओं की विदाई के लिए राजा जनक के महल में पधारे हैं। उन्हें देखने के लिए नगर के अगणित नर नारी दौड़ पड़े हैं। सखियां इन प्रिय पाहुनों के रूप को आंखों में बसा लेना चाहती हैं। रूप के समुद्र सरीखे सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं न्योछावर हुई जाती हैं। जामाताओं को स्नान भोजन कराया गया, किंतु सारा उल्लास महाराज के अयोध्या लौट जाने का समाचार सुन जैसे उदासी में परिवर्तित हो गया। स्नेह से शिथिल हो गईं माताएं, पुत्रियों को बुलाकर बार बार उन्हें गले लगाने लगीं। सखियों ने पुत्रियों से बार बार भेंटती माताओं को जब अलग किया तो ऐसा लगा जैसे अभी अभी जन्मे बछड़े से गाय को अलग कर दिया हो।

0: अभी श्री रामचरित मानस गान का संगीतमय प्रसारण किया गया। मुख्य स्वर भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह के थे। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया। FM 102.103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर यह प्रसारण आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से किया जा रहा है। कार्यक्रम आबोहवा में लीजिए सुनिए डॉक्टर महावीर प्रसाद गुप्ता की लघु वार्ता जल और जीवन।
1: कविवर रहीम दास जी के शब्दों में, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी बिना न उबरे मोती मानस चून। जल प्रकृति का अनुपम उपहार है, मानव तथा अन्य जीवधारियों के अस्तित्व तथा अनेक जीवनोपयोगी क्रियाओं के लिए जल एक आवश्यक घटक है। नदी माँ के समान होती है। नदी के किनारे रहने वाले लोगों को जल की कोई कमी नहीं होती, परंतु जब जल निर्बाध रूप से प्राप्त होने लगता है तो लोग उसका मूल्य भूलकर उसे व्यर्थ गंवाने में भी संकोच नहीं करते। कोटा नगर के निवासी चंबल माँ की कृपा से अभिभूत हैं, लेकिन वे चंबल नदी को शवों को बहाकर, पूजा के व्यर्थ पदार्थों को बहाकर उसे प्रदूषित करने में भी चूक नहीं करते हैं। तो उनका ये फर्ज बनता है कि वे चंबल माँ को उसकी सुरक्षा करें, गंदा होने से बचाएं। मानव जीवन की गुणवत्ता के लिए शुद्ध जल का उपलब्ध होना परमावश्यक है। जल स्रोतों का अधिकांश जल प्रदूषित हो चुका है। जिस नदी को हम गंगा और यमुना नदी के नाम से, पावन नदियों के नाम से पुकारते

0: थे और जिनके लिए ये कल्पना थी कि जिनमें नहाने से आदमी बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, पाप धुल जाते हैं, वो नदियां आज शुद्धता की अंतिम सांसें ले रही हैं। वर्तमान में शुद्ध पेयजल प्राप्त करना अत्यंत कठिन कार्य हो गया है। जरा हम बाड़मेर, जैसलमेर जैसे रेगिस्तानी क्षेत्रों के बारे में सोचें, जहाँ के व्यक्ति व जीवधारी गर्मी के दिनों में एक एक बूंद के लिए तरस जाते हैं। पीने का जल 8-10 किलोमीटर दूर से गाड़ियों अथवा महिलाओं के सिर पर लदकर आता है। उन लोगों के लिए पानी बचाना हमारा नैतिक दायित्व है। आइए कुछ छोटे छोटे कार्यकलापों की चर्चा करें जो प्यासों को पानी देने में सहायक हो सकते हैं। जब आप पानी की टोंटी खोलें तो नल को पूरा न घुमाकर जल का प्रवाह थोड़ा धीमा रखें। दातुन करते समय या मुंह धोते समय ध्यान रखें कि नल खुला न रहे। सुनिश्चित कर लें कि कपड़े एवं बर्तन धोने अथवा नहाने के बाद नल खुला तो नहीं रह गया है। आपके यहाँ टेप कहीं से चू रहा हो तो उसे सर्वोच्च प्राथमिकता से ठीक करें अथवा कराएं। यदि कहीं सार्वजनिक नल या पाइप टपकता है या निरंतर बहता रहता है तो जलदाय विभाग के अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करें और बात नहीं सुने जाने या अमल न होने पर समाचार पत्रों, रेडियो आदि प्रचार माध्यमों द्वारा अपनी आवाज को बुलंद करें। यदि आपको घर में पानी एकत्रित करना पड़ता है तो एक दिन पहले भरे हुए पानी को फेंकने के बजाय उसका उपयोग कपड़े धोने, बगीचे में सिंचाई करने, फर्श धोने आदि में करें। जब आप पानी पीने की आवश्यकता महसूस करें तो गिलास में उतना ही पानी लें जितनी आपको आवश्यकता है। कई लोग पूरा गिलास भरकर तथा प्यास के अनुसार पानी पीकर शेष जल को फेंक देते हैं। इस आदत को रोका जाना चाहिए। फल तरकारियों को टेप के नीचे धोने के बजाय किसी पात्र में धोएं तथा इस पानी का उपयोग बगीचे में सिंचाई के लिए अथवा पोंछा लगाने के लिए कर सकते हैं। वर्षा के जल को कृत्रिम जलाशय बनाकर सुरक्षित किया जा सकता है। इस जल को टांके में एकत्रित कर उसका वर्ष पर्यंत उपयोग किया जा सकता है। यह हमारे देश की पारंपरिक प्रणाली है। यद्यपि पृथ्वी की सतह पर 3/4 जल है, संपूर्ण जल का 93% जल महासागरों में है जो लवणीय होने के कारण हमारे किसी काम का नहीं है। 2% जल हिम शिखरों पर बर्फ के रूप में है तो 4% जल पृथ्वी के गर्भ में है, कुछ वायुमंडल में वाष्प के रूप में है। संपूर्ण जल का 0.01% से भी कम शुद्ध पेयजल है जो जंतुओं व मनुष्यों के उपयोग में लेने योग्य है। अतः जल की प्रत्येक बूंद का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करें।
1: कार्यक्रम आबोहवा में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर महावीर प्रसाद गुप्ता की लघुवार्ता जल और जीवन। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण FM 102/103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। कार्यक्रम विवरण में प्रस्तुत है एक झलक हमारी आज की प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। श्रोताओं, आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आयोजित रोजगार मेला 2026 का सीधा प्रसारण। सजीव फोन इन प्रोग्राम वन संरक्षण का प्रसारण समय रहेगा सुबह 8:15। आज का विषय है वन्य जीव संबंधी मिथक और मानव वन्य जीव संघर्ष समस्या और समाधान। हमारे आज के विशेषज्ञ होंगे उप वन संरक्षक श्री अनुराग जी भटनागर और सहायक वनपाल श्रीमती प्रेम कंवर। श्रोता इस विषय से संबंधित जानकारी के लिए हमारे विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं। डायल करें हमारे स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 07443

0: 2941142। सुबह 7 बजे श्रोता सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार कोटा। सुबह 7:15 पर सुनेगा गांधी चर्चा कड़ी संख्या 29, गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का क्रमिक वाचन। सदाबहार गीतों का कार्यक्रम सुहाना सफर सुनेगा सुबह 7:30 पर, और फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे सुबह 9:10 पर और शाम 6:05 पर। सुबह 9:30 का समय होगा बहनों के कार्यक्रम महिला जगत का। कार्यक्रम में आज बहनें सुनेंगी श्रीमती उर्मिला व्यास से की गई भेंटवार्ता, विषय होगा योग का जीवन पर प्रभाव। दोपहर 12 बजे सुनेगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की 1310वीं कड़ी। संध्या 7 बजे का समय होगा किसान भाइयों के कार्यक्रम चौपाल का। कार्यक्रम में आज सजीव फोनिन का विषय है कृषि आय बढ़ाने में मधुमक्खी पालन का महत्व। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर हरिप्रसाद मेघवाल। किसान भाई इस विषय से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हमारे विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं, और इसके लिए उन्हें डायल करने होंगे हमारे स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 07442941142। रात्रि 11:10 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से श्रोता सुन सकेंगे सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला की कड़ी संख्या 12। आज की थीम है जन विश्वास। शाम 7:30 पर श्रोता सुनेंगे डॉक्टर नित्यानंद शर्मा से की गई भेंटवार्ता, विषय होगा हम मना रहे हैं विश्व योग दिवस, और रात्रि 8 बजे का समय होगा चित्रपट संगीत का। रात्रि 9 बजे श्रोता सुनेंगे उनका पसंदीदा कार्यक्रम SMS के बहाने चंबल चैनल के दराने, और शेष समय पर श्रोता सुन सकेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण में ये थी एक झलक हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की। FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 kHz पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृत समाचार होंगे।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। भारत फ्रांसयोः आर्थिक औद्योगिक सहकारं प्रगाढं कर्तुं प्रयत्नस्य भागरूपेण प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना पेरिस नगरे प्रमुखैः फ्रांस देशीयैः वाणिज्य नेतृभिः सह अनेकानि उच्चस्तरीय मेलनानि विहितानि। प्रधानमन्त्री पेरिस नगरे मिस्ट्रल AI संस्थायाः सह संस्थापकेन मुख्य कार्यकारी अधिकारिण्या सह आर्थर मेंच इत्यनेन सह अपि मिलितवान्। सामाजिक प्रसार माध्यमे प्रधानमन्त्रिणा भारतस्य वर्धमान AI इति पारिस्थितिक व्यवस्थायाः अवसराणां विषये अपि अवधानं प्रदत्तम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्यां प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इत्यस्यान्तर्गतं 2400 कोटि रूप्यकाणां प्रोत्साहकाणां वितरणं करिष्यति। नवदिल्ल्यां योजनायाः विषये प्रसार माध्यमान् संबोधयन् श्रम रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीयः अवोचत् यत् गतवर्षस्य अगस्त मासात् आरभ्य 63 लक्षतोऽधिकाः कर्मचारिणः PMVVRY इत्यस्यान्तर्गतम् औपचारिक कार्यक्षेत्रे आनीताः सन्ति, येषु प्रायः 30% महिलाः सन्ति। सः इतोपि अवोचत् यत् अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं प्रोत्साहिताः 80% अधिकाः संस्थाः 25%-तः न्यूनाः लघुद्यमाः सन्ति इति। फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः इमानुएल मैक्रोन ह्यः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः कृते हिंदी भाषायाम् एकं भावपूर्णं सौप्रस्थानिक चलच्चित्रं प्रसारितवान्, यत्र सः प्रधानमन्त्रिणं प्रियं मित्रं

0: इति संबोधयन् अवदत् फ्रांसः भवन्तं स्निह्यति। मैक्रोनः हिन्द्याम् अवोचत् यत् प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी है आपका नाइस एवियन और पेरिस दौरे के लिए स्वागत करते। फ्रांस भारत की दोस्ती अमर रहे। फ्रांस राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः एतं प्रवासं अतीव फलदायकम् इति उद्घोषयत्। प्रवासार्थं च कार्तज्ञ भावं ज्ञापितवान्। आगामी फरवरी मासे पुनः मेलनस्य आकांक्षां प्रकटयन् सः अवोचत् यत् प्रवासाय अस्माकं मैत्रीभावाय च धन्यवादः। वयं शीघ्रमेव फरवरी मासे पुनः मेलनाय प्रतीक्षामहे। जय हिंद। केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आभासीय माध्यमेन चतुर्णां राज्यानां कृते MSP इति न्यूनतम समर्थन मूल्येन बृहत् परिमाणे तिलहन क्रयणस्य स्वीकृतिम् अयच्छत्। कृषि मंत्रालयानुगुणम् एषः क्रयण संकल्पः तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा इत्येतेषु राज्येषु मूल्य समर्थन योजनान्तर्गतं प्रचलति। अस्मिन् ग्रीष्मकालीन ऋतौ उत्तर प्रदेशः सर्वबृहत् लाभार्थी राज्यत्वेन उदितः, यस्य कृते 98,200,000 मेट्रिक टन मितं मुद्गम, 97,000,790,000 मेट्रिक टन मितं माश, अथ च 18,700,000 मेट्रिक टन मितं कलाय क्रयणस्य अनुमतिः दत्ता। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयस्य सचिवः संतोष कुमार सारंगी न्यगादीत् यत् दृढ़ नीतिगत संरचनया अभिनव सर्वकारीय प्रयासैः भारतम् अद्य जगति नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रे प्रमुख देशत्वेन समुदेति। नवदिल्ल्याम् आयोजिते हरित एवं सतत विकास संधिः इत्याख्ये दशमे संवाद सत्रे नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा इति विषये भाषमाणः श्री सारंगी गत दशके भारतस्य अभूतपूर्व प्रगतेः उल्लेखं कृतवान्। तेन प्रतिपादितं यत् एषः विकासः मुख्यतया नवीकरणीय क्रयण अनिवार्यता, प्रतिस्पर्धात्मक निविदा दिशानिर्देशाः सहैव स्वचालित मार्गेण 100% वैदेशिक प्रत्यक्ष निवेशं करोति इति वार्ताः।
1: नमस्कार,
2: FM 102-103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। सुबह के 7 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार कोटा।

संगीत की तरह है ये जिंदगी, हर सुर सही लगे ये जरूरी नहीं, पर हर सुर को निभाना जरूरी है, बस हर सुर को दिल से निभाते चलिए। नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत आप सभी का सुबह सवेरे के कार्यक्रम नमस्कार कोटा में। कार्यक्रम में आप सभी का स्नेह अभिवादन, और आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्रेरणादायी विचार के साथ। श्रोताओं, हम सभी के जीवन में एक ऐसा मेहमान है जो कभी निमंत्रण का इंतजार नहीं करता, वो दरवाजा खटखटाता भी नहीं, बस चुपचाप आकर हमारे भीतर कहीं बैठ जाता है, और उस मेहमान का नाम है तनाव। कभी ये स्कूल की परीक्षा के रूप में आता है, कभी नौकरी की चिंता बनकर, कभी घर की जिम्मेदारियों का बोझ बनकर, और कभी किसी अपने को खो देने के दुख में बदलकर। और अजीब बात यह है कि हम इसे पहचानते भी हैं और कभी नहीं भी। एक किसान की बात करें तो वो बीज बोता है और फिर बारिश का इंतजार करता है, और बारिश ना होने पर दुखी हो जाता है। उसे पता है कि हर चीज उसके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन शहरों में रहने वाला हर इंसान हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है, फिर चाहे वो समय हो, परिणाम, लोग, परिस्थितियां, यहां तक कि अपने भविष्य को भी, और शायद

ही से तनाव जन्म लेता है। लेकिन तनाव हमेशा बुरा भी नहीं। अगर बिल्कुल तनाव ना हो तो शायद छात्र पढ़ाई ना करे, कोई खिलाड़ी मैदान में मेहनत ना करे और कोई कलाकार अपनी कला को निखारने की कोशिश ना करे। इसलिए थोड़ा सा तनाव हमारी उम्मीदों को जगाए रखता है, लेकिन ये तनाव हमारे लिए समस्या तब बन जाता है जब हम इसे अपने जीवन में स्थायी रूप से पनाह दे देते हैं। जीवन में ये बात तो पक्की है कि तनाव से भागकर कोई नहीं जीत सकता। जितना हम उससे भागते हैं वो उतना ही हमारा पीछा करता है, लेकिन जब हम रुककर उसकी वजह को समझने लगते हैं तो उसका आकार छोटा होने लगता है और हमारा विश्वास बड़ा। कभी कभी समाधान किसी बड़ी किताब में नहीं मिलता, कभी वो शाम की सैर में मिल जाता है, कभी अपनों के साथ 10 मिनट की बातचीत में, कभी किसी पुराने दोस्त की हंसी में, और कभी कभी इस

ये तनाव हमारे लिए समस्या तब बन जाता है जब हम इसे अपने जीवन में स्थायी रूप से पनाह दे देते हैं। जीवन में ये बात तो पक्की है कि तनाव से भागकर कोई नहीं जीत सकता। जितना हम उससे भागते हैं वो उतना ही हमारा पीछा करता है, लेकिन जब हम रुककर उसकी वजह को समझने लगते हैं तो उसका आकार छोटा होने लगता है और हमारा विश्वास बड़ा। कभी कभी समाधान किसी बड़ी किताब में नहीं मिलता, कभी वो शाम की सैर में मिल जाता है, कभी अपनों के साथ 10 मिनट की बातचीत में, कभी किसी पुराने दोस्त की हंसी में, और कभी कभी इस बात को स्वीकार कर लेने में कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती। इसलिए श्रोताओं, जीवन एक नदी की तरह है, इसमें बहाव भी होगा, पत्थर भी होंगे और भंवर भी। यदि हम हर लहर से लड़ने की कोशिश करेंगे तो थक जाएंगे, हार जाएंगे, लेकिन लहरों के साथ तैरना सीख लेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। तनाव भी ऐसा ही है, हर समस्या को खत्म कर देना संभव तो नहीं है, लेकिन हर परिस्थिति में शांत रहना ये संभव जरूर है।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित
3: कार्यक्रम नमस्कार कोटा आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। श्रोताओं, आज है संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और ये दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाने वाला एक विश्वव्यापी कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा को समाप्त करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ये प्रस्ताव 19 जून 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था, जिसमें युद्ध की रणनीति के रूप में यौन हिंसा की निंदा की गई थी। संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा को एक ऐसे शब्द के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें यौन दासता, जबरन गर्भपात, जबरन गर्भावस्था, जबरन विवाह और इसी तरह की गंभीरता वाली यौन हिंसा के किसी भी अन्य रूप को संदर्भित करता है जो महिलाओं, पुरुषों, बालक, बालिकाओं के खिलाफ की जाती है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य न केवल जागरूकता बढ़ाना है बल्कि यौन हिंसा के पीड़ितों को सम्मानित करना भी है। ये दिन उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने इन अपराधों से लड़ने में अपना जीवन समर्पित कर दिया।
4: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
5: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: श्रोताओं, आज है विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस। इस दिन का मुख्य उद्देश्य सिकल सेल रोग के बारे में वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाना और इसके निवारण

जांच तथा उचित उपचार के लिए समर्थन जुटाना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2008 में एक प्रस्ताव पारित कर इसे वैश्विक स्तर पर मान्यता दी गई थी। पहला विश्व सिकल सेल दिवस 19 जून 2009 को मनाया गया था। हमारे देश भारत की बात करें तो भारत ने सिकल सेल एनीमिया को वर्ष 2047 तक पूरी तरह से समाप्त करने का राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन भी चलाया जा रहा है।

और अब एक नज़र हमारी आसपास की गतिविधियों पर। विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में भूगोल की भूमिका और संभावनाओं पर चर्चा के लिए देश विदेश के भूगोल विशेषज्ञ सितंबर माह में कोटा विश्वविद्यालय में जुटेंगे। संगोष्ठी में भाग लेने के इच्छुक शोधार्थी, विद्यार्थी, शिक्षक और भूगोलवेत्ता 30 अगस्त तक ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के लिए फॉर्म का लिंक कोटा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

वहीं उच्च शिक्षा में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश से वंचित रहे विद्यार्थियों के लिए एक राहत की खबर है। संस्कृत विश्वविद्यालय में खाली सीटों पर अब किसी भी संकाय से कक्षा 12वीं में न्यूनतम 37% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी यहां प्रवेश मिल सकेगा। 21 जून तक खाली सीटों के लिए स्टूडेंट्स ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 22 जून को ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया जाएगा। 23 जून को खाली सीटों के लिए प्रतीक्षा सूची जारी होगी। 29 जून तक कॉलेजों में मूल दस्तावेजों का वेरिफिकेशन एवं ई मित्र की पोस्टिंग और ई मित्र पर फीस जमा करवाने की अंतिम तिथि है। 30 जून को प्रवेशित स्टूडेंट्स की सूची जारी और 1 जुलाई को नव प्रवेशित स्टूडेंट्स का वर्ग निर्धारण एवं विषय आवंटन होगा और 1 जुलाई से प्रथम सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू होगी।

और आइए जान लेते हैं अब मौसम का हाल। शहर का अधिकतम तापमान 38.3 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 29.1 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई अन्य संभागों के साथ ही कोटा संभाग में भी पश्चिमी विक्षोभ अगले 2 से 3 दिन सक्रिय रहेगा, जिसके असर से 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

श्रोताओं कार्यक्रम नमस्कार कोटा में आज बस इतना ही। कार्यक्रम में संयोजन रहा तेजराम मीणा का, प्रस्तुति राजेश महावर की। और अब दीजिए रीना को अनुमति। नमस्कार।

श्रोता सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार कोटा। आप सुन रहे हैं हाड़ोती अंचल की अपनी आवाज आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल FM 102.103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए गांधी चर्चा कड़ी संख्या 29, गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का क्रमिक वाचन।

श्रोताओं नमस्कार। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इससे विभिन्न प्रसंग आप सुन रहे हैं। आज का प्रसंग, देश में कांग्रेस प्रथम बार। हिंदुस्तान पहुंचने पर थोड़ा समय मैंने घूमने फिरने में बिताया। यह सन 1901 का जमाना था। उस साल

की कांग्रेस कलकत्ते में होने वाली थी। दीनशाह एदलजी बादशाह उसके अध्यक्ष थे। मुझे कांग्रेस में तो जाना था ही, कांग्रेस का यह मेरा पहला अनुभव था। हम कलकत्ते पहुंचे, अध्यक्ष आदि नेताओं को नागरिक धूमधाम से ले गए। मैंने किसी स्वयंसेवक से पूछा मुझे कहाँ जाना चाहिए, वह मुझे रिपन कॉलेज ले गया। वहां बहुत से प्रतिनिधि ठहराए गए थे। मेरे सौभाग्य से मैं जिस विभाग में था उसी में लोकमान्य तिलक भी ठहरे हुए थे। मुझे याद पड़ता है कि वे एक दिन बाद पहुंचे थे। जहां लोकमान्य हो वहां छोटा सा दरबार तो लग ही जाता था। मैंने अनेक स्वयंसेवकों से दोस्ती की, उनसे दक्षिण अफ्रीका की कुछ बातें की, इससे वे जरा शर्मिंदा हुए। मैंने उन्हें सेवा का मर्म समझाने का प्रयत्न किया, वे कुछ समझे, पर सेवा की अभिरुचि कुकुरमुत्ते की तरह बात की बात में तो उत्पन्न नहीं होती, उसके लिए इच्छा चाहिए और बाद में अभ्यास। इन भोले और भले स्वयंसेवकों में इच्छा तो बहुत थी पर तालीम और अभ्यास वे कहां से पाते। कांग्रेस साल में 3 दिन के लिए इकट्ठा होकर फिर सो जाती थी। साल में 3 दिन की तालीम से कितना सीखा जा सकता था। जैसे स्वयंसेवक थे वैसे ही प्रतिनिधि थे, उन्हें भी इतने ही दिनों की तालीम मिलती थी। वे अपने हाथ से अपना कोई काम भी न करते थे, सब बातों में उनके हुक्म छूटते रहते थे। स्वयंसेवक यह लाओ स्वयंसेवक वह लाओ चला ही करता था। अखा भगत के अधकेरा अंग अतिरिक्त अंग का भी ठीक ठाक अनुभव हुआ। छुआछूत को मानने वाले वहां बहुत थे। द्राविड़ी रसोई बिल्कुल अलग थी। उन प्रतिनिधियों को तो दृष्टिकोण भी लगता था। उनके लिए कॉलेज के अहाते में चटाइयों द्वारा रसोई घर बनाया गया था। उसमें धुआं इतना रहता था कि आदमी का दम घुट जाए। खाना पीना सब उसी के अंदर। रसोई घर क्या था, एक तिजोरी थी, वह कहीं से भी खुली न थी। मुझे यह वर्ण धर्म उल्टा लगा। कांग्रेस में आने वाले प्रतिनिधि जब इतनी छुआछूत रखते हैं तो उन्हें भेजने वाले लोग कितने रखते होंगे। इस प्रकार का त्रैराशिक लगाने से जो उत्तर मिला उस पर मैंने एक लंबी सांस ली। गंदगी की हद नहीं थी, चारों तरफ पानी ही पानी फैल रहा था। पाखाने कम थे, उनकी दुर्गंध की याद आज भी मुझे हैरान करती है। मैंने एक स्वयंसेवक को यह सब दिखलाया, वह मेरा मुंह ताकता रहा। मैंने झाड़ू खोज निकाला, पाखाना साफ किया, पर यह तो मेरी अपनी सुविधा के लिए हुआ। भीड़ इतनी ज्यादा थी और पाखाने इतने कम थे कि हर बार उपयोग के बाद उनकी सफाई होनी जरूरी थी। यह मेरी शक्ति के बाहर की बात थी। कांग्रेस के अधिवेशन को 1-2 दिन की देर थी। मैंने निश्चय किया था कि कांग्रेस के कार्यकाल में मेरी सेवा स्वीकार की जाए तो सेवा करूं और अनुभव लूं। श्री भूपेंद्र नाथ बसु और श्री घोषाल मंत्री थे। मैं भूपेंद्र बाबू के पास पहुंचा और सेवा की मांग की। उन्होंने मेरी ओर देखा और बोले, मेरे पास तो कोई काम नहीं है, पर शायद मिस्टर घोषाल आपको कुछ काम दे सकेंगे, उनके पास जाइए। मैं घोषाल बाबू के पास गया। उन्होंने मुझे ध्यान से देखा और जरा हंसकर मुझसे पूछा, मेरे पास तो क्लर्क का काम है, आप करेंगे? मैंने उत्तर दिया, अवश्य करूंगा। मेरी शक्ति से बाहर न हो ऐसा हर काम करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। नौजवान, यह सच्ची भावना है। और बगल में खड़े स्वयंसेवकों की ओर देखकर बोले, सुनते हो यह युवक क्या कह रहा है? फिर मेरी ओर मुड़कर बोले, तो देखिए यह तो है पत्रों का ढेर और यह मेरे सामने कुर्सी है, इस पर आप बैठिए। आप देखते हैं कि मेरे पास सैकड़ों आदमी आते रहते हैं, मैं उनसे मिलूं या इन बेकार पत्र लिखने वालों को उनके पत्रों का जवाब लिखूं। मेरे पास ऐसे क्लर्क नहीं है जिनसे यह काम ले सकूं। इन सब पत्रों में से बहुतों में काम की एक भी बात न होगी, पर आप सबको देख जाइए, जिसकी पहुंच भेजना उचित समझे उसकी पहुँच भेज दीजिए, जिसके जवाब के बारे में मुझसे पूछना जरूरी समझे मुझे पूछ लीजिए। मैं तो इस विश्वास से मुग्ध हो गया। श्री घोषाल मुझे पहचानते न थे, नाम धाम जानने का काम तो उन्होंने बाद में किया। पत्रों का ढेर साफ करने का काम मुझे बहुत आसान लगा। अपने सामने रखे हुए ढेर को मैंने तुरंत निपटा दिया। घोषाल बाबू खुश हुए, उनका स्वभाव बातू नहीं था। मैं देखता था कि बातों में वे अपना बहुत समय बिता देते थे। मेरा इतिहास जानने के बाद तो मुझे क्लर्क का काम सौंपने के लिए वे कुछ लज्जित हुए, पर मैंने उन्हें निश्चिंत कर दिया। कहां आप और कहां मैं, आप कांग्रेस के पुराने सेवक हैं, मेरे गुरुजन हैं, मैं एक अनुभवहीन नवयुवक हूं। यह काम सौंप कर आपने मुझ पर उपकार ही किया है, क्योंकि मुझे कांग्रेस में काम करना है, उसके काम काज को समझने का आपने मुझे अलभ्य अवसर दिया है। घोषाल बाबू बोले, असल में यही सच्ची वृत्ति है,
पर आज

के नवयुवक इसे नहीं मानते। वैसे मैं तो कांग्रेस को उसके जन्म से जानता हूँ। उसे जन्म देने में मिस्टर ह्यूम के साथ मेरा भी हिस्सा था। हमारे बीच अच्छी मित्रता हो गई। दोपहर के भोजन में उन्होंने मुझे अपने साथ ही रखा। खुशाल बाबू के बटन भी बैरा लगाता था। यह देखकर बैरे का काम मैंने हिली लिया। मुझे वह पसंद था। बड़ों के प्रति मेरे मन में बहुत आदर था। कुछ ही दिनों में मुझे कांग्रेस की व्यवस्था का ज्ञान हो गया। कई नेताओं से भेंट हुई। गोखले, सुरेंद्रनाथ आदि योद्धा आते जाते रहते थे। मैं उनकी रीति नीति देख सका। वहां समय की जो बर्बादी होती थी उसे भी मैंने अनुभव किया। अंग्रेजी भाषा का प्राबल्य भी देखा। इससे उस समय भी मुझे दुख हुआ था। मैंने देखा कि एक आदमी से हो सकने वाले काम में अनेक आदमी लग जाते थे और यह भी देखा कि कितने ही महत्वपूर्ण काम कोई करता ही न था। मेरा मन इस सारी स्थिति की टीका किया करता था, पर चित्त उदार था, इसलिए वह मान लेता था कि जो हो रहा है उसमें अधिक सुधार करना संभव न होगा। फलतः मन में किसी के प्रति अरुचि पैदा न होती थी। कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ। पंडाल का भव्य दृश्य, स्वयं सेवकों की कतारें, मंच पर नेताओं की उपस्थिति इत्यादि देखकर मैं घबरा गया। इस सभा में मेरा पता कहां लगेगा, यह सोचकर मैं अकुला उठा। सभापति का भाषण तो एक पुस्तक ही थी। स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह पूरा पढ़ा जा सके, अतः उसके कुछ अंश ही पढ़े गए। बाद में विषय निर्वाचित समिति के सदस्य चुने गए। उसमें गोखले मुझे ले गए थे। सर फिरोज शाह ने मेरा प्रस्ताव लेने की स्वीकृति तो दी थी, पर उसे कांग्रेस की विषय निर्वाचित समिति में कौन प्रस्तुत करेगा, कब करेगा, यह सोचता हुआ मैं समिति में बैठा रहा। हर एक प्रस्ताव पर लंबे लंबे भाषण होते थे, सब अंग्रेजी में। हर एक के साथ प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम जुड़े होते थे। इस नक्कार खाने में मेरी तूती की आवाज कौन सुनेगा। जो जो रात बीतती जाती थी त्यों तो मेरा दिल धड़कता जाता था। मुझे याद आ रहा है कि अंत में पेश होने वाले प्रस्ताव आजकल के विमानों की गति से चल रहे थे। सब कोई भागने की तैयारी में थे। रात के 11 बज गए थे। मुझ में बोलने की हिम्मत न थी। मैं गोखले से मिल चुका था और उन्होंने मेरा प्रस्ताव देख लिया था। उनकी कुर्सी के पास जाकर मैंने धीरे से कहा, मेरे लिए कुछ कीजिएगा। उन्होंने कहा, आपके प्रस्ताव को मैं भूला नहीं हूँ। यहाँ की उतावली आप देख रहे हैं, पर मैं इस प्रस्ताव को भूलने नहीं दूंगा। सर फिरोज शाह बोले, कहिए, सब काम निपट गया ना। गोखले बोल उठे, दक्षिण अफ्रीका का प्रस्ताव तो बाकी ही है। मिस्टर गांधी कब से बैठे राह देख रहे हैं। सर फिरोज शाह ने पूछा, आप उस प्रस्ताव को देख चुके हैं? हाँ। आपको वह पसंद आया? काफी अच्छा है। तो गांधी पढ़ो। मैंने कांपते हुए प्रस्ताव पढ़ सुनाया। गोखले ने उसका समर्थन किया। सब बोल उठे, सर्वसम्मति से पास। वाच्छा बोले, गांधी तुम 5 मिनट लेना। इस दृश्य से मुझे प्रसन्नता न हुई। किसी ने भी प्रस्ताव को समझने का कष्ट नहीं उठाया। सब जल्दी में थे। गोखले ने प्रस्ताव देख लिया था, इसलिए दूसरों को देखने सुनने की आवश्यकता प्रतीत न हुई। सवेरा हुआ। मुझे तो अपने भाषण की फिक्र थी। 5 मिनट में क्या बोलूंगा। मैंने तैयारी तो अच्छी कर ली थी, पर उपयुक्त शब्द सूझते न थे। लिखित भाषण न पढ़ने का मेरा निश्चय था, पर ऐसा प्रतीत हुआ कि दक्षिण अफ्रीका में भाषण करने की जो प्रवीणता मुझ में आई थी उसे मैं यहाँ खो बैठा था। मेरे प्रस्ताव का समय आने पर सर दीन शाह ने मेरा नाम पुकारा। मैं खड़ा हुआ। मेरा सिर चकराने लगा। जैसे तैसे मैंने प्रस्ताव पढ़ा। किसी कवि ने अपनी कविता छपवाकर सब प्रतिनिधियों में बांटी थी। उसमें परदेश जाने की और समुद्र यात्रा स्तुति थी। वह मैंने पढ़कर सुनाई और दक्षिण अफ्रीका के दुखों की थोड़ी चर्चा की। इतने में सर दीन शाह की घंटी बजी। मुझे विश्वास था कि मैंने अभी 5 मिनट पूरे नहीं किए हैं। मुझे पता न था कि यह घंटी मुझे चेताने के लिए 2 मिनट पहले ही बजा दी गई थी। मैंने बहुतों को आध आध पौन पौन घंटे बोलते देखा था और घंटी नहीं बजी थी। मुझे दुख तो हुआ। घंटी बजते ही मैं बैठ गया, पर उक्त काव्य में सर फिरोज शाह को उत्तर मिल गया, ऐसा मेरी अल्प बुद्धि ने उस समय मान लिया। प्रस्ताव पास होने के बारे में तो पूछना ही क्या था। उन दिनों दर्शक और प्रतिनिधि भेद क्वचित ही किया जाता था। प्रस्तावों का विरोध करने का कोई प्रश्न ही न था। सब हाथ उठाते ही थे। सारे प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास होते थे। मेरा प्रस्ताव भी इसी तरह पास हुआ, इसीलिए मुझे प्रस्ताव का महत्व नहीं जान पड़ा। फिर भी कांग्रेस में मेरा प्रस्ताव पास हुआ, यह बात ही मेरे आनंद के लिए पर्याप्त थी। जिस पर कांग्रेस की मुहर लग गई उस पर सारे भारत की मुहर है, यह ज्ञान इसके लिए पर्याप्त न होगा।

अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा, कड़ी संख्या 29, गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का क्रमिक वाचन। वाचन सर राजेश महावर का था। FM 102.103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। लीजिए सुनिए सदाबहार नगमे सुहाना सफर में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज पर आपको सुनवा रहे हैं आनंद बख्शी का लिखा फिल्म बॉबी का ये गीत, आवाज लता मंगेशकर की।

0: एक महल हो सपनों का, लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत, रवि की तर्ज, साहिर के बोल।
1: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: अच्छा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
2: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: श्रोताओं, आज सुबह 8:15 पर आप सुन सकेंगे सजीव फोन इन प्रोग्राम वन संरक्षण कार्यक्रम में। आज का विषय है वन्य जीव संबंधी मिथक और मानव वन्य जीव संघर्ष, समस्या और समाधान। हमारे आज के विशेषज्ञ होंगे उप वन संरक्षक श्री अनुराग जी भटनागर और सहायक वनपाल श्रीमती प्रेम कंवर। श्रोता, इस विषय से संबंधित जानकारी के लिए हमारे विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं। डायल करें हमारे स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 0744-294-114 दो। और आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन सकेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आयोजित रोजगार मेला 2026 का सीधा प्रसारण। लीजिए सुनिए अनजान का लिखा रवि का संगीत बद्ध किया। फिल्म वंदना का ये गीत आवाज लता मंगेशकर की है।

लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे फिल्म वंदना के इस गीत में। सदाबहार गीतों का ये कार्यक्रम है सुहाना सफर।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को आप सुन रहे थे फिल्म इज्जत के इस गीत में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन पर गीत के बोल साहिर के थे।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक PM आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
5: जब एक परिवार को अपना घर मिलता तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: श्रोताओं, आज सुबह 8:15 पर आप हमसे लाइव जुड़ सकेंगे। फोन इन प्रोग्राम वन संरक्षण में कार्यक्रम में आज का विषय है वन्य जीव संबंधी मिथक और मानव वन्य जीव संघर्ष, समस्या और समाधान। हमारे आज के विशेषज्ञ होंगे उप वन संरक्षक श्री अनुराग भटनागर और सहायक वनपाल श्रीमती प्रेम कंवर। आप इस विषय से संबंधित अपने प्रश्नों के लिए या अधिक जानकारी के लिए हमारे विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं। डायल करें हमारे स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 07442941142।

अभी आप सुन रहे थे सदाबहार नगमे सुहाना सफर में, FM 102 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को है, कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से श्रोता सुनेंगे समाचार प्रभात का आज का अंक।

0: प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान, पीएम किसान।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार

योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है।

0: बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
1: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
2: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मैंने साथ वे दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
3: कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अभियान निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन

0: मूंग 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पुणे जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
2: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
3: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
2: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
4: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश अनुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमेरिकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। खेलों में भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद फरहत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्किन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमेरिका ईरान युद्ध के अंत होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से घर गृहस्थी तक राहत की उम्मीद। लोकसत्ता के शब्द हैं, जंग खत्म, होरमोज खुला। तत्काल कदम नहीं होंगे।

0: बढ़ेंगी पेट्रोल और डीजल की कीमतें, दैनिक जागरण की खबर है। वहीं नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगी अस्थाई रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने केंद्र सरकार के शब्द प्रकाशित किए हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम मुफ्त, सरकार ने प्रतिबंध को बताया उचित। हिंदुस्तान ने पर्दाफाश शीर्षक से बच्चों की तस्करी पर खबर प्रकाशित की है। बच्चों के सौदागर गिरफ्तार, नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह दबोचा। वहीं जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, बच्चों में कुपोषण का कुचक्र।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 102.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है सजीव फोन इन प्रोग्राम वन संरक्षण।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं उपवन संरक्षक वन्य जीव कोटा।
4: राजस्थान सरकार की एक अनूठी एवं महत्वाकांक्षी योजना है जिसका नाम है कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम। इस योजना में आप ले सकते हैं वन्य जीवों को गोद और वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण में कर सकते हैं एक बड़ा सहयोग। अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा में आप बाघ यानी टाइगर, लायनस यानी शेरनी, लेपर्ड, हाइना यानी जरक, सियार, स्लॉथ बेयर, सांभर, काला हिरण, चिंकारा, चीतल एवं नील गाय को गोद ले सकते हैं। मूक प्राणियों की यदि सेवा करना चाहते हैं एवं वन्य जीव संरक्षण में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो राजस्थान सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से अवश्य जुड़ें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कार्यालय उप वन संरक्षक वन्य जीव कोटा, पुराना चिड़ियाघर, नयापुरा, कोटा।
2: जहाँ कभी घने जंगल थे वहाँ अब मानव बस्तियाँ बस गई हैं। जंगल के पेड़ पौधों की जगह वहाँ पत्थरों की बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई हैं। मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए जंगलों में अपने घर बना लिए हैं और यही कारण है कि समय समय पर मानव वन्य जीव संघर्ष देखने को मिलता है। क्यों बढ़ रहा है मानव वन्य जीव संघर्ष, इसका समाधान क्या है और वन्य जीवों से संबंधित कुछ मिथकों के बारे में भी आज हम बात करेंगे हमारे विशेषज्ञों से। आइए सबसे पहले इनका परिचय कराते हैं और इनका स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं उपवन संरक्षक श्री अनुराग जी भटनागर और साथ में हैं सहायक वनपाल श्रीमती प्रेम कंवर। कार्यक्रम में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
5: थैंक यू।
2: अनुराग जी, आपसे ही हम पहला प्रश्न करना चाहेंगे कि कार्यक्रम का जो विषय है वो है मानव वन्य जीव संघर्ष। एक आम जनता की अगर हम बात करें तो किस तरह से हम इसको परिभाषित करेंगे जिससे साधारण व्यक्ति भी समझे कि मानव वन्य जीव संघर्ष ये होता है, और उसके बाद हम कारण जानना चाहेंगे आपसे।
5: सभी को नमस्कार। देखिए, मानव वन्य जीव संघर्ष जी हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली ये जैसे हम इसको बोलते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। बेसिकली ये कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, ये इंटरेक्शन है। ह्यूमन बीइंग का वाइल्ड लाइफ से जब कोई इंटरेक्शन होता है तो हम उसको संघर्ष बोल रहे हैं आज के तारीख में, बट बेसिकली ये संघर्ष नहीं है। हम देखेंगे पिछले 10,000 सालों से हम इन जानवरों के साथ रहते आए हैं। ऐसा नहीं कि आज हमारी लाइफ में लेपर्ड आ गया, आज हमारी लाइफ के अंदर टाइगर आ गया या हमारी लाइफ में आज कोई स्नेक आ गया। तो वन्य जीव संघर्ष बेसिकली क्या है कि जब किसी ह्यूमन बींग का इंटरेक्शन किसी एनिमल से हो जाता है, वाइल्ड एनिमल से हो जाता है, तो डेफिनेटली 99% केसेस के अंदर ह्यूमन बींग को ही लॉस होता है। लॉस वैसे उसको भी होता है वाइल्ड लाइफ को, पर हम उसके लिए नहीं, हम ये सोचते हैं कि ह्यूमन बीइंग को लॉस हो गया, तो हम इसको बोलते हैं कि वाइल्ड लाइफ ह्यूमन का ये कॉन्फ्लिक्ट आ गया है हमारा। यानी कि यदि मैं ये कहता हूं सब मैं मेरा घर यहां तक बना लिया और वहां पे लेपर्ड आ रहा है तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया। बेसिकली घर तो उसी का था, लेपर्ड का था, हम बढ़ते जा रहे हैं वहां तक। लेकिन जब किसी भी चीज के लिए, चाहे खाने के लिए लड़ाई हो रही हो, चाहे स्पेस की लड़ाई हो रही हो, जब ह्यूमन बीइंग का और वाइल्ड लाइफ का इंटरेक्शन होता है, संघर्ष होता है, तो हम इसको वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। अब ये हमारे बहुत सारे एनिमल्स हैं, बाघ से भी है, लेपर्ड से भी है, बहुत सारे

0: स्नेक से भी है, जंगली सुअर से भी है जो हमारी फसलें खा जाता है, जो हमारी नील गाय है वो भी हमारे खेतों में घुस जाती है। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हमारे।
1: जी जी, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जब भी ये वन्य जीव शहरी या रिहायशी इलाकों में आते हैं तो ये हमारी बस्तियों में प्रवेश नहीं कर रहे, बल्कि ये अपना निवास, अपना आवास ढूंढ रहे हैं जहाँ पर हमने दखल कर दिया।
0: डेफिनेटली डेफिनेटली। और एक चीज में और अंडरलाइन करना चाहूंगा, आज जैसे आप कह रहे हैं कि लेपर्ड हमारे शहर में आ जाता है, वन थिंग शुड बी वेरी क्लियर, वो यहाँ मॉल घूमने नहीं आया है, वो हमारे से मिलने नहीं आया है। वो क्या है, उसको जहाँ पे वो रह रहा है उसका एरिया कम हो गया है, वहाँ पे उसको फूड नहीं मिल पा रहा है या सपोज पानी नहीं मिल पा रहा है। वहाँ पे दो ही चीजें, देखो एनिमल को और कुछ नहीं चाहिए होता है, एनिमल को खाना अच्छा मिल जाए, पानी अच्छा मिल जाए, रहने को मिल जाए, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा उसकी डिमांड नहीं है, उसको कोई IIT का एग्जाम नहीं देना है, उसको कोई ऐसा दूसरा काम नहीं करना है। तो क्या होता है, वो यहाँ पे भटक के आ गया है, खाना ढूंढते हैं, यहाँ पे उसको इजी प्रे मिल जाएगा। इजी प्रे मतलब या तो डॉग मिल जाएगा उसको, या जंगली जो सिंपल जो सुअर होते हैं वो पकड़ लेगा। एंड वन थिंग शुड बी वेरी क्लियर कि ह्यूमन कभी उसका फूड नहीं है। ये मत सोचें आप किसी भी तरह से कि लेपर्ड हमारे एरिया में आ गया है तो आदमी को खा जाएगा, भूखा है तो कभी नहीं खाएगा, कितना भी भूखा हो आदमी को नहीं खाता है वो। भगवान ने उसके जीन में ऐसा सिस्टम डाला हुआ है कि उसको ह्यूमन से वो भूखा मर जाएगा पर आदमी को नहीं खाता है। एक्सीडेंट अलग बात है, एक्सीडेंट हो जाए आमने सामने पड़ गए, उसने पंजा मार दिया, कुछ कर दिया, डेथ होगी। और 10 लाख केसेस के अंदर कोई एक केस हो सकता है जो मैनिटर में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी होता है 10 लाख केसेस के अंदर, रोज रोज नहीं होता, वो बहुत रेयर ऑफ द रेयर होता है जब वो मैनेटर में कन्वर्ट हो जाता है।
1: तो श्रोताओं, कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है वन्य जीव संबंधी मिथक और मानव वन्य जीव संघर्ष, समस्या और समाधान। यदि आप भी इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न करना चाहते हैं तो हमारे विशेषज्ञों से आज आप बात कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 2941142, कोटा का STD कोड 0744। सर, प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना या कम होना, एक कारण तो ये बिल्कुल क्लियर है हम सभी के लिए कि जंगल कट रहे हैं और इमारतें हैं, जो रिहायशी बस्तियां हैं वो आगे बढ़ती जा रही हैं। क्या कोई और अन्य कारण भी हैं?
0: जी बिल्कुल, आपने ये एक ऐसा पॉइंट पूछा है जिस पे किसी का ध्यान नहीं जाता है।
1: जी।
0: ये तो एक बहुत सिंपल सी बात है कि हम अपना एरिया बढ़ाते जा रहे हैं, हम अपना कंक्रीट जंगल बढ़ाते जा रहे हैं। इसके साथ साथ ह्यूमन बीइंग एक दूसरा बहुत खराब काम जो कर रहा है वो ये कर रहा है कि वो हम बहुत अलग तरह के इन्वेजिव प्लांट्स लेके आ रहे हैं।
1: जी, पिछले कड़ियों में आपने लैंटाना की बात करी थी।
0: बिल्कुल, लैंटाना कैमरा जैसे है, उससे आज की तारीख में हमारा 38.8% फॉरेस्ट लैंड पूरा बर्बाद हो चुका है। अब उससे क्या होता है, उससे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कैसे बढ़ता है। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि लैंटाना सारे में फैलता जा रहा है। सपोज मैं कहता हूं कि मेरे मुकंदरा वाले एरिया में, कोटा वाले एरिया में सारे में लैंटाना फैल गया और काफी एरिया में फैला हुआ भी है। उस एरिया में ग्रासेस नहीं आती है। जब ग्रासेस नहीं आती वहां पे, तो जो वहां का हर्बीवोर है, हिरन फैमिली जितनी भी है सारे, सब तरह के, चाहे उसमें चिंकारा हो, ब्लैक बक हो, नील गाय हो, है ना, ये सब जो जानवर है इनको खाने को नहीं मिल रहा है। तो ये क्या करेंगे, ये भी डिस्पर्स होकर बाहर की तरफ जाएंगे। ह्यूमन के जो खेत है उनको बाहर आने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब उनको वहां पे फूड नहीं मिल रहा, वहां लैंटाना फैल गया, कुछ और प्रजातियां वहां पे फैल गई, तो वो खाने के लिए हमारे खेतों तक आ जाता है। और जब हमारे खेतों में आते हैं तो हमारा झगड़ा शुरू हो गया उनसे। दूसरे, अब जब वहां पे हर्बीवोर नहीं मिल रहा है तो जो कार्निवोर है, मांसाहारी जानवर जो है, वो क्या खाएगा, वो ढूंढते ढूंढते वो भी पीछे पीछे आएगा, वो भी सिटी में आ जाएगा, क्योंकि वो सोच रहा है सिटी में कुछ डॉग वॉग कुछ मिल जाएंगे यहाँ पे उसको। तो इस तरह से हमारा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इनडायरेक्टली इन इन्वेजिव स्पीसीज से हमारा नुकसान हो रहा है।
1: और क्या एक कारण हम ये भी समझ सकते हैं कि जो फसल पैटर्न में बदलाव किया जा रहा है, क्या वो भी इसका एक कारण हो सकता है?
0: फसल के पैटर्न देखिए दो तरह से, एक फसलों का पैटर्न है जो ह्यूमन बीइंग कर रहा है और एक फसलों का पैटर्न है जो हम जंगल में कर रहे हैं।
1: जी,
0: जंगल की भी फसल बदल रही है। पहले जहाँ पे एनोगेसिस पेंडुला आता था, जो थौ का प्योर जंगल होता था, वहां पे हमने रिप्लेस करके क्या कर दिया, वहां पे प्रोसोफिस जूली फ्लोरा डाल दिया हमने। 1960s से 1970s के बीच में बहुत जगह पर जूली फ्लोरा, जो विलायती बबूल बोलते हैं, उसकी प्लांटिंग की गई है, उसकी नर्सरी की गई है। आज अब बारा वाले एरिया में, टोंक वाले एरिया में जाएंगे तो पूरा वहां पे क्रॉप पैटर्न चेंज हो गया। और दूसरा ह्यूमन बीइंग वाला क्रॉप पैटर्न है। इन दोनों से ही मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि देखिए जो जानवर है यहाँ पे 10,000 सालों से 1,00,000 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, उनके फूड हैबिट है। उस फूड हैबिट से उसको सब कुछ मिल रहा है खाने के लिए, तो वो सिस्टमेटिक चलता जा रहा है। जंगल के अंदर सपोज वो फूड उसको नहीं मिल रहा है तो वो फिर डिस्पर्स होगा, वो बाहर की तरफ जाएगा। और आदमी के खेतों में, उनके इधर उधर जहाँ पे भी उसको फूड मिलेगा, देखिए वो लड़ने नहीं जा रहा है, वो तो बेचारा भूखा है।
1: जी।
0: उसको खाना चाहिए। अब उसको ये नहीं पता कि ये जंगल वाला फूड है या फिर ये खेती कर रखी है, उसमें वो तो जाकर नील गाय घुस जाएगी आगे, भूख लग रही है। तो दिस इज द ओनली थिंग।
1: क्या एनिमल टेस्टिंग और जंगली जानवरों की जो प्रोफेशनल ब्रीडिंग है वो भी कई हद तक हम समझ सकते हैं इसका एक कारण हो सकती है?
0: कौन क्या कह रहे हैं,
1: एनिमल टेस्टिंग और प्रोफेशनल ब्रीडिंग, जंगली
0: एनिमल टेस्टिंग टेस्टिंग मतलब
1: जैसे जो नई दवाइयां आती हैं।
0: अच्छा अच्छा।

0: हाँ हाँ हाँ हाँ बताइए, पूछिए दोबारा।
1: तो क्या वो भी इसका एक कारण हम मान सकते हैं?
0: नहीं, उसका तो ऐसे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आएगा। एनिमल टेस्टिंग एंड एनिमल का जो ये उस पर हम दवाइयों का जो
1: प्रोफेशनल ब्रीडिंग
0: करते हैं, पर हम देखिए जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उसकी प्रोफेशनल ब्रीडिंग ऑलमोस्ट निल है। वो भी हम सिर्फ उन एनिमल्स की कर पाते हैं जो शेड्यूल्ड वन एनिमल है और एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। जैसे हम बात करें जीआईबी की, जीआईबी की हम कैप्टिव ब्रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया के अंदर 120 ही बर्ड्स बची हैं, उनको बचाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो एनिमल्स हैं वो आप कर रहे हैं जो कि डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, उनकी ब्रीडिंग आप करते हैं, तो उसकी ब्रीडिंग से हमारे वाइल्ड एनिमल्स पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता।
1: प्रेम कुंवर जी, आपसे अब हम प्रश्न करना चाहेंगे। चंबल नदी में हम लोगों को नहाते देखते हैं और पशुओं को पानी भी पिलाते हैं, सिंचाई का कार्य भी होता है और देखा जाता है कि अक्सर मगरमच्छ वहां आ जाता है। शहरी इलाके में भी अभी कुछ दिनों पहले किशोर सागर की पाल पर हमने मगरमच्छ घूमता हुआ देखा। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि वहां मगरमच्छ आ जाए, चाहे तो नदी के किनारे या शहरी इलाकों में, तो सबसे पहले आम जो नागरिक हैं, जो जनता है, वो क्या करे ताकि उनको भी किसी तरह की क्षति ना हो और मगरमच्छ को भी ना हो, क्या सतर्कता बरती जाए?
2: नमस्कार। अपने यहाँ जो चंबल नदी है इसमें मार्श क्रोकोडाइल पाए जाते हैं और क्रोकोडाइल हमेशा वैसे नदी जो उसका हैबिटेट है उसी में रहता है, बाहर निकलना वो वैसे ही पसंद नहीं करता है
1: जी।
2: और इंसानों से तो वो वैसे ही डरते हैं। कुछ कारणों से ही ये अपने हैबिटेट छोड़कर दूर जाते हैं, जैसे ब्रीडिंग पीरियड होता है ना
1: जी।
2: तो उस टाइम ये जैसे मार्च से जुलाई तक थोड़ा इनका अंडे देने होते हैं, तो ये सॉफ्ट मिट्टी ढूंढेंगे और नदी से बाहर निकलकर खेत में या कोई तालाब में है तो बाहर निकल के ये ढूंढते हैं और इंसानों के संपर्क में आ जाते हैं। और बारिश के दिनों में भी ये नदी से नालों के जरिए और तालाबों तक पहुंच जाते हैं, जैसे किशोर सागर तालाब में हम देखते हैं, तो ये भी नहर के जरिए और ऐसे कोई मान लो छोटा होगा तब आ गया और फिर यहाँ पे है
1: जी।
2: तो जैसे ही कोई कहीं पे भी ये क्रोकोडाइल दिखते हैं तो सबसे पहले तो हमें देखते ही भाई ऐसा नहीं कि इसके जस्ट पास ही चले जाओ, हमेशा थोड़ी दूरी मेंटेन रखिए और वो लोगों को भी अलर्ट कर दिए इसके पास नहीं आए, इसे छेड़छाड़ ना करें, पत्थर ना फेंके, किसी प्रकार का भोजन इत्यादि इसको खिलाने की कोशिश ना करें, इस तरीके से सावधानी बरतें और वन विभाग को सूचना करें और उसको रेस्क्यू करवाएं वहां से ताकि वो सुरक्षित अपने हैबिटेट में छोड़ा जाए। और जो नदी और तालाब के आसपास जो भी एक्टिविटी करते हैं इंसान, जैसे कि पशु को पानी पिला रहे हैं या फिर नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, तो कोई नदी का जो एरिया जहाँ क्रोकोडाइल भी है और आपकी भी वहाँ गांव पास में आपकी एक्टिविटी रहेगी रहेगी, तो एक ऐसा कोई जोन बनाए जहाँ चबूतरा जैसा जिसपे पानी भी रहे और उस चबूतरे पे मतलब 25x25 का भी एक चबूतरा बना के उसको 3-4 फीट हाइट वाली लोहे की जाली से कवर कर दे, मतलब बाउंड्री बना दे ताकि आप सुरक्षित उसमें नहा सके, आपके पशु भी पानी पी सके और दूर
1: मगरमच्छ के बारे में एक आम जनता की जो सोच है वो ये है कि मगरमच्छ व्यक्ति को जिंदा निगल जाता है, ये कितना सच है?
2: क्रोकोडाइल या मगर जो है वो इंसानों को नहीं खाता है, हम उसका भोजन नहीं है
1: जी।
2: क्रोकोडाइल अपने ही हैबिटेट नदी में रहता है और वहाँ जो जीव मिलते हैं जैसे कि मछली है या छोटी बर्ड्स है उनका ही शिकार करता है। अक्सर हम देखते भी है सर्दियों के दिनों में जब वो हम जाते हैं घूमने और नदी किनारे और उनको मछलियां खाते देखते हैं तो वो मछलियों को भी निगल रहे होते हैं, मुंह पकड़ के निगल रहे होते हैं
1: जी।
2: अब वो इंसान को कैसे खाएंगे ये सोचने में भी आश्चर्य लगता है, पर लोग में भ्रम है और वो डरते हैं, तो एक अवेयरनेस की जरूरत है लोगों में ताकि वो डरे नहीं
1: जी। अनुराग जी, अक्सर पैंथर और भालू का मूवमेंट शहरी इलाकों में देखा जाता है और जैसे ही लोग इन्हें देखते हैं एक उनका माइंडसेट बन चुका है कि ये अभी अटैक करेगा, लेकिन उस वो अटैक नहीं करना चाहता, वो खुद एक सेफ्टी जोन में जाना चाहता है। अब ऐसे में लोग क्या करें सबसे पहले, और वन विभाग को सूचना देने के लिए क्या कोई नंबर है या कोई ट्रोल फ्री नंबर है, वो आप यहाँ पर बताएं।
0: बिल्कुल मैम, एक वन विभाग का नंबर है 1926
1: जी।
0: इस पे आप तुरंत सूचना कर सकते हैं, है ना, ये टोल फ्री नंबर होता है, इससे आप सूचना कर देंगे भाई इस एरिया में लेपर्ड देखा गया है या भालू देखा गया है। उससे इम्पोर्टेंट बात है कि आप जब कोई लेपर्ड या भालू देख लें तो पैनिक ना हो, क्योंकि एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि वो भालू या लेपर्ड आया है तो वो कोई हमारा शिकार करने नहीं आया, वो बाई चांस भटक गया है।

0: उससे एक्सीडेंट ना हो, हमें ये चीज देखनी पड़ेगी। आप इसको ऐसे मानो कि जैसे कि कोई सपोज रोड से कोई कार आ रही है या कोई ट्रक आ रहा है, और उसमें ऐसा हो सकता है कोई ड्राइवर इतना एक्सपर्ट ना हो या कोई नया आदमी चलाने सीख रहा है, तो वो ऐसे डोलता हुआ आ रहेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो हम बीचों बीच खड़े हो जाएंगे यार कैसे चला रहा है, गलत चला रहा है, तो वो हमारे टक्कर मारेगा और हमारे नुकसान हो सकता है। बेटर है मैं साइड हो जाऊं, उससे दूरी बना लूं, भैया इसको गाड़ी को तो दिख रहा है इसको, कोई कहते हैं ना कि लेडी आ रही है चलाने वाली या कोई जेंट्स भी आ रहे हैं, नया नया सीख रहा है तो गाड़ी को टेढ़ा मेढ़ा चलाता है वो, तो ये यहाँ पे सिचुएशन इसी तरह की होती है, हमें इससे बचना पड़ेगा। जैसे ही हमें देखा कि हमारे घर के आसपास कहीं मैंने देखा कि लेपर्ड मुझे दिखाई दे गया, तो मैं तुरंत उसको देखूं कि भाई ये लेपर्ड यहाँ पे घूम रहा है तो मुझे इन्फॉर्म कर देना चाहिए। पर एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि मेरे पे अटैक नहीं करेगा बिना हुआ, हाँ अनटिल एंड अनलेस मैं उसके बिल्कुल पास चला जाऊं तो मुझे उसका फोटो खींचना है कुछ करना, इससे तो मैं दूरी बना लूंगा।
1: या फिर जिस वाहन में वो होते हैं उसकी जो लाइट है वो उस पर एकदम रोशनी डालते हैं,
0: हाँ, तो वो उल्टा जो एनिमल है ना वो पैनिक हो जाता है, वो तो डरा हुआ ऑलरेडी है, देखो वो शहर में आ गया उसको वहाँ पे अपने जंगल जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, वहाँ पे अजीब अजीब से जानवर, उसके लिए तो जानवर ही है ना ह्यूमन बीइंग, कि ये कौन से जानवर आ गए हैं।
1: हेलो
2: नमस्कार
1: जी, नमस्कार, नाम बताइए
2: जी। ब्रजेश सिंह नाम, ग्राम चम्बा जिला संबल से बात
1: जी। प्रश्न कीजिए आप
2: जी।
1: क्या प्रश्न है आपका
2: जी? इसके लिए जैसे लेडीजों के लिए निकोरिया की शिकायत रहती है, उसके लिए क्या
0: ये एक क्वेश्चन लगा गया।
1: आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, हमारा प्रोग्राम है वन संरक्षण।
0: वो डॉक्टर सुन रहे हैं
1: जी
0: उसमें।
1: जी सर,
0: हाँ। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि जब जंगल के अंदर जंगल से कोई जानवर भटक के सिटी में आ जाता है ना, तो वो ऑलरेडी डरा हुआ है, वो परेशान, वो ये सोच रहा है मैं यहाँ पे कहाँ आ गया, उसको सब कुछ नया नया है, जंगल जैसा उसको कुछ भी नहीं दिख रहा है वहाँ पे, तो ऑलरेडी वो पैनिक में है और हम भी पैनिक में हो जाते हैं, हम भी घबरा जाते हैं एनिमल को देख के, तो वो एक अननेसेसरी हम फेस टू फेस आते हैं उसके आसपास जाते हैं, तो वो अटैक करता है, अटैक मतलब वो अपने आप को बचा रहा है, शिकार नहीं कर रहा, वो अभी भी शिकार नहीं करेगा, बस वो है कि भाग के आके मारेगा, तो जंगली जानवर है, यदि एक थप्पड़ भी हमारे उसने मार दिया तो हमारे लिए फेटल होता है, हमारी डेथ तक हो सकती है, तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे ही हमें कभी ऐसी कोई साइटिंग होती है हमें तुरंत नियर बाई जो भी फॉरेस्ट ऑफिस है वहां पे हमें इन्फॉर्म करना चाहिए कि यहाँ पे हमें स्लॉथ बेयर मिला है या यहाँ पे हमें लेपर्ड दिखा है, कोई भी एनिमल स्नेक भी दिखा है, तो इन्फॉर्म करें, रेस्क्यू टीम आती है, रेस्क्यू टीम आके उसको सेव करके जाएगी वहां से, और 1926 जो नंबर है हमारा उससे भी आप हमें,
1: तो ये नंबर
0: 24/7 चलता है बिल्कुल।
3: उपवन संरक्षक वन्य जीव कोटा।
4: राजस्थान सरकार की एक अनूठी एवं महत्वाकांक्षी योजना है जिसका नाम है कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम। इस योजना में आप ले सकते हैं वन्य जीवों को गोद और वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण में कर सकते हैं एक बड़ा सहयोग। अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा में आप बाघ यानी टाइगर, लायनस यानी शेरनी, लेपर्ड, हाइना यानी जरक, सियार, स्लॉथ बेयर, सांभर, काला हिरण, चिंकारा, चीतल एवं नील गाय को गोद ले सकते हैं। मूक प्राणियों की यदि सेवा करना चाहते हैं एवं वन्य जीव संरक्षण में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो राजस्थान सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से अवश्य जुड़ें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कार्यालय उप वन संरक्षक वन्य जीव कोटा, पुराना चिड़ियाघर, नयापुरा, कोटा।
1: सजीव फोन इन प्रोग्राम वन संरक्षण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज का विषय है वन्य जीव संबंधी मिथक और मानव वन्य जीव संघर्ष समस्या समाधान। यदि आप भी इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न करना चाहते हैं तो डायल करें हमारे स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 2941142, कोटा का एसटीडी कोड 0744। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताइए।
5: लाल मरण बोल रहा हूँ
1: जी, प्रश्न कीजिए आप।
5: हाँ, मेरा प्रश्न तो ये है कि जो आपके नंबर है वन विभाग के नंबर है, दोबारा बोलो आराम से
1: जी।
5: कितने?
1: अनुराग जी,
5: 1926
1: 1926
5: 1926 1926 1926।
1: कोई अन्य प्रश्न है आपका?
5: हाँ, इसमें ये है कि इस नंबरों पे हम वन्य जीवों की कोई शिकायत है तो इसको सुन रहे हैं या कोई शिकायत कर सकते हैं?
0: नहीं, वन विभाग से संबंधित कोई भी सूचना हो ना आपकी, जैसे आप कहीं पहले भी आप पूछ चुके हैं अतिक्रमण वाली कोई समस्या होती है, तो इस जो भी संबंधित है,
5: मान लो कोई वन विभाग की जमीन है,
0: हाँ वही बता रहा हूँ मैं, अतिक्रमण से वही मैं कह रहा हूँ आपसे,
5: अतिक्रमण से कुछ नहीं हो रहा है तो उसकी शिकायत भी कर सकते हैं?
0: उसकी शिकायत बिल्कुल आप कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, 1926 जब होता है ना, इस पे जैसे आप लगाते हैं तो कंसर्न जिस भी एरिया से आप बोल रहे हैं, जैसे आप 12 से बोल रहे हैं तो 12 के रेंजर के पास पहले फोन जाएगा, उसके बाद फिर डीएफओ के पास, एसीएफ के पास जाएगा, एसीएफ के बाद फिर डीएफओ के पास जाएगा, और डीएफओ के पास फिर सीसीएफ के, मतलब यदि वो वहां पे उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो ये हेड ऑफिस तक जाएगा, यानी कि आपकी बात यदि

0: वहाँ पे रजिस्टर हो गई तो फिर इसमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तक वो सूचना पहुंच जाएगी। और
1: उसमें रजिस्टर क्या भाई साहब, अरे
0: उसी वो मैंने मान लिया आपकी बात, वो बात मान ली मैंने, अरे ठीक है भैया ठीक है, उस पर मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रहा
1: हूँ।
0: हाँ तो कोई बात नहीं, नहीं है तो आप, मैंने बता दिया आपको जो क्वेश्चन,
1: आप ही टाल रहे हो
0: क्या,
1: आप क्लियर करें, आप अधिकारी हो, आप कह रहे हैं कि मेरे गांव की बात है।
0: भैया मैं आपको बता चुका हूं, ये आपके क्षेत्र की जो बात है, मैं डीएफओ कोटा बोल रहा हूं, मेरे क्षेत्र की बात की मैं जवाब दे पाऊंगा, ठीक है ना। आप
2: बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। प्रेम कुंवर जी, अभी आपने कहा कि मगरमच्छ सिर्फ मछलियों या छोटे जो जीव हैं पानी के उनका शिकार करता है, लेकिन अभी हाल ही में इटावा की एक घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति मगरमच्छ का शिकार हुआ, तो ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं और जो व्यक्ति शिकार हुआ क्या उसको मुआवजा मिलेगा?
3: जी मैम, ये क्रोकोडाइल तो रिवर में और वहीं पे अपना भोजन की तलाश करता है, और क्रोकोडाइल का जो बिहेवियर है वो नदी के जो छिछले पानी में अपने आप को छिपा के रखता है, और जैसे ही कोई जानवर आता है, मान लो कोई हिरण भी आ रहा है वहाँ पे, नीलगाय भी आ रहा है, तो उसको भी झपट के और शिकार करता है। तो कभी कभी ये क्या है कि कोई चरवाहा या कोई भी मछली पकड़ने वाला है नदी में जा रहा है, उसकी नजर पड़ती नहीं है क्योंकि क्रोकोडाइल अपने आप को क्लो में फंस रखता है, बिल्कुल पत्थर जैसा ही होता है
2: जी,
3: ध्यान पड़ता नहीं है, दोनों बिल्कुल पास आ जाते हैं और एक्सीडेंटली मतलब क्रोकोडाइल इंसान पे अटैक कर देता है और इस तरीके से इंसान उसका शिकार बन जाते हैं, बाकी वो इंटेंशनली किसी इंसान को मारना नहीं चाहता है, इंसान उसका भोजन नहीं है। तो इटावा में जो घटना हुई है वो उसमें जो अपने राजस्थान सरकार का एक सर्कुलर है जिसमें बताया हुआ है कि किसी भी राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण क्षेत्र के अंदर और बाहर के क्षेत्र में किसी भी वन्य जीव जो शेड्यूल एनिमल हैं उनके द्वारा अगर किसी भी जन को हानि पहुंचती है या घायल किया जाता है तो उसको मुआवजा मिलता है। तो ये व्यक्ति मारा गया है तो इसको 10 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा
2: जी। हेलो जी, नमस्कार,
4: मैं महेश बोल रहा हूँ
2: जी, प्रश्न कीजिए।
4: हाँ बता रहे डॉक्टर, मेरा प्रश्न ये है कि डॉक्टर जैसे बता रहा था, ऐसा है कि जैसे एक तो टाइगर होता है, एक लायन होता है
2: जी,
4: लेपर्ड होता है, जरक होता है
2: जी,
4: तो इन जनरल जब ये मतलब सिटी में या अपने आबादी क्षेत्र में आ जाता है तो टाइगर समझ में आ जाता है कि भाई उसके चितकबरे मतलब वो होते हैं, है ना, लाइन समझ में आ जाता है, लेकिन ये बाकी जानवर समझ में नहीं आते। और अपने क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे जानवर होते हैं जो इंसान पर अटैक कर सकते हैं?
0: जी देखिए, अभी आप जो बात कर रहे हैं, लायन आपके क्षेत्र में कभी आ ही नहीं सकता है क्योंकि लायन हमारे यहाँ ही नहीं, हमने पूरे हिंदुस्तान में सारे लायन को खत्म कर दिया, आप जानते हैं ह्यूमन बीइंग ने सबको मार डाला है, अब सिर्फ गिर में बचे हैं, गुजरात के अंदर ही बचे हैं वो, तो लायन की तो बात ही नहीं करनी है। दूसरे नंबर पर टाइगर जो आता है, टाइगर रेयरली आता है अपने एरिया में, कोटा में नहीं आ सकता यहाँ पे वो, क्योंकि टाइगर का स्ट्रिप्स होती हैं जिसके ऊपर, वो इतने कम है नंबर उसके, और वो जनरली डेंस फॉरेस्ट को नहीं छोड़ता है। आपके यदि सिटी में आएगा तो वो लेपर्ड ही आएगा, चीता हमने पहले खत्म कर दिया, 1952 में लास्ट रिपोर्टेड एक्सटिंक्ट हो गया था इंडिया से। अब उसके बाद माननीय पीएम साहब जो लेके आए हैं वो हम साउथ अफ्रीका से लेके आए हैं चीता, वो हमने कूनों में छोड़े हैं, उसके भी यहाँ पे होने के चांसेस ना के बराबर है, ठीक है ना। तो आपके पास क्या बचता है, लेपर्ड बचता है, और कोई कैट फैमिली में, बड़ी कैट फैमिली में कोई नहीं मिलेगा आपको, लेपर्ड आ सकता है। लेपर्ड पिछले हजारों सालों से हमारे यहाँ रह रहा है और ह्यूमन बींग के आसपास, नहीं, लेपर्ड कैट फैमिली का है, उसके ऊपर रॉजेट्स होते हैं, बिल्कुल बिल्ली, बड़ी बिल्ली है वो एक तरह से ना, बिग कैट में आती है वो आपको 99% केसेस में हमारे लेपर्ड, जिसको पैंथर भी बोलते हैं, लेपर्ड भी बोलते हैं, तेंदुआ भी बोलते हैं, तेंदुआ ये बोलते हैं, एक होता है जरक जो आप कह रहे हैं, जरक भी सिटी में आ सकता है, कभी भटक के आ सकता है, वैसे उसका कोई काम नहीं है, पर वो क्या है, वो स्केवेंजर है, वो सफाई कर्मी है, वो कोई भी डेड, वो कभी शिकार नहीं करता, रेयरली शिकार करेगा कभी, वो भी छोटे मोटे जानवर का, वो कभी किसी पर अटैक नहीं करता, तो वो जो है वो किसी भी डेड बॉडी को खाने के लिए आया होगा, उसके ऊपर स्ट्रिप्स होती है, दूर से वो टाइगर जैसा लगता है, पर वो टाइगर कभी नहीं आएगा, मान लो टाइगर तो नहीं है, वो स्ट्रिप वाला जो है वो स्ट्रिप्ट हाइना ही है हमारे यहाँ, या फिर स्नेक्स मिल सकते हैं जिससे आपका मानव का एक इंटरेक्शन हो सकता है, उसमें अलग अलग तरह के सांप होते हैं, और 90% सांप हमारे नॉन पॉइजनस होते हैं, यानी नॉन वेनमस होते हैं, उनसे जहर नहीं होता उनमें, लेकिन फिर भी हमें उनसे सबसे दूरी बनाकर रखनी है। हमें ये नहीं देखना कि ये जहरीला है या नहीं है, हम तो ये मान के चलेंगे सब जहरीले हैं और हमें उनसे दूरी बना के रखनी है, ठीक है ना
2: जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए जी। जी अनुराग जी, जिन क्षेत्रों में सेंचुरीज है, अभयारण्य क्षेत्र है, तो हम देखते हैं कि वहाँ मानव बस्तियां बस गई हैं, कॉलोनियां हैं और होटल्स बनाने

0: की भी अनुमति दी जाती है। अब ऐसे में एक्टिविटीज बढ़ेगी, ह्यूमन एक्टिविटीज बढ़ेगी, तो जब ह्यूमन एक्टिविटीज बढ़ेगी तो मानव और वन्य जीव संघर्ष होना स्वाभाविक है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इन मानव बस्तियों को वहां से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए या होटल्स बनाने की अनुमति ना मिले ताकि ये वन्य जीव संघर्ष ना हो?
1: बिल्कुल मैम, देखिए सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग इतनी स्ट्रिक्ट है कि आप सेंचुरी के आसपास कहीं पे 1 किलोमीटर की रेडियस के अंदर कहीं पे भी आप इस तरह की एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। और अब तो ये हो गया है कि जो हमारा पहले तो एक बाउंड्री होगी आपकी सेंचुरी की या टाइगर रिजर्व की, उसके बाहर भी हम बनाते हैं इको सेंसिटिव जोन, उसके अंदर भी किसी तरह की भी कमर्शियल एक्टिविटी अलाउड नहीं है वहां पे। वो बात अलग है कि एनक्रोचमेंट हो जाता है, एनक्रोचमेंट इज अ डिफरेंट थिंग, वो एक अलग चीज है, उसमें नियमानुसार तो नहीं हो रहा है। अब कोई उसको हटाना हमारी जिम्मेदारी होती है, हटाते भी हैं, पर कई बार इतना प्रेशर होता है, कोई कहता है 50 साल से बैठा है, 40 साल से बैठा है, तो उसको हटाना थोड़ा मुश्किल है। नए तो कोई नहीं बना सकता, नई बिल्डिंग है, नई होटल्स जो है सेंचुरी के अंदर नहीं बन सकती आज की तारीख में, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे पुराने किसी के बने हुए 30-40 साल पुराने, तो उस पे भी केसेस चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बहुत स्ट्रिक्ट है, सरिस्का के अंदर भी वो कह रहा है कि सबको हटाओ यहाँ से, निकालो सबको, ऐसे वो सब चल रही है। लेकिन ये एक एक जुडिशियल प्रोसीजर है, उसमें हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि भाई हम आज ही हटाए, कोर्ट में केस चल रहा है, यदि कोर्ट कह देगा कि इसको निकालो तो। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आज की तारीख में किसी भी सेंचुरी के अंदर, किसी टाइगर रिजर्व के अंदर कोई भी होटल नहीं बन सकता है, कोई होटल नहीं बन सकता।
0: मानव वन्य जीव के बीच जो संघर्ष कई सालों से चलता आ रहा है, तो क्या इस संघर्ष के चलते ऐसी कई प्रजातियां भी हैं जो आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं?
1: बिल्कुल, टाइगर से हम शुरू कर लेते हैं
0: जी।
1: मुकंदरा के अंदर आप यदि 80s में आ जाएं, 70s में आ जाएं, तो मुकंदरा यहाँ पे जो कोटा का एरिया पूरा यहाँ पे टाइगर्स थे, आज की तारीख में एक्सटिंक्ट होने की उसमें हमें लाने पड़ रहे हैं दूसरे स्टेट से, दूसरे हम टाइगर रिजर्व से लेकर आ रहे हैं। ऐसे यदि आप देखें पेंगोलिन होता है, पेंगोलिन चिटी खोरा हिंदी में बोलते हैं उसको, वो ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे है। पूरे मुकंदरा के अंदर कुछ ही फोटोग्राफ्स मिले हैं जहां पे वो मिल रहा है, उसकी वो दुनिया का सबसे ज्यादा पोस्ड एनिमल है, सबसे ज्यादा शिकार उसका होता है। अब देखिए छोटा सा जानवर है, उसके मांस को भी आदमी खाने पे लगा हुआ है, उसके जो स्केल्स होते हैं बॉडी के ऊपर जो उसके स्केल्स होते हैं उसकी भी तस्करी होती है, तो इन सब पे कंट्रोल हो रहा है। अब वापस उसकी पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हुई है। ऐसी रस्टी स्पॉटेड कैट है, वो बिल्कुल खत्म होने की कगार पे आ गई है। रैटल्स होते हैं, वो बिल्कुल खत्म होने, मतलब ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से खत्म होते जा रहे हैं।
0: हेलो,
2: हेलो
0: जी, नमस्कार, नाम बताइए।
2: मैं बूंदी जिले में तहसील से बोल रहा हूँ सर
0: जी। प्रश्न कीजिए आप।
2: ग्राम सुहासड़ा से
0: प्रश्न कीजिए
2: जी।
1: हाँ, आपका
0: प्रश्न क्या है?
2: प्रश्न तो है, मैम मेरे क्वाप में मकान है, वहाँ दूसरा पाते हैं, रोड पाते हैं, वो परेशान करते हैं, वो इधर उधर घूमते हैं।
1: कौन
2: सर? आप सांप।
1: अच्छा, सांप।
2: जी,
1: तो आप कहाँ गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं?
2: नहीं, गांव में रहते हैं, कुआं पे रहते हैं, गांव में रहते हैं।
1: अच्छा अच्छा, तो वैसे तो देखो सांप कहीं एक जगह रुकता नहीं है, सांप आता है वहाँ पे, उसको चूहा हुआ कुछ दिख रहा होगा या कुछ भी ऐसा जानवर होगा उसके पीछे।
2: चूहे थे सर, पर वो मकान है, मकान के अंदर वो जाते हैं, रोड पार रहे, पर उस वक्त क्या करें?
1: देखो उसमें अच्छा है कि उसको उससे आप इंटर मतलब उससे आपको जाके छेड़ाछाड़ी नहीं करनी, वो अपने आप निकल जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है घर में चूहे नहीं रहने चाहिए। देखो उसका फूड चूहा है, वो आपसे मिलने तो आ नहीं रहा है, उसे तो भूख लगी और वो चूहा खाने के लिए आ रहा है, वो है पूरी तरह से मजा जी,
2: बात तो यही है।
1: हाँ, और फिर भी यदि आपको लगे कि बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो नियर बाय रेंज ऑफिसर जो है वहाँ पे आप कांटेक्ट कर लें, उसको हम रेस्क्यू करके जंगल में भी छोड़ देते हैं। लेकिन बात यही है, आप उसको हटा दोगे दूसरा आ जाएगा वहाँ पे, यदि चूहे हैं तो सांप कोई ना कोई सांप तो आएगा, उनका काम ही ये है कि वो चूहों को खत्म करें
0: जी।
2: बात तो यही है सर
0: जी। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। प्रेम कुंवर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कहा जाता है कि तेंदुए आदमखोर होते हैं।
3: सारी देंगे
0: जी, अनुराग जी से जानना चाहेंगे जी, कहा जाता है कि तेंदुए आदमखोर होते हैं।
1: देखिए कोई भी जानवर, तेंदुए की बात आप अभी हम इसको स्पेशलाइज में बता देंगे, कोई भी जानवर आदमखोर नहीं होता है। ह्यूमन बीइंग किसी भी जानवर, किसी भी वन्य जीव का भोजन नहीं है। तेंदुए की बात करें, लेपर्ड की बात करें, तो उसमें जो है कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई जो लेपर्ड है वो मैनिटर हो गया है। मैनिटर होते हैं 10 लाख केसेस में एक केसेस होता है कि भाई उसके अंदर, उसमें भी कई सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि सपोज एक लेपर्ड है उसके दांत टूट गए, अब उसको भोजन करना बहुत मुश्किल है, जंगल के अंदर सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, लेपर्ड को 80 बार वो फेल होता है, 100 बार यदि वो अटैक करता है तो 80 बार फेल होता है, 20 केसेस के अंदर ही वो पकड़ पाता है। एक गिलहरी को पकड़ना भी बहुत मुश्किल है, एक बंदर को पकड़ना बहुत मुश्किल है,

0: ह्यूमन बींग सबसे इजी प्रे है, सबसे इजी शिकार है. आप देखिए यदि वो गिलहरी को पकड़ने की कोशिश करेगा तो गिलहरी यहां से वहां से वहां भाग जाएगी. लेकिन आदमी को यदि पकड़ना हो, उसको शिकार करना हो, तो उसको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, जोर से रोर करेगा, गुर्राएगा, आदमी तो खड़ा हो जाएगा, आराम से शिकार कर लेगा. लेकिन भगवान ने ऐसा बनाया है कि कोई भी लेपर्ड या कोई भी जानवर हमें शिकार नहीं समझता. पर होता क्या है, जैसे मैंने बताया दांत टूट गए उसके, वो शिकार नहीं कर पा रहा है, भूखा है, ऐसे में उसको कोई डेड बॉडी मिल गई ह्यूमन की और उसने भूखा था, उसने उसको खा ली डेड बॉडी. अब उसके समझ में आ गया कि यार ये ऐसी बॉडी है जिसको मैं खा सकता हूँ. एक आधा और कोई इंसिडेंस ऐसा हो गया, कहीं पे कोई बच्चा मिल गया है कोई ऐसा जिसको उसने मार दिया अटैक करके, अब उसको ये लगा कि यार सिर्फ ये एक जानवर ऐसा है जिसको मैं खा सकता हूँ. और ये लेकिन 10 लाख केसेस में एक बार होता है, ऐसा नहीं होता कि रेगुलर प्रोसेस, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है ये. उस केस में वो उसमें आदमखोर हो जाता है. लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि आदमखोर उसको नहीं कहना चाहिए हमें. आदम को खाने वाला कोई जानवर नहीं है, है ना.
1: उपवन संरक्षक वन्य जीव कोटा.
2: राजस्थान सरकार की एक अनूठी एवं महत्वाकांक्षी योजना है जिसका नाम है कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम. इस योजना में आप ले सकते हैं वन्य जीवों को गोद और वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण में कर सकते हैं एक बड़ा सहयोग. अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा में आप बाघ यानी टाइगर, लायनस यानी शेरनी, लेपर्ड, हाइना यानी जरक, सियार, स्लॉथ बेयर, सांभर, काला हिरण, चिंकारा, चीतल एवं नील गाय को गोद ले सकते हैं. मूक प्राणियों की यदि सेवा करना चाहते हैं एवं वन्य जीव संरक्षण में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो राजस्थान सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से अवश्य जुड़ें. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कार्यालय उप वन संरक्षक वन्य जीव कोटा, पुराना चिड़ियाघर नयापुरा कोटा. भी आ रहा है
3: अनुराग जी, जब मानव वन्य जीव संघर्ष होता है तो जनहानि भी होती है, पशुधन हानि भी होती है. तो यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे कि मुआवजे की क्या प्रतिक्रिया है और मुआवजे के लिए किससे संपर्क किया जाए.
0: राइट. देखिए राजस्थान सरकार ने एक पूरा सर्कुलर निकाला हुआ है कि यदि किसी भी वन्य जीव के द्वारा किसी ह्यूमन पे अटैक किया जाता है या कोई एक्सीडेंट हो गया किसी भी वजह से उसको नुकसान होता है तो यदि उसको डेथ हो जाती है तो 10 लाख रुपए का प्रावधान, 10 लाख रुपए दिए जाएंगे. यदि उसको परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है यानी कि पूरा हाथ ही टूट गया है, कोई भी परमानेंट उसको हो जाता है, तो भी 10 लाख रुपए दिए जाएंगे. और यदि इंजरी हुआ है, बहुत सीवियर इंजरी हुआ है, उसमें चोट लगी है लेकिन परमानेंट डिसेबिलिटी नहीं है उसके अंदर, तो उसमें फिर 2 लाख रुपए का प्रावधान है. और यदि एक छोटी सी स्मॉल सी वो भी हो जाती है, जैसे कई बार सांप ने बाइट किया लेकिन वो नॉन वेनमस था तो उससे बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उस केस में भी हम उसको 25,000 रुपए तक उसमें उसको हम पेमेंट करते हैं उसको. और इसका
3: जी संपर्क किससे किया?
0: हाँ, और इसका प्रोसीजर सिंपल है. जिस भी एरिया में, जैसे कोटा के अंदर है, बारा के अंदर है, या किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ पे भी होगा, वहाँ का जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट जो होता है, उसके ऑफिस में जाके इन्फॉर्म करेंगे सर ये ऐसे ऐसे घटना घटित हुई है, और उस पे वो अपना मौका पर्चा बनाएंगे, मौका देखेंगे, सब सारी चीजें करेंगे और उसमें वो पेमेंट करा देंगे वहाँ से.
3: हेलो,
4: नमस्कार
3: जी. नमस्कार, नाम बताइए.
4: अर्जुनदान शरण बोल रहा हूँ.
3: प्रश्न कीजिए आप.
4: प्रश्न मेरा ये है साहब, आए दिन सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो शेयर हो रहे हैं जिसमें लोग टाइगर के पीछे भाग भाग के वीडियो बना रहे हैं
3: जी.
4: उनकी मेटिंग सीजन का भी वीडियो बन रहा है, क्या अनुराग ऐसा नहीं कर सकता कि मेटिंग सीजन में भाई पर्यटक का आना जाना बंद हो जाए?
0: जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये तो बंद हो जाता है जो कितने भी नहीं सर. देखिए मेरी बात सुनिए आप, जब टाइगर, मैं आपको यदि टाइगर रिजर्व की बात करें आप, तो टाइगर रिजर्व में मेटिंग पीरियड में 4 महीने के लिए सारे पार्क्स बंद हो जाएंगे. अब 1 जुलाई से आप रणथंबोर जाना चाहेंगे, आपको परमिशन नहीं मिलेगी. नोबडी इज अलाउड टू गो देयर, कोई भी अलाउ नहीं होता है वहां पे जाने के लिए. आप सरिस्का में जाएंगे वहां पे आपको अलाउ नहीं होगा, आप मुकुंदरा के अंदर जाएंगे. जी
4: पर ये वीडियो कहाँ से आ रहे हैं
0: सर? ये वीडियो तो मुझे पता नहीं, देखिए उस पर नेट पे कहाँ कहाँ से डालते हैं, कई बार एआई वाले भी बना देते हैं, मुझे पता नहीं है वो. आप समझते होंगे, आप समझते होंगे. देखिए मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि आपने क्या वीडियो देखा है, लेकिन मैं एक चीज बता सकता हूँ कि इन चारों में आप कभी अप्लाई भी करके देख लीजिए, आपको 4 महीने
4: तो पता मुझे बंद होता है 4 महीने, उसमें कोई बात नहीं है. खुले में
0: सर देखिए मेरा निवेदन सुनिए, किसी भी टाइगर रिजर्व के अंदर आपको जमीन पे उतरना ही अलाउड नहीं है, आप जमीन पे उतर ही नहीं सकते.
4: हाँ
0: तो यार वो तो एक अलग बात होगी ना, देखो ये आप और हम ही तो है नियम तोड़ने वाले भी.
4: पूरा बंद करके भेजो ना, उतरने की नौबत ही नहीं आए.
0: बंद करके कैसे भेजे, कम मतलब उसमें क्या उसका कोई बॉक्स थोड़ी बनाएंगे. तो देखिए देखिए ये आपकी सलाह हो सकती है, हम सलाह ले सकते हैं, पर हम
4: सलाह ही तो दे रहा हूँ मैं.
0: बिल्कुल.

0: बिल्कुल
1: करें
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल,
0: बिल्कुल। तो हम आपकी सलाह को इसको आगे भेजेंगे, इसमें
1: आगे
0: बात
1: भेजो
0: करेंगे इसके लिए। जी
1: जी बहुत बहुत फर्क पड़ेगा
0: जी सर, बिल्कुल
2: बहुत बहुत
1: करते हैं लोग,
0: बिल्कुल बिल्कुल परेशान करते हैं जी, बिल्कुल
2: बहुत बहुत
1: मतलब
2: धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।
1: हम इरिटेट हो रहे हैं
0: जी
2: जी जी,
1: तो वो कितना इरिटेट हो रहा होगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही है बात आपकी, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अनुराग जी, हमने जनहानि पशुधन हानि होने पर मुआवजे की बात करी, अब यदि बात करें वन्य जीवों से फसलों को नुकसान होता है तो हम देखते हैं टीवी चैनल्स पे दिखाया जा रहा है हाथियों का झुंड, राजस्थान में तो स्पेशली नहीं है लेकिन नील गाय या जंगली सुअर या कभी कभी हिरण प्रवेश कर जाते हैं, क्या ऐसी स्थिति में किसान द्वारा नील गाय या जंगली सुअर को मारना वैलिड है, वैध है?
0: जी देखिए, इसके लिए एक नियम है, यदि किसी पर्टिकुलर गांव के अंदर पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा उनका प्रेशर आ रहा है कि भाई यहाँ पे जंगली सुअर उसकी फसलें नुकसान कर रहे हैं या नील गाय नुकसान कर रही है, तो नील गाय के लिए एक सर्कुलर आ गया है जिसमें कि तहसीलदार से लेके रेंज ऑफिसर तक या DFO तक या कलेक्टर से कहीं से परमिशन ले सकते हैं उनको मारने की। और ये आज से नहीं है, काफी टाइम हो गया इसको, लगभग 15 साल हो गए इसके नियम को आए हुए, लेकिन एक भी परमिशन आज तक किसी ने ली नहीं है, नील गाय को मारने की परमिशन किसी ने ली नहीं है। हम उसको परमिशन दे सकते हैं कि भाई आप इसको नील गाय, हाँ ये प्रूव करना पड़ेगा कि इससे नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और उसके बाद मारने के बाद उसको हमें डेड बॉडी को दबाना होगा, उसको यूज में नहीं ले सकते आप किसी भी तरह से, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इनको भी खा जाते हैं मार के, तो उसको मारने की अनुमति मिल जाएगी और फॉरेस्ट ऑफिसर पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में उसकी डेड बॉडी को दबाया जाएगा, जला दिया जाएगा, जलाना होगा या दबाना होगा उसके, तो ऐसे ले सकते हैं परमिशन।
2: कई बार ये भी देखने को मिलता है कि किसान अपनी फसल की सुरक्षा के लिए अपने खेतों के आसपास जो बाड़ेबंदी करता है वो बिजली के तार बिछा देता है या विष कुछ इस तरह की खाना वहां रखता है जो विषाक्त होता है जिसको खाकर वन्य जीव की डेथ हो जाती है, अब इसमें क्या सजा का प्रावधान है?
0: बिल्कुल, इसमें तो सजा का प्रावधान है, यदि आपने किसी भी वन्य जीव को किसी भी कारण से यदि आपने उसको मारा है, सिर्फ एक केस के अंदर आप ये प्रूव करें कि ये मुझे मारने वाला था, मैंने सेल्फ डिफेंस में मारा है, तब सिर्फ आपको छोड़ा जा सकता है, अदरवाइज आप कहें मैंने फसल को बचाने के लिए, मैंने इस चीज को बचाने के लिए, किसी भी चीज को बचाने के लिए वन्य जीव को मारा है या मारने का कारण बने हैं, आपने सीधे गोली नहीं मारी है लेकिन आपने वहां पे करंट छोड़ दिया और करंट में आके नीलगाय मर जाती है या जंगली सुअर मर जाता है, तो दोनों ही शेड्यूल 2 के एनिमल है, इसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है। यदि ये प्रूव होता है तो हमें उसको 3 साल की सजा का, उसमें हमें कोर्ट में चालान देके उसको सजा हो जाएगी, तो हमें इन चीजों से बचना चाहिए। देखिए आपकी समस्या है तो आप उस क्षेत्र में जो भी फॉरेस्ट ऑफिसर है उनसे डिस्कस करें, उनको बताएं कि इस तरह की समस्या है, हमने 90% जो प्रॉब्लम्स है अपने क्षेत्र में, मैं अपनी कोटा की बात करूं तो हमने जैसे शेरगढ़ के अंदर भैंसरोड़गढ़ के अंदर हमारी सारी प्रॉब्लम हमने सॉल्व की है, हमने वहां पे दीवारें बनाई है, अंदर हमने हर्बीवोर्स के लिए बहुत अच्छे ग्रासलैंड डेवलप कर दी। देख सिंपल सी बात है, यदि एक हिरण को अंदर चारा मिल रहा है जंगल के अंदर तो वो बाहर क्यों जाएगा इसमें, लेकिन हमें गांव वालों से भी निवेदन करना पड़ता है अपनी गायों को और भैंसों को जंगल में ना भेजे, यदि उनकी गाय और भैंसे जंगल में आके सारा चारा खा गई तो फिर वो हिरण बेचारा क्या खाएगा, फिर हिरण तुम्हारे खेतों में जाएगा
2: जी,
0: है ना, तो ये थोड़ा सा हमें दोनों साइड से हमें ध्यान
2: तो क्या बायोफेंसिंग इसका एक विकल्प हो सकता है किसानों के लिए? डेफिनेटली किसान के मन में एक प्रश्न आएगा फिर क्या करें।
0: हाँ, बायोफेंसिंग भी कर सकते हैं और जो इलेक्ट्रिक वाली होती है ना उसमें एक हल्का सा शॉक लगता है, वो वाली फेंसिंग भी आप कर सकते हैं, पर यदि करंट आपने छोड़ दिया उससे डेथ होगी तब तो देखो किसी को भी मारना सही नहीं है ना, वो तो मारना तो
2: एक हंटिंग की जो डेफिनेशन है उसमें लोग ये सोचते हैं कि मारना दैट इज हंटिंग, क्या इस डेफिनेशन में कुछ और भी शब्दावली शामिल है?
0: बिल्कुल, हंटिंग का जो हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो डिफाइन करते हैं हंटिंग में, उसको टीज करना भी हंटिंग के डेफिनेशन में आएगी, आप उसको पत्थर मारते हैं मरने का मतलब ये नहीं उसकी डेथ हो गई है तभी हंटिंग है, हंटिंग का मतलब यहाँ पे डेफिनेशन में ये आता है आप किसी भी तरह से वन्य जीव को यदि परेशान कर रहे हैं, ट्रैप करने की कोशिश भी कर रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं, इवन टीज भी कर रहे हैं, परेशान भी कर रहे हैं, तो भी हंटिंग के डेफिनेशन में आएगा और उसमें धारा 9 हम लगा के उसको अरेस्ट कर सकते हैं, धारा 31 लगा के अरेस्ट कर सकते हैं उसको। जू के अंदर भी यदि आप जाते हैं और एनिमल को टीज करते हैं, उसको चिल्लाते हैं, उसको कुछ करते हैं या उसको पत्थर मारते हैं तो उसके खिलाफ केस दर्ज होता है और वो इतना ही सीवियर है जितना हंटिंग। हम तो एक चीज मानते हैं हंटिंग मतलब मार दिया उसी, उसको जान से मार दिया तब हंटिंग हुई, नहीं हंटिंग की डेफिनेशन में।
2: तो ऐसे में जो कुछ वन्य जीव है लाइक कछुआ उसको लोग घर में रखते हैं तो ये भी हंटिंग की श्रेणी में आता है?
0: बिल्कुल, ये बिल्कुल नहीं रख सकते वहाँ पे, हंटिंग की उसमें डेफिनेशन है क्योंकि आप उसको टीज कर रहे हो, आप कहते हो कि मेरे फैमिली का मेंबर है मैं उसको अपने से पहले खाना इसको देता हूँ उसका ध्यान रखता हूँ, नो आप उसको शेड्यूल 1 एनिमल एनिमल है, आप उसको रख ही नहीं सकते हैं। और ये भी आप समझ लें कि वो आपको कोई वो नहीं, वो आपको सिर्फ गाली और गाली दे रहा है वो, क्योंकि आपने उसको एक जंगल से उठा के आपने तोते को या आपने कछुए को घर में रख लिया है, उसका तो बेचारे का टॉर्चर हो रहा है। हाँ। ना वो मेटिंग कर सकता है, ना वहाँ पे घूम सकता है अपने जंगल के हिसाब से।

0: उसको अवॉइड करें।
1: और जो पेड़ पौधे जो जंगल में है उन्हें काटना भी क्या हंटिंग की श्रेणी में है?
0: नहीं, वो मतलब उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो वाइल्ड एनिमल होता है और एक फ्लोरा एक फौना होता है, मतलब उसको हंटिंग के डेफिनेशन में नहीं लेते हैं। उसको पेड़ को काटने को तो फेलिंग ऑफ ट्रीज में ही आता है, वो पेड़ काटने की उसमें आता है।
1: जी, बात करेंगे अब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की, तो ये अधिनियम क्या कहता है?
0: ये बहुत ही अच्छा अधिनियम है और बहुत पावरफुल है। जहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लगता है, वहाँ पे दूसरे जितने भी नियम है वो सेकेंडरी हो जाते हैं। और ये बहुत बड़ी सुरक्षा है, ये 1972 में जब आया, जब ये नियम आया उसके बाद से ही माने कि वन्य जीवों की कुछ सुरक्षा हो पाई है। उससे पहले तो कोई भी आदमी किसी भी जानवर को मार सकता था, और इसी चक्कर में आप देखिए सारे लॉयन खत्म हो गए। लॉयन की हंटिंग जो हुई है गन आने के बाद, बंदूक आने के बाद, इतना ईजी हो गया क्योंकि वो तो रॉयल एनिमल था, वो बैठा रहता था, वो एक डिस्टेंस तक वो तो रॉयल है ना, उसको मैं तो लॉयन हूं मुझसे कौन लड़ेगा। उसको ये नहीं पता है ह्यूमन बींग है, ये गन लेके आता है और पास आने के बाद शूट कर देता है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 हमें पूरी, और देखिए मैं ये कहता हूँ किसी भी देश का कल्चर इससे डिपेंड करती है कि वहां पे वन्य जीवों को और दूसरे जीवों को कितनी सुरक्षा मिली हुई है। आज आप दूसरे देशों में जाएंगे, 1985 में पाकिस्तान के अंदर टाइगर खत्म हो गया, एक भी टाइगर नहीं रहा 1985 के अंदर। हमारे देश के अंदर ये बहुत अच्छी बात है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमें सारे जानवरों को उनको एक सुरक्षा देता है। उनको आप मार नहीं सकते हो, 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान रखा है। आप देखिए ह्यूमन के अंदर भी जब आप देखेंगे तो इतने स्ट्रिक्ट नियम नहीं जितने हमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट देता है।
1: तो क्या इस अधिनियम में जो हर एक पौधा है और पक्षी कीट पतंग इनके लिए भी कुछ कहा गया है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, ट्रीज इसके अंदर जो है ट्रीज भी आ गए हैं, और इसके अंदर जो हमारे कीट पतंगे हैं, बटरफ्लाईज हैं, उन सबका भी डिटेल्ड है, एक एक का नाम लिखा हुआ है उसके अंदर कि इस तितली को यदि आप मारते हो, इस मौत को यदि आप मारते हो, इस कीड़े को यदि आप मारते हो तो भी आपको सजा मिलेगी इसमें।
1: जी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो अधिनियम है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कितनी बड़ी शक्ति देता है?
0: ये दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट टीथ वी हैव। यदि हमारे पास ये ना होना, अभी देखिए इतना पावरफुल एक्ट होने के बावजूद भी कितने शिकार हो जाते हैं। यदि हम ये इमेजिन करें कि एक्ट ना होता तब तो माने कि हम इस अर्थ से ना अब तक सारे जानवरों को खत्म कर चुके होते हैं। बहुत बड़ी शक्ति हमें देता है, और इसके अंदर पब्लिक को भी ये बात समझनी चाहिए, इस नियम का हमें फॉलो करना चाहिए कि भाई हम इस तरह की हंटिंग जो है या इस तरह के जो हम जानवरों को परेशान करते हैं ये ना करें। और मैं सारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स को भी इसके लिए निवेदन करूंगा कि सब लोग अपनी जिम्मेदारी से इसको यूज करें, ये एक्ट बहुत पावरफुल एक्ट है। मतलब
1: जी, अवैध शिकार पर या वन्य जीवों से प्राप्त खाल है, सींग है, उनके नाखून है, उनके शिकार पर या उनसे प्राप्त जो उत्पाद है उन पर ये अधिनियम क्या कहता है?
0: बिल्कुल, उस पर ये अधिनियम सीधा सा वही 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान है। यदि वो स्किन किसी शेड्यूल 1 की है तो 7 साल तक का वो होगा उसमें, और उसमें मतलब 5 लाख तक का जुर्माना प्लस सजा, दोनों चीजों का प्रावधान है। और ये बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसके ऊपर ही होगा जिसके पास से ये खाल मिली है, जिसके पास से नाखून मिले। हमें प्रूफ नहीं करना कि तूने इसका शिकार किया, यदि आपके पास ये चीजें मिलती हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है, आप हमें बताएंगे ये कहां से लेके आए हो।
1: क्या ऐसा भी कोई प्रावधान है इस अधिनियम में कि ऐसे वन्य जीव जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, वैसे तो खास मुझे नहीं लगता कि होता होगा पारिस्थितिक तंत्र के लिए या किसानों के लिए नुकसान दे हैं, उन्हें मारा जा सकता है?
0: वही जैसे मैंने बताया नीलगाय को आप मार सकते हैं। यदि आप उसमें ऐसे वर्मिन घोषित जिसको हम कर देते हैं उसको हम मार सकते हैं नियम से, लेकिन ऐसे नहीं आप अपनी मर्जी से जाके कल को बंदूक लेके निकल जाएंगे, सब आपने कहा था हम मार देते हैं, वो प्रॉपर रिटर्न में वो आएगी, परमिशन आएगी, उसके बाद ही आप मार सकते हैं।
1: अब एक आखिरी प्रश्न और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे करना चाहते हैं कि वन्य जीव है, मूक प्राणी है और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना मुआवजा किसी से नहीं मांग सकते, हम इंसान तो मुआवजा भी मांग सकते हैं लेकिन ये अपना मुआवजा नहीं मांग सकते, हम इनकी मूक भाषा को किस तरह से समझें ताकि संघर्ष से सह अस्तित्व की ओर बढ़ा जा सके?
0: बिल्कुल, देखिए ये पहली बात तो ये मूक हमारे डेफिनेशन से मूक है, वो तो आपस में बातें भी करते हैं, वो पूरा कम्युनिकेशन करते हैं, पर आपका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि हमें उनके लिए क्या करना चाहिए। देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमें पूरी उसको ताकत देता है, उन जानवरों को ताकत देता है, लेकिन वहां भी इम्प्लीमेंट हमें ही करना पड़ेगा, हमें जन साधारण को, हमें फॉरेस्ट ऑफिसर्स को, हमारे प्रशासन को, सबको उनके लिए कुछ ना कुछ करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए लाखों करोड़ों रुपए काम करते हैं। जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ, एक उल्लू हमारे लिए 5 करोड़ रुपए काम करके जाता है, हम उस चीज की इंपॉर्टेंस समझते नहीं है, पर हमें ये समझना चाहिए, और बच्चों को खासतौर से, जनरेशन को हमें इन सब की इंपॉर्टेंस के बारे में, इकोनॉमिक वैल्यू के बारे में भी हमें सबको बताना चाहिए, तभी हम इनको बचा पाएंगे।
1: जी, तो श्रोताओं सबसे बड़ी बात यह है कि वन्य जीव जाएंगे कहां, क्योंकि हम

0: सभी को बाड़ों में तो बंद नहीं कर सकते। जब जंगल उनका आशियाना है तो हम मनुष्यों को चाहिए कि हम उनके आवासों पर दखल ना दें, सह अस्तित्व की भावना पर को सोचें, विचारें, उस पर काम करें, ना कि सारी जिम्मेदारी सरकार पर डालें। और मैं रीना हमारे दोनों विशेषज्ञों का यहाँ पे धन्यवाद अर्पित करती हूँ कि वो आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुँचाई। अनुराग जी और प्रेम कुंवर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ आपको बताते हैं कि कार्यक्रम को आप तक पहुँचाने में हमें तकनीकी सहयोग मिला रमेश वर्मा जी से, संयोजन हिमांशु नामा का। और अब मेरी ना हमारे दोनों विशेषज्ञों के साथ कार्यक्रम से अनुमति लेती हूँ। नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे उपवन संरक्षक वन्य जीव कोटा।
2: राजस्थान सरकार की एक अनूठी एवं महत्वाकांक्षी योजना है जिसका नाम है कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम। इस योजना में आप ले सकते हैं वन्य जीवों को गोद और वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण में कर सकते हैं एक बड़ा सहयोग। अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा में आप बाघ यानी टाइगर, लायनस यानी शेरनी, लेपर्ड, हाइना यानी जरक, सियार, स्लॉथ बेयर, सांभर, काला हिरण, चिंकारा, चीतल एवं नील गाय को गोद ले सकते हैं। मूक प्राणियों की यदि सेवा करना चाहते हैं एवं वन्य जीव संरक्षण में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो राजस्थान सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से अवश्य जुड़ें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कार्यालय उप वन संरक्षक वन्य जीव कोटा, पुराना चिड़ियाघर, नयापुरा, कोटा।
0: और अब समय है हिंदी में प्रादेशिक समाचारों का।
3: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों को 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए एनटीए ने गाइडलाइन जारी की। राज्य में परीक्षा के संचालन के लिए प्रदेश भर में एसओजी की विशेष टीमें तैनात की जाएंगी। प्रदेश में सभी संभागों में आज आंधी और बारिश के आसार, 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। और राज्य में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर व्यापक तैयारियां। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज योगासन चैंपियंस के साथ योग किया। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाले 80% से अधिक 25 से कम कर्मचारियों वाले लघु उद्यम हैं। डॉक्टर मांडविया ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रोत्साहन राशि भेजी जाएगी। पहली सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं को दो किस्तों में 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। देश भर में 200 स्थानों पर समानांतर क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित होंगे। जयपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त अजीत कुमार ने बताया कि राजस्थान में ये कार्यक्रम जयपुर सहित 7 जगहों पर होंगे।
4: राजस्थान के करीब 7 जगहों पे इस कार्यक्रम का जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, जयपुर, अलवर और पाली, ये 7 जगहों पे ये कार्यक्रम किया जाएगा। जैसा मैंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2400 करोड़ रुपए का वितरण लाभार्थियों को दिया जाएगा। इसमें करीब 15 लाख से ज्यादा लाभार्थी होंगे जिनको ये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में करीब 29,595 जो लाभार्थी होंगे, जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर होंगे, उनको करीब 13.37 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी।
3: प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब उनकी सरकार

0: के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: 21 जून को होने वाले नीट यूजी 2026 पुनः परीक्षा के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन गाइडलाइन के अनुसार परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में केवल पारदर्शी पानी की बोतल और प्रवेश पत्र रखने के लिए पारदर्शी प्लास्टिक पाउच ही ले जा सकते हैं। कलावा, पगड़ी या हिजाब जैसे धार्मिक प्रतीक और पूरी बाजू के कपड़े पहनने वाले अभ्यर्थियों को सघन जांच के लिए समय से पहले पहुंचना होगा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, भारी आभूषण और धातु की वस्तुएं पूरी

0: गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: 21 जून को होने वाले नीट यूजी 2026 पुनः परीक्षा के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन गाइडलाइन के अनुसार परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में केवल पारदर्शी पानी की बोतल और प्रवेश पत्र रखने के लिए पारदर्शी प्लास्टिक पाउच ही ले जा सकते हैं। कलावा, पगड़ी या हिजाब जैसे धार्मिक प्रतीक और पूरी बाजू के कपड़े पहनने वाले अभ्यर्थियों को सघन जांच के लिए समय से पहले पहुंचना होगा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, भारी आभूषण और धातु की वस्तुएं पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी। दूसरी ओर परीक्षा को पारदर्शी और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। पेपर लीक जैसी किसी भी संभावित गड़बड़ी को रोकने के लिए राज्य पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG ने प्रदेश भर में विशेष टीमें तैनात की हैं। ये टीमें कोटा, सीकर और जयपुर जैसे प्रमुख कोचिंग शहरों में शिक्षण संस्थानों, हॉस्टलों, PG और सोशल मीडिया गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रख रही हैं। पांचना बांध से सिंचाई जल के गतिरोध को सुलझाने के लिए प्रशासन के प्रयास लगातार जारी हैं। इस मुद्दे पर आज भरतपुर संभागीय आयुक्त कार्यालय में एक संयुक्त बैठक रखी गई है। बैठक में सभी पक्षों से चर्चा कर विवाद का हल निकालने और आम सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा। इससे पहले कल भी संभागीय आयुक्त नलिनी कठौतिया की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इसमें भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक कैलाश चंद्र विश्नोई, सवाईमाधोपुर और करौली के जिला कलेक्टर सहित सवाईमाधोपुर के किसान प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में किसानों ने उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार नहरों में सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने की मांग प्रमुखता से रखी। गौरतलब है कि करौली के किसान प्रतिनिधि महापंचायत में व्यस्त होने के कारण कल की बैठक में भाग नहीं ले पाए थे, इसलिए आज फिर से बैठक रखी गई है। प्रदेश के लूनी बांध का नाम अब सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम पर रखा जाएगा। जल संसाधन राज्य मंत्री सुरेश सिंह रावत ने ब्यावर के आशापुरा माता धाम में आयोजित एक समारोह में ये घोषणा की। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जन्मोत्सव समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जीवन साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। इतिहास में वीरों के योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना समय की आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य में कुछ दिनों से जारी आंधी बारिश की गतिविधियों से तापमान में गिरावट आई है और हीट वेव से पूरी तरह राहत मिली है। ज्यादातर स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। 41.5 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं रात के पारे में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के वायुमंडल में बने नए सिस्टम से हवाओं की नमी में तेजी से बदलाव है। इससे आज राज्य के सभी संभागों में बारिश के आसार हैं। 15 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। विभाग के अनुसार राज्य के पूर्वी हिस्सों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हो सकती है। इस दौरान कहीं कहीं तेज हवा भी चल सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ जगह हल्की बरसात की संभावना है। इस बीच कल दोपहर बाद चूरू, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ में मौसम अचानक बदला और तेज अंधड़ के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। झुंझुनू और नवलगढ़ में ओले भी गिरे। 21 जून को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर मनाया जाएगा। इसके लिए सुबह 6 बजे से राज्य के सभी जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तरों पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अजमेर में और डॉ प्रेमचंद बैरवा भीलवाड़ा में योगाभ्यास कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा सभी कैबिनेट और राज्य मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों में आमजन के साथ योगाभ्यास करेंगे। आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी प्रभारी मंत्री और अधिकारी कल ही अपने निर्धारित जिला मुख्यालयों पर पहुंच जाएंगे। इस बीच योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। जगह जगह योग शिविरों के माध्यम से लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने आवास पर योगा चैंपियंस के साथ योग किया। इधर हमारे भरतपुर संवाददाता ने बताया कि आज शहर के विश्व प्रिय शांति पार्क में सामूहिक योगाभ्यास किया गया।
2: शिविर में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, युवाओं और स्कूली बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर योग प्रशिक्षकों ने उपस्थित जनों को प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, भस्त्रिका

0: शीर्षासन, सर्वागसन, ताड़ासन, वृक्षासन, भुजंगासन एवं श्वासासन जैसी महत्वपूर्ण योग क्रियाओं का अभ्यास कराया। प्रशिक्षकों ने योग के शारीरिक और मानसिक लाभों का प्रकाश डालते हुए कहा कि नियमित योग अभ्यास से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और तनाव दूर होता है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों को 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए एनटीए ने गाइडलाइन जारी की। राज्य में परीक्षा के पारदर्शी संचालन के लिए कोचिंग शहरों में एसओजी की विशेष टीमें तैनात की जाएंगी। प्रदेश के सभी संभागों में आज आंधी और बारिश के आसार, 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। और राज्य में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर व्यापक तैयारियां। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज योगासन चैंपियंस के साथ योग किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM 102.3.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। सुबह के 9:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कुमार सानू और साधना सरगम को सुनिए फिल्म दामिनी के इस गीत में। नदीम श्रवण की धुन है और गीत के बोल समीर के हैं।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: श्रोताओं, आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन सकेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आयोजित रोजगार मेला 2026 का सीधा प्रसारण। फिल्म चांदनी का ये गीत है, आवाज लता मंगेशकर की। शिवहरी के संगीत निर्देशन में गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे फिल्म फर्स्ट लव लेटर का ये गीत। धुन बप्पी लहरी की थी और गीत के बोल अनजान के। FM 102.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हुए हैं। अब बहने सुनेंगी कार्यक्रम महिला जगत।

0: सखियों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे हम सब के मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत में। मैं हूं आपकी रेडियो सखी अर्चना, स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार। सखियों, कैसी हैं आप? जी हाँ, मौसम बदल रहा है, तेज गर्मी भी होती है और फिर कहीं से बूंदाबांदी होकर उसे ठंडक भी मिल जाती है। बदलते मौसम में कई तरह की बीमारियां भी हैं जो बढ़ जाती हैं, कई तरह के इन्फेक्शंस हैं जिन्हें होने का डर रहता है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतें इस बदलते मौसम में। सखियों, खान पान, जी हाँ, खान पान, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, ऐसा हमने सुना है ना। और खाने पीने के हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आज और हमेशा से मिलावट होती रही है। उन मिलावटों को अगर हम घर पर ही जांच लें तो काफ़ी हद तक हम उनसे सुरक्षित रह सकते हैं। जैसे कुछ खाने पीने की चीज़ें, जैसे हमारा दूध, दूध में मिलावट, जनरली पानी की मिलावट सबसे ज़्यादा होती है। और उसे जाँचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने दूध को किसी भी कांच या जो हमारी स्लैब होती है उस पर उसे फिसला कर देखें। अगर दूध आसानी से जा रहा है, इसका मतलब उसमें पानी की मात्रा बहुत कम है। और अगर दूध बहुत तेजी से बहकर निकल गया तो उसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है। दूध अगर शुद्ध है तो वो पीछे सफेद निशान जरूर छोड़ेगा, यानी कि दूध में शुद्धता बहुत ज्यादा है। इसी तरीके से अगर आप घर में हल्दी का इस्तेमाल करते हैं और हल्दी की जांच करना चाहते हैं कि ये शुद्ध है या नहीं है, तो एक गिलास गुनगुना पानी लीजिए और उसमें एक चम्मच हल्दी डालिए। हल्दी को हिलाएं नहीं, सिर्फ डाल दें। अगर वो सीधा नीचे जाकर बैठ जाती है तो वो शुद्ध है। अगर पानी में मिल जाती है या पानी में अपना रंग छोड़ देती है तो इसका मतलब है कि उसमें मेटानिन येलो नाम का रंग, कृत्रिम रंग मिलाया गया है उसे अच्छा दिखाने के लिए। तो इससे सावधान रहें, क्योंकि किसी भी प्रकार का कृत्रिम रंग उसकी शुद्धता को नष्ट करता है। इसी प्रकार अगर आप लाल मिर्च का पाउडर लेते हैं तो उसे भी पानी में डालकर देखें, अगर वो भी किसी भी प्रकार का रंग छोड़ रहा है, यानी कि उसमें मिलावट की गई है। काली मिर्च में कई बार पपीते के बीजों की मिलावट होती है और इसे जांचना, यूं तो हम आंखों से देखकर भी पहचान सकते हैं, लेकिन अगर आप जांच करना चाहते हैं तो इसे पानी में डालें। जो काली मिर्च के बीज हैं वो पानी में डूब जाएंगे और नकली बीज होंगे तो वो पानी की सतह पर तैरने लगेंगे। इसी प्रकार हमें हमारे खान पान की शुद्धता की जांच करते रहना चाहिए। कई बार मिलावट होती है तो उस चीज़ से हम बच सकते हैं। चाय पत्ती है तो आप एक टिश्यू पेपर लीजिए, ब्लॉटिंग पेपर लीजिए, उसे उसके ऊपर रख के देखिए हल्का सा गीला करके। अगर वो रंग छोड़ रही है, इसका मतलब उसमें किसी न किसी पदार्थ की मिलावट की गई है। तो अपने खान पान का विशेष ध्यान रखिए, उन्हें चुनते वक्त ध्यान रखिए कि उनमें मिलावट ना हो। किसी भी प्रकार की मिलावट का अगर आपको अंदेशा होता है तो कृपया उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये कृत्रिम मिलावट जो उसमें मिलाई गई है, ये हमारे शरीर में विभिन्न रोगों का कारण बन सकती है।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक।

0: कीजिए। RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं, परिवार और देश का आर्थिक आधार।
3: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: सखियों, आप सुन रही हैं मनोरंजन और जानकारियों का खजाना, आपका अपना कार्यक्रम महिला जगत। आइए लिए चलते हैं आपको मनोरंजन की ओर, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: सखियों, समय समय पर नए नए विषय लेकर आते हैं हम आपके लिए। हमारा आज का विषय है योग और जीवन पर प्रभाव, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं उर्मिला व्यास। उर्मिला जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया।
0: सखियों, जैसा कि हमने आपको बताया, हमारा आज का विषय है योग और जीवन पर प्रभाव। तो सबसे पहले उर्मिला जी, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि योग कहते किसे हैं?
1: योग का मतलब होता है कि हम एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से जुड़ाव होना, और उसको कहेंगे कि हम, वैसे तो अगर हम योगियों की भाषा में कहें तो आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव, और अथ योग अनुशासन। योग की शुरुआत अनुशासन से ही होती है। और दूसरी हम डेफिनेशन और आगे बढ़े, जैसे पतंजलि योग दर्शन में विशेष रूप से लिखा हुआ कि हम योग को क्या कहेंगे, योगस चित्तस्वत्ति निरोधक। योग चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है।
0: चित्त की वृत्तियों का निरोध, यानी कि ऐसी आदतें हमारी जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, उनसे वो हमें रोकता है।
1: हाँ जी।
0: योग आपके जीवन में कैसे शामिल हुआ, सबसे पहले हम यही जान लें।
1: हाँ जी, मैं बीटेक इंजीनियर हूँ, कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करा हुआ है। उसके बाद मैंने कुछ टाइम जॉब किया, देन मेरे खुद का अपना कंप्यूटर से रिलेटेड बिजनेस का भी था, स्कूल भी रन किया, और कुछ समय बाद मुझे ऐसी आवश्यकता लगी कि मुझे योग की तरफ जुड़ना पड़ा। जैसे कि एक कहते हैं कि एक घर में अकेलापन महसूस, क्योंकि हस्बैंड जो है अपने बिजनेस में बिजी रहते थे, बेटी बाहर स्टडी के लिए चली गई, तो अपना जो अकेलापन था वो मुझे थोड़ा सा टेंशन फील होने लग गया। तो मुझे उससे मैं धीरे धीरे योग की तरफ जुड़ती गई, और फिर आज योग के में इस तरह से मेरा मन जुड़ गया पूरी तरह से कि मुझे लगा मुझे योग में ही आगे कुछ करना है। तो मैंने फिर योग में एमए किया, देन द योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड्स के लेवल 1, लेवल 2 एंड द लेवल 3 एग्जाम्स ये, जो कि आयुष मंत्रालय द्वारा कराए जाते हैं। और फिर मैं धीरे धीरे योगासन की ओर भी जुड़ती गई। योगासन होता है नेशनल्स में जो गेम्स वगैरह होते हैं, योगासन आज स्पोर्ट्स में शामिल हो गया। तो उसमें शामिल होने के बाद योग एज ए कॉम्पिटिशन होता है, तो उसमें एज ए मुझे जज की भूमिका में बुलाया जाता है। जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, या अपने जो नेशनल गेम्स होते हैं जो अभी अमरोहा उत्तराखंड में हुए थे, उसमें एज ए मैं जजिंग के लिए जाती हूँ। तो मैं एज ए योगा की इंटरनेशनल जज हूँ। अभी इससे पहले दिल्ली में जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें मैंने जजिंग करी हुई थी। तो इस तरह से मैं काफी टाइम से योग से जुड़ी हूँ, और अब योग मेरे जीवन का एक अंग बन गया है।
0: सखियों, यही हम जान रहे थे कि योग और उसका जीवन पर क्या प्रभाव है। उर्मिला जी के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा योग का, ये तो आपने जान लिया कि एक बीटेक स्टूडेंट या एक बीटेक के रूप में नौकरी करने वाली महिला कैसे एक योग की तरफ बन के योगाचार्य तक जाती है। उर्मिला जी, किसी भी व्यक्ति के जीवन में योग क्या प्रभाव डाल सकते हैं अगर वो योग से जुड़ता है तो?
1: आप योग से जुड़ते हैं, आज बात करते हैं जिम और योग की, दोनों की कॉम्प, क्योंकि आजकल की जनरेशन जिम की ओर ज्यादा आकर्षित होती है। जबकि योग के अंदर हम कहते हैं फिजिकल फिटनेस भी आएगी, लेकिन मेंटली जो पीस होती है वो हम योग से ही मिल पाएगी। और कोई, हम जिम में जाके आपको लगता है हम फिट हो रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, लेकिन योग के द्वारा जो आसन प्राणायाम व्यायाम वगैरह जो होते हैं उसके द्वारा आप बॉडी की फिटनेस भी करते हैं, लेकिन मेंटली भी आप फिट रहते हैं, यानी फिटनेस रहते हैं, तनाव से रहित रहते हैं, टेंशन से रिलीज रहते हैं। ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो योग में ही होते हैं, जो नॉर्मल एक्सरसाइजेस जो जिम में जाके करते हैं उसमें नहीं मिलते।
0: अच्छा, आजकल योग भी केवल एक्सरसाइज मात्र रह गया है, या योग का जो एक विशेष महत्व था, आध्यात्मिक महत्व, वो अभी भी है इसमें जुड़ाव?
1: नहीं, जब तक आप उसमें योग में प्राणायाम को शामिल नहीं करोगे तब तक वो पूरा योग नहीं होता। और योग के अंदर विशेष रूप से एक्सरसाइज जो भी करते हैं उसमें भी ब्रीथिंग एंड द ब्रीथ आउट का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। कब हमें श्वास लेनी है, कब हमें श्वास छोड़नी है, किस स्थिति में जाते हुए हमें श्वास लेना चाहिए, किस स्थिति में जाते हुए श्वास को छोड़ना चाहिए, श्वासों का बहुत महत्व है योग के जब हम बात करते हैं। और योग के जब बात करेंगे तो प्राणायाम का बहुत महत्व होता है। आसन और प्राणायाम दोनों मिलकर योग को कंप्लीट करते हैं, और जब हम प्राणायाम में डीपली चले जाते हैं तो हम अध्यात्म और अपने आप सेल्फी चले जाते हैं।
0: उर्मिला जी, बहुत अच्छी बात है ये कि हम योग और मतलब एक्सरसाइज और उसके साथ में प्राणायाम जब करते हैं तो वो एक योग बन जाता है। योग का मतलब ही है जुड़ना। तो अब आप मुझे बताएं कि योग से जुड़ने की क्या कोई मिनिमम और मैक्सिमम एज है?
1: नहीं, कोई मिनिमम और कोई मैक्सिमम एज नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। बच्चा जितना समझदार होता जाता है उस हिसाब से उसको शुरुआत करवा देनी चाहिए। आजकल दो दो तीन तीन साल के बच्चे भी बहुत अच्छे अच्छे आसन करने लग गए हैं, और धीरे धीरे अगर उनके घर में वातावरण होता है, तो मैंने बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को भी देखा है कि वो हलासन कर लेते हैं, चक्रासन कर लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे आसन वो बच्चे कर लेते हैं। और एक एज की अगर हम बात करें तो हम किसी भी एज में जाके योग की शुरुआत कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम कठिन आसन ही करें, हम नॉर्मल सूक्ष्म व्यायाम जो होता है वो कर सकते हैं। इस साल का जो इंटरनेशनल योगा डे का जो टॉपिक दे रखा है, वैसे वृद्ध जनों के लिए योग विशेष रूप से यही है, योग फॉर

सखियों, इस खूबसूरत से गीत के बाद आइए आपको सुनवाते हैं भेंटवार्ता। भेंटवार्ता का विषय है योग और जीवन पर प्रभाव। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं उर्मिला व्यास और इनसे बात कर रही हैं आपकी अपनी सखी अर्चना।

0: यानी कि हम उन लोगों को विशेष रूप से इससे जोड़ें, क्योंकि आज के टाइम में उनको सबसे ज्यादा जरूरत है इस चीज की, क्योंकि एक तो लोनलीनेस फील कर रहे हैं हर जगह, घर पहले जो परिवार बड़े होते थे, संयुक्त परिवार होते थे, अब वो जो एकल परिवार वाला चलन हमारे भारत में भी शुरू हो गया, उसके कारण वृद्धजन एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, परिवार का साथ नहीं मिल पा रहे, सर टेंशन सबसे ज्यादा रहती है। तो अगर योग से जुड़ते हैं तो एक तो आपका एक सर्किल बन जाता है सबसे बड़ी, और दूसरी बात है आपका सर्किल बनने के साथ साथ आप प्राणायाम कर रहे हैं तो प्राणायाम से आपकी टेंशन रिलीज हो रही है। अब हम प्राणायाम में बात करें, एक तो अनुलोम विलोम और कपालभाति विशेष रूप से किया जाता है। अनुलोम विलोम जिनको कोई बीपी की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, वो आराम से इसको इजीली सब लोग कर सकते हैं। कपालभाति भी करें, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो डाइजेस्टिव सिस्टम वाली प्रॉब्लम होती है, कि पेट से संबंधित समस्याएं सबको रहती है, और एक एज में जाकर जो समस्या होती है, मतलब कि वो धीरे धीरे अपनी डेथ की ओर बढ़ रहा होता है, उसका मेन कारण होता है कि वो अपनी पूरी तरह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना, ये सबसे बड़ी समस्या है। और कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करने के लिए, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है इसको दूर करने के लिए कपालभाति बहुत अच्छा है और बहुत जरूरी होता है। अगर वो कपालभाति करते हैं तो उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको एसिडिटी नहीं होगी और डाइजेस्टिव सिस्टम उनका प्रॉपर वर्क करेगा।
1: बहुत अच्छी बात आपने कही है कि योग का इस बार विषय ही वृद्धजन है। तो वृद्धजन जो आपने कही, एकाकीपन तो है ही, एकाकीपन उससे दूर हो जाता है, एक अच्छा सा समूह आपका बन जाता है जब आप योग से जुड़ते हैं। तो इसी के साथ एक और बीमारी है जैसे कि याददाश्त का खोना या धीरे धीरे मेमोरी लॉस होना, ये जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये समस्या कई वृद्धजनों में देखी जाती है, तो क्या योग इसमें भी मददगार है?
0: जी, अनुलोम विलोम बहुत ज्यादा सहायक होता है। आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसमें होता है, मेमोरी से रिलेटेड होती है, कंसंट्रेशन डेवलप होता है, इसके साथ भ्रामरी जो करते हैं उससे कंसंट्रेशन डेवलप होता है। ये विशेष रूप से अनुलोम विलोम और भ्रामरी हम छोटे बच्चे जो स्टडी कर रहे थे उन लोगों को भी कराते हैं, और वृद्ध जनों के लिए विशेष रूप से कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसी विशेष सावधानी नहीं करनी होती जिससे कि वो नहीं कर सकते, आराम से हर कोई इसको कर सकता है। और विशेष रूप से फायदा करता है मेमोरी के केस में, आई से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उस केस में, और कंसंट्रेशन की जो प्रॉब्लम होती है उस केस में बहुत ज्यादा फायदा करता है। इसके साथ जनों को हम कहते हैं कि हम सूक्ष्म व्यायाम करवाते हैं, क्योंकि अधिकतर एक एज के बाद क्या होता है, जो हाथ में कंपन वगैरह होने लग जाना, पांव चलते हैं तो उनके पांव में एक स्टेबिलिटी नहीं रहती है, तो एक सूक्ष्म व्यायाम होता है कि पांव और हाथों की एक्सरसाइजेस करवाना, वो बैठ के आराम से इजीली उनको कराते हैं, तो इससे उनको मतलब लगता है कि हमारे हाथ पांव वर्किंग कंडीशन में, वरना थोड़ा सा हाथ ऊपर नीचे करते उनको पेन होने लग जाता है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होने लग जाती है, वो सब नहीं होती जब वो ये करने लग जाते हैं। तो
1: अब बात करते हैं महिलाओं की, महिलाओं का जीवन यूं भी बहुत व्यस्त रहता है, और सबसे बड़ा जो हमारे पास एक बहाना कह लीजिए या एक तर्क कह लीजिए वो यही होता है कि अरे समय ही नहीं है हमारे पास। तो महिलाओं को जीवन में योग को शामिल क्यों करना चाहिए, और विशेष तौर से महिलाओं के लिए योग के फायदे क्या हैं?
0: महिलाओं को योग से इसलिए जुड़ना चाहिए, सबसे पहले तो अगर वो घर की एक धुरी जो होती है वो महिला ही होती है, अगर वो खुद स्वस्थ नहीं रहेगी तो पूरा परिवार स्वस्थ नहीं रहेगा। हम ये देखेंगे अगर घर में एक जो महिला मुख्य है अगर वो बीमार पड़ जाती है तो पूरा घर अस्त-व्यस्त हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ उसके आगे पीछे ही डोल रहा है। तो उसको स्वस्थ रहना जरूरी है, अपने खुद के स्वस्थ रहेगी तो परिवार अपने आप स्वस्थ रहेगा। तो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए उसको योग के लिए टाइम निकालना चाहिए। मानते कि सुबह के समय अगर उसको समय नहीं मिलता तो शाम के समय समय निकाल ले, प्राणायाम को शामिल कर ले अपने जीवन में, ज्यादा नहीं है, सूक्ष्म व्यायाम कर ले, प्राणायाम कर ले, तो भी उसको काफी कुछ बेनिफिट्स हैं जो मिलने लग जाएंगे। जैसे कपालभाति मैंने बताया, भस्त्रिका प्राणायाम होता है वो करे, भस्त्रिका से आपके जो सांस से संबंधित समस्याएं होती है, सीढ़ी ऊपर नीचे चढ़ते, चार सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे और आपको सांस फूलने लग जाती है, समस्या हो जाती है, तो भस्त्रिका उसमें फायदा करता है। कपालभाति करेंगे तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा, इसके साथ अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, क्योंकि टेंशन हर घर में और हर जगह पे रहती है, कभी बच्चों के लिए टेंशन होती है, कभी हस्बैंड के लिए टेंशन होती है, तो अगर स्त्री खुद करेगी तो वो बच्चों को प्रेरित कर सकती है, और उसके देखे देख हो सकता है कि बच्चे भी धीरे धीरे इससे जुड़ जाएं। अगर स्त्री खुद घर में करने लगेगी तो हो सकता है बच्चों को अपने साथ लेके बैठे, तो छोटी उम्र में ही हम बच्चों को इससे जोड़ सकते हैं, क्योंकि योग हमारी विरासत है, हमारे ऋषि मुनियों की देन है, हम उससे ही लोगों को जोड़ेंगे, नहीं हम नहीं जोड़ेंगे तो बाहर वाले तो अपने आप जुड़ रहे हैं, तो हमें इनको जोड़ना जरूरी है आज की जनरेशन को।
1: आप इतने समय से योग से जुड़ी हैं, तो क्या लगता है आपको कि इतने वर्षों में लोगों का योग के प्रति जुड़ाव बढ़ा है?
0: जी, अब काफी ज्यादा जागरूकता हो गई है, हर मतलब ये मान के चले हर पार्क में अगर क्लासेस चल रही हैं, और क्लासेस नहीं भी चलती है तो चार पांच जने अपने समूह में बैठे हैं और योग करते हुए दिखते हैं। आप सुबह के टाइम कहीं भी निकले, वृद्ध जन होंगे, बच्चे होंगे, अपने हिसाब से सब

0: लोग कुछ ना कुछ योग का करते हुए दिखते हैं, और जो यंग जनरेशन आ रही है वो भी धीरे धीरे योग की तरफ जुड़ती जा रही है, खुद के ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं, और खुद हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने योग को आगे से आगे बढ़ावा देते जा रहे हैं, तो योग आज जन जन तक पहुंचता जा रहा है, और बहुत जल्दी ये होगा कि हर जना सुबह उठते ही योग करने के लिए तत्पर रहेगा।
1: आपने कार्यक्रम के शुरुआत में कहा था कि योग अब शिक्षा से भी जुड़ गया है, है ना, एक विषय बन गया है योग हमारा, केवल एक अपने सेहत को दुरुस्त रखने का साधन नहीं है बल्कि एक विषय के तौर पर बन गया है। तो क्या आज के समय में युवा पीढ़ी उस विषय पर अपना ध्यान दे रही है?
0: जी, बहुत सारे बच्चे हैं अभी जो कि, क्योंकि हर यूनिवर्सिटीज हैं जो कि MA इन योगा एंड PG डिप्लोमा इन योगा एंड डिप्लोमा इन योगा, इसके अलावा आयुष मंत्रालय द्वारा YCB लेवल 1, 2, 3 के कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, इसको करने के बाद एज ए लोग इसको, जो हमारी आने वाली पीढ़ी उसको सेलेक्ट कर रही है, और जो डिस्पेंसरीज वगैरह में है हमारे PMC विद्यालय में उसमें एज ए योगा टीचर वो अपॉइंट हो रहे हैं, और जितने भी CBSE के स्कूल्स हैं उसमें भी एज ए योगा टीचर अपॉइंट हो रहे हैं, तो एज ए करियर भी वो ले रहे हैं, तो खुद भी स्वस्थ रह रहे हैं और औरों को भी स्वस्थ रखने के लिए उनका प्रयास जारी है।
1: सखियों, अभी आपने उर्मिला जी से जाना कि कैसे योग जीवन में बदलाव लाता है, इनके जीवन में भी लाया है, और इनसे जुड़े जो लोग हैं जिन्होंने योग को अपने जीवन में जोड़ा है उनके जीवन में भी इसका प्रभाव बहुत ही सकारात्मक है। आपने जाना कि अब योग एक विषय है, तो जो हमारी युवा पीढ़ी आज पढ़ाई कर रही है वो योग को अपने करियर के रूप में भी शामिल कर सकती है। उर्मिला जी, आप आए कार्यक्रम के लिए, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी से मिलने के लिए, पुनः नमस्कार।
2: सखियों, अभी आपने सुनी भेंटवार्ता, योग और जीवन पर प्रभाव, जानकारी दे रही थी उर्मिला व्यास। मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद।
3: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
4: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक PM आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
7: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: सखियों, दैनिक जीवन में विभिन्न उपकरणों का हम इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं में से एक है माइक्रोवेव, जिसका आजकल इस्तेमाल बढ़ गया है, लेकिन इस्तेमाल करते वक्त हमें विशेष आवश्यकता होती है कुछ सावधानियां बरतने की, जैसे कि धातु के बर्तन या फॉयल कभी भी ना रखें उसमें, क्योंकि ऐसा करने से वो आग पकड़ सकते हैं। माइक्रोवेव में हमेशा सेफ कांच के, सिरेमिक के या सिलिकॉन के बर्तनों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा कभी भी ओवन को खाली ना चलाएं। हीट रेजिस्टेंट कांच हो, सिरेमिक के बर्तन हो, सबसे सुरक्षित हैं। जिन प्लास्टिक के बर्तनों पर नीचे माइक्रोवेव सेफ लिखा होता है उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर भी प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल करने से आप बचें। स्टील, एल्यूमिनियम, तांबे की कोई भी कटोरी, चम्मच या प्लेट माइक्रोवेव में ना रखें, क्योंकि धातु की सतह से किरणें टकराकर चिंगारी पैदा करती हैं जिससे कि आग लग सकती है। साथ ही भोजन गर्म करते वक्त किसी भी प्रकार से बंद डिब्बे में या बोतल में या सील पैक खाने को माइक्रोवेव में गर्म ना करें, क्योंकि दबाव बढ़ने पर डिब्बा फट सकता है। माइक्रोवेव में पानी, सूप और बहुत ज्यादा देर तक गर्म ना करें, क्योंकि ऐसा करने पर वो उबलकर बाहर निकल सकते हैं और आपको जला सकते हैं। माइक्रोवेव है, उसके रखरखाव का ख्याल रखें, उसमें किसी भी प्रकार के खाने को जमने ना दें, उसकी सफाई समय समय पर करते रहें, तो माइक्रोवेव आपके लिए फायदा देगा, नुकसान नहीं।
8: श्रोताओं, एक आवश्यक सूचना सुनिए। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 31 जुलाई 2026 को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी

0: प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देता है। इसके लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर जमा की जाएंगी। पोर्टल का पता है https://awards.gov.in। पोर्टल का पता पुनः सुने https://awards.gov.in। इसके माध्यम से ऑनलाइन ही ये नामांकन और अनुशंसाएं जमा की जानी है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई सन 2026। सूचना समाप्त हुई।
1: आइए सखियों, चलते चलते कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

सखियों, कैसा लगा आपको कार्यक्रम? जरूर लिख भेजे हमें पाती। हमारा पता है कार्यक्रम महिला जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र कोटा, पिन कोड 3240001। सखियों हंसी हंसाइए, खुश रहिए और खुशियां बांटिए। फिर होगी मुलाकात इसी वायदे के साथ। अपनी सखी अर्चना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी हमारी बहनें सुन रही थी कार्यक्रम महिला जगत FM 102.103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रही हैं। सुबह के 10 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

0: नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। दोस्तों, गर्मी की इस चिलचिलाती दोपहरिया में कोई चीज सुकून देता है तो वो है पानी या फिर शरबत या फिर आइसक्रीम। लेकिन इसके अलावा इन सब से परे जो सुकून और ठंडी छांव देता है वो है सुरीले गीतों की सौगात। सुरीले गीतों की फरमाइश करते हैं आप सभी श्रोता, मीठी और दिलचस्प बातें करते हैं आप सब। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिलसिला बातों और गीतों का। ये है आज के प्रोग्राम का पहला कॉल। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी, मैं ठाणे महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ।
0: जी बताइए, आपका नाम क्या है?
1: मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद चौहान है।
0: रामेश्वर जी, क्या काम काज करते हैं आप ठाणे में?
1: मेरा काम है, छोटा मोटा दुकान है, घर के अंदर ही है, हॉल और अस्तर ये सब है।
0: अच्छी बात है, ठीक है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सभी काम अच्छे होते हैं, काम करना चाहिए, कोई काम छोटा।
1: हाँ हाँ, जिंदगी तो इसी में निकल गई हमारी, पिछले 32 साल से ही कर रहा हूँ।
0: तो आप बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रमेश जी?
1: ओ, एक कुल दो मालिक का है, तुझे सूरज कहूँ या चंदा,
0: तुझे दीप कहूँ या तारा। तो किसके लिए सुनना चाहते हैं? कभी बच्चे को गाकर सुनाया है ये गाना आपने?
1: बच्चे लोग को मैं बहुत सुनाता हूँ, लेकिन आजकल पुराना गाना सुनने के लिए तैयार ही नहीं रहता है इन लोग।
0: अच्छा, नए गाने पसंद करते हैं बच्चे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब बातचीत करते हैं खत्म। आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैम, मैं लक्ष्मण सिंह चंदेल बात कर रहा हूँ मैम, ग्राम बोतराई, तहसील पथरिया, जिला दमोह, मध्य प्रदेश से।
0: तो आपका गांव कैसा है, जरा गांव की कुछ विशेषता बताइए अपने।
1: गांव बहुत बड़ा है मैम, यहाँ की मतलब आबादी 5000 की समथिंग है मैम।
0: और पैदावार क्या होती है?
1: यहाँ पे सोयाबीन मुख्य खेती, मतलब बोनी होती है सोयाबीन की।
0: और सोयाबीन बहुत पौष्टिक होता है खाने के लिए, बहुत रिच प्रोटीन होता है।
1: जी जी मैम।
0: तो व्यापार भी करते हैं, मतलब बिकता भी है सोयाबीन या फिर खाने भर का?
1: हाँ मैम, मंडी के लिए भी ले जाते हैं।
0: अच्छा, और बाकी चीजों में जैसे दाल चावल और गेहूँ धान, इन सब में क्या होता है ज्यादा पैदावार?
1: अरहर होती है मैम यहाँ पे, मूंग भी होती है, उड़द भी होता है, मूंगफली भी होती है मैम।
0: भाई देखिए, गांव मतलब जब आम का मौसम है, गर्मी का मौसम यानी आम का मौसम, और इस समय आम जो लोग गांव में रहते हैं उनको आम खाने का बड़ा सुख मिलता है। तो बाग आपके पास भी है?
1: 4-5 पेड़ लगे हैं मैम हमारे खेत पे।
0: अच्छा, सिर्फ 4-5 पेड़? भाई हमने तो
1: 4-5
0: बाग देखे हैं, वो बड़े बड़े बाग दूर दूर तक फैले, आम के पेड़, जामुन के पेड़। संख्या पेड़ों की कम हो रही है ऐसा लगता है आपको?
1: नहीं नहीं मैम, गांव में तो बहुत है, लेकिन हम खेत पे लगाए हैं इतने 5-6 पेड़।
0: अच्छा अच्छा जी, बताएं कौन सा गाना आपको सुनवाए?
1: देवफासनम का सुनना है मैम।
0: कौन सा?
1: अच्छा सिल्ला दिया तूने मेरे प्यार के, ये गीत की बोल है मैम।
0: अच्छा, क्या कभी दिल टूटने की बात आई थी क्या जीवन में, ऐसा गाना?
1: नहीं नहीं मैम, चलो पर नहीं नहीं पसंद नहीं है मैम।
0: अच्छा अच्छा जी, एक समय जब फिल्म आई थी ना तो ये गाना बहुत मशहूर हुआ था, हर किसी की जबान पर ये गाना होता था। तो चलिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपका, आपने हमें फोन किया, सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मेरा नाम नई मलिक है, मैं सेंट्रल कश्मीर से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, कश्मीर की किस जगह से?
1: जी मैं बड़गाम डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। हमारे गांव का नाम है बड़गाम, ये एक खूबसूरत एरिया में पड़ता है, एक टूरिस्ट एरिया में ये पड़ता है।
0: वाह भाई वाह। तो श्रीनगर से कितनी दूर है आपका गाँव?
1: हम 45 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से।
0: अच्छी बात है। तो अगर पर्यटक वहाँ जाते हैं तो वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या सुविधा है, गाड़ी से या घोड़े से, कैसे जाया जाता है?
1: बस गाड़ी से आते हैं। और जो कश्मीर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही मौजूद है, और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हमारे बड़गाम में ही मौजूद है। और अब तरह तरह की सड़कें भी है और गाड़ी से भी आते हैं, और जो हमारा जो टूरिस्ट एरिया है वहाँ पर कोई सैलानी घोड़े को भी पसंद करते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपका क्या काम काज है वहाँ?
1: जी मैं बिजनेस करता हूँ, टाइल मार्बल और सीटी की सामान बेचता हूँ, जैसे दीवार पर पेंट पेंट लगाती है वही मैं बिजनेस करता हूँ।
0: अच्छी बात है। तो इस समय वहाँ का मौसम कैसा है, ठंडा है गर्म है?
1: थोड़ी गर्मी भी है, तो जून का महीना चल रहा है, गर्मी भी है लेकिन साथ साथ कभी कभी बारिश भी होती है, और पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में भी बारिश भी हो रही है और गर्मी भी है। और अच्छी बात यह है कि बहुत सारे सैलानी भी आते हैं, हमारे कश्मीर के अंदर बहुत सारी टूरिस्ट जगह है, वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं।
0: क्या बात है। गर्मी तो आपके लिए होगी क्योंकि आपकी आदत ज्यादा ठंड की है, जो सैलानी आते होंगे उनके लिए ज्यादा गर्म नहीं लगता होगा?
1: यहाँ पर ज्यादा 35-35 डिग्री यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान के कई शहरों में 40 से भी ऊपर डिग्री गर्मी,
0: 48
1: नॉर्मल सी लगती
0: जी है। तो बहुत ज्यादा गर्मी से जूझते हुए जब वहाँ लोग पहुँचते होंगे तो ठंडक महसूस होती होगी। वहाँ की कुछ नदियों, वहाँ की झील के बारे में बताना चाहते हैं तो बताइए, अगर आपको जानकारी है तो।
1: हमारे इलाके में सबसे एक मशहूर झील है, उसको दूध गंगा कहते हैं। उनका जो पानी बिल्कुल साफ और नेचुरल पानी होता है, और अगर आप हम जंगल के उस पार जाएंगे या जंगल के उन जगहों पर जाते हैं जहाँ पर टूरिस्ट है, वहाँ पर बहुत सारी नदियाँ है। जाए अगर आप पहलगाम की बात करेंगे, सोनमार्ग, गुलमार्ग या दूधपत्र की तरह की नदियाँ हैं, जो बहुत ही उनका पानी भी मीठा है और साफ भी है। और अगर आप कश्मीर में रहते हैं तो कश्मीर का आपको ऐसा पानी मिलेगा।
0: पहलगाम और गुलमर्ग के पास तो लिद्दर नदी भी बहती है, हमें याद है कि
1: आपको सबसे वो आपको पता है ये पहलगाम, हाँ, कश्मीर में पड़ता।
0: उस नदी का पानी हमने छुआ भी, बहुत ठंडा पानी था क्योंकि हम ठंड के मौसम में गए थे। अच्छी बात ये है कि पानी बिल्कुल पारदर्शी लगता है। बताइए इस समय गाना कौन सा सुनना चाहते हैं आप?
1: ये साजन फिल्म का नगमा है, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें फोन किया और कश्मीर के बारे में इतनी उम्दा बातें आपने शेयर की श्रोताओं के साथ। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं मध्य प्रदेश से देवास जिले से गोविंद प्रसाद जलोदिया बोल रहा हूँ।
0: तो गोविंद जी, देवास मध्य प्रदेश किसी खास व्यक्ति के लिए संगीत के लिए मशहूर है, शास्त्रीय संगीत के एक मर्मज्ञ, वहाँ के मूर्धन्य संगीतज्ञ पंडित कुमार गंधर्व जी, जो उनका निवास है, देखा है आपने, बाहर से देखा होगा, बहुत सुंदर बना हुआ है
1: वो। क्या है, वैसे खातेगांव से देवास की दूरी 100 किलोमीटर है करीब।
0: अच्छा, तो गए हैं आप
1: देवास, वो तो आना जाना रहता ही रहता है।
0: जी बिल्कुल, शास्त्रीय संगीत के चाहने वाले वहाँ तक जाते हैं, पंडित कुमार गंधर्व के दरवाजे तक मत्था टेक कर आते हैं। कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: सर वो बरसात का गाना है, लता मंगेशकर की आवाज में, हवा में उड़ता जाए लाल दुपट्टा मलमल कर।
0: क्या बात है, बहुत सुरीला गाना चुना है आपने।

0: तो क्या पुराने गाने ज्यादा पसंद आते हैं आपको?
1: अच्छा हाँ, वो क्या है, पुराने गाने ही पसंद करता हूँ मैं। और दूसरी बात ये है कि शुरू से ही मेरे को लगाव है ये गाने पिक्चर पे। क्या है कि मेरे रिलीज का बहुत शौकीन था शुरू से ही, 67-62 से ही।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो घर वालों ने मेरे को रेडियो ट्रेनिंग में भेज दिया था। पहले वाल वाले रेडियो चलते थे, लगती थी कि उसकी ट्रेनिंग होती थी। अच्छा। सीखने के लिए तो मेरे को इंदौर में भेज दिया था सीखने के लिए। तो फिर मैंने इंदौर में भी काम किया, फिर खातेगांव में दुकान खोल दी रेडियो की।
0: अरे वाल वाले रेडियो, क्या बात है। तो अभी भी है रेडियो वाली दुकान आपके पास?
1: अब तो मैंने बंद कर दी, अब तो मेरे से बनता नहीं है।
0: तो क्या करते थे, रिपेयरिंग करते थे?
1: हाँ, रिपेयरिंग करता था और वाल वाले रेडियो बनाते भी थे।
0: अच्छा, क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी बात बताई आपने। वाल वाले रेडियो अब मिलते नहीं है?
1: हाँ, 5 बैंड 3 बैंड 2 बैंड 3 बैंड ऐसे चलते थे वो।
0: जी जी, तो अभी लोग आपसे कहते हैं कि मेरा रेडियो खराब हो गया, जरा रिपेयरिंग करके दे दो?
1: नहीं, अब तो अपने से बनता भी नहीं है, अब रेडियो का जमाना है ही नहीं। अब रेडियो का जमाना खत्म हो गया, धीरे धीरे करके फिर ट्रांजिस्टर शुरू हो गए, सेल वाले। अब सेल वाले से अब मोबाइल पे आ गए।
0: लेकिन सुनना कहाँ बंद हुआ, रेडियो से प्यार तो वैसे ही है।
1: सुनना तो नहीं रहा, अब तो सुनना तो और ज्यादा हो गया, क्योंकि पहले आजकल तो क्या है कि बड़ी मुश्किल से बीस भारतीय आकाशवाणी लगता था, और आजकल तो क्या है कि घर बैठे ही, मतलब घर में मिल रहे हैं सभी स्टेशन में,
0: मोबाइल पे भी सुन सकते हैं आप।
1: हाँ, मोबाइल।
0: पहले वो जो रेडियो बड़ा वाला होता था उसमें आप वो जो बटन होता था, बटन को घुमाते रहो, कई बार विविध भारती पकड़ने में बहुत दिक्कत होती थी, मुश्किल होती थी,
1: दिक्कत होती थी। हाँ, इधर से उधर तक नहीं लगता था
0: जी। लेकिन उसका एक अलग आनंद था उस रेडियो का।
1: हाँ, वो तो अलग ही था, उसकी उस प्रकार की उसकी बाडी भी इतनी अच्छी बनती थी कि संगीत में मजा आ जाता था। और इतने सारंगी वगैरह इतने भी उस टाइम समान, मतलब उसका जमाना नहीं था संगीत का, बिल्कुल हारमोनियम इतने अच्छे लगते थे।
0: बहुत सारे कलाकारों को रेडियो ने मंच दिया, बहुत सारे कलाकार को रेडियो ने गढ़ा, तो रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है जीवन में हम सबके। तो बरसात फिल्म का गाना आपने पसंद किया है, शुक्रिया अदा कर रहे हैं हम, और अब आपको सुनवा रहे हैं यही गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: मैडम जी, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: हाँ जी मैडम जी, मैं करणवीर सिंह पॉल जलंधर पंजाब से।
0: करणवीर सिंह जलंधर पंजाब के बारे में बताइए, क्या हाल चाल है जी?
1: बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। अभी तो थोड़ी दो दिन बारिश हुई है तो मौसम अभी ठंडा हो गया है। पहले तो बहुत ज्यादा तपिश थी, तो अभी फिर वैसे बारिश होने के चाहते हम तक बारिश हुई।
0: और गर्मी के बाद जब बारिश आती है तो राहत बहुत मिलती है, लेकिन उसके बाद जब बारिश रुक जाती है
1: राहत मिलती है। इधर तो पहले तो 45 टेम्परेचर हो गया पंजाब में, अभी कुछ राहत मिली है पहले से। तो आप सुनाओ, मुंबई का कैसा हाल है?
0: बस मुंबई में भी गर्मी बहुत पड़ रही है इस समय, बारिश का इंतजार है हम सबको, और बारिश के छींटे आप अपनी बातचीत के जरिए और गानों के जरिए बता दीजिए। वैसे भी पंजाब का लोकगीत बहुत समृद्ध है।
1: बिल्कुल जी, हम तो विविध भारती से, हम प्रसार भारती से 1970 से लेकर जुड़े हुए हैं।
0: क्या बात
1: है, तो आज तक बहुत हमें हमारा इन्होंने साथ दिया है, तो 90 वर्ष भी पूरे हो गए हैं। तो हम तो कहते हैं अभी 10 साल और बाकी है, सेंचुरी हो जाएगी पूरी, तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। और
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, और सेंचुरी होगी वो तो सेलिब्रेट किया जाएगा, उसके बाद भी विविध भारती चलती रहेगी, रेडियो चलता रहेगा।
1: बिल्कुल चलती रहेगी, वो तो चलती रहेगी, लेकिन हमें बहुत लगेगी, हमें देखो इतना साल हो गया छोटे।
0: तो कोई पंजाबी लोकगीत वगैरह याद है आपको?
1: पंजाबी लोग हमारे सुरेंद्र कौर और प्रकाश कौर ने बहुत लोकगीत गाए हैं, लेकिन मेरे को उनका तो याद नहीं, मेरे को गुरदास मान का एक गीत बहुत ज्यादा है।
0: गा के सुनाइए ना श्रोताओं को हमारे।
1: गुरदास मान जी का गीत है बह के वेख। वो बह के वेख जवाना बाबे भंगड़ा पौंदे ने, वो बह के वेख जवाना बाबे भंगड़ा पौंदे ने। बस इतनी दो लाइन बोलनी थी।
0: जी जी बढ़िया। और वहाँ का खान पान भी बड़ा मशहूर है, बहुत अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल जी, सर्दी होती है तो सर्दी में तो हमारे मक्के की और सरसों का साग।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: मक्खन घी दही सब कुछ।
0: क्या बात है,
1: चलता है फिर तो।
0: वाह वाह वाह, आप अपने वहाँ के बारे में बताइए, किस चीज की पैदावार वहाँ पर होती है आपके गांव में?
1: हमारे पंजाब में ज्यादा करके ना गेहूँ होता है, तो जैसे अभी धान की खेती शुरू हो गई है, गेहूँ होता है, गन्ना होता है, ये खास चार फसलें ये खास होती है, बाकी पशुओं के लिए चारा भी होता है। ये चार फसलें तो वैसे हमारे पॉपुलर है ना, ज्यादा करके होती है, जैसे गन्ना हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया और धान हो गया।
0: तो मक्का होता है तो मक्के की रोटी और सरसों का साग तो मशहूर है ही है। तो
1: बिल्कुल जी, मक्के की रोटी सरसों का साग, जैसे मक्के के भुट्टे भुट्टा भी बाजार में आने लग गया है ना हमारे इधर, तो हम खा लेते हैं, तो जो उसका जो तना होता है वो पशुओं चारा बन जाता है।
0: अच्छा अच्छा, क्या बात है, ये तो बड़ी उम्दा बात बताइए भाई। हमारे श्रोता अगर सुन रहे हैं तो इसका उपयोग कर सकते हैं कि मक्का खाने के बाद जो उसका तना होता है वो पशुओं के खाने के काम आ सकता है। बताइए कौन सा गाना आप सुनेंगे?
1: गीत मैडम सुना दीजिए, आज मुझे फिल्म का नाम है पाकिजा, गीत के बोल है चलते चलते मुझे कोई मिल गया था।
0: क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन गाना चुना है आपने। मीना कुमारी और राजकुमार है इस फिल्म में, है ना? देखी थी फिल्म?
1: जी देखी है जी मैंने।
0: हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम पाकिजा।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, मैं मोंगलपोरा श्रीनगर से जवान मोहम्मद ऋषि
0: जी, बताएं क्या हाल है आपका और श्रीनगर का क्या हाल है?
1: श्रीनगर का हाल तो बहुत ही अच्छा है, और आजकल तो मौसम बहुत ही अच्छा है, सुहाना है मौसम है।
0: अच्छा, बारिश हो गई है, गर्मी पड़ रही है, गर्मी के मौसम में भी सुहाना मौसम।
1: जी बिल्कुल, बारिश भी हो रही है और धूप अच्छी है, फिर भी मौसम बढ़िया है और आपके प्रोग्राम सुनते हैं हम, बहुत ही मजा आता है।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया। कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं आप?
1: सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन हम सभी प्रोग्राम सुनते हैं, क्योंकि हमारा जो काम है ना वो पश्चिम का काम, मजा आता है इसमें, रेडियो दिन भर ऑन होता है, बहुत ही अच्छा लगता है।
0: पश्मीने का काम?
1: जी बिल्कुल
0: जी, पश्मीने का शॉल बहुत मशहूर है, लोग जाते हैं जब कश्मीर तो वहाँ से खरीद कर ले आते हैं।
1: जी जी,
0: तो उसकी खासियत क्या होती है थोड़ा सा बताइए हमारे श्रोताओं को, कितनी मेहनत लगती है, कितना वक्त लगता है?
1: जी बिल्कुल, कौन ही जामा होता है ये, मतलब महंगा ही होता है, 1,50,000 1.5 लाख तक भी होता है।
0: जी जी,
1: मतलब एक थोड़ा बहुत कठिन ही काम है, धागे मतलब जैसे तीली से बनाते हैं हम, मतलब हैंड से बनाते हैं हम।
0: इसमें धागे का प्रयोग करते हैं, ऊन का प्रयोग करते हैं?
1: ऊन का होता है, उसमें फिर हम फिर धागे बनाते हैं ना, फिर वो हम तीली पे लगा, मतलब उसमें
0: लगाते जो डिजाइन बनाते हैं वो धागे से बनाते हैं?
1: हाँ, वो धागे से बनाते हैं।
0: तो काफी मेहनत होती है, काफी वक्त लगता है ना। अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: सहेली फिल्म है, उसी में एक गाना है, इतना तो कह दो हमसे तुमसे ही प्यार है, लता और हिम्मत कुमार।
0: क्या बात है, बेहद सुरीला गाना पसंद किया आपने, और बहुत दिनों बाद इस गाने की फरमाइश आई है। खुद भी आप गाते गुनगुनाते हैं क्या?
1: थोड़ा बहुत गाते हैं।
0: गाना चाहे तो गा के सुनाइए, हमारे श्रोता भी सुनेंगे, आप गुनगुनाएंगे तो।
1: चलिए, आपने कहा तो कोशिश करेंगे। इतना तो कह दो हमसे तुमसे ही प्यार है, तुमसे ही प्यार है, मेरी खामोशी सजना तेरा इकरार है।
0: बहुत शुक्रिया, सुनते हैं सहेली फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: जी मैं मनोहर लाल गांधी विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से बोल रहा था।
0: जी मनोहर लाल जी, बताइए क्या हाल है आपका और गाजियाबाद का क्या हाल है?
1: बस ठीक है जी, गाजियाबाद का तो बहुत ही अच्छा हाल हो गया क्योंकि मेरी कॉल लग गई आज विजय कुमार की।
0: पर गर्मी बहुत पड़ रही है ना, दिल्ली पूरा इलाका बहुत गर्म सुना है हमने।
1: गर्मी तो बहुत पड़ रहा था लेकिन आज मौसम ठीक हो गया, सुबह सुबह अपना बादल आए, थोड़ी बूंदाबांदी हुई तो मौसम ठीक है आज।
0: बादलों ने सुकून दिया आपको, तो इस सुकून के बाद आप बताइए कौन सा सुकून दे गाना सुनना चाहते हैं?
1: ये गाना सुनना चाहता हूँ मैं फिल्म चमत्कार का, जिसके बोल है इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो।
0: जी आप तो गाते भी अच्छा खासा।
1: जी यहाँ पे हम गाते रहते हैं करोके म्यूजिक पे, हमारे दोस्त हैं बहुत सारे बुजुर्ग दोस्त हैं, यहाँ अपना हफ्ते में एक दिन प्रोग्राम बनाते हैं और गीत संगीत के साथ ही हम जुड़े रहते हैं और बचपन से हम विविध भारती सुनते आए हैं, आज भी सुन रहे हैं।
0: क्या बात है, ये जो सब ग्रुप में गाने वाली बात कही है, हमारे बहुत सारे श्रोता इससे प्रेरणा ले सकते हैं कि जब आपके पास फुर्सत के लम्हे होते हैं तो आप सब साथ में गाने गुनगुनाने का, सुनने का एक अलग मजा होता है।
1: संगीत साथ होता है, विविध भारती साथ होता है तो सकारात्मक सोच भी उत्पन्न होती है और दिल भी हमारा खुश रहता है
0: और बहुत सारे झंझावात तनाव भूल जाते हैं गानों के साथ जब होते हैं, है ना?
1: तनाव तो खैर होता ही नहीं है और बीमारियों से भी हम जो दूर रहते हैं क्योंकि संगीत एक थेरेपी की तरह है।
0: क्या काम काज है वैसे आपका?
1: ये मेरी कपड़े की शॉप है यहाँ पे,
0: तो साथ में रेडियो चलता रहता है।
1: हाँ जी रेडियो चलता रहता है, ऐप के थ्रू अपना साफ आवाज में हम सुनते रहते हैं यहाँ पे।
0: जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फोन किया आपने। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम चमत्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार ममता जी।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ, धीरज जबारी
0: जी। बताएं धीरज जी, क्या हाल है आपका?
1: मौसम अच्छा है, मेरा भी अच्छा हाल है और मैं पेड़ों के नीचे से बात कर रहा हूँ। यहाँ मोर भी बहुत है, लेकिन जब हमारी बात हुई जो अगर मोर एक दो टोके तो अच्छा रहे। हाँ। लेकिन ये पक्षी है, हमारे कहने से कुछ नहीं बोलते, अपने आप में बोलते हैं।
0: अच्छा, कौन सा पक्षी है?
1: मोर है, बहुत है मोर। हाँ, लेकिन हाँ, हाँ। अभी बादलों में कई बार बोलते हैं, लेकिन जब हमें पता है कि जब बोले तब नहीं बोल पाएंगे।
0: उन्हें नहीं पता है ना कि हमें कब बोलना है, कैसे बोलना। वो किसी के डिसिप्लिन वाले नहीं है ना, वो तो आजाद हैं और उन्हें आजाद रखना भी चाहिए। तो आपके तो दिन बन जाता होगा, बड़ा खुशगवार दिन होता होगा।
1: ममता जी, हम प्रकृति के अंडर में नौकरी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
0: कहाँ काम करते हैं?
1: हम एक फार्म में नौकरी करते हैं और अच्छा। फार्म में पेड़ों की संख्या बहुत है और मोर है, कबूतर है और पक्षी है, बहुत अच्छा लगता है। और जो पक्षियों का जो प्रेम होता है ना, इसकी तो कोई सीमा नहीं है, क्योंकि वो उसको जब आप दाना डालते, रोटी डालते हैं मोर को, तो मोर बिल्कुल नजदीक आ जाता है, तो वो दृश्य बिल्कुल अच्छा लगता है दीदी।
0: क्या बात है, तो मोर का नृत्य भी देखा होगा फिर तो आपने, मोर का नाचना बड़ा सुंदर लगता है।
1: बिल्कुल, मोरों के बीच में गाँव में भी रहते थे और यहाँ भी रहते हैं।
0: विशेष रूप से क्या खिलाया जाता है मोर को?
1: मोर को देखा जाए तो उसको दाना, यानी दाने में ज्वार है, बाजरी है, लेकिन हम रोटी डालते हैं तो बाजरे की, गेहूं की, तो वो खा जाते हैं। अच्छा। और वैसे देखा जाए तो जीव जंतु भी खाते हैं, लेकिन दाने भी खाते हैं और मकई का दाना भी खाते हैं, बाजरी, ज्वार, गेहूं, लेकिन रोटी का उनको बहुत अच्छा रहता है अगर कोई डालता है
0: तो। बाकी पक्षी भी आते हैं, गोरैया आती है?
1: बिल्कुल, चक्री का या गोरैया का प्रमाण बहुत है अहमदाबाद सिटी में। मेरा गाँव डेर है, तहसील जिला पाटन, वहाँ गोरैया बहुत है, अहमदाबाद में कम है।
0: तो गर्मी बहुत पड़ रही है, तो पक्षियों के पानी के लिए क्या व्यवस्था करते हैं? क्योंकि
1: ममता जी बहुत भले लोग है, अहमदाबाद हो गए, मुंबई हो, बहुत भले लोग है, पानी पक्षियों के लिए भी रखते हैं, पशुओं के, प्राणियों के लिए और इंसानों के लिए। यानी मानवता अभी भी है और ये मानवता के लिए हम जी रहे और हमारा जीवन, यानी एक अच्छा जीवन जी रहा है, तो हमें अच्छा लगता है कि ऐसे इंसानों के बीच हम रहते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है ये जानकर। और पक्षियों की बात की है आपने, तो जितने श्रोता सुन रहे हैं इससे आपकी बात से प्रेरणा लेंगे कि जो बहुत छोटे छोटे घर होते हैं जहाँ पर जगह नहीं होती पानी रखने के लिए, लेकिन एक छोटा सा बर्तन, मिट्टी का बर्तन रख सकते हैं जिसमें पानी रख दिया तो बहुत गर्म भी नहीं होता है, तो पक्षी आकर वहाँ पानी पी सकते हैं।
1: खुला पानी ममता जी ठंडा ही रहता है। हाँ। जैसे झील है, तालाब है, वो पानी ठंडा ही रहता है क्योंकि पवन रहता है और पानी ऊपर ऊपर से लगे हमें गर्म है, लेकिन नीचे से ठंडा रहता है। ऊपर वाले की देन है, वो भी रखवाली करता है सब जीव जंतु की।
0: लगता है आपके आसपास नदी और झील भी है?
1: नदी तो साबरमती नदी है और तालाब देखा जाए तो यहाँ कॉरपोरेशन ने बनाए हुए वही तालाब है
0: जी। और नदी साबरमती नदी का नामकरण हुआ है कैसे, वो भी आपको पता ही होगा ना?
1: जी बिल्कुल जी। बिल्कुल, यानी साबर एक नदी है और इसके पर एक जिला भी है साबरकांठा, और जैसे बनासकांठा है वो भी बनास की नदी पर ही है, लेकिन हमारा जो जिला है वो नदी है सरस्वती, उसको कुवारिका बोलते है, जो दरिया में नहीं जाती है, रण में जाती, रेगिस्तान में चली जाती है।
0: क्या बात है, बड़ी अच्छी जानकारी दी। तो अब गाना आप कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: फकीरा फिल्म का दिल में तुझे बिठा कर लता मंगेशकर के आवाज में गाना सुनना है।
0: तो अब बातचीत करते हैं खत्म और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम है फकीरा।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्ते
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं यशवंत साहू बोल रहा हूँ, कर्मा चौक लोहारडिया जिला के विधान छत्तीसगढ़ से।
0: जी बताइए, क्या हाल है आपका और छत्तीसगढ़ का?
1: जी ममता दीदी बहुत अच्छे हैं हम।
0: जी क्या कर रहे हैं?
1: हम आम के बगीचे में अभी आम खाने आए हैं, मैं अपनी बेटी को लेकर।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, कौन से आम है, कौन कौन से आम वहाँ पर?
1: अब आम के नाम तो मालूम, लेकिन देसी आम है अपना खुद का, इधर हमारे पूर्वज जो है ना यहाँ पर लगाए हुए हैं आज से 100 साल के पहले ये आम।
0: तो ही खा रहे हैं?
1: हाँ, लकड़ी के सहारे से पेड़ में मार रहे हैं, उसके हिसाब से आम गिर रहे हैं, उसको हम खा रहे हैं। मतलब अभी 10 आम खा चुके हैं दोनों बाप बेटे।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, 10 आम। अब यहाँ महानगरों में, शहरों में तो लोग एक आम खा लेते हैं, उसी से पेट भर जाता है।
1: जी मैं महाराष्ट्र में रत्नागिरी में 2 साल तक वहाँ पर रुका हूँ।
0: जी
1: आम खाने के लिए हम वहाँ तरसते थे हम आम खाने के लिए।
0: जी और बाग से तोड़कर बाल्टी में भिगो के आम खाने का मजा अलग ही है। ये बताइए कि आपने कहा कि आपके पूर्वजों ने आम लगाया और वो खा रहे हैं, तो आपने भी कोई पेड़ पौधा लगाया है, आपकी आगे आने वाली पीढ़ी भी खाए?
1: हाँ बाड़ी तो लगाया हूँ और खेतों में भी एक दो पेड़ लगाया हूँ।
0: आम का जो बाग है, बाग में ही एक दो पौधा रोप दीजिए, पेड़ बन जाएगा कुछ महीनों में।
1: हाँ लोगों को कहना चाहूंगा कि जैसे कि आम की गुठलियाँ होती हैं, जामुन के गुठले होती हैं, आप वहाँ पर कहीं भी मतलब रास्ते पार करते हैं, अपने घूमने जाते हैं ना, तो अपने बाइक के डिग्गी में रख ले और कहीं कहीं अपने डाल दे, ताकि वहाँ पर जो बारिश होगी उसके बाद ना अंकुर होकर एक पौधा बन जाएगा, जिसे कोई कोई आम खाएगा तो कम से कम ऊपर वाले देखेंगे।
0: जी बिल्कुल सही बात है। बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है साजन की घर और कुमार सानू साधना सरगम जी की आवाज है। गीत के बोल है सावन आया बादल छाए।
0: ठीक है जी, सावन आए बादल छाए, बस इसी उम्मीद के साथ भेज रहे हैं आपके छत्तीसगढ़ में आपकी पसंद का ये गाना आपके रेडियो सेट तक।

0: हेलो फरमाइश
1: जी दीदी नमस्ते
0: नमस्ते कौन कहाँ से बोल रहे हैं
1: जी दीदी मैं रंजीता जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से
0: रंजीता जी बताइए अपने बारे में बताइए क्या काम काज है
1: जी दीदी मैं हाउस वाइफ हूँ घर का काम करती हूँ और मेरे बच्चे हैं और ऐसे परिवार में है अभी गर्मी का सीजन है तो इन सारी बातों का ध्यान रखना जैसे कि जैसे पानी वानी पीना है या कहीं जाना है तो जैसे टावेल लेके जाए पानी की बॉटल लेके जाए और साथ साथ में जैसे हमको पता है कि हमें पानी चाहिए वैसी पक्षी हैं गाय हैं इन सभी का जैसे पक्षियों के लिए छोटे छोटे पोला होते हैं मिट्टी के या फिर मिट्टी के जो घड़े होते हैं उसमें जाके छत के ऊपर पानी रखना ताकि पक्षी लोग आए और वो भी अपना प्यास बुझा सके।
0: लेकिन आप खुद ये काम करती हैं?
1: जी करते भी हैं और जैसे बालकनी वगैरह है तो पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं गर्मी की वजह से तो उनमें भी पानी डालते हैं ताकि पेड़ पौधे सूखे नहीं।
0: और पेड़ पौधों की देखभाल के लिए और घरेलू स्तर पर भी कुछ ध्यान रखना पड़ता है सब्जी के जो छिलके होते हैं उसके माध्यम से खाद बनाया जाता है तो घर पे भी कुछ खाद बनाया जा सकते हैं ना अगर आप बागवानी करती हैं तो।
1: और हमारे इधर तो हम लोग गांव में हैं तो घर में जैसे कि गाय है भैंस है तो उन लोग का जो गोबर होते हैं उनको भी जैसे कि गड्ढा खन के मिट्टी में दबा के उनका भी खाद बनाते हैं और उनको भी सब्जी के लिए खेतों के लिए डालते हैं।
0: ये तो बहुत बढ़िया खाद होता है गोबर की खाद तो सबसे अच्छी होती है और जो घरेलू पौधे होते हैं उनमें तो इस खाद का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा होता है। तो आपके गांव में और क्या क्या है क्या खासियत है गांव की बताइए कौन से पेड़ पौधे हैं वहाँ पर ज्यादातर खेती किस चीज की होती है?
1: हमारे तरफ धान की खेती होती है दीदी और अभी पानी का इंतजार है जैसे पानी गिरेगा तो धान की फसल डालेंगे हम लोग।
0: तो आपके यहाँ धान कूटने के लिए ओखली भी है मूसल और ओखली?
1: नहीं अभी तो नहीं है बहुत पहले।

0: हुआ करता था
1: दादी लोग, हाँ हुआ करता था दादी लोग के समय में। ओखली वगैरह का तो नहीं पता दीदी, लेकिन वो ढेकी वगैरह बोलते है ना, उस टाइप का था,
0: चक्की जात वगैरह, चक्री है ना।
1: जी जी,
0: अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं?
1: जी जी जी, मैं खुद गर्ज फिल्म का दिल बहलता है मेरा, आप क्या जाने से।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, सुनते हैं आपकी पसंद का यही गाना।

0: दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है, उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध है कि आगामी 2 माह तक हमें फोन ना करें, ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभाग का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारे टेलीफोन नंबर है 2867-0288, मुंबई का STD कोड 022। एक टेलीफोन नंबर और है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 400-24662, मुंबई का STD कोड वही 022। टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से बता देते हैं 28670288, और दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662, मुंबई का STD कोड 022। और हाँ, चलने से पहले आपको ये भी बता दें, आज के इस कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग सुशीला बेंगुर लेकर का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में. मैं हूं विधि जैन. पहली नज्म हम सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में. गालिब के बोल और फैयाज शौकत ने इसे संगीतबद्ध किया है.

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
3: परेशान हूँ मैं।
2: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
4: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये 3 चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
2: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
4: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
2: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा, लिया है गीत गजल एल्बम से। धीरज कौर ने इसे गाया, मोहसिन नकवी ने इसे लिखा और गुलाम अली ने इसे संगीतबद्ध किया।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में उर्दू मॉडर्न गजल एल्बम से मुकेश की आवाज में जिगर मुरादाबादी के बोलों के साथ मुरली मनोहर स्वरूप के संगीत से के साथ में यह प्यारा सा नगमा।

0: इंद्रानी रिज्व और राजकुमार रिज्वी की आवाज में हम सुन रहे थे इस नगमे को। बशीर बद्र ने जिसे लिखा और बेनी सतामकर ने इसे संगीतबद्ध किया।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू हुई। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
4: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं।
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग।

हम सुन रहे थे नगमा उर्दू मॉडर्न गजल एल्बम से। तलत महमूद ने इसे गाया, इब्राहिम फैज इसके गीतकार हैं और संगीतकार हैं ताज अहमद। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग की अगली नज्म जो गाई है हेमंत कुमार ने। संतोख सिंह इसके गीतकार हैं और तरसीम लाल इसके संगीतकार हैं।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम रंग तरंग में। आइए सुनते हैं नॉन फिल्मी गीत एंड गजल्स एल्बम से मन्ना डे के द्वारा गाया हुआ और उन्हीं के द्वारा संगीतबद्ध किया हुआ यह नगमा, जिसे लिखा है मधुकर राजस्थानी ने।

मॉडर्न नॉन फिल्मी गजल एल्बम से हम सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, मधुकर राजस्थानी के बोलों से सजे हुए खयाम के संगीत के साथ इस सुंदर से नगमे को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा, जो कि है गजल जगजीत सिंह और चित्रा सिंह एल्बम से। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह ने इसे गाया है, साहिर होशियारपुरी ने इसे लिखा है और जगजीत सिंह ने ही इसे संगीतबद्ध किया है।

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं अगला नगमा।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम FM 102-103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। लीजिए सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की 1310वीं कड़ी।

0: नंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
4: अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
3: अगर आप एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हो तो अपने आप को अपने उद्देश्य से बांधो, न कि लोगों से। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। भीड़ में एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं हो जाते।
4: आपके सुंदर विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कारिया जी। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखा है, नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 3 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। 12 मई को भीषण गर्मी के मौसम में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, 12 बजे से 4 बजे तक धूप में निकलने से बचना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना आवश्यक है। आगे लिखते हैं,
3: 13 मई को गर्मी में हमारा खान पान कैसे होना चाहिए और 14 मई को लू लगने पर क्या प्राथमिक उपचार करने चाहिए, इस बात की जानकारी बहुत ही सरल और सहज ढंग से समझाई गई। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों को अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
4: आगे आपने लिखा है, कारगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बयान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। इस प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद उमंग टीम की ओर से इस विस्तृत विश्लेषण व प्रोत्साहन के लिए।
4: ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार और प्रशांत प्रजापति।
3: ग्राम कालापारा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े लिखते हैं,
4: आज के जमाने में यदि हम सब मिलजुल कर रहें और भाईचारा बनाए रखें तो यही जिंदगी जीने का असली मजा है
3: जी।
4: आपका कार्यक्रम हम हर रोज सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है
3: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
4: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आगे लिखते हैं,
3: हमें आपका उमंग कार्यक्रम बेहद पसंद है। हमें दिनांक 21 मई 2026 दिन गुरुवार का उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में कहानी पेड़ हमारे दोस्त बहुत ही प्रेरणादायक लगी। धन्यवाद।
4: स्वागत है आप सबका श्रोताओं एक बार फिर से ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में।
3: पिछले दिनों हमने चर्चा की लोकटक, मानसरोवर और चिल्का झीलों की, उनके बारे में जाना। तो अजीत जी, आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं?
4: विमलेश जी, देखिए, यदि सारी झीलों की चर्चा हो जाए और कश्मीर की डल झील की चर्चा न हो तो चर्चा अधूरी सी लगेगी।
3: बिल्कुल।
4: तो आइए बढ़ाते हैं आज की चर्चा को जी। तो आपको बता दें कि डल झील भारत की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। ये श्रीनगर में स्थित है। आपको पता है इसे कश्मीर का गहना या ज्वेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। जहां तक इसके पानी की बात है, यहाँ पानी झेलम नदी और आसपास के पहाड़ी झरनों से आता है। तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इसके नाम पर। नाम है डल झील। इसके बारे में मान्यता है कि डल शब्द कश्मीरी भाषा के दल शब्द से संभवतः आया है, जिसका अर्थ झील ही होता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन काल में जल से भरे विस्तृत क्षेत्र को दल कहा जाता था। बाद में यही नाम इस झील के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। श्रोताओं, डल का मतलब ही झील होता है, इसीलिए कश्मीर में इसको सिर्फ डल कहते हैं, डल झील नहीं। ये झील दुनिया भर के पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहाँ के हाउस बोट बहुत ही लोकप्रिय है, जिन्हें शिकारा भी कहते हैं। शिकारा एक स्थानीय शब्द है जिसका अर्थ होता है नाव। शाम को धीरे धीरे जब सूरज ढलता है तो प्रकृति का नजारा देखने लायक होता है। शिकारों पर गीत, संगीत और चाय कहवे का मजा बेजोड़ है। शिकारे पर बजाए जाने वाले पारंपरिक मुख्य कश्मीरी वाद्य यंत्र हैं संतूर, रबाब, सारंगी, सहतार और साज ए कश्मीर। ये वाद्य यंत्र और पर्वतीय गायन शिकारे पर समा बांध देता है। श्रोताओं, एक और खास बात आपको बता दें कि डल झील में भी तैरते हुए छोटे छोटे बगीचे नुमा द्वीप हैं। इन्हें फ्लोटिंग

गार्डन या स्थानीय भाषा में राद कहते हैं। ये ज्यादा भारी नहीं होते, इसलिए नावों द्वारा यहाँ से वहाँ ले जाए जा सकते हैं। डल झील में जो तैरते हुए बगीचे नुमा द्वीप हैं, वे मानव निर्मित हैं, जो झील की खरपतवार और मिट्टी से बनाए जाते हैं। इन नावों पर सब्जियां, फूल और खासकर कमल के फूल उगाए जाते हैं। एक बात और श्रोताओं, इस झील में फ्लोटिंग मार्केट यानी तैरते हुए बाजार भी हैं। यहाँ अभी भी कहीं कहीं वस्तु विनिमय प्रणाली देखने को मिलती है, यानी ये सब्जी लीजिए और बदले में वो

0: तैरते हुए बाजार भी हैं। यहाँ अभी भी कहीं कहीं वस्तु विनिमय प्रणाली देखने को मिलती है, यानी ये सब्जी लीजिए और बदले में वो सब्जी या फल दे दीजिए। श्रोताओं, ये जानना भी बड़ा मजेदार है कि आखिर ये झील बनी कैसे। तो इसका मुख्य कारण है हिमालयी भूगर्भीय परिवर्तन। बहुत पहले हिमालय क्षेत्र में धरती की परतों के उठाव और धंसाव की प्रक्रिया से वहां कहीं पर्वत बने तो कहीं गहरे गड्ढे, ग्लेशियरों की बर्फ पिघली और उनका पानी नदी के रूप में घाटों और गड्ढों में जमा हुआ। डल झील इसी का परिणाम है। श्रोताओं, डल झील का पानी मीठा है, यहाँ भी प्रवासी पक्षी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन अब ये झील प्रदूषण और सिल्टेशन यानी मिट्टी भराव की समस्या से जूझ रही है। इसके समाधान के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। श्रोताओं, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। झील के किनारे शानदार शालीमार और निषाद गार्डन्स की सुंदरता देखते ही बनती है। सचमुच डल झील न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध है, बल्कि ये झील कश्मीरी जीवन शैली, संस्कृति और पर्यटन का भी प्रतीक है।
1: तो श्रोताओं, ये थी आज की हमारी जानकारी सुंदर प्यारी डल झील के बारे में।
0: अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से आज का प्रश्न है, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है?
0: आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ,
1: हमारे IVRS का नंबर भी नोट कर लीजिए, 8800440559। आप हमें यानी CIT NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी।
0: और अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है गुलिवर की विचित्र यात्राएं।
1: इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक जोनाथन स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण किया गया है, जो रहस्यों और रोमांच से भरपूर है। स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण जोनाथन स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण किया गया है, जो रहस्यों और रोमांच से भरपूर है।
2: मैंने कई लंबी लंबी यात्राएं की।
3: बिन्नी का सपना।
2: एक बार
1: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की एक बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है, कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
0: तो श्रोता, अभी आप सुन रहे थे,
2: बाद में पता चला कि ये लिलिपुट द्वीप है।
0: आज का हमारा,
2: जब मेरी नींद खुली
0: होता है तो अपने मित्र,
2: तो मैंने अपने
1: और
2: आप को
1: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: आश्चर्य में पड़ा सोच ही रहा था,
1: थोड़ा सा कंबल था,
2: कि कोई चीज
1: तो अब आज का उमंग कार्यक्रम
2: मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर।
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: कुछ देर बाद उसी प्रकार के कई प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ाए। मैं जोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम? मेरा चिल्लाना था कि वो लोग लुढ़कते पुढ़कते और चीखते चिल्लाते भागे। इसके बाद मैंने उठने का प्रयत्न किया तो कुछ धागे टूट गए। ये देख उन लोगों ने सुई जैसे पतले पतले तीरों की वर्षा शुरू कर दी। एक तीर मेरी बाईं आंख पर लगा। ये देख सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। 5 को तो मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया और 1 को उंगलियों में पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। वो मारे भय के बुरी तरह चीखने लगा। मैंने उन सबको जमीन पर छोड़ दिया। छुटकारा पाते ही वो गिरते पड़ते वहां से भागे। इस बात का और लोगों पर अच्छा असर पड़ा। बादशाह ने जब ये सुना तो उसने भी मेरी प्रशंसा की। राज दरबार के कुछ व्यक्ति मेरे भोजन पानी के खर्च को देखकर सोचने लगे कि इससे देश में अकाल पड़ जाएगा। वे विषैले तीरों से मेरी हत्या कर देना चाहते थे, परंतु

सौभाग्य से बादशाह उनकी बातों में नहीं आया। उसने मेरे भोजन पानी का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया और 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों में मैंने उन लोगों की भाषा सीख ली। मेरे स्वभाव और व्यवहार से वे लोग बहुत खुश थे। अब वे निडर होकर मेरे पास आते, कभी वे मेरे सिर पर उछलते कूदते और कभी नाचने लगते। बच्चे तो मेरे बालों में आंख में चौनी खेलते। इस तरह मैं सबका खिलौना बना हुआ था। एक दिन मैंने बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसने मुझे इन शर्तों पर मुक्त करना स्वीकार किया कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं ना जाऊं और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर मैं लिलिपुट वासियों की सहायता करूं। कुछ दिन बाद मुझे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वो लिलिपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। शर्त के अनुसार मैंने उन लोगों की सहायता करने की एक योजना बनाई। कुछ रस्सियां और कांटे लेकर मैं ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। ये खाड़ी मेरे लिए विशेष गहरी न थी, पर उन लोगों के लिए तो ये महासागर से कम न थी। मैंने खाड़ी में घुसकर वहां खड़े सब जहाजों को कांटों में फंसा लिया और उन्हें खींचता खींचता लिलिपुट की ओर चल दिया। ब्लेफुस्कू के सैनिक मेरे ऊपर तीर बरसाने लगे, पर चश्मे और चमड़े के कोट के कारण उनके तीर मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सके। ब्लेफुस्कू के जहाजों को खींचकर जब मैं लिलिपुट की खाड़ी में ले गया तो वहां के बादशाह और लोगों ने प्रसन्नता से उछल उछल कर मेरा स्वागत किया। बादशाह ने मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। एक दिन मैं लिलिपुट खाड़ी के किनारे घूमता घूमता दूर जा निकला। वहां मुझे पानी में एक बड़ा तख्ता तैरता दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि वो एक उल्टी हुई नाव थी। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। ये नाव नहीं, मेरी आशाओं का दीपक थी। कुछ दिन बाद मैंने बादशाह से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री मेरी नाव पर लदवा दी। सौभाग्य से रास्ते में मुझे एक जहाज दिखाई दिया। नाविकों ने मुझे जहाज पर चढ़ा लिया। ये देख मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा कि जहाज मेरे ही देश का था। लिलिपुट से लौटकर 2 महीने तक मैं घर पर ही रहा। उसके बाद मुझे फिर जहाज पर काम मिल गया। कुछ दिन बाद हमारा जहाज हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर चलते चलते हमारा जहाज तूफान में फंसकर रास्ता भूल गया। और भटकते भटकते एक टापू के पास पहुंचा। नाविक तो जहाज की देखभाल में लग गए और मैं

अपने कुछ साथियों के साथ नाव लेकर पानी की तलाश में टापू की ओर चल दिया। मुझे पानी कहीं न मिला। पेड़ की ठंडी छाया देख मैं वहीं लेट गया। कुछ देर बाद जब मैं नाव की ओर लौटा तो क्या देखता हूं कि मेरे साथी नाव को तेजी से जहाज की ओर लिए जा रहे हैं। मैं उन्हें आवाज देने ही वाला था कि मेरी नजर एक विशालकाय आदमी पर पड़ी। आदमी क्या, वो तो पूरा राक्षस था। समुद्र का पानी उसके घुटनों तक ही आ रहा था। उसे देख अपनी जान बचाने के लिए मैं एक खेत में जा छिपा। कहने को तो ये जौ का खेत था, पर जौ के पौधे हमारे देश के पेड़ों से कम ऊंचे न थे। पेड़ तो पहाड़ की चोटी की समता करते थे। जौ के पौधों की आड़ में छिपे छिपे मैंने देखा कि कुछ आदमी उसी खेत की ओर आ रहे हैं। उन्होंने जौ काटने शुरू किए तो एक की नजर मुझ पर पड़ी। उसने खिलौने की तरह मुझे उठाकर हथेली पर रख लिया। मुझे लगा कि मैं एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर चिड़िया की तरह बैठा हूं, पर क्या मैं चिड़िया की तरह आजाद था? उस लंबे चौड़े किसान ने मुझे उलट पलट कर देखना शुरू किया तो मैं डर के मारे चीखने लगा। ये देख उसने मुझे धीरे से जमीन पर रख दिया। मेरी जान में जान आई। मैंने चिल्ला चिल्ला कर उसे अपने बारे में बताना चाहा, पर वो समझे तब ना। उसने मुझे बड़ी सावधानी से उठाकर अपनी चौड़ी हथेली पर रख लिया और अपने घर ले आया। घर लाकर जैसे ही किसान ने अपनी पत्नी को दिखाने के लिए हथेली उसकी ओर बढ़ाई तो मुझे देखकर वो स्त्री इस तरह डर गई जैसे कोई सांप बिच्छू को देखकर डर जाए।

वहां सभी प्राणी और सभी चीजें बड़े बड़े आकार की थीं। नांद जैसे प्याले, बड़े बड़े थालों जैसी रोटियां, शेर शेरनी जैसे कुत्ते बिल्लियां, छोटे से छोटा बच्चा भी मुझसे चौगुना लंबा चौड़ा। इन सब के बीच में मैं अपने आप को मक्खी मच्छर जैसा अनुभव कर रहा था। लिलिपुट के लोग मुझे देखकर जितना हैरान हुए होंगे, उससे कहीं अधिक हैरानी मुझे इन लोगों को देखकर हुई। इन लोगों में रहते रहते मेरा भय मिट गया। इनका आकार ही डरावना था, वैसे आदमी भले थे। मैंने इस देश की भाषा भी सीख ली, इससे मुझे बहुत सुविधा हो गई। कभी कभी मैं मेज पर खड़े होकर किसान और उसके परिवार वालों को तरह तरह के खेल दिखाता। मेरा नाच और तलवार चलाना उन्हें बहुत पसंद आता। इससे उनका अच्छा खासा मनोरंजन हो जाता। ये देखकर किसान के मित्र ने उसे सलाह दी कि वो राजधानी में लगने वाले मेले में टिकट लगाकर लोगों को मेरा खेल दिखाए। अब किसान ने मुझे एक लकड़ी के डिब्बे में बंद किया और उसे हाथ में लटकाकर मेले में ले आया। राजधानी के लोग मेरा खेल देखने के लिए टूट पड़े। मेरे खेल से अधिक वे मुझे देखना चाहते थे। उनके लिए तो मैं जीता जागता खिलौना था। यहां मुझे दिन में 10-10 बार खेल दिखाने पड़ते थे। इस तरह काफी पैसा कमाने के बाद उस किसान ने 1000 सोने के सिक्कों के बदले मुझे उस देश की महारानी को बेच दिया। महारानी ने मेरे लिए एक पिंजरा बनवाया। पिंजरा क्या, ये तो एक कमरा था। खाना खाते समय महारानी पिंजरे को अपनी मेज पर रखकर मुझे भी खाना खिलाती। उसने मेरे लिए विशेष रूप से छोटे छोटे बर्तन भी तैयार करवाए। एक बार राजा और रानी अपने नौकर चाकरों के साथ अपने राज्य का दौरा करने निकले। उन्होंने मुझे भी साथ ले लिया। चलते चलते हम ऐसे नगर में पहुंचे जो समुद्र के समीप ही था। समुद्र को देखकर मुझे अपने देश की याद आ गई और मैं उदास हो गया।

ये देखकर नौकर पिंजरा उठाकर समुद्र के किनारे ले गया। पिंजरे को एक चट्टान पर रखकर वो समुद्र की रेत पर लेट गया। समुद्र की ओर ललचाई नजरों से देखते देखते पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। खड़खड़ की आवाज सुनकर जब मेरी आंख खुली तो भय और आश्चर्य से मेरा दिल धड़कने लगा। मेरा पिंजरा हवा में उड़ रहा था। मैं अभी सोच में पड़ा ही हुआ था कि अचानक पिंजरा इतनी तेजी से नीचे गिरा कि मेरी आंखें भय से बंद हो गईं। छपाक! पिंजरा एक बार तो पानी में काफी नीचे तक चला गया, पर फिर केवल थोड़ा सा ही डूबकर नाव की तरह तैरने लगा। खुला समुद्र, लहरों के थपे

0: टेढ़े तीर की तरह चुभती हुई ठंडी हवा, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। मेरे दुर्भाग्य का कहां अंत होगा? इससे तो मैं महारानी की कैद में ही ठीक था। मैं सोचने लगा, मैंने अपने आप को भाग्य के सहारे छोड़ दिया। उस असहाय स्थिति में पड़े पड़े मुझे काफी देर हो गई थी कि मुझे लगा जैसे कोई पिंजरे को तेजी से एक ओर खींच रहा हो। पिंजरे की खिड़की से हाथ निकालकर मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। जब जवाब में मैंने अपने देश की भाषा सुनी तो मेरा रोम रोम खिल उठा।
1: और अब सुनते हैं आज का आखिरी कार्यक्रम, शीर्षक है बिन्नी का सपना।
2: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की एक बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
1: बिन्नी का सपना।
3: अरे तुम्हें क्या हुआ?
4: बिन्नी, मुझे बुखार हुआ है। मेरा तापमान 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया है।
3: ओह, किसने की तुम्हारी ये हालत?
4: इन गैसों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है।

तापमान हम बढ़ाते हैं, मौसम में गड़बड़ी फैलाते हैं, पर्वतों की बर्फ को पिघलाकर तटीय क्षेत्रों को डुबोते हैं।

0: नाम है हमारा CO2 और CH4, ग्रीन हाउस गैस हम कहलाते हैं।
1: SO2 है मेरा नाम, तेजाब की बारिश करना है मेरा काम, सांस लेना मुश्किल कर देता हूँ, जीवन में उलझन भर देता हूँ।
2: NO2 है मेरा नाम, सेहत बिगाड़ना मेरा काम, सर दर्द खांसी बढ़ाता हूँ, बहुत खतरनाक माना जाता हूँ।
0: CFC है मेरा नाम, ओजोन परत को हानि पहुंचाना मेरा काम, जिससे यूवी किरणें आ जाती हैं, त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ाती है।
3: तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं अभी इन्हें मजा चखाती हूँ। ये सपना था, पर हमें सचमुच अपनी पृथ्वी को बचाना है।
4: तो श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बिन्नी का सपना, और अब इसी कार्यक्रम के साथ आज का हमारा उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत,

0: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की 1310वीं कड़ी। FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

0: गीतकार हसन कमाल के बोलों के साथ, संगीतकार रवि के संगीत के साथ सलमा आगा और महेंद्र कपूर की आवाज को हम सुन रहे थे निकाह फिल्म के इस गीत में।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल।

मुझे लूट लो मेरे नजदीक आके, कि मैं मौत से

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस संदेश के पहले हम सुन रहे थे गीत धूल का फूल फिल्म से, महेंद्र कपूर लता मंगेशकर की आवाज में, साहिर लुधियानवी के बोल और एन दत्त के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का अगला गीत, जो कि लिया गया है नवरंग फिल्म से। भरत व्यास के बोल हैं, सी रामचंद्र का है संगीत और आवाजें हैं महेंद्र कपूर और आशा भोसले की।

0: हम सुन रहे थे गीत बदलते रिश्ते फिल्म से लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाजों में अनजान के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और यादों की महफिल कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आज हमने याद किया महेंद्र कपूर को उनकी आवाज के साथ।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों को लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। अगस्त 2025 में शुरू हुई इस योजना से अब तक 63 लाख से अधिक लोग औपचारिक कार्यबल से जुड़ चुके हैं, जिनमें करीब 30% महिलाएं शामिल हैं। आज के कार्यक्रम के दौरान 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इस योजना के तहत पहली बार सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं को दो किस्तों में 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इस अवसर पर देश भर में 200 स्थानों पर समानांतर क्षेत्रीय कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। राज्य में जयपुर सहित 7 स्थानों पर इन विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अपने आवास पर विश्व योगासन चैंपियनशिप के पदक विजेताओं के साथ योगाभ्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और आमजन से स्वस्थ जीवन के लिए योग को अपनी दिनचर्या में अनिवार्य रूप से शामिल करने की अपील की। गौरतलब है कि अहमदाबाद में आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए कुल 10 पदक जीते हैं। इन पदकों में 9 स्वर्ण और 1 रजत पदक शामिल है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 21 जून को बीकानेर और जयपुर प्रवास पर रहेंगे। श्री वैष्णव रविवार सुबह बीकानेर पहुंचेंगे, जहां वे करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद वे बीकानेर के लालगढ़ से गुजरात के साबरमती के लिए नई रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दोपहर में केंद्रीय मंत्री जयपुर पहुंचेंगे, वे खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे तथा राजस्थान के विभिन्न स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव जयपुर दरभंगा अमृत भारत ट्रेन को भी रवाना करेंगे। भारत का एलएनजी टैंकर दिशा होरमूस जलडमरू मध्य को पार करने के बाद गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर सफलतापूर्वक पहुंच गया है। ये कतर से रस लाफान टर्मिनल से 62,370 मीट्रिक टन द्रवीकृत प्राकृतिक गैस लेकर आए हैं। ये पोत आज सवेरे दाहेज एलएनजी टर्मिनल पर पहुंचा। ये कार्गो पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक दबाव के बीच देश भर में एलएनजी की उपलब्धता को मजबूत करेगा और स्थिर ऊर्जा आपूर्ति को सुनिश्चित करेगा। सरहदी जिले जैसलमेर के सीमावर्ती गांवों का सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक सर्वेक्षण किया जाएगा। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य क्षेत्र की वास्तविक स्थिति का आकलन कर प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करना है। जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने बताया कि सीमा से सटे 50 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी राजस्व गांवों और ग्राम पंचायतों में ये विशेष सर्वे कराया जाएगा।
1: जितने भी 0 से 50 किलोमीटर की रेंज के रेवेन्यू विलेजेस हैं, ग्राम पंचायत है, वहां पर एक सर्वे होना है, जिसमें एंक्रोचमेंट की दृष्टि से यदि कोई ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा है तो किस तरीके का स्ट्रक्चर है, उसका फंडिंग कहां से आया है, एंक्रोचमेंट है तो किस तरीके का एंक्रोचमेंट है, आबादी की क्या स्थिति है।

0: खेती की क्या स्थिति है, वहाँ हमारे कितने पशुपालक हैं, क्या हमारी कैटल कौन सी वहाँ पर ज्यादा आबाद है। तो इस तरीके का एक जनरल सर्वे है जिसमें मुख्य हमारा ध्यान रहेगा एनक्रोचमेंट की स्थिति पर।
1: 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 1 और 2 जुलाई को जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन की तैयारियों को लेकर कल शासन सचिवालय में समीक्षा बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने अधिकारियों को सभी तैयारियां तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होने वाले इस सम्मेलन का विषय विकसित भारत 2047 AI इनेबल्ड डेटा ड्रिवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस है। इसका आयोजन केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार संयुक्त रूप से कर रही हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: पढ़ने के साथ ही हम आपको गीत सौंपने वाले हैं और पहला गीत जो हम आपको सौंप रहे हैं उस गीत में पूरा जो गीत है उस गीत में कोई एक पंक्ति होगी जो आपको जाकर दिल में चुभती होगी या दिल को सुकून देती होगी। तो बताइएगा वो पंक्ति कौन सी है, वो लिखकर हमें भेजिएगा और उसके साथ ही इस गीत के संगीतकार का नाम भी बता देंगे तो अच्छा लगेगा। तो बताइए इस गीत की कौन सी पंक्ति आपको अच्छी लगती है, साथ ही संगीतकार का नाम भी।

अपनी तो आंख एक है, उसकी है हजार। ये कौन चित्रकार है, ये गीत हम सुन रहे थे बूंद जो बन गए मोती फिल्म से मुकेश की आवाज में। गीतकार भरत व्यास ने इसे लिखा है और सतीश भाटिया ने इसे संगीतबद्ध किया है। ये खूबसूरत सी नगमे जो लिख जाते हैं या जिनने अपनी धड़कनों को शायद पिरो दिया है शब्दों के माध्यम से, कितना खूबसूरत है। हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि बहुत से भी हमने पूछा था कि आपकी पसंदीदा पंक्तियां कौन सी हैं, तो हमारे श्रोता लिखता है ध्वजा सी है खड़े हुए ये वृक्ष देवदार की। आहा कितनी बढ़िया है ना। हमारे श्रोताओं ने कवि की कल्पना का चमत्कार, यह उम्दा लाइन जहन में आती है। जी बिल्कुल। हमारे श्रोता ने लिखा है कि ये कौन चित्रकार है, ये कणकण से झांकती तुम्हें छवि विराट की, अपनी तो आंख एक है उसकी हजार है। बिल्कुल सही हमारे श्रोता ने बताया कि जितेंद्र पर फिल्माया गया कवि प्रदीप की यह बेहतरीन रचना है और संगीत सतीश भाटिया का। हमारे श्रोता ने पसंदीदा पंक्तियों में तो पूरा ही लिख दिया, तपसियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेर दार घेरदार घाटियां, ध्वजा सी ये खड़े हुए वकश दीवदार के, गाली चाहिए गुलाब की बगीचे बाहर की, ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की।

कल्पना का चमत्कार है, ये कौन चित्रकार है जी? बिल्कुल कणकण से झांकती तुम्हें छवि विराट की, अपनी तो आंखें हैं उसकी हजार हैं जी। ये पंक्ति बहुत खूबसूरत है जो सबको पसंद आ रही है हमारी श्रोताओं ने। अच्छा, आप हमारी हवाइन गिटार के बारे में बता रहे हैं जो हमने शुरुआती जो फिलर बजाया था उसके बारे में आप बात करें। हमारे श्रोता लिखते हैं कि इसकी हर पंक्ति पसंद है जी। बिल्कुल, हमें भी हमारे श्रोता ने बताया कि बहुत खूबसूरत गीत है और प्रकृति का बड़ा प्यारा सा चित्रण है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, ये किसने फूल फूल पे किया श्रृंगार है, बेहद खूबसूरत पंक्ति है जी। बिल्कुल, हम कोई एक शब्द को पकड़ सकते नहीं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, गीतकार का लिखने का तरीका अलग अलग होता है, या कहते हैं कि गीतकार अपने मूड के हिसाब से लिखते हैं, उनकी लिखनी से मोती टपकते हैं जो हमारे हृदय को छू लेते हैं। कितना खूबसूरत गीत हमने सुना है। अब इस गीत के बाद अगले गीत की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे श्रोता ने लिखा है कि उनके प्रिय गीतकार जो हैं वो साहिर लुधियानवी हैं। मिर्जा गालिब अगर जिंदा होते तो साहिर की शायरी सुनकर वाह वाह कह उठते, ऐसा उनका कहना है। और चोट खाया प्रेमी हो, सभी तरह के गीत लिखे उन्होंने, जिंदगी भर साथ निभाने वाला, बहुत बहुत प्यारे प्यारे गीतों के बारे में उन्होंने कहा है। और उसके बाद हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि फिल्मी दुनिया के सभी गीतकारों ने अपने खास अंदाज में बेमिसाल गीत दिए हैं, उनमें से एक चुनना मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है, हमें भी बहुत मुश्किल है। अब 1957 में आई फिल्म साधना में मर्द को जन्म देने वाले गीत के लिए उन्होंने बहुत प्यारा गीत दिया कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। ये गीत सुनकर उनकी आंखें नम हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात है, ये गीतकार अपनी कलम से क्या खूबसूरती से उस बात को, उस भावना को निकाल देते हैं जिसे कहना शायद शब्दों में कठिन पड़ जाए, शायद गद्य में कठिन पड़ जाए, पर पद्य में बड़े प्यार से लिख देते हैं। हमारे श्रोता ने बताया कि जो इनके गीतों के बारे में जब वो बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं, सिर्फ तीन शब्दों में लंबी बात है और शब्दों का चित्रण निरूपण विश्व को रचने वाले रचनाकार की प्रतिभा का बहुत बड़े तरीके से हम आकलन करेंगे। और गीत रचना किसी संगीत धुन और भावनाओं का गहरा पुल है और अनुभवों को छू लेती है। और सच बात है, गीतकार शब्द नहीं लिखते, हमारे श्रोता लिखते हैं वे शब्दों के जादूगर होते हैं जो चंद शब्दों में पूरी दास्तान पिरो देते हैं। हमारी खुशियां, आंसू, यादें, सब कुछ अनमोल म्यूजिकल बैकग्राउंड बना देते हैं। आमजन कहीं कह नहीं पाते वो बातें गीतकार, कवि और शायर अपने शब्दों में कह देते हैं। सही बात है। और इन्होंने तो, एक और हमारे श्रोता ने तो बहुत सारे गीतकारों के नाम भी लिखे हैं और हम उन सब गीतकारों की उस कलम को प्रणाम करते हैं कि क्या बढ़िया लिखा है। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि वह सोच रही हैं कि अब वह लिखना बंद कर देंगी, यानी सिर्फ सुनेंगी। ऐसा मत कीजिए, लिखते रहिए, क्योंकि यहाँ पर जो आप लिख रहे हैं, बाकी समय जो आप मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं वो शायद उचित अनुचित हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो आप लिख रहे हैं वह आपकी ही कलात्मकता को बढ़ा रहा है, ऐसा हमें लगता है। तो आप जरूर पहुंचाइए अपनी अनुभूतियां। हमारे श्रोता लिखते हैं कि व्याकरण शब्दावली ही नहीं, रचयिता के व्यक्तिगत अनुभव, अनुभूतियां, भावनाओं, जीवन का सार होता है। गीतकार जिंदगी लिखा करते हैं, शब्द नहीं। कितनी बढ़िया बात लिखी है। अनेरी गीतकारों को याद करते हुए अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं। बस मैं आपको बता दे रही हूं कि अगला गीत जो हम आपको सौंप रहे हैं वो साहिर लुधियानवी की कलम से है। और आपको साहिर लुधियानवी का कोई शेर, कोई कविता, कोई बोल इस गीत से हो या ना हो चलेगा। कोई भी शेर अगर पसंद आता है तो आप हमारे साथ साझा कीजिएगा। तब तक सुनिए ये बहुत प्यारा सा गीत जो कि लिया है कभी कभी फिल्म से। बस इसके गायक का नाम बता दीजिएगा और बताइए साहिर लुधियानवी की कोई शेर, शायरी या कोई कविता।

0: फिल्म कभी कभी से यह गीत हम सुन रहे थे, साहिल लुधियानवी के बोल, खयाम का संगीत और गाया मुकेश ने। और यही प्रश्न तो हमने आपसे पूछा था और इसके साथ हमने एक प्रश्न और पूछा था। हमने कहा था कि साहिल लुधियानवी की कौन सी पंक्ति है जो आपके दिल को छूती है। कभी कहीं और पढ़ी होगी आपने तो आपने लिखकर भेजी है कि अपनी तबीयतों का कोई गम नहीं मुझे, तुमने किसी के साथ मोहब्बत निभा तो दी। आह क्या बात है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, मशरूफ जमाना क्यों वक्त अपना बर्बाद करिए, दिल लाइन दिल को छू जाती। जी बिल्कुल, कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। बहुत बढ़िया। हमारे श्रोता लिखते हैं कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। जी बिल्कुल सही बात है। और इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि साहिर की एक लाइन उन्हें पसंद है, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं। जी कल और आएंगे नगमाए खिलती कलियां, चुनने वाले मुझसे बेहतर, कहने वाले तुमसे बेहतर, सुनने वाली ये लाइन हमारी श्रोताओं को पसंद है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मैंने कक्षा 9वीं में देखा था इस फिल्म को और नौजवान दिल उस समय शाही सुनकर धड़क गया था। सही बातें होता है ऐसा। और हमारे श्रोता लिखते हैं कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर बात पे रोना आया। ऐसे करके हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी अपनी पसंद के शेर हम तक पहुंचाए हैं जो उन्हें पसंद है। इसके साथ ही और भी कई सारे आए हैं, उन्हें बहुत सारी बातें लिख रहे हैं, जैसे कि अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, संसार की हाई शर पर बस इतना फसाना है कि धुंध से आना है। बहुत सही बात आपने लिखी, बहुत बढ़िया शेर आप लिख रहे हैं। और इन्हीं बातों के साथ में हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी बातें जो लिखी हैं इन सब गीतों और रचनाकारों के लिए, वो लिखते हैं कि गीत आम इंसान के जीवन के अनुभव छिपे होते हैं, अपनी कल्पना अनुभव से रचनाएं करते हैं और खुद की कहानी जिंदगी का कोई हिस्सा नजर आता है। सही बात है। आज की इबारत पंक्तियों का भावार्थ बहुत गहरा महत्वपूर्ण है। कवि गीतकार संवेदनशीलता उसकी कलम की ताकत रेखांकित करता है, वे सिर्फ शब्द नहीं दिल की धड़कने लिखता है। यह दर्शाती है कि एक सच्चा गीतकार कागज पर केवल शब्दों का जाल नहीं बुनता बल्कि जज्बात, उसकी धड़कने, प्यार, दर्द और उम्मीदों को पन्नों पर उतारता है। इतनी अच्छी बातें चल रही हैं तो हम सोचते हैं एक संदेश एक और गीतकार का आपको सुनवा दिया जाए। सुनिए ये गीतकार क्या कहने के लिए आने वाले हैं अपने विविध भारती पर।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है,
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना,

0: जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था। मैं रूम पे गया और लेट गया। मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं। और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
0: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सुरीला सफर और ये सुरीला सफर चल रहा है गीतकारों की कलम के साथ। हमारे श्रोताओं ने बहुत सही लिखा है, वो लिखते हैं कि गीतकार कैसे पसंद करते हैं। हमारे लिए तो सभी गीतकार पसंद हैं, हर कोई दिल में रहता है, अनुभूति करता है, मन को प्रफुल्लित करता है। और हमारे श्रोता ने कहा कि वो आज गुलजार, इतना कठिन है उनको चुनना, लेकिन फिर भी वो गुलजार को चुनेंगी और उसके साथ उन्होंने अपने पसंद का गीत भी दिया है। ऐसे ही हमारे कई सारे श्रोताओं ने गुलजार को पसंद किया है। और साथ ही हम बात कर रहे थे साहिल लुधियानवी के बारे में, तो उनके लिए भी कुछ, उनके लिखे हुए कुछ नगमे, कुछ शेर हमारे श्रोताओं ने लिखी हैं। किसी ने तो लिख दिया कि साहिल लुधियानवी की एक लाइन नहीं बल्कि हर बात उन्हें अच्छी लगती है। बहुत बढ़िया। बहुत सारी बातों के बीच एक बहुत प्यारा शेर आया कि हजार वर्क गिरे लाख आंधियां उठें, हजार वर्क गिरे लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। कितनी बड़ी बात कही है ना। और इसके साथ हमारे श्रोताओं ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें साहिल के लिए लिखी हैं। वो लिखते हैं कि उनका अभी ना जाओ छोड़कर उन्हें पसंद है और ये गीत सभी को पसंद है। हालांकि बहुत असाधारण भावनाएं लिखते हैं और ये एक शायर नहीं, ऐसे कई लोग लिखते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि अपनी तबाहियों का मुझे कोई गम नहीं, तुमने किसी के साथ मोहब्बत निभा तो दी। ये शेर शायद मैं दूसरी बार पढ़ रही हूँ। तो चलिए हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। बस बता दीजिए ये गीतकार कौन है और इन गीतकार को कितने पुरस्कार मिले हैं। कुछ नहीं बताना, इतना ही बताना है इस गीतकार का नाम और इनको मिले हुए पुरस्कारों के बारे में।
4: मैंने

हम सुन रहे थे मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, और ये सपने सच में गीतकार हमारे लिए चुनते ही है ना, जाने कहां से अपनी कलम में इतनी ताकत लाते हैं और बहुत सुंदर से शब्दों को चुनकर हमारे लिए एक भगिया सजा देते हैं। हमारे श्रोता कहते हैं कि सभी गीतकार उन्हें पसंद है, हर किसी की अलग कला होती है, उनके द्वारा उनके ही मन मस्तिष्क में सुंदर विचारों को कविता का भाव देने की लेखनी से पन्ने पर रची जाती है। पता नहीं कितना समय लगता होगा उन्हें एक रचना पूरी करने में, इसका अनुमान हम साधारण लोग नहीं लगा सकते। जी बिल्कुल सही बात है, गीतकार फिल्मों में विचार संवाहक कह सकते हैं। कई बार फिल्मों के नाम स्टारकास्ट से फिल्म की कथा वस्तु की कल्पना नहीं की जा सकती, परंतु गीतों से उसके बोलों से फिल्मों के विषय के बारे में पता चल जाता है। बिल्कुल बहुत सही बात आपने कही है, और ये बात सच है कि जो गीतकार है ना वो गीतकार पूरी फिल्म का जायजा करा देते हैं, बता देते हैं कि कहाँ फिल्म में कहाँ कौन सा बदलाव हो रहा है, और कई बार तो फिल्म के नाम के गीत भी लिख देते हैं। और एक और बड़ी बात है कि छंदबद्ध करना, यानी उन्हें हिंदी व्याकरण का भी या जिस भाषा में वो गीत लिख रहे हैं उस भाषा की व्याकरण का भी इतना ज्ञान होता है कि वो उसे छंदबद्ध कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से मीटर में बिठा सकते हैं। तो ये बढ़िया बात होती है गीतकारों की। और हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि ये जो गीतकार हैं इनका नाम बता दीजिए और इनकी उपलब्धियां बता दीजिए, तो हमारे श्रोता ने लिखा है कि ये जो फिल्म है ये आनंद फिल्म से है जो हम आपको बता रहे हैं, मुकेश ने गाया, सलील चौधरी ने संगीतबद्ध किया, और हमारे श्रोताओं ने बताया कि ये गीत गुलजार ने लिखा है। बिल्कुल सही बताया आपने, और आपने बताया कि गुलजार को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, रजनीकंदा के लिए राष्ट्रीय नेशनल पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है, पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। ये हमारे श्रोताओं ने अलग अलग जगह पर लिखे हैं और वो सब मिलाकर मैं आपको बताते जा रही हूँ। हमारे श्रोताओं ने बताया कि उन्हें ग्रेमी अवार्ड मिला है और उसके साथ ही उन्हें साथ में नेशनल फिल्म अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड्स, 22 फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं, 5 नेशनल फिल्म अवार्ड मिले हैं। हमारे श्रोताओं ने कितना ज्ञान है आपको, कितनी सारी चीजें आप बता देते हैं, और ज्ञानपीठ अवार्ड भी उनके नाम पर है। इतने सारे अवार्ड्स के साथ में हमारे उनके लिखे गीतों को वहां तक पहुंचाना, विश्व स्तर तक पहुंचाना, वह भी बड़ी बात है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सच है कोई एक दो गीतकार में सफर सुहाना कहाँ होगा, योगेश जी, माया, गोविंद, सावन कुमार जी, जाने कितने सारे गीत हैं, रोते हुए को हंसाने वाले निदा फाजली जी, और पूरी हीर राजा पद्य बद्य करने वाले कैफी आजमी जी, सच बात है कितना कितने सारे लोगों को हम लेकर आएंगे, पर प्रयास करेंगे जितना अधिक ले सके। चलिए अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ जल्दी से, और ये जो गीत है ये बहुत खूबसूरत सा है और

इस गीत को आपको सुनना है और इस गीत को सुनने के साथ बताना है कि ये गीतकार कौन है, है ना, और गीतकार के साथ संगीतकार कौन है, और इनका लिखा कोई भी वाक्य या कोई भी पद अगर आपको पसंद आया है, कोई कविता या इसी गीत से कहीं से कुछ भी, तो बताइएगा, वैसे मैं आपको बता दूं ये गीतकार गोपाल दास नीरज है। तो गोपाल दास नीरज की किसी भी रचना को आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं और ये गीत सुनिए, बताइए इसके संगीतकार कौन है।

हम सुन रहे थे कन्यादान फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, नीरज के बोल, गोपाल दास नीरज के बोल। और हमने आपसे पूछा कि संगीतकार कौन है, तो आपने बताया शंकर जयकिशन इसके संगीतकार हैं। बिल्कुल सही जानकारी आपने दी। इसके साथ हमने कहा था कि आप बताइएगा कि आपको कौन सा

क्या पसंद है गोपाल दास नीरज की कलम का, तो हमारे श्रोताओं ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है। रचनाकार के हृदय में विषय वस्तु के अनुरूप शब्द ही वैसे स्फुटित होते हैं जिन्हें वो कागज पर तुरंत उकेरना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा ही उनका स्वाभाविक स्वभाव हुआ करता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता ने लिखा, कारवां गुजर गया उन्हें बड़ा पसंद है और उसके तो बहुत सारे बोल भी उन्होंने लिखे हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोता लिखते हैं कि गोपाल दास नीरज की कलम से जो उन्हें शेर पसंद है, अब तो मजहब से कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। बहुत बढ़िया, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, ये हमारे श्रोता बताते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं, गोपाल दास नीरज के लिखे गीत बहुत पसंद है, शर्मीली और प्रेम पुजारी के गीत जी हमको भी बड़े पसंद है। उसके साथ ही हमारे गोपाल दास नीरज के लिए लिखते हैं कि साहित्यकार फिल्मी फिर फिल्मी गीतकार है, कविताएं और साहित्य के साथ वो चले हैं, बहुत बढ़िया बात है। हमारे श्रोता में जो एक बहुत बढ़िया सा शेर, बहुत बढ़िया सी पंक्तियां आई थी गोपाल दास नीरज के बारे में, हमारे श्रोता लिखते हैं कि गोपाल दास नीरज में को मेरे पापा को सबसे के सबसे पसंदीदा कवि हैं, उनके कई कवि सम्मेलनों की रिकॉर्डिंग भी उनके पास में है। जी बिल्कुल। गुलजार के बारे में हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि गुलजार ने एक नायाब तरीके से गाना लिखा है जो अपने आप में संगीत का अनूठा गीत बन गया है, जिसमें दो अंतरे में एक ही तरह के शब्दों का प्रयोग है। बिल्कुल सही बात है, इस गीत के बारे में आप बता रहे हैं, लेकिन पहले और दूसरे अंतरे में सिर्फ शब्दों की जगह भूतकाल और वर्तमान काल का प्रयोग का प्यार को उभारा गया है और वो गीत है वो शाम कुछ अजीब थी। बिल्कुल सही बात है, ये बढ़िया बात आपने, बढ़िया जानकारी आपने दी है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि स्वप्न झरे फूल से गीत शुभे चूल से, जी वही कारवां गुजर गया गीत सबको बड़ा पसंद है। ये जो गीत है इन सब गीतों के साथ में एक बढ़िया सा शेर आया है कि गीत अनमन है गजल चुप है रुबाई है दुखी, गीत अनमन है गजल चुप है रुबाई है दुखी, ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए। बहुत बढ़िया, ऐसी बढ़िया बातें आप अपने यहाँ पर लिख रहे हैं हम तक भेज रहे हैं, उसके लिए आपका शुक्रिया। और अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं, हमारे श्रोता ने लिखा, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिछड़ने को, मिलते हैं दिल यहाँ मिल के बिछड़ने को। बिल्कुल सही बात है, कुछ बातें कटु सत्य होती हैं जो गीतों में हमें ऐसा लगता है कि बड़ी रुमानियत भरी है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की रात बड़ी शोक बड़ी नटखट है, आज तो तेरे बिना नींद नहीं आएगी। जी कभी कभी ये बढ़िया बात लिख देते हैं। साहिल लुधियानी की पंक्तियां लिखते हैं, तुम मुझे भूल भी जाओ ये हक है तुमको, ये उनकी पंक्तियों के बारे में लिखते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक बार कविता पाठ करने के लिए आए थे गोपाल दास नीरज, मम्मी वहां पर स्टूडेंट यानी शिष्या थी और इतनी जबरदस्त फैन हुई कि उन्होंने मुझे झरे फूल का गाना सुनाया और रेडियो पर ये उन्हें बड़ा पसंद आया था। यही बात है कि माता पिता अपने बच्चों में संस्कार देते हैं और वही संस्कार शायद आज आपको विविध भारती के साथ में जोड़कर रखे हुए हैं। हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है और वो प्रश्न है कि गीतकार परकाया में प्रवेश कर उनके भावों को लिखते हैं, परकाया यानी किसी और व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके गीतों को लिखते हैं, वरना स्त्री के मनोभावों को वो कैसे लिख सकते हैं। प्रश्न बहुत बड़ा है, सच बात है। अगर पुरुष गीतकारों को देखा जाए तो उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत अच्छे गीत लिखे हैं, उसके साथ ही अगर महिलाओं को देखा जाए तो रानी मलिक ने भी चुरा के दिल मेरा कुरिया चली ये गीत पुरुष के लिए लिखा है, कैसे लिखते होंगे जरा विचार करते हैं। तब तक सुनते हैं ये अगला गीत जो बड़ा सुंदर सा है, दोस्ती फिल्म से है ना, मोहम्मद रफी की आवाज है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, मजरूर सुल्तानपुरी के बोल हैं, पर इस सबके साथ में आप बताइएगा मजरूर सुल्तानपुरी की कौन सी रचना है जो आपको मजबूर कर देती है बस पर बस ही उनको सुनने के लिए या उनको समझने के लिए, जरूर से बताइएगा। तब तक सुनते हैं ये वाला गीत।

हम सुन रहे थे दोस्ती फिल्म का यह गीत। हम आपको बता चुके हैं मोहम्मद रफी की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का। और आपसे हमने पूछा था कि बताइए मजरू के बारे में जो आपके दिल में दिल कहता है या आपकी कलम कहती है। तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि सबसे बड़ी कामयाबी थी कि वे एवरग्रीन रहे। उन्होंने केएल सहगल के जमाने से शाहजहां 1946 से लिखना शुरू किया। नौशाद, एसडी वर्मन, ओपी नैयर से होते हुए आरडी वर्मन, आनंद मिले, जतिन ललित, कयामत से कयामत तक जो जीता वही सिकंदर के तौर तक सक्रिय रहे। इस दरमियान शायद ही कोई संगीतकार होंगे जिनके लिए उन्होंने गीत नहीं लिखे। 5 दशकों से ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने अपनी शायरी को कभी बूढ़ा नहीं होने दिया। कितनी बढ़िया, कितनी उम्दा बात आपने साहिल लुधियानवी के बारे में कही है। तो चलिए अब हम मजरू सुल्तानपुरी के बारे में कही है और अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। लेकिन उसके पहले हमने आपसे कहा था कि मजरू की कुछ रचनाओं को या

किसी भी रचना को जो आप पसंद करते हैं हमारे साथ साझा करें। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीजें लिखी हैं कि हमारे श्रोता लिखते हैं कि अच्छा पहले लिख चुके हैं ये कि मजरूह सुल्तानपुरी उनके पसंदीदा शायर और गीतकार हैं, उनकी सबसे बड़ी बात है कि लेखनी के लिए उन्होंने कभी अपना सर नहीं झुकाया, जेल में भी रहना पड़ा और उनका गीत लिखा, तुम जाओ कहीं तुमको अख्तियार, हम जाएं कहां सजना, उनका पसंदीदा गीत है। बिल्कुल, हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि वो नीरज गोपालदास नीरज के 2 बार कवि सम्मेलन सुन चुके हैं। एक बार कवि सम्मेलन तो सुबह 4 बजे तक बैठा रहा, नीरज लगभग 2:30 बजे माइक संभालने गए और 4 कब बज गए पता नहीं पड़ा। 1986-91 में गोरखपुर कचहरी क्लब मैदान में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के बुलावे पर वो आए थे। मजरूह सुल्तानपुरी कुंदन लाल सहगर के से लेकर सोनू निगम तक 5 पीढ़ियों के लिए उन्होंने गीत लिखे हैं और सभी सुने हैं उन्होंने, बहुत बढ़िया बात है। दोस्ती फिल्म के लिए वो लिखते हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जवां हमारी ना समझा यहाँ कोई मजरूह, हम अजनबी की तरह अपने ही वतन में रहे। क्या बढ़िया बात लिखी है, क्या बढ़िया शेर कहा है। मजरूह के लिए वो लिखते हैं कि गीत सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई अपने दिल की बात बड़े प्यार से कर रहा हो, ना बनावट है बस है अपनापन। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और इतने सारे बातों को हम अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम आपको अगला गीत दे रहे हैं जल्दी से। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, रहे ना रहे हम महका करेंगे बन के कली वन के सवा मांगे माफा में। बिल्कुल सही, बहुत प्यारा सा गीत आपने बताया, लेकिन अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं। बताइए इसके गायक कौन है और गीतकार कौन है। हालांकि मैं गीतकार के बारे में पहले ही पढ़ना चाहती हूँ तो मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ। हमारे श्रोता ने लिखा है कि गीतकार पसंदीदा गीतकार आनंद बख्शी हैं, उनकी रचनाएं पसंद है। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जटिल और भारी भरकम शब्दों का प्रयोग नहीं करते, बोलचाल की भाषा में गीत लिखते हैं और इनके कई सारे गीत इन्हें पसंद है जिनके बारे में उन्होंने बताया है। और वह कहते हैं आनंद बख्शी की अद्भुत प्रतिभा को सलाम किए बगैर रहा नहीं जाता। बिल्कुल सही बात है। अगला गीत सुनिए, बताइए इसके गायक कलाकार कौन है, जल्दी से बताइएगा। और अगर इनकी कोई रचना पसंद है तो साझा कीजिएगा, स्वागत है।

हम सुन रहे थे ये गीत बड़ा प्यारा सा, जिसे लिया था फिल्म, जो कि है फिल्म बालिका वधू से। और हमने आपसे पूछा था कि इसके गायक कलाकार कौन है, हालांकि इसके गीतकार आनंद बख्शी हैं और संगीतकार राहुल देव वर्मन है। और हमने आपसे इसके गायक कलाकार के बारे में पूछा और आपने सही उत्तर दिया, अमित कुमार, बिल्कुल सही। और इसके साथ ही हमारे पास बहुत सारे बहुत मीठे संदेश आए हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि 21 जुलाई 1930 को रावलपिंडी में पैदा हुए आनंद बख्शी की हालत से कभी समझौता नहीं किया, बंदूक में कलम को देखा, शेरो शायरी के फन को जिंदा रखा। बंदूक में कलम को देखने का मतलब है वो एक सैनिक थे और उसके बाद शायरी की दुनिया में आए और 30 मार्च 2002 को दुनिया से अलविदा कह गए। आज भी उनके बेशकीमती नगमे हमारे जबां पर हैं। देखिए मैं कुछ नाम ले रही हूँ, रविंद्र जैन, संतोष आनंद, इंदीवर, पंडित नरेंद्र शर्मा, जावेद अख्तर, कैफी आजमी, डीएन मधोक, शकील बदायूनी, समीर अंजान, निशात कामिल, मनोज मुंतजिर, प्रसून जोशी, कौसर मुनीर, हुसैन हैरी, हसन कमाल, जानिसार अख्तर, रमेश शास्त्री, पुरुषोत्तम पंकज, केदार शर्मा वर्मा, मलिक अभिलाष, गौहर कानपुरी, रवि कुमार बरामंकी, अमिताभ भट्टाचार्य, स्वानंद किरकिरे, रानी मलिक और जाने कितने सारे अभी गीतकार हैं जिनको आज हमने नहीं लिया है। परंतु क्या है कि अब जो है वो है, समक्ष है। तो आज के इस कार्यक्रम सुरीला सफर का अंतिम गीत मैं खुद भी चुनाव नहीं कर पा रही हूँ कि आपको कौन सा सुनवाया जाए, पर ये वाला जो गीत है वो मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ। तो उसके पहले ये बड़ा खूबसूरत सा नगमा है जिसकी एक पंक्ति, एक छोटी सी पंक्ति को आप सुन लीजिए और उसके बाद हम चलते हैं इस अगले जो आज का अंतिम गीत है उसकी तरफ, क्योंकि इस गीत के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं।

गीत आप समझ ही गए होंगे कौन सा है. जी बिल्कुल, शैलेंद्र ने भी बहुत अच्छे गीत लिखे हैं और दिल को हृदय को छूने वाले गीत हैं. कभी और किसी दिन सुनाएंगे, पर आज का, आज की शाम का यह अंतिम गीत जिसे लिखा है गुलजार ने और सदमा फिल्म से है, सुरेश वाडकर की आवाज में, इलैयाराजा का संगीत है. आइए सुनते इस गीत को, आज्ञा दीजिए. शायद आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो, खुशियां आई हो तो बहुत सारी बधाई, आपका जीवन मंगलमय हो.

संगीतकार शैलेंद्र की उस रचना को उधार के रूप में रखते हुए मैं कभी और आपको जरूर सुनाऊंगी। आज्ञा दीजिए कार्यक्रम सुरीला सफर से। कार्यक्रम सुरीला सफर यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनेस, हिंदी अनुवाद किया है जयंत पात्रीकर ने, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 33वीं कड़ी।

अठारह साल की घटना का अंग्रेजी हुकूमत पर बहुत दूरगामी परिणाम हुआ। निहत्थे लोगों पर इस प्रकार निर्ममता से लाठीचार्ज किए जाने की यह पहली घटना थी। उसके बाद ऐसी ही अनेक छोटी मोटी घटनाएं होती रहीं। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने ब्रिटिश राज सत्ता पर शैतान शाही की मुहर लगा दी। इन सब का परिणाम ये हुआ कि बारिसाल अधिवेशन के एक महीने बाद 14 मई 1906 को फुलर को वंदे मातरम शब्दों पर से और गीत पर लगी पाबंदी हटाने की घोषणा करनी पड़ी। ये समाचार मिलते ही बारिसाल अधिवेशन के शिल्पकार अश्विनी कुमार दत्त के नेतृत्व में 10,000 से भी अधिक जनसमुदाय ने बारिसाल शहर में एक विशाल जुलूस निकाला। सब लोग गा रहे थे, बोलो सिंहो नादेर जय जय राबे वंदे मातरम, उठुक भवे शुनुक सबे मंत्र गंभीरतम जय जय वंदे मातरम।

0: चलो सिंह स्वर में गाते हैं जय जय वंदे मातरम। संपूर्ण विश्व में गुंजायमान हो यह मंत्र वंदे मातरम। इस धीर गंभीर वातावरण में हम पुनः पुनः उच्चार करें जय जय वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
2: बारिसाल की जनता ने फिर एक बार सुरेंद्रनाथ बनर्जी को आमंत्रित किया। जिस भूमि पर आपको अपमानित किया गया उस भूमि को आप स्वयं आकर अपने चरण कमलों से पावन करें, ऐसी विनती अश्विनी कुमार दत्त ने सुरेंद्रनाथ जी को की। फिर एक बार बारिसाल की सड़कों पर लगभग 50,000 लोगों का समूह एकत्रित हुआ। वंदे मातरम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की जय, ऐसी घोषणाएं गूंजने लगी। बीएम हॉल में मोताहर हुसैन की अध्यक्षता में हुए सुरेंद्रनाथ बनर्जी के सत्कार समारोह में गीत गाया गया।

अर्थात लाठी के क्रूर घाव झेलने वाली बारिसाल की भूमि आज पुण्यवान हो गई है और वंदे मातरम गाते हुए वो माँ का जयगान कर रही है।

इस सभा पर फुलर ने कोई रोक नहीं लगाई। हालांकि हल्का सा विरोध करने का प्रयास जरूर किया गया, परंतु इस महीने भर में बारिसाल में हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रतिक्रिया स्वरूप जो जनक्षोभ पूरे भारत में उमड़ कर आया, उससे फुलर मन ही मन घबराया हुआ था।

0: बारिसाल की घटना की समूचे देश के समाचार पत्रों में कड़े शब्दों में आलोचना की गई। सरकार के समर्थक कहे जाने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया इस अखबार में 28 अप्रैल 1906 को लिखा गया,
1: बारिसाल की इस घटना से राष्ट्रीय स्वाधीनता की जंग पर दूरगामी परिणाम हुए हैं। पुलिस के अत्याचार ने न केवल बंगाल को बल्कि पूरी दुनिया को ही जगा दिया है।
0: बारिसाल की घटना के पांचवे दिन अमृत बाजार पत्रिका में अंग्रेजों को चेतावनी दी गई।
1: बारिसाल की घटना की यदि पुनरावृत्ति हुई तो लोग प्राणों की परवाह किए बिना प्रतिकार करेंगे।
0: द बंगाली इस अंग्रेजी

0: लोगों के धैर्य की भी एक सीमा होती है। पश्चिम बंगाल की जनता को पीटने के लिए उठी यह लाठी किसी दिन सरकार के ही माथे पर टूट पड़ेगी।
1: क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्थान अरविंद घोष के क्रांतिकारी भाई बारिंद्र कुमार घोष ने युगांतर में स्पष्ट रूप से लिख दिया,
0: इस अत्याचारी घटना के विरुद्ध भारत की 30 करोड़ जनता के हाथ बल का सामना बल से ही करने के लिए ऊपर उठने चाहिए।
1: वार्ता ने लिखा,
0: शस्त्र का उत्तर शस्त्र से ही दिया जाना चाहिए। पकड़े जाने पर एक छोटा सा कीट भी डंक मारता है तो फिर हम इस देश के वासी कब तक अपना संयम बनाए रख सकते हैं। स्वदेशी आंदोलन अब एक नए मोड़ पर आ गया है। हम सरकार को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दे रहे हैं कि मनुष्य रूपी राक्षस यानी अत्याचार करने वाले अंग्रेज अधिकारियों को सजा देकर उनका

0: फिर हम इस देश के वासी कब तक अपना संयम बनाए रख सकते हैं? स्वदेशी आंदोलन अब एक नए मोड़ पर आ गया है। हम सरकार को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दे रहे हैं कि मनुष्य रूपी राक्षस यानी अत्याचार करने वाले अंग्रेज अधिकारियों को सजा देकर उनका घमंड नहीं तोड़ा गया तो एक दिन ऐसी आग भड़केगी कि उसे बुझाने के लिए हजारों लोगों का खून बहाना पड़ेगा।
1: मई 1906 को बंगाली इस समाचार पत्र ने लिखा,
0: 10,000 से भी ज्यादा हिंदू मुसलमानों ने बड़ा जुलूस निकाला। इस जुलूस में अल्लाह अकबर और वंदे मातरम दोनों घोषणाओं का जयघोष चल रहा।

0: सिंगर के अधीन होकर ढाका के नवाब ने इस बारिसाल मामले में सरकार की मदद की थी। नवाब के दादा अब्दुल गनी हिंदू मुस्लिम भेद नहीं मानते थे। दादा की ख्याति भूलकर नवाब ने सरकार की मदद की। बाद में अंग्रेजों द्वारा उनकी लाचारी का फायदा उठाने पर वे जागे। उसके बाद फिर कभी स्वतंत्रता संग्राम के विरुद्ध ब्रिटिश राजसत्ता का साथ नहीं दिया। ढाका के नवाब का अपवाद छोड़कर हिंदू मुस्लिम एकता के दर्शन बारिसाल के निमित्त एक बार फिर अंग्रेजों को हुए। मौलवी लियाकत हुसैन बंगाल के एक सम्माननीय प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। बंग भंग के निर्णय से उन्हें भी धक्का लगा था। रविन्द्रनाथ के राखी बंधन के आह्वान का जवाब देते हुए वे भी इस उत्सव में शामिल हुए। अपने हर कार्यक्रम में वंदे मातरम ये गीत वे श्रद्धा से गाते थे।
1: बारिसाल की घटना के कारण अंग्रेजों की बची खुची छवि भी धूल में मिल गई। कई जुल्मी आदेश अंग्रेजों को वापस लेने पड़े। मीठी मीठी बातें करके सरकार स्थिति संभालने का प्रयास करने लगी। बारिसाल प्रकरण ब्रिटिश पार्लियामेंट में चर्चा का विषय बना। वंदे मातरम पर पाबंदी लगाने से ही उस आंदोलन को और अधिक धार मिली और इस पाबंदी के हुक्म से सरकार का ही अधिक नुकसान हुआ। इसका एहसास भारत मंत्री मॉर्ले और वॉइसराय मिंटो को हुआ और फिर एक बार मॉर्ले मिंटो सुधारों के रूप में सुधार का लालच आगे किया गया, पर ऐसे दांव पेचों से कोई भी बदलाव नहीं होने वाला।

0: वंदे मातरम का प्रभाव पूरे भारत में फैला हुआ था। वंदे मातरम की चिंगारी ने यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित कर ही दी थी, अब संविधाएं भी पढ़ने लगी थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलगुरु रह चुके आशुतोष मुखर्जी ने फुलर के खिलाफ वायसराय से शिकायत की। उससे नाराज होकर फुलर ने लॉर्ड मिंटो को अपना इस्तीफा भेज दिया और वो 3 अगस्त 1906 को मंजूर भी हो गया। कर्जन के बाद कर्जन का वरद हस्त प्राप्त अत्यंत अहंकारी अधिकारी फुलर का भी इस्तीफा मिलने के कारण आंदोलनकारियों का बल और बढ़ गया।
1: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

0: और मंदाकिनी जोशी, संगीतकार अजय पराड़, तकनीकी सहयोग दिया किरण बंग और समृद्धि नाइक ने, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
5: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
4: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघुरूपक श्रृंखला की ये थी 33वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनेस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रीकर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन के सफल यात्रा संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान की आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए निंदा की। और दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। फ्रांस दौरे के दौरान उन्होंने एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लिया। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर नीस फ्रांस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, जिसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप, नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया दौरे के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी

0: से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया भारत में निवेश कर रही है और उससे जुड़ रही है। माईगोव इंडिया के एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश एक बेहतर ग्रह के निर्माण में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर है। प्रधानमंत्री ने विश्व के साथ भारत के संबंधों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग देने के लिए देश के 140 करोड़ नागरिकों को धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी राज्य सरकारों और अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में न लें, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
1: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाएं और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसिलिंग करना। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहा है। दूसरा, जागरूक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
0: राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
1: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी में सिकल सेल रोग की रोकथाम, निदान और उपचार से संबंधित विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने गृह राज्य ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज दोपहर मयूरभंज जिले के दांडबोस हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वे आज शाम रायरंगपुर में स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगी।
2: रायरंगपुर में राष्ट्रपति एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करेंगी और एम्स सैटेलाइट सेंटर को जनता को समर्पित करेंगी। वो एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट को भी समर्पित करेंगी, जिससे कुसुमी ब्लॉक के तहत खनन से प्रभावित 113 गाँव में सुरक्षित पेयजल की सुविधा सुनिश्चित होगी। राष्ट्रपति हट्टाभद्रा में ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक स्पेशल सर्किट हाउस और नए बने रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति मुर्मू अपने जन्मदिन के मौके पर अपने गांव पहाड़पुर जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रायरंगपुर में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, रायरंगपुर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रधानमंत्री के साथ ओडिशा की एक दिवसीय यात्रा में शामिल होंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा करेंगे और संथाली जहेरा तथा हो जहेरा के पवित्र उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में वे मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान वे 40,000 करोड़ रुपए से अधिक

0: के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। वे पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रूपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। रविवार को प्रधानमंत्री कोलकाता में सुबह लगभग 6:30 बजे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। बाद में श्री मोदी कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 3 महीनों में लगभग 50 लाख टीके लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात में 100% टीकाकरण हो चुका है और मिजोरम अपने लक्षित जनसंख्या के 93% तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। वर्तमान में इसकी क्षमता केवल 10% पर ही उपयोग होता है। गृह मंत्री ने कहा कि NAFIS की सफलता पूरी तरह से प्रत्येक अपराध स्थल से एकत्र किए गए फिंगरप्रिंट के साथ इसके डेटाबेस को समृद्ध करने पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है।
1: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आईटी क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का विस्तार दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों तक किया है। STPI पटना में श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से राज्य के आईटी क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने STPI को Tier 2, Tier 3 सिटीज में ले जाने का निर्णय लिया था कुछ वर्षों पहले, तो आज यहां पर पटना में, साथ ही भागलपुर और दरभंगा में भी STPI जो खुले हैं उनके माध्यम से स्टार्टअप्स को कैसे सहयोग मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब साथ बैठे, चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव आए। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, IT इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम, AI के माध्यम से सर्विसेज बनाना, इन सब के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज बिहार में क्रिएट होगी।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट UG की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि ये कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है। टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि उसने पहले ही नीट से संबंधित सैकड़ों अवैध लिंक हटा दिए थे और अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ये प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट UG की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। NTA ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि NTA से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीट

0: सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परिषद एजेंसी नाम की जांच कर लें। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेगाडातु परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है।
1: Our position on Indus Water Treaty is well known.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है। जो देश अपनी नीति के तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है वह सद्भावना और दोस्ती पर आधारित सहयोग के फायदों की मांग करता रहे। यह समझौता अब पुराना हो चुका है। कोई भी तकनीकी व्यवस्था समय के साथ स्थिर नहीं रह सकती जबकि उसके आसपास की दुनिया बदल रही हो। 1960 में हुए समझौते को हमेशा के लिए मिला हुआ अधिकार नहीं माना जा सकता जिस पर कोई जवाबदेही न हो, जो आज की हकीकत से अलग हो और पिछले 6 दशकों में आए बड़े बदलावों से अछूत रहा हो।
1: Untouched by the profound changes of the past 6 decades.
0: भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुर्सी योग सत्र का आयोजन किया गया है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से प्रमाणित योग प्रशिक्षक श्रुति अग्रवाल ने सत्र का संचालन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान के आतंकवाद को प्रायोजित करने की निंदा की। आज दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको विश्व कप पर फीफा के राउंड ऑफ 32 के लिए प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे वचन फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाज में प्रेम धवन के बोल और रविशंकर के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अगला गीत सीमा फिल्म से मन्ना डे की आवाज में शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे कार्यक्रम के इस प्यारे से गीत को, जो कि है फिल्म बरादरी से तलत महमूद की आवाज है। सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: श्री 420 फिल्म का यह गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए कार्यक्रम सदाबहार नगमे में सुनते हैं अगला गीत परिवार फिल्म से। लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजें हैं, शैलेंद्र के बोल है और सलिल चौधरी का है संगीत।
1: दत्त मुरली की धुन सुन आई राधे जमुना के तट पर नीरत करत उठ हिरत ऐसी चंद तपन दिग्नाथ राम तत थई राम तत थई राम तत थई।

लहरियोड़निया लहकी मृदंग धनका झट झट झट झट नगिन दे दे सगन नदादा किट झट झट झट झट झट झट सगनका सगनका किट झट झट झट सगनका जी सगन नदा ताधा किट झट सगनका ताधा सगनका मान गई राधा मान गई राधा।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत

0: सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: हम सुन रहे थे ये गीत भाई भाई फिल्म से, ये गीता दत्त की आवाज में राजेंद्र कृष्ण के बोल और मदन मोहन के संगीत के साथ। और सदाबहार नगमे कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, आप सबका मंगल हो। प्रणाम, नमस्कार।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

भारती सेवा, देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है हेलो सहेली। कीजिए बस कुछ पलों का इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: किसी बात का हो या फिर किसी घटना के होने का इंतजार हो। इंतजार थोड़ा मुश्किल काम है ना? तो चलिए इस मुश्किल को आसान करने की कोशिश करते हैं हमारी और आपकी बातचीत से। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो सहेली में। स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त चंचल वर्मा का नमस्कार और झटपट हमें कॉल लगाइए। तो ये लीजिए, फोन की घंटी बज उठी है और हम बात करते हैं आज कॉल करने वाली हमारी पहली सहेली से। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सहेली, बताइए कौन बात कर रही है इस समय हमसे?
1: मैं शबाना बोल रही हूँ।
0: शबाना जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं?
1: उमरी खदाना।
0: उमरी खदाना
1: जी।
0: अच्छा, बताइए क्या करती हैं आप?
1: एक टाइम तो मैं कुछ नहीं कर रही, दुकान पे बैठी, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान कर रखी
0: है। तो ये आपकी खुद की दुकान है इलेक्ट्रॉनिक्स की?
1: हाँ जी, अपनी खुद की है।
0: अच्छा, तो यहाँ पर आप क्या क्या काम करती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर?
1: मैं तो सिर्फ बेचती हूँ, जैसे सामान होते हैं एलईडी, बिजली पंखे वगैरह, लाइट का टोटल सामान, और सुधार से भी हैं, रिपेयरिंग करते हैं मेरे हस्बैंड आके, हम लेकर रख लेते हैं।
0: अच्छा, तो आपके हस्बैंड और आप दोनों मिलके इस दुकान को चलाते हैं?
1: जी हाँ।
0: तो जब आप दुकान संभालती हैं तो घर पे बच्चे भी अकेले आराम से रह लेते होंगे, क्योंकि इतने समझदार हो गए?
1: हाँ, काफी समझदार है। बड़ा लड़का 16 साल का हो चुका है, 15 में लग चुका है, और छोटा 12 साल में लग चुका है, 12 का हो गया, 13 में लग चुका है।
0: शबाना जी, आप दुकान पर जब संभालती हैं तो उसी वक्त रेडियो भी सुनती हैं?
1: जी हाँ, रेडियो भी सुन लेते हैं, टीवी चला लेते हैं, टीवी में रेडियो चला लेते हैं।
0: तो आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: ओम शांति ओम फिल्म का दीवानगी दीवानगी का मैं गाना सुनना चाहती हूँ।
0: ठीक है, सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: सहेली बताइए, कौन बात कर रही हैं हमसे?
1: हम नीता मिश्रा बात कर रहे हैं आपसे।
0: नीता मिश्रा
1: जी, नीता, आप कैसी हैं?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ नीता जी। मुझे बताइए कि आपने कहाँ से कॉल लगाया है?
1: ये हमने लगाया यूपी से, लखीमपुर खीरी से।
0: लखीमपुर खीरी से आप बात कर रही हैं। बताइए लखीमपुर खीरी का मौसम इस समय कैसा है?
1: यहाँ पे तो बहुत गर्मी हो रही है।
0: अभी तक बारिश के कोई आसार नहीं है?
1: नहीं, बहुत बूंदाबांदी हुई थी कल थोड़ी देर बस।
0: तो जब थोड़ी बूंदाबांदी होती है तो वो तो गर्मी को और बढ़ा देती है, क्योंकि उमस बहुत हो जाती है।
1: बहुत ज्यादा।
0: तो बताइए आपके शौक क्या क्या हैं नीता जी?
1: हमारे शौक हैं गाने सुनना, किताबें पढ़ना।
0: किस तरह की किताबें आप पढ़ना पसंद करती हैं?
1: फिलहाल तो नॉवल अच्छे लगते हैं, जैसे गोदान है, गवन है, ये मुंशी प्रेमचंद जी के जो है, मैंने लगभग 8-10 तो नॉवल पढ़े ही पढ़े हैं। और बाकी किताबें बढ़िया लगती हैं पढ़ना, जैसे ये लड़कियों वाली आती मेरी सहेली है,
0: जो महिला पत्रिकाएं आती हैं वो आप पढ़ना पसंद करती हैं। बाकी आप उपन

0: फिलहाल तो नॉवल अच्छे लगते हैं, जैसे गोदान है, गवन है, ये मुंशी प्रेमचंद जी के जो है, मैंने लगभग 8-10 तो नॉवल पढ़े ही पढ़े हैं। और बाकी किताबें बढ़िया लगती हैं पढ़ना, जैसे ये लड़कियों वाली आती, मेरी सहेली है,
1: जो महिला पत्रिकाएं आती हैं वो आप पढ़ना पसंद करती हैं। बाकी आप उपन्यास बहुत सारे, जैसे आपने बताया मुंशी प्रेमचंद जी के अधिकतर उपन्यास आपने पढ़े हैं, बहुत अच्छा साहित्य आप पढ़ती हैं, जिसमें हमें
0: पढ़ना मतलब लगभग तो सभी कुछ, छोटे थे तो कॉमिक्स में बहुत पढ़ते थे, कॉमिक्स का जमाना तो गया, लेकिन अब ये किताबें बढ़िया लगती हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, जब बचपन में हम थे तो कॉमिक्स का जमाना था, और वो भी आपने बहुत पढ़ी हैं। आप गाने सुनने की भी शौकीन हैं, तो किस तरह का संगीत पसंद है आपको? आज के जमाने के जो आज के दौर के गीत हैं वो पसंद करते हैं?
0: ये भी पसंद है, लेकिन पुराने गाने, ओल्ड गोल्ड कहा जाता है, तो पुराने गाने ज्यादा पसंद है, खासतौर से लता जी से।
1: तो उस सुनहरे दौर का लता जी का गाना आपकी पसंद का अगर हम पूछें तो वो कौन सा गीत है?
0: बहुत सारे हैं।
1: आज जो गीत आप सुनना चाहती हैं वो बताइए।
0: मुझे सुनना है मैं हूँ खुश रंग हिना, हिना फिल्म का गाना।
1: आपको सुनवाते हैं हिना फिल्म का, आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: बताइए, हम किस सहेली से बात कर रहे हैं?
1: स्वाति विक्रम थोरात।
0: स्वाति जी, आप कहाँ रहती हैं? कहाँ से कॉल किया है आपने?
1: मैं जिला इल्ला नगर से तालुका पारनेर है, वहाँ से बात कर रही हूँ मैडम।
0: अपने बारे में कुछ बताएंगी, आप क्या करती हैं?
1: मैडम, मैं हाउस वाइफ हूँ, दो बच्चे हैं।
0: आपके बच्चे कितने बड़े हैं?
1: बड़ा बेटा 3री कक्षा में पढ़ता है और बेटी 4 साल की है।
0: तो उनके स्कूल शुरू हो गए हैं अभी?
1: स्कूल तो शुरू हो गए हैं अब।
0: और आप रेडियो सुनती हैं, तो कौन से कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: रेडियो को सभी चैनल में सुनती हूँ।
0: अच्छा,
1: जब मौका मिलता है ना तभी सुन लेती हूँ।
0: अच्छा, तो बताइए आज कौन सा किताब सुनना चाहती हैं?
1: मैं बागबान फिल्म का मैं यहाँ तू वहाँ सुनना चाहती हूँ।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का बागबान फिल्म का गीत।

जैसे ठहर गया है यही, हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरारी का ऐसा।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: बताइए कौन सी सहेली हमसे बात कर रही हैं?
1: मधुर पारेख।
0: मधुर पारेख, मधुर पारेख आप कहाँ से बात कर रही हैं?
1: जयपुर राजस्थान।
0: बड़ा सुंदर शहर है जयपुर।
1: बहुत सुंदर है।
0: यहाँ पर बहुत सारे किले हैं और

0: और बहुत सारे देखने वाली चीजें हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: आप जयपुर में बचपन से ही हैं या अभी हाल ही में कभी रहने लगी हैं?
1: मैं पहले आगरा रहती थी और अब हम लोग जयपुर रहते हैं।
0: तो आपने आगरा में भी बहुत सारी चीजें देखी होंगी। आगरा का तो ताजमहल है।
1: जी बिल्कुल, देखा है ताजमहल।
0: और जयपुर के बारे में थोड़ा सा बताएं कि अगर जयपुर कोई घूमने आए, कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं जहां हम जाकर आनंद उठा सकते हैं और बहुत अच्छी यादें बनाकर लौट सकते हैं?
1: जयपुर में बहुत अच्छे किले हैं, जैसे कि एक नाहरगढ़ फोर्ट, आमेर फोर्ट, आप वहां जा सकते हैं, बहुत सारी यादें बना सकते हैं, बहुत सारी फोटोज क्लिक कर सकते हैं। और सिटी पैलेस है जहाँ पे हमारे पुराने राजाओं की स्मृतियां हैं
0: जी,
1: और बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं जैसे कि गोविंद देव जी।
0: तो ये किलों की और मंदिरों की नगरी है एक तरह से जयपुर।
1: जी बिल्कुल।
0: मधुर, आप खुद क्या करती हैं?
1: जी मैं एक किंडरगार्टन टीचर हूँ।
0: ये किंडरगार्टन टीचर क्या होता है? क्योंकि टीचर हमने सुना है, मतलब अध्यापिका हैं आप, लेकिन किंडरगार्टन टीचर क्या होता है?
1: किंडरगार्टन टीचर छोटे बच्चों की टीचर होती है दरअसल। ये 4 से 6 साल के बच्चों को जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो जो देते हैं वो होती है किंडरगार्टन टीचर।
0: यानी हाल ही में जिन बच्चों ने अभी स्कूल में एडमिशन लिया है या जो पढ़ना लिखना सीख रहे हैं, तो इनके साथ किस तरह से आप डील करती हैं? क्योंकि वो बच्चे जो आज तक अभी 4 साल तक की उम्र तक घर पर थे और अब अपने माँ बाप को और अपने परिवार को छोड़कर वो पहली बार किसी सीढ़ी पर जब कदम रखते हैं, वो स्कूल की सीढ़ी है, तो वहाँ उन बच्चों को किस तरह संभालती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगी?
1: जी बिल्कुल। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें दरअसल बहुत ही अंदर से कुछ एंजाइटीज होती हैं, डर होते हैं कि हम किसी नए इंसान से मिलेंगे तो वो हमें हमें माँ के जैसे प्यार करेगा या ना करेगा। तो वही हम उन्हें एक मदर टच देते हैं, माँ वाली फीलिंग देते हैं, जिससे कि वो कंफर्टेबल हो पाए, हम उनको कुछ नया सिखा पाए।
0: मधुर, आप ये जो काम है किंडर टीचर का, ये
1: जी
0: कितने समय से आप कर रही हैं?
1: जी मैं 6 सालों से ये काम कर रही हूँ।
0: तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आपको।
1: जी बिल्कुल। और मुझे मेरा समय छोटे बच्चों के साथ बिताना बहुत पसंद है।
0: क्या बात है, छोटे बच्चों के साथ में कई बार हम अपनी जो एंजाइटी, तनाव या हमारी जो समस्याएं हैं ना, हम उन्हें भूल जाते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: और परिवार का सहयोग मिलता है जब आप काम करने जाती हैं?
1: जी बिल्कुल, मुझे मेरे पूरे परिवार का सहयोग मिलता है।
0: मधुर जी, आप हमें ये बताइए आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं सुनना चाहती हूँ अभी ना जाओ छोड़कर, हम दोनों मूवी का।
0: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: हाँ बताइए, हम किनसे बात कर रहे हैं इस समय, कौन सी सहेली लाइन पर हैं?
1: हम सविता शर्मा ग्वालियर से मैडम।
0: सविता शर्मा ग्वालियर से बात कर रही हैं।
1: जी मैडम।
0: बताइए सविता जी, क्या करती हैं आप?
1: हम खाना बनाते हैं मैडम।
0: खाना बनाना आपका प्रोफेशन है या घर में तो हर महिला खाना बनाती है, आप उस बारे में बता रही हैं हमें?
1: खाना बनाने जाती हूँ।
0: तो कौन कौन से खास खाने बनाती हैं ये बताइए।
1: देखो मैडम, हम जो नए नए फैशन के हैं वो तो कम बनाते हैं, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी पराठा आलू सूखी कटहल की सब्जी यही सब बनाते हैं।
0: और कटहल का अचार भी डाला जाता है खाने के अलावा, जो अलग स्पेशल चीजें होती है, अचार है, ये सब चीजें भी बनाती है आप?
1: हाँ बिल्कुल, अचार बनाते हैं। कटहल उसके लिए मैडम छोटा वाला कटहल होना चाहिए, बीजा वाला नहीं होना चाहिए।
0: तो इन बातों का बड़ा खास ध्यान रखना पड़ता है।
1: हाँ, उसको उबाल कर उसे एक दिन सुखा लीजिए, थोड़ा सा उसका पानी निकल जाए। फिर इसके बाद में उसको ठंडा हो जाए तो उसमें उसका मसाला पूरा डालकर तेल डालकर मिलाकर उसे कांच के बर्नी में भर के रख दीजिए।
0: और ग्वालियर शहर का मौसम इस समय कैसा है, वहाँ बारिश शुरू हो चुकी है या अभी भी गर्मी है?
1: हाँ, ग्वालियर में बारिश भी हो रही, गर्मी भी हो रही है बहुत, और बारिश होती है तो बहुत ही सारा बारिश होती है,
0: मतलब मिला जुला सा मौसम चल रहा है, कभी गर्मी और कभी बारिश।
1: हाँ कभी गर्मी, इस समय तो बहुत धूप है मैडम।
0: अच्छा, तो ये बताइए कि धूप से आपको राहत मिल जाए, इस गर्मी में आपको ठंडक दे जाए, ऐसा कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम तो सुनना चाहते हैं दम दम दिगा दिगा मौसम दिगा बिगा दिन पिए मैं तो गिरा हाय अल्लाह कि सुभान अल्लाह।
0: बहुत सुभान अल्लाह, आपकी बातें भी है और आपका गीत भी है, सुनवाते हैं आपको ये गीत। दम दम

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन सी सखी हमसे बात कर रही हैं?
1: जी मैं झांसी से बोल रही हूँ, रत्ना।
0: झांसी से रत्ना जी बात कर रही हैं।
1: जी
0: रत्ना जी, आप अपने बारे में हमें बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: बस मैं घर पे ही रहती हूँ।
0: रचना जी, झांसी बड़ा सुंदर ऐतिहासिक शहर है।
1: जी मैम।
0: और आप कब से झांसी में रहती हैं?
1: जी मैम, मेरी तो 20 साल हो गए मेरी शादी को।
0: अच्छा, तो ब्याह कर आप झांसी शहर में आई थी?
1: जी मैं सागर की हूँ, अभी झांसी में शादी हुई, 20 साल हो गए तो इधर रहती हूँ।
0: और आप बता दीजिए, आप कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मुझे शादन फिल्म के गाना सुनना है, बहुत प्यार करती हूँ।

0: सखियों अंतराल हुआ पूरा और हम फिर से फोन लाइन के जरिए जुड़ जाते हैं अपनी सहेलियों के साथ। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: आज कौन सी सहेली लाइन पर है जो हमसे बात कर रही हैं?
1: जी मैं निकिता आरोटे पुणे से बात कर रही हूँ।
0: पुणे से निकिता बात कर रही हैं। निकिता अपने बारे में कुछ बताएंगे, आप क्या करती हैं?
1: जी मैं टीचर थी लेकिन अभी घर पे हूँ। मैं
0: जो पढ़ाने का काम करती थी वो छोड़ दिया है
1: अभी। हाँ छोड़ा है मैंने अभी, मेरे बच्चे को टाइम नहीं मिलता था ना घर पे, इसलिए छोड़ा है।
0: ताकि आपके बच्चे को समय मिल सके तो आपने अपने काम से कुछ समय के लिए ब्रेक लिया है।
1: हाँ हाँ जी।
0: तो अब आपका बच्चा कितना बड़ा हो गया है?
1: अभी वो 12th में है।
0: 12th में है
1: जी, 12th में है अभी।
0: तो अब तो वो काफी बड़े हो चुके हैं, अभी आपको लगता है कि आपको उनके लिए काम छोड़ने की जरूरत है?
1: नहीं वैसे तो जरूरत नहीं, उसे लगता है कि मैं काम पे जाऊँ तो अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे लगता है अभी घर में कोई नहीं होता है, अकेला ही रहता है वो, तो ठीक है ना, उसके साथ रहूंगी मैं फिर। अभी क्या डिस्ट्रैक्शन होता है बच्चों का बहुत ना इस एज में।
0: बिल्कुल सही बात है, ये ऐसी उम्र होती है बच्चों की, किशोर वय जब होता है तो बच्चों में जो संस्कार पड़ते हैं, खासतौर पर वो किस तरह की सोहबत में उठते बैठते हैं।

0: माँ बाप का थोड़ा सा ध्यान उन पर अगर रहे तो वो किसी गलत भटकाव से बच सकते हैं।
1: जी,
0: तो आपकी सोच अपनी जगह बहुत अच्छी है। तो अब ये बताइए कि जब आप खाली समय होता है, क्योंकि पहले तो आप एक अध्यापिका थी, अब खाली समय को किस तरह से आप गुजारती हैं?
1: पहले तो मैं बच्चे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, उसकी पढ़ाई बहुत ज्यादा है ना, तो स्ट्रेस में रहता है वो। घर में कुछ डेकोरेशन करना पसंद है, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ।
0: इसके अलावा और
1: गिटार सीखने लगी हूँ।
0: अच्छा, गिटार आप सीख रही हैं?
1: जी, अभी स्टार्ट किया है। राइडिंग भी बहुत पसंद है मुझे।
0: ये बड़ा कमाल का शौक है आपका, क्योंकि खास तौर पर महिलाएं हॉर्स राइडिंग से डरती हैं, क्योंकि घोड़े की ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, तो उस पर चढ़ना ही अपने आप में बड़ा डरावना काम लगता है। तो ये काम आप कर रही हैं, तो कितने समय आपने हॉर्स राइडिंग सीखी?
1: सीखी नहीं, लेकिन बीच बीच में ऐसे टाइम निकल के जाती हूँ मैं। एक्चुअली मुझे वर्टिगो का बहुत इशू है, मतलब बहुत ज्यादा इशू है, लेकिन शौक बचपन से है तो अभी करती हूँ, डेयरिंग करके जाती हूँ मैं। कभी हस्बैंड के साथ ऊपर चढ़ती हूँ हॉर्स पे, फिर उनको उतार देती हूँ।
0: रेडियो आप सुनती हैं, तो कौन से प्रोग्राम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: हेलो सहेली, वो तो सुनती हूँ, और मैं बचपन से रेडियो सुनती थी मैम।
0: निकिता जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और हम चाहते हैं कि हम आपको आपकी पसंद का गीत सुन पाए। तो आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: बेटा फिल्म का सॉन्ग सुनना है, सजना मैं तेरी तू मेरा।
0: सुनवाते हैं आपको बेटा फिल्म का, आपकी पसंद का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सी सहेली हमसे बात कर रही हैं?
1: मैं पलक कहरवार बात कर रही हूँ।
0: पलक बात कर रही हैं। पलक, आपने कहाँ से कॉल लगाया? अपने शहर का नाम बताइए।
1: बुगावड़ी।
0: बुगावड़ी,
1: यस मैम।
0: ये बुगावड़ी कहाँ पर आता है?
1: वो सागर जिले है मैम। वही तहसील खुरई पे साइड है बुगावड़ी।
0: तो सागर जिले में आता है आपका गाँव।
1: Yes.
0: तो आपका जो गांव है वहां पर सुविधाएं कैसी हैं? स्कूल वगैरह है आसपास में लड़कियों के लिए?
1: स्कूल वगैरह है, एक पहली से आठवीं क्लास तक है।
0: आठवीं क्लास के बाद जब लड़कियों को पढ़ाई करनी होती है तो कहाँ जाती हैं वो पढ़ने के लिए?
1: तो यही तो है पथरिया, तो वहीं पर पढ़ती हैं।
0: वो आपके गांव से कितना दूर है?
1: साइकिल 3 किलोमीटर दूर है।
0: तो 3 किलोमीटर जाने आने के लिए अधिकतर लड़कियों को पैदल जाना आना पड़ता है या कुछ सुविधा है जाने आने
1: की? नहीं मैम, स्कूल से साइकिल मिलती है।
0: स्कूल से साइकिल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है?
1: या मैम।
0: अच्छा, तो आप अभी कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं?
1: मैं 9th में आ गई हूँ।
0: 9th में आ गई हैं। कौन से विषय पसंद है आपको?
1: मुझे सोशल साइंस विषय पसंद है।
0: आपके परिवार में और कौन कौन है?
1: हमारे परिवार में मैं माता पिता और हमारी 4 बहनें हैं और 1 भाई है।
0: अभी सब बहनें पढ़ाई कर रही हैं?
1: हाँ मैम।
0: और आप रेडियो कौन सी उम्र से सुनना शुरू किया आपने?
1: मैम अभी 1 साल पहले।
0: 1 साल पहले से आप रेडियो सुन रही हैं?
1: यस मैम।
0: कौन सा कार्यक्रम आपका फेवरेट है?
1: मैम आज के फनकार कार्यक्रम।
0: आज के फनकार कार्यक्रम सबसे ज्यादा पसंद आता है आपको?
1: यस मैम।
0: आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: धड़क 2 का प्रीत गाना सुनना है।
0: पलक आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन सी सखी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है, नाम बताइए अपना।
1: मैम पिंकी बात कर रही हूँ, जगदीशपुर शिवगढ़ दीवानों के शहर, जिला रायबरेली से।
0: क्या बात है, अपने शहर का जिस तरह से आपने परिचय दिया है ये अपने आप में बड़ा रोचक है।
1: जी मैम, आप ही लोगों को सुन सुन के मैम हमने भी बोलना सीखा है, और मुझे रेडियो सुनना बहुत अच्छा लगता है, और रेडियो से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है मैम, और साथ में जानकारियाँ भी मिलती रहती हैं, और प्यारे प्यारे गीत भी सुनने को मिलते हैं मैम।
0: आप क्या करती हैं ये बताइए।
1: मैम मैं घर पे रहती हूँ, और घर पे रह के घर के काम भी करती हूँ, और साथ में आप लोगों से बातें भी करती रहती हूँ कॉल के माध्यम से।
0: रायबरेली के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसा शहर है रायबरेली।
1: मैम रायबरेली तो ठीक ठाक शहर है, और मैं बताना चाहूंगी मैम, मेरा गांव शिवगढ़ के पास में पड़ता है, तो मेरे यहाँ जो शिवगढ़ है यहाँ पे एक राजा का महल है, जहाँ पर अक्सर फिल्मों की शूटिंग होती रहती है, गानों की शूटिंग रहती है, तो यहाँ पे मैम बहुत से लोग दूर दूर से घूमने आते हैं, और यहाँ पर मैम कोई टिकट वगैरह भी नहीं लगता है, आप फ्री में घूम सकते हो।
0: और आपके शौक क्या क्या हैं?
1: मैं मुझे तो सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा मुझे सॉन्ग सुनना, और मतलब सॉन्ग को गाना। मैम मैं अंदाज मूवी से सॉन्ग सुनना चाहूंगी, आज कहना जरूरी है।
0: अंदाज फिल्म का ये गीत आपको हम सुनवा रहे हैं।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सी सहेली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी है, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम प्रतिभा रहाने है।
0: प्रतिभा रहाने जी, आप कहाँ रहती हैं? किस शहर से आप बात कर रही हैं हमसे?
1: मैं पुणे से हूँ, राजगुरु नगर।
0: प्रतिभा जी, अपने बारे में बताएंगे कि आप क्या करती हैं और आपके शौक क्या क्या हैं?
1: मैं गृहिणी हूँ और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे एक आश्रम है, शिव साधना योग आश्रम नाम से। वहाँ पे वॉलंटियरिंग भी करती हूँ।
0: वहाँ पे आप एज वॉलंटियर जाती हैं?
1: हाँ।
0: तो ये एक योग आश्रम है जैसा कि आप सुनने से हमें पता लगा, तो यहाँ पर आप कुछ सिखाती हैं, करवाती हैं?
1: हाँ, वहाँ पे फ्री में योगा सिखाया जाता है, तो वहाँ पे फिर मैं सेवा देती हूँ। और वहाँ पे ध्यान शिविर भी होते हैं, जैसे कि विपश्यना ध्यान है, कुंडलिनी योग, क्रिया योग ध्यान है, और शरीर शुद्धि के लिए पंचकर्म, कायाकल्प, ऐसे भी शिविर होते हैं।
0: आप किस तरह की सेवाएं यहाँ पर देती हैं?
1: मैं वहाँ पे योगा सिखाती हूँ और जो शिविर होते हैं कायाकल्प पंचकर्म, वहाँ पे सेवा देती हूँ।
0: आपको पता है अभी 21 जून को योग दिवस आ रहा है?
1: हाँ हाँ।
0: तो हमारी सखियों को बताएं कि महिलाओं के लिए योग किस तरह उपयोगी है और उनके जीवन में ये क्यों जरूरी है?
1: हाँ, तो योगा हमारी मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है
0: जी।
1: जैसे हेल्थ के लिए तो, फिजिकल फिटनेस के लिए तो अच्छा है ही, पर अभी हम जैसे देख रहे हैं कि डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है या मेंटल हेल्थ किस तरह खराब होती जा रही है, तो हमारे लिए योगा बहुत इम्पोर्टेंट है मेंटल हेल्थ के लिए। तो उसके लिए योगा थोड़ा बहुत तो करना चाहिए, और अर्ली मॉर्निंग अगर हम थोड़ा योगा अभ्यास प्राणायाम करेंगे तो हमारा मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा और स्पिरिचुअल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, जो आगे बढ़ना चाहते हैं इसमें।
0: क्या योग के जरिए कुछ समस्याएं हैं उनसे भी निजात हो पाती है?
1: हाँ, तो हमारा जो मेंटल स्टेट है जो अभी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, जैसे कि सोशल मीडिया है, तो हम जब थोड़ा बहुत योग प्राणायाम करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा डिसीजन लेने का तरीका वो चेंज होने लगता है, मेंटल स्टेबिलिटी आने लगती है, क्लियरिटी आने लगती है, और अपने आप एहसास होने लगता है कि हम आनंद में रह सकते हैं, तो किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। जब हम खुशी में होते तो अंदर से खुश होते
0: हैं। तो योग हमें ये सारी चीजें सिखाता है।
1: हाँ,
0: और योग के साथ आप ध्यान के शिविर हैं उनमें भी हिस्सा लेती हैं और लोगों को उसका भी प्रशिक्षण देती हैं। और आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मुझे स्वामी मोदी का पल भर में क्या हो गया, ये सॉन्ग सुनना है।
0: बड़ी खूबसूरत पसंद है आपकी, और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का स्वामी फिल्म का गीत।

आज कॉल करने वाली सभी सखियों को धन्यवाद। और वे सखियां जिन्हें अभी और इंतजार करना है हेलो सहेली कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, वो निराश ना हो, अगली बार जरूर कोशिश कीजिएगा, क्या पता पहली बार में ही आपका कॉल कनेक्ट हो जाए। जिन सखियों ने आज हमसे बात की है उनसे हम अनुरोध करते हैं कि अगले 2 महीने तक हमें कॉल ना करें, ताकि वे सखियां जो इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहती हैं उन्हें भी मौका मिल सके। हमारे पुरुष श्रोता, उनसे हम अनुरोध करते हैं कि मंगलवार को हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग के समय वो हमें कॉल ना करें, क्योंकि इससे लाइन व्यस्त हो जाती है और हमारी सखियों को कॉल कनेक्ट करने में परेशानी हो सकती है। सखियों, आपसे मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। सभी सुनने वालों को हम ये बता दें, हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार को दिन में सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर है 400-24662, एक और नंबर है 28-68-70-288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022। नंबर एक बार फिर से बता देते हैं।

0: 4002462। एक और नंबर है 2867028। मुंबई का एसटीडी कोड है 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं HR पाटले, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं। दीजिए अपनी सखी चंचल वर्मा को इजाजत। नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
4: गीतों भरी कहानी, आइए सुनते हैं निवेदिता श्रीवास्तव की लिखी गीतों भरी कहानी ज्वालामुखी। वाचन स्वर निवेदिता श्रीवास्तव का ही है।
5: ऑफिस जाने के लिए लैपटॉप बैग लंच बॉक्स संभालते हुए कार की चाबी लेने के लिए अनुभा ने हाथ बढ़ाया ही था कि दही शक्कर की कटोरी लिए अपनी माँ विभा को सामने देखते ही हंसी की सुनहरी चमक उनके चेहरे पर खिल उठी। अरे वाह माँ, आपको याद है कि आज मेरा नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है और मुझे आपके इस आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। माँ के पूरे व्यक्तित्व में ही जैसे एक अलग ही तरह की संतुष्टि व्याप्त हो गई। बिटिया, मुझे तो आज भी तुम्हारे जन्म की वो घड़ी याद है जब मैं पूरे समय यही गाती थी।

अनुभवी खिलखिला उठी। माँ अब मैं चलती हूँ, नहीं तो ये मुंबई का ट्रैफिक मुझे मीटिंग के लिए देर ना करवा दे। शाम को आप तैयार रहिएगा, हम लोग मरीन ड्राइव चलेंगे और उधर से ही प्ले देखते हुए वापस आएंगे। और हाँ, हम लोग उधर से ही डिनर करते हुए आएंगे, इसलिए आज किचन की पूरी छुट्टी और आपका आज रेस्ट डे है। आज आपके लिए पार्लर में मसाज बुक कर देती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। विभा मुस्कुरा उठी। बेटी तूने तो मेरी दुनिया ही बदल दी, वरना। अनुभा ने माँ को गले से लगा लिया। माँ मुझको वो गाना याद आ रहा है जो आप अक्सर गुनगुनाती थी, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। गुनगुनाते हुए ऑफिस से निकलने से पहले ही अनुभा ने माँ को फोन करके तैयार रहने की याद दिला दी थी। घर के गेट पर बजते हॉर्न और फोन पर लगातार बजती घंटी आज की शाम के लिए उसके उत्साह को जैसे रेखांकित कर गई। और माँ भी दरवाजों पर ताला लगाकर उसके बगल की सीट पर बैठ गई। माँ का बैठना था कि अनुभा सड़क के बेतहाशा बेलगाम ट्रैफिक से अपनी गाड़ी को पानी की तरह निकाल ले गई। मरीन ड्राइव पर कुछ बातें करते करते ही डूबते सूरज को देखती हुई विभा अचानक ही चुप हो गई। टोकने पर बोली कि सागर की लहरों के साथ बीत रही ये शाम उस शाम की याद दिला रही है जब हम सब साथ थे।

माँ के साथ ही अनुभा भी उन पुरानी छोड़ दी गई गलियों में पहुंच गई। बचपन से लेकर कॉलेज फेयरवेल तक के दिन हंसती खिलखिलाते मानो पंख लगाकर उड़ते चले गए थे। मम्मी पापा के साथ की बेशुमार खुशनुमा यादों से सज्ज ना जाने कितने पल उसकी यादों के आसमान पर चांद तारों से झिलमिला उठे थे। दुर्गा पूजा की छुट्टियों में घर आई अनुभा रोज ही अपनी किसी न किसी सहेली अथवा पुराने स्कूल के शिक्षकों से मिलने निकल जाती थी। बचपन के दिनों और शरारतों को याद करते करते समय कितनी जल्दी बीत जाता था उन सबको पता ही नहीं चलता था।

अक्सर ही अनुभा अपनी माँ विभा को भी ले जाना चाहती थी, परंतु वह तो कभी किसी काम का तो कभी किसी अतिथि के आने का बहाना बनाकर टाल जाती थी। उसको तो लग रहा था कि आजकल माँ कुछ अनमनी सी हैं, परंतु घर परिवार और उनके दोस्तों में भी सब पूर्ववत व्यवस्थित प्रतीत होने से कोई कारण समझ नहीं आने पर वह उसको अपने मन का भ्रम समझ अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हो जाती थी। एक शाम घर जल्दी वापस आने पर अनुभा ने देखा कि उसकी माँ विभा तकिए में मुंह छुपाकर अपनी मुखर होती सिसकियों को दबाने का प्रयास कर रही थी, पर उनके वेग से हिलता हुआ शरीर असलियत की चुगली दे रहा था। अनुभा से रहा नहीं गया और उसने माँ के कंधों पर हाथ रख दिया। माँ क्या हुआ, आप इस तरह क्यों रो रही हैं? विभा खुद को समेटते हुए उठने का प्रयास करते करते जैसे टूटे हुए बांध से बिखर गई। क्या करूं बिट्टू, मैं क्या करूं, लाख कोशिशों के बाद भी मैं उस लम्हे से निकल ही नहीं पा रही हूं। अनुभा एकदम चौंक गई और कुछ भी नहीं समझ पाने की स्तब्ध मनस्थिति में उनका हाथ थामे बैठी बस सांत्वना देती पीठ ही सहलाती चली गई। मरुथल की वीरानी समेटे सखारापन उन दोनों माँ बेटी की आंखों से बहता हुआ ना जाने कहां जज्ब होता चला गया। बहुत प्रयास के बाद भी अनुभा कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके इन कुछ महीनों के ही हॉस्टल प्रवास में ऐसा क्या घट गया जिसने उसकी इतनी दृढ़ मना माँ को इतनी बुरी तरह तोड़ दिया है कि वह टूटे हुए कांच की किरचों जैसी बिखर गई हैं।

0: कभी ये रुलाए।
1: उसने खुद को संभालते हुए माँ का मुंह धुलवाया और उनको शांत करती वहीं पास ही बैठ गई। माँ, सबसे पहले तो आप शांत हो जाइए और धैर्य रखिए कि आप अकेली नहीं हैं। आपने अपने बच्चों को इतना सशक्त बनाया है कि वह चीजों को समझ और सुलझा सकें। आप स्वयं को संभालिए और सारी बातें बिना किसी झिझक के एकदम स्पष्ट बताइए कि समस्या है क्या। ऐसा क्या अघटनीय घट गया जो आपकी आंखों में इतने आंसू दे गया है? आपकी आंखों से बहते ये आंसू मुझको भी भिगो रहे हैं। विवाह के मन में जैसे विचारों के बवंडर उठ रहे थे, मानो वह सोच रही हो कि क्या बताएं और कैसे बताएं। कभी उससे अपना रिश्ता सामने खड़ा हो संकोच की बाढ़ खड़ी कर देता, तो कभी सामाजिकता चोटिल कदमों को और भी घाव मिलने की आशंका दे जाती। खुद की बेबसी का अनुभव करती उसने कुछ नहीं के भाव में सिर को हिला दिया, मानो वह उस पल को हटाना चाहती हो। शायद बेबसी की भाषा खामोशी के वीरान सन्नाटे में होते हुए भी बहुत कुछ अनकहा भी कह जाती है। अनुभा ने उसके हाथों को पकड़कर अपने विश्वास और सामर्थ्य की ऊर्जा सी उनमें भरी। नहीं माँ, ऐसे तो नहीं चलेगा, आपको मुझको तो बताना ही पड़ेगा। आइए बातें करते हैं और उससे ही आपकी इस पीड़ा का कुछ हल निकालते हैं। बेटी के स्नेहिल स्पर्श की ऊर्जा पाकर विभा जैसे दुगने वेग से फफक पड़ी। तू ही बता कि अब तुझको या किसी को भी बता के क्या होगा, और क्यों ही बताऊं, क्या कर लेगा कोई भी, क्या कर लेगी तू भी ये जानकर कि मेरा दम घुटता है इस घर में। मैं यहां एक पल भी नहीं रहना चाहती हूं, पर मैं अब उम्र के इस मोड़ पर जाऊं कहां, सिर्फ अपने लिए कोई अलग सा स्थान भी तो नहीं बनाया कभी। अब तो तेरे नाना जी और नानी माँ भी नहीं रहे कि उनके पास ही चली जाऊं। कुछ पल उखड़ती सांसों को अपनी चुप्पी से थामने का प्रयास करती हुई विभा फिर से सिसक पड़ी। जब मैं भी अपने लिए कुछ कर सकती थी या इस समाज में स्वयं को स्थापित कर सकती थी, तब तो मैं इस घर को संभालती रही और अब तेरे पापा के दिए इस धोखे को संभाल रही हूँ।

झुकी हुई विभा के कंधों पर हाथ रख दिए। आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि कुछ बातों के जवाब तो पापा को देने ही पड़ेंगे। आपको चाहे नहीं, परंतु मुझको तो चाहिए उनके जवाब। विभा ने अपनी सहेली दिवी को फोन करके बुलाया और अनुभा को उनके साथ उनकी सहेली शशि मौसी के पास भेज दिया और अपने पापा अरुण का इंतजार करने लग गई। अरुण ने देर शाम को ऑफिस से आते ही अपना बैग और लंच बॉक्स दरवाजे पर ही छोड़ दिया कि विभा आकर सब वहां से हटाकर सही जगह व्यवस्थित कर ही लेगी। फ्रेश होकर आने के बाद भी उसने बैग को दरवाजे पर ही पड़ा देख आक्रोशित होकर विभा को आवाज देने लगे, विभा विभा कहाँ हो तुम? तुमने सब सामान अभी तक हटाया क्यों नहीं और पानी तक ला कर नहीं दिया? अनुभा जो पास के कमरे से सब देख रही थी वहां आ गई। क्या हुआ पापा, इतनी तेज आवाज में क्यों बोल रहे हैं? अनुभा की बात से सकपकाते हुए से अरुण ने विभा के बारे में पूछा, पर उसने उसकी बात का जवाब न देकर पूछ लिया, आपसे कुछ बात करनी है, कुछ पूछना चाहती हूँ, आपके पास समय है क्या? अरुण चिंतित हो उठा, क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या तुमको? मुझसे तो कभी भी कुछ भी बात कर सकती हो, इसके लिए पूछने की क्या आवश्यकता है?

अनुभा उसके सामने इत्मीनान से बैठ गई। घर परिवार समाज सभी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभा चुकी स्त्री को यदि उसका पति धोखा दे तो उसको क्या करना चाहिए। अरुण ने एक सुकून महसूस किया और बोला, ये तो गलत है, उसके पति को ऐसा तो हरगिज नहीं करना चाहिए, ऐसा कौन मिल गया तुमको। अनुभा ने स्वयं पर नियंत्रण बनाए रखते हुए बोलती चली गई कि पति की गलत आदतों और समय समय पर टोकने के बाद भी जीवन की हर चुनौती पर हर सुख दुख में उसका साथ देने पर उम्र के इस ढलान वाले दौर में उसकी सहेली के पापा का किसी अन्य स्त्री से संबंध है, ऐसे में सहेली की माँ को क्या करना चाहिए। अरुण ने जवाब दिया, विश्वास की हत्या करने वाले ऐसे पति को तुरंत तलाक दे देना चाहिए। ऐसा धोखेबाज पति जिंदगी के किसी भी मोड़ पर और भी बड़ा धोखा दे सकता है, शायद तब तुम्हारी उस सहेली की माँ के पास संभलने का समय ही नहीं होगा। अरुण ने देखा कि अनुभा कुछ सोचती सी गुमसुम होकर बैठी रह गई। वह आकर उसके पास बैठ गया। बेटे, सहेली के बारे में सोचकर परेशान मत हो, क्योंकि परेशान होना तो किसी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। अनुभा उनकी ओर देखती हुई बोली, नहीं पापा, मैं सहेली के बारे में नहीं, उसकी माँ के बारे में सोच रही हूँ कि अपने जीवन के इतने अनमोल और खूबसूरत साथ देने के बाद भी उनको धोखा क्यों मिला। क्या ईमानदारी से घर का ध्यान रखना

और परिवार के प्रति समर्पित रहना गलत होता है? आखिर उन्होंने अपने लिए कुछ करने की अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ा, तभी तो घर के सभी सदस्य इतने निश्चिंत होकर जिंदगी में खुद को कुछ साबित कर पाए। मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि वो गलत कहाँ थी।

अनायास ही अनुभा की आवाज में एक आक्रोश उभरने लगा था। पापा, ये सब देखकर मुझे लगता है कि मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए। नहीं जीना मुझे एक संशय के विश्वासघात के माहौल में। कहीं बाहर जाकर नौकरी न करने की एक बात छोड़ दें तो मेरी सहेली की माँ रूप, व्यवहार, गृह कौशल, सामाजिकता निभाने वगैरह सभी बातों में अव्वल थी, जबकि मैं तो ऑफिस में काम करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानती। तब मेरा साथ कोई क्यों देगा? अरुण तड़प कर उसके सिर पर हाथ फिरने लग गया। ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा, तुम अकेली कहाँ हो? मैं हूं ना, तुम्हारे साथ में कभी कुछ गलत होने ही नहीं दूंगा। अनुभा शांत भाव से उसको देख रही थी। अमर होकर तो इस धरती पर कोई नहीं आया है, फिर जब आप नहीं रहे तब मेरे धोखे का सामना मैं कैसे करूंगी? अरुण उसके मन की उलझनों को समझता हुआ बोला, बेटे कोई भी कभी भी एकदम अकेला नहीं होता, कोई ना कोई अवश्य होता है साथ देने को। ईश्वर ना करे, परंतु यदि कभी ऐसा हुआ भी तब भी कोई ना कोई तो तुम्हारा साथ देगा ही, जैसा अभी मैं तुम्हारी सहेली की माँ का साथ दूंगा। लाओ मुझे उसके पापा को फोन नंबर दो,

मैं बात करता हूँ। पूरे जीवन साथ देने वाली पत्नी के साथ वह इतना गलत काम कैसे कर सकते हैं? अनुभा ने एक सुकून की सांस भरी। हाँ पापा, आप जरूर बात कीजिए, मैं उनको कॉल करती हूँ। उसके नंबर मिलाते ही उसके फोन पर अरुण का ही नाम चमकने लगा। वह चौंक गया, अरे तुमने तो गलती से मेरा ही नंबर मिला दिया, उसके पापा को कॉल करो ना। अनुभा खड़ी हो गई। नहीं पापा, मैंने नंबर सही मिलाया है, मैं आपकी और मम्मी की ही बात कर रही थी।

एकदम चौंक गया। क्या कहना चाहती हो, तुम्हारी मम्मी ने कुछ कहा है क्या? अनभा की आवाज में तलखी आ गई। अभी भी आपने यह नहीं कहा कि यह बात गलत है या मैं क्या बकवास कर रही हूं, बल्कि आप यह प्रश्न कर रहे हैं कि मम्मी ने कुछ कहा है, क्या समझूं इससे? अरुण की आवाज लड़खड़ा गई। मैं तो चौंक गया था कि यह तुमको क्या हुआ है, कैसी बातें कर रही हो, इसलिए। ऐसा कुछ नहीं बेटा, तुम मेरी बात तो सुनो। अनुभा के पूरे अस्तित्व से मानो घृणा क्रोध बनकर बरसती जा रही थी। आप झूठ मत बोलिए, मैंने आपके सारे फोटो और चैट सब देख लिए हैं। पड़ोसियों ने तो पहले भी एक आध बार इशारे में कहा था कि जब मम्मी कहीं शहर के बाहर होती हैं तो कोई आपके साथ ही घर आती थी, और तब आप कार बाहर खड़ी नहीं करते थे, कार सीधे अंदर पोर्टिको में ही खड़ी करते थे। और अरुण यह सुनते ही बौखला गया। क्या बकवास कर रही हो, तुमको होश भी है कि क्या बोल रही हो, वो भी अपने ही पापा को? कोई कुछ भी बोल देगा तो तुम सच मान लोगी? आत्मवंचना मानो उसके शब्दों में मूर्तमान हो उठी। आपसे ज्यादा गुस्सा मुझको आया था, और उन डांटी से लड़कर मैंने बोलना ही छोड़ दिया था कि वो आपके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं। पर आज अफसोस हो रहा है कि मैंने उनकी बातों पर भरोसा करके उसी समय आपका कॉलर क्यों नहीं पकड़ा। काश मैंने पूछा होता तो मम्मी को इतनी पीड़ा से नहीं गुजरना पड़ता।

अरुण को लगा कि जिस पल की आशंका से वह सब छुपाने का प्रयास कर रहा था वही पल सामने आ खड़ा हो गया है। उसने स्वयं को स्थिरचित्त कर लिया। तुम्हारी माँ को कभी कोई कमी होने दी थी क्या? उसकी कौन सी जरूरत पूरी नहीं की? समाज में उसकी प्रतिष्ठा में कभी कोई कमी नहीं आने दी? फिर वो आखिर चाहती क्या है? क्या कुछ पल अपने मन से नहीं जी सकता मैं? अनुभव चीख ही तो पड़ी थी, आखिर आ ही गई आपकी असलियत सामने। कुछ पल अपने मन से यदि ऐसा ही जीवन उन्होंने जिया होता तब क्या करते आप और आपकी आधुनिकता? अरुण का क्रोध विस्फोट कर उठा। तुम होश में हो? अपने पिता से तुम कैसी बातें कर रही? तुम्हारी हिम्मत कैसे? अनुभा उनके सामने सीधी खड़ी हो गई। मेरी हिम्मत तो आप अब देखिएगा। और हाँ, जिस बात को आप सुन भी नहीं पा रहे हैं, उस सच के साथ मेरी माँ को अपना पूरा जीवन जीना है। इतना विश्वास दिलाती हूँ कि टूटने तो उनको बिल्कुल नहीं दूंगी, ना तो मैं और ना ही भाई। बस वो भी पहुंचता ही होगा। अनुभा की आवाज को दबाने के प्रयास में उसका पौरुषीय अहंकार मानो उसके मन को चोटिल करने के लिए चिंगाड़ उठा। जिस सामर्थ्य की धमकी दे रही हो उसको पाने की फीस की रकम मैंने ही भरी है। अनुभा पलटकर उसके सामने खड़ी हो गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, यह सब बोलने का साहस और अभी भी आपको आप बोलने का संस्कार मम्मी ने दिया है। आप यह मत सोचिएगा कि हम यह घर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। हम वापस यहीं आएंगे और रहेंगे। अपना सामान समेटकर गेस्ट रूम को अपने हिसाब से ठीक कर लीजिएगा। वह क्रोध में पागल ही होता जा रहा था। हम घूमने जा रहे हैं, तुम लोगों को घर पर ताला बंद मिलेगा। अनुभा पीड़ा में भी हंस पड़ी। अब तो समझ जाइए कि मुझको ताला तोड़ना भी आता है और तोड़वाना भी।

दरवाजे की ओर बढ़ते बढ़ते वह अचानक से उसकी ओर घूम गई और हाँ, सुबह दादाजी और दादी माँ आ रहे हैं यहाँ, उनको सुनाने के लिए कोई कहानी तैयार रखिएगा। अरुण के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। तुम्हारे दादाजी और दादी माँ, उन लोगों से क्या कह दिया तुमने? उस पीड़ा में भी अपने पिता की हड़बड़ाहट देखकर अनुभा हंस पड़ी। कुछ खास नहीं, बस जो सच है वही कहा है। और यह तो आप भी जानते हैं कि माता पिता अवश्य वो आपके हैं, परंतु आपसे कहीं ज्यादा प्यार वो अपनी बहू यानी मेरी माँ से करते हैं। पिता की स्तब्ध करती शक्ल देखकर वह बोल उठी, आपको शायद गलतफहमी हो गई थी कि नाना जी और नानी माँ के ना रहने से माँ एकदम अकेली और असहाय हैं। उनके साथ हम सब हैं जो उनकी तरफ उठने वाली हर उंगली को तोड़ना भी जानते हैं और आपकी सच्चाई को खोलना भी। वह दृढ़ कदमों से बाहर निकल गई, पर अरुण की उलझने मानो उसको न जाने की अंधेरी कंदरा में ले जा रही थी।

ज्वालामुखी। अभी आप सुन रहे थे निवेदिता श्रीवास्तव की लिखी गीतों भरी कहानी उन्हीं के स्वर में। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग काजल भदरगे का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

FM 102 और साथ ही 103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण है। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं देश गाना।

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
5: जब एक परिवार को अपना घर मिलता तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
2: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस और सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

FM 102 और साथ ही 103.6 मेगाहर्ट्ज मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, ये आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण है।

FM 102.7 और 103.6 MHz मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, ये आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण है। संध्या के 5:10 होने को है। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुन सकेंगे दिल्ली आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आयोजित रोजगार मेला 2026 का सीधा प्रसारण। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नई दिल्ली के विज्ञान भवन लिए चलते हैं, जहां से आप श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं प्रीति मोहन और डी एंड्रियो। आइए विज्ञान भवन चले।
1: नमस्कार, विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल से मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर के साथ आप सभी का स्वागत करती हूं। मेरे साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू मेरे साथ हैं और आकाशवाणी की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज विज्ञान भवन में भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन देश के युवाओं को सशक्त बनाने, उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा विकसित भारत के निर्माण में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। यहां हम अपने श्रोताओं को जरूर बताना चाहेंगे कि विज्ञान भवन में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है और वो लाभार्थियों के साथ बातचीत कर रहे हैं।
2: या द प्राइम मिनिस्टर हैज अराइव्ड ऑलरेडी इज इन विज्ञान भवन एंड इज इन अ सेपरेट हॉल वेयर इज हैविंग अ टॉक अ डिस्कशन विद द बेनिफिशियरीज हु आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड टुडे फ्रॉम दिस this Yojana, that is the Vikshit Bharat Rozgar Yojana by the Prime Minister. And then after that, he'll be coming over here in, say, in a short while, he'll be entering the plenary hall, wherein the program will begin. And to say, tell you something about the atmosphere over here, it's really brightly lit atmosphere, and a lot of flowers are there in front of the dais, and you're having yellow, white and pink roses, and of course they're flanked by yellow and pink lilies and the anthurium. So you can see that all the people, the beneficiaries, that are numbering about, about 600 people who are all seated over here, and they'll be getting the appointment letter for the jobs, and it's going to be a wonderful atmosphere over here, and it'll be a lifetime experience for them because they're getting these letters from the hand of the Prime Minister.
1: बिल्कुल एंड्रयू, और आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे डिजिटली, रिमोट का बटन प्रेस करके, और सबके खातों में चले जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ना।
2: एंड वी गॉट अपॉइंटमेंट लेटर्स प्रीति व्हेन वी गॉट अ जॉब, नाउ यू सी एवरीथिंग इज डिजिटल, सो इंडिया इज आल्सो गॉन अहेड विद द वर्ल्ड बिकॉज़ एवरीथिंग इज डिजिटाइज्ड नाउ। एंड टुडे इनफैक्ट अराउंड 15 lakh beneficiaries will be getting their job, their letters today, employment letters, and that is going to cost about 2,400 crores only for today. And then, of course, and the final aim, the final total, that is going to be about 3.5 plus crore jobs, and the total budget is for this is about 99,446 crores.
1: बिल्कुल, और मंच की बात करें तो मंच पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ होंगे श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, और साथ में होंगे श्रम एवं रोजगार तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे, और साथ उनको जो स्कॉर्ट करके लाएंगे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुरनानी, और साथ में दो युवा लाभार्थी भी साथ में होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जब वो मंच पर आएंगे।
2: दिस टू बेनिफिशियरीज।

0: look, bring the Prime Minister to the dais. What a privilege for them. I think it's going to be a lifetime experience for them. And I just want to tell you, the motto for this is Rozgar Ya Karobar, Saath Hai Bharat Sarkar. What an encouragement to the people who are going to start the business. And then the transformation journey is from auto settlement of advance claims up to rupees 5 lakhs. So people who have got debts and all, that will be waived off. Then centralized pension payment scheme, which is CPPS. And then digital life certificate through Umang app. And face authentication technology, FAT, through for getting the number. And 99.68% of UANs have been generated, which is a universal account number.
1: आज के कार्यक्रम पर अगर एक नजर डालें तो फिलहाल युवा लाभार्थियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की बातचीत हो रही है और उसके बाद डायस पर आने के बाद हम ये जो विधिवत एक स्वागत होता है वो श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा किया जाएगा. तत्पश्चात एक लघु फिल्म प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर दिखाई जाएगी और उसके बाद जो आज का बिल्कुल महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, रिमोट का बटन प्रेस करके राशि हस्तांतरित की जाएगी लाभार्थियों के खाते में. और हाँ बोलो. इस योजना के अगर प्रमुख आंकड़ों की बात करें, उस पर एक नजर डालें तो योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2025 से हुई और अब तक देश भर में 15 लाख नए रोजगार अवसर सृजित हो चुके हैं, पहले ही हो चुके. और योजना का कुल बजट 99,446 करोड़ रुपए है और आगामी दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का लक्ष्य है. तो देखिए कितने लोगों को नौकरियां मिलेंगी, कितने युवा उससे लाभान्वित हो. और शुरुआत से अब तक का सफर देखें तो करीब 15 लाख रोजगार अवसरों का सृजन हुआ है और योजना का मुख्य उद्देश्य है कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना. और आज के विशेष दिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी योजना के लाभार्थियों को संबोधित भी करेंगे. ये एक एनकरेजमेंट होता है और कुछ बेहतर करने की एक जो ललक होती है वो उसमें आती है.
0: People will feel secure. Okay, the government is there to help us out. So we should not feel that okay, I'm not going to achieve anything. But let our Prime Minister is given them an assurance that the government is there with you. That is what he says in this motto. No, रोजगार या कारोबार साथ है
1: भारत सरकार जी. और चंद मुख्य बातों पर नजर डालें तो यहाँ जरूर बताना चाहेंगे भारत के माननीय प्रधानमंत्री आज विकसित भारत योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे और पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा. और सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए नियोक्ता प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रति माह 3,000 रुपए तक के प्रोत्साहन के पात्र होंगे. और इसके अलावा ये भी बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सृजन रोजगार के औपचारीकरण और सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार को सुगम बनाने के लिए बनाई गई है, आसानी से सब पहुंच सके. और इस प्रोत्साहन ने देश भर में लगभग 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार सुलभ करवा दिया है जी.
0: Yeah, and you know, this program operates under dual incentive structure, split into two distinctive parts. The first part is support for the first-time employees, jinko pehli bar naukri mili
1: hai.
0: This component focuses directly on the young individuals entering the formal workforce for the first time. And the eligibility is new employees joining an EPFO, that is the Employees Provident Fund Organization, registered establishment, with a monthly gross salary of up to rupees 1 lakh. And the worker must not have any prior EPFO history before August 1st, 2025. So these are the conditions. And then the financial benefit is a direct incentive equivalent to 1 month of EPF wage, capped to a maximum of rupees 15,000. Right? And then the disbursement will be in two stages. That is through the direct benefit transfer, DBT, through the Aadhaar verification in two equal installments, using Aadhaar verification. First installment after 6 months of continuous duty of 7,500 rupees. And the second one after another 6 months. So after the completion of 12 months, they'll be getting a total of 15,000 rupees. And the employer also, of course, he also gains something. Every time he brings in a new worker, he also gets a benefit of 3,000 rupees per worker that he brings in. So obviously, when these benefits are there, even the

0: employers, they'll try to bring in as many people as possible, and even the so that more and more people get employment, and they also, the employer also earns, the employees also earn.
1: बिल्कुल, सभी को फायदा है.
0: Yes.
1: बिल्कुल फायदा है. और आर्थिक विकास में विनिर्माण क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस क्षेत्र में नियोक्ताओं को 4 वर्ष तक प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा. और वहीं सभी क्षेत्रों के नियोक्ता 2 वर्षों तक इस योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं.
0: Yeah.
1: और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगी और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी. और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.
0: Yes. ना? See, and then one more thing. See, the Minister of Employment and Labour organizes and promotes Rozgar Melas, that is job fairs, which is being held today across India through the National Career Service portal, that is the National Career Service India, to bridge the gap between the job seekers and the employers. And the National Career Service, NCS, is the official platform where you can search for local job fairs.
1: Hmm.
0: It is, you go to the portal and you'll get, and then register as a job seeker and connect with the employers. So if they find that you are reasonable, you are well qualified for their jobs, you'll be picked up.
1: और जैसे कि एंड्रयू ने जिक्र ही किया था, आज का कैप्शन है रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, और कुछ एक पलों में लाभार्थियों के खातों में पैसा पहुंच जाएगा. बिल्कुल डिजिटली पहुंच जाएगा. कहते हैं ना कि अच्छा आएगा देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. बस रिमोट का बटन प्रेस करेंगे और सभी के खातों में मैसेज आ जाता है मोबाइल पर कि हाँ आपके पास पहुंच गए हैं. तो ये बहुत भावुक क्षण भी होते हैं. नहीं, आपको टच भी करते हैं दिल में कहीं. और प्लेटफॉर्म तो मिलता ही है कुछ करने का, कुछ बेहतर करने का. इसके अलावा नारी शक्ति पर भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगी. 4 श्रम संहिताएं लागू, महिला कर्मचारियों के लिए लाभ, नारी शक्ति, समान कार्य के लिए समान वेतन, सहमति के साथ नाइट शिफ्ट में कार्य की अनुमति, वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान और भूमिगत खनन एवं भारी मशीनरी सहित सभी प्रकार के कार्यों में रोजगार की अनुमति. विकसित भारत का संकल्प साकार हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं ना?
0: Yeah, that's true. And that's what we say, you know, dreams are being fulfilled under the prime ministership of Mr. Narendra Modi. And in fact, this applicable period for this the one which is taking place right now is from the 1st of August 2025, started last year, till the 31st of July 2027. So this is for a period of 2 years.
1: Hmm.
0: But in manufacturing sectors, the heavy industries, where it is, means it is extendable up to a period of 4 years.
1: Hmm.
0: Its benefits are applicable up to a period of 4 years.
1: 4 saal.
0: Yeah. And then we have this growing with India's workforce, the EPFO, that is the Employers Provident Fund Organization, which is a strength of 7.99 crore members, and then 84 lakh pensioners who are being benefited by this EPFO.
1: बहुत ही ध्यान से मैं देख पा रही हूँ कि विज्ञान भवन में सभी युवा और अतिथिगण जितने भी हैं अपना स्थान ग्रहण करके और बहुत ध्यान से सुन रहे हैं. और मंच बहुत खूबसूरत फूलों से सुसज्जित है, बहुत खूबसूरत लग रहा है. रंग बिरंगे पुष्प खुशबू भी बिखेर रहे हैं और साथ में इस खुशबू के साथ एक अलग सी हवा है ये.
0: एटमॉस्फेयर इज रियली फैंटास्टिक, इज रियली इलेक्ट्रिक, यू नो, बिकॉज़ सी एवरीवन इज लुकिंग टुवर्ड्स द एंट्रेंस to the plenary hall, because very soon I'm sure the Prime Minister will be coming in, walking in with other dignitaries, and he'll take his seat over here on the dais.
1: और आकाशवाणी के माध्यम से आपको देखा हाल आप तक पहुंच रहा है. और इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूं तो ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उसके युवाओं के लिए गुणवत्ता पूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो.
0: Yes, and our Prime Minister has always put a lot of stress on the youth, you know, the youth of this country, because they are the future pillars. They are the ones who are going to hold this nation. So he is putting a lot of stress on them, and he sees that all are employed, all get employment, none of them are left without a job, because you know how much frustration it leads to when a person doesn't have a job. So that's why the Prime Minister is working on this and is bringing out these schemes.

0: And then I think the Prime Minister is about to arrive in the plenary hall. People are anxiously waiting. Silence is being maintained. And the announcement is going on that, well, the Prime Minister is about to arrive. He's on his way. And I want to tell you one thing, one more thing. ESIC's growing network of protection and care. This is Social Security for All, which is 3.24 crore plus insured persons enrolled, 14.91 crore plus beneficiaries, which is covering 728 districts. So this is Social Security for All.
1: और अभी सभी जुड़े भी हुए हैं, लाइव जुड़े हुए
0: हैं
1: सभी यहाँ. ये महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा भारत हमारे साथ.
0: yes. Because this is applicable to 728 districts right now. Right now, and already 15 lakh people have already got the employment letter, the job letters, and that's total incentive which is going to go to them is 2400 crores.
1: और थोड़ा सा सार देखें, एंड्रयू तो जरूर बताना चाहेंगे. योजना के अनुसार 1500 रुपए की राशि दो किस्तों में मिलेगी और ये पैसा उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका पहली बार प्रोविडेंट फंड नंबर जनरेट हुआ है. ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है. और सैलरी 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा ना हो, कम होनी चाहिए, तब ये मिलता है. और अगर कर्मचारी की सैलरी 10,000 तक है तो कंपनी को 1,000 रुपए प्रति कर्मचारी मिलेगा. और अगर कर्मचारी की सैलरी 10 से 20,000 तक है तो कंपनी को 2,000 रुपए हर महीने मिलेंगे. और 20,000 से 1 लाख तक है तो सैलरी तो कंपनी को 3,000 रुपए प्रति कर्मचारी मिलेंगे. इसका आपने जिक्र भी किया था.
0: एंड यू नो दिस की ऑब्जेक्टिव्स हैज बीन टू जनरेट मोर देन 3.5 करोर जॉब्स अक्रॉस इंडिया, प्रमोट फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी कवरेज, support first time job seekers. That is what it says, no? The scheme aims to make it easier for young people to enter formal employment while encouraging businesses to hire more workers and expand India's organized workforce. And then support first time job seekers, and then incentivize employers, especially in the manufacturing sector, to create new jobs. See, only when the employees also get an incentive, when they are paid something for every time they give a taken a new person, a new job seeker, they also given an incentive which accounts to 3,000 rupees. So why not? They'll definitely try to employ more and more people so that their work also expands, the workforce also expands, and of course it is always on the for the development of the country.
1: Okay. ESIC का बढ़ता सुरक्षा एवं स्वास्थ्य नेटवर्क 3.24 करोड़ प्लस बीमित व्यक्ति पंजीकृत और 14.91 करोड़ प्लस लाभार्थियों तक पहुंच और 728 जिलों में सेवाएं उपलब्ध. और सभी के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है सामाजिक सुरक्षा. ये बहुत जरूरी है. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बहुत ही ऐसी योजना जिससे सभी को
0: Our Prime Minister is a man with dreams. He wants to take India to great heights, and he has achieved it almost. He's taken India to great heights, and right now, and of course, internationally, the world, India has got recognition as a mediator among warring countries, because people have so much of confidence on our Prime Minister that they contact him for problems to be solved.
1: 4 श्रम संहिताएं लागू, मजदूरी संहिता 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्यदिशा संहिता 2020. 29 श्रम कानूनों का एकीकरण, सरल प्रक्रियाएं एवं एक समान परिभाषाएं और अनुपालन का दबाव कम, पारदर्शी, कुशल और डिजिटल प्रणाली. और फिर कुल मिला के कहें तो प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना जी.
0: एंड आई एम रियली ईगर टू सी आवर प्राइम मिनिस्टर कम एंड प्रेस दैट बटन, यू नो, द मनी विल गो टू 15 लाख पीपल इनटू देयर अकाउंट्स एंड दे विल बी गेटिंग द लेटर्स एंड it's going to be a wonderful experience. Preeti, in fact, I've never seen something like this, you know. Just at the press of a button, 15 lakh people, beneficiaries, get the employment letter. India's also gone ahead with the world. When we have advanced, they have gone digital and we have gone digital. So, we are going digital in every field. So, we should be proud of our country and The people are anxiously waiting over here. There are about 700 people, I think. Almost 700 people are seated over here. Right up

0: द टॉप
1: जितनी कैपेसिटी है पूरी भरी हुई है.
0: इट्स फुल, नॉट अ सिंगल सीट इज एम्प्टी. पीपल आर They're all job seekers, and most of these people, they'll be getting their jobs. They're all keeping their phones ready on the table. So as soon as the Prime Minister presses the button, it'll come to their phone that they've got their letter.
1: Hmm. An amount will be transferred.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: और कैमरामैन बिल्कुल तैयार इन ऐतिहासिक क्षणों को कैमरे में कैद करने के लिए. और आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन कह सकते हो, नहीं? आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन है और माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित होगी और रिमोट बटन प्रेस करके. और देश में रोजगार के नए मौके बढ़ाने और युवाओं को अच्छी नौकरियों से जोड़ना मुख्य उद्देश्य है, ये कह सकते हैं.
0: एंड सी द सपोर्ट फॉर एम्प्लॉयज, यू नो, दिस इज द एलिजिबिलिटी इज एस्टैब्लिशमेंट्स रजिस्टर्ड विद द ईपीएफओ दैट सक्सेसफुली जनरेट नेट न्यू एम्प्लॉयमेंट. टू क्वालिफाई स्मॉलर फर्म्स फ्यूअर देन 50 बेसलाइन वर्कर्स मस्ट hire at least 2 new employees, while larger firms 50 or more baseline workers must add at least 5 new employees. And the financial benefit is that the government pays companies up to rupees 3000 per month for each additional new hire whose salary is within the 1 lakh rupees threshold, provided they are retained for at least 6 months. And the duration of the incentives are covered for 2 years across all sectors. However, to heavily support the manufacturing sector, businesses operating in manufacturing receive extended incentives lasting up to 4 years. And then the payout channel is, payouts are routed straight into the employer's verified PAN-linked company bank account. That is very important. See, every account has to be linked with a PAN number. Yeah, and then registration processes, eligible entities can participate through designated digital channels. For employers, companies must visit the official Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana portal to finish a quick one-time institutional registration. And then for the employees, the first-time workers need to register and generate a universal account number, UAN, utilizing the face authentication technology built directly into the Umang app.
1: ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ और उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए. और ये बहुत महत्वपूर्ण है जी. इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार. जी. और फिलहाल भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं और कुछ एक पलों में मंच पर होंगे. और उनके साथ आएंगे श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय और श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे. और उनके साथ उनको स्कॉट करेंगी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुनानी और साथ में 2 युवा लाभार्थी भी होंगे.
0: एंड सी द ब्यूटी इज दैट द पर्सन विल बी गिविंग द बुके इज वन ऑफ द यंग बेनिफिशियरीज एंड ही विल बी सो हैप्पी इन हिज हार्ट दैट आई एम गेटिंग अ जॉब and our Prime Minister has given this job to me. So, and I'm telling you, it's really going to change the lives of these people, all these beneficiaries who are sitting over here in the plenary hall of Vigyan Bhavan. And they'll be dreaming, you know. I'm sure I'm going to come up. And I think they're all looking towards the door. I'm sure the Prime Minister is about to arrive. And once he arrives, then the other deliberations will take place. The Union Minister, he'll give the welcome address. And then the Prime Minister will be, there'll be a filming of the short film that will be filmed on the screen, and then after that he'll be clicking on the button, the magic button.
1: Magic button.
0: Yeah, that is the magic button, which will give jobs to about 15 lakh people across the country. And then of course the Prime Minister will give his speech, and I'm sure people are waiting for him to give his speech because his speech has always been very inspiring. The young people, you know, it has been a real inspiration for them. You know, he's been an inspiration to the country, and so many followers of Prime Minister, they all know that whatever he does is something, you know, means he wants to build India into one of the superpowers in the world.

0: bring the rank of a country to the top, and his dreams, you know, of making India a strong economic power, and is on the way, is on that route right now.
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है और ये इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा और जिससे उन्हें कार्यबल में शामिल होने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी और ये बहुत जरूरी भी होता है. अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रुपए का प्रोत्साहन मिलता है और इससे सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित किया जाता है और प्रोत्साहन भी मिलता है और आर्थिक विकास को गति देने में विनिर्माण के कार्यनीतिक महत्व को देखते हुए विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ताएं 4 वर्षों की अवधि के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र हैं, जबकि अन्य सभी सेक्टरों के नियोक्ता 2 वर्ष के लिए प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं.
0: And see the dais. How many bouquets are there? The Prime Minister will be sitting right in the middle. On the right, he'll be flanked by the Union Minister, and on the left, by the Minister of State. And the board behind, you know, it's a beautiful one. There's a screen on the board. On the plenary hall and the dais, just behind the dais, there's a beautiful board. And on that, the Prime Minister, the Rozgar Yojana, everything is given, all the details are given on that.
1: आर्थिक विकास में अगर हम बात करें तो ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए.
0: Yes, and this, you know, I want to tell you, in fact, I've seen over the years, I think this is the 12th year, he's completed 12 years of his rule as the Prime Minister of our country. And all these years, you know, his intention has always been to generate more and more employment, right? Just to remove this unemployment, reduce it to the max, minimum. Reduce the unemployment to the minimum so that more and more people are employed and they are able to overcome all the financial problems that they go through. And because through all these schemes, you know, our Prime Minister is helping out the people to see that they are self-sufficient, they are independently, they're financially independent. And very soon our Prime Minister will be coming in and people are getting ready. All are viewing towards the gate, towards the entrance to the plenary hall.
1: जो माननीय प्रधानमंत्री जी की युवा लाभार्थियों से बातचीत हो रही है जब वो लौट करके यहाँ आते हैं तो उनके अंदर जो उत्साह होगा उसे हम सब महसूस कर सकते हैं क्योंकि वो तो कभी कम नहीं होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ 1-to-1 बात करना ये एक प्राउड मोमेंट होता है. नहीं,
0: दैट्स ट्रू. एंड यू नो आई अटेंडेड वन ऑफ दीज डेज, यू नो, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर स्पोक टू द स्टूडेंट्स ऑल ओवर द कंट्री through the live telecast, you know. And you won't believe the way he encouraged the students. He said that don't worry, if you get low marks, it's not that everything is closed for you. Still, you've got a job, you've got something, you've got a future. Every person has a plan, a talent. God has given a talent in you, and he will see that you come up in your life. So he said that if low marks will not, it's not an end to anything. So that's why, you know, that's how he encourages. And students, I'm sure, you know, they go and write the exam with confidence. And here also these young people, these beneficiaries, they have come here with confidence, with the hope that our Prime Minister is helping us to get a job.
1: आपने जिक्र किया बच्चों का, तो मुझे याद आ गई परीक्षा पे चर्चा। तालकटोरा स्टेडियम कैसे भरा रहता था और बच्चे कितने उत्साह के साथ प्रश्न पूछते थे। और मुझे ऐसा लगता है कि जब वो बात कर लेते हैं तो उनमें ऐसी कोई बात होती ही नहीं कि हमारे लिए पढ़ना

0: एक बार जोरदार
1: तालियां हो जाए। देवियों और सज्जनों, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए।
0: और उनके साथ इस अवसर की शोभा और बढ़ा रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडव्य जी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की माननीय राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदला जी का।
1: आप सभी से सादर अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान ग्रहण करें।
0: मैं मन्नत भाटिया
1: और मैं जयवर्धन गोयल,
0: माय भारत वॉलंटियर्स, आप सभी का सादर स्वागत एवं अभिनंदन।
2: The Prime Minister has arrived. He has taken his seat on the dais.
0: प्रधानमंत्री जी, हम आपको सविनय सूचित करना चाहते हैं कि आज
2: flanked by the Union Minister on his right and by the Minister of State to his left.
3: और सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया और अब सब ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया।
1: अनुरोध करेंगे हमारे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बेनिफिशियरी सुश्री शिखामोनी डेका जी से कि वे पुष्प देकर मंच पर विराजमान हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां।
3: पुष्प से स्वागत किया माननीय प्रधानमंत्री जी का एक युवा लाभार्थी ने।
1: यह सम्मान का माध्यम है, यह आत्मविश्वास का आधार है और यह विकसित भारत के निर्माण की सबसे मजबूत नींवों में से एक है। यही प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का विजन है, यही रोजगार राष्ट्रीय समागम का संदेश है।
0: अब हम अनुरोध करते हैं माननीय श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडव्य जी से कि वो अपना स्वागत संबोधन दे।
2: And now the welcome remarks.
1: जोरदार तालियां हो जाएं।
2: श्री मनसुख मांडविया, the Minister for Labour and Employment. He walks to the podium to give a speech.
4: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि वितरण करने के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मेरी सहयोगी मंत्री आदरणीय शोभा करंदला जी, वीडियो कॉन्फ्रेंस से विभिन्न राज्यों से जुड़े आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्रीगण, राज्य के श्रम मंत्रीगण और सभी लाभार्थी भाई एवं बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है। नया भारत के निर्माण में आपकी विचार ने सोच भी बदली है और नए आयामों को भी आगे बढ़ाया है। और इसलिए एक समय था जो लेबर की बात करते थे, प्रो लेबर थे, उसको इंडस्ट्रीज के खिलाफ माना जाता था और जो इंडस्ट्रीज की बात करते थे उसको लेबर के खिलाफ माना जाता था। लेकिन आपकी सोच ने ये चरित्र को बदल दिया है। आज एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों को नेशनल बिल्डर के रूप में आपने परिभाषित करा है और दोनों गौरव महसूस कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से वेल्थ क्रिएटर को सम्मान करने की बात कही थी। उनके साथ आपने श्रमिक कल्याण के लिए और वर्कर के हितों को सुरक्षित करने के लिए 4 महत्वपूर्ण लेबर कोड भी लागू करा। पिछले ही वीक में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, दुनिया के 40 देशों ने भारत के लेबर कोड के प्रेजेंटेशन को देखा और उसको सराहा। वो बताते हैं कि आपने जो लेबर कोड बनाया है वो हमारे देश के श्रमिक के हित में है और देश के श्रमिक के कल्याण को पूरा करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके लेबर कोड आपके द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर की गारंटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा लागू करे गए लेबर कोड महिला और पुरुष दोनों को समान काम के लिए समान वेतन की

गारंटी देता है। देश में 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों को सोशल सिक्योरिटी की आपने गारंटी दी है। महिला वर्कर्स के हित के लिए एस्टेब्लिशमेंट में ट्रेज की भी आपने गारंटी दी है। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयर को एक साल बाद ही ग्रेजुएटी मिले उसकी भी आपने गारंटी दी है। जो पहले कोई वर्कर्स काम करते थे और 5 साल वो कंटिन्यूस काम करते थे तो ही ग्रेजुएटी का प्रावधान था, 40 साल से के अधिक उम्र वाले सभी हमारे एम्प्लॉइज को वर्ष में एक बार हेल्थ चेकअप करने की भी आपने गारंटी दी है। 12 साल में आपने डेवलपमेंट तो किया, उसके साथ भी आपने रोजगार निर्माण करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। सामान्यतः रोबस्ट इकोनॉमी का नियम है, कोई भी देश की इकोनॉमी 1% ग्रो करती है तो उनके साथ 1% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना वो आदर्श शासन व्यवस्था मानी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ सामने 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11 यानी कि 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। केवल ये फिगर नहीं है, उसके साथ जो एलाइन करते हैं हमारे देश की रिजर्व बैंक, जो रिजर्व बैंक आजादी के पहले बनी है, और 1980 से रिजर्व बैंक देश में कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेबर फोर्स की डिमांड, एनर्जी कंजप्शन, मटेरियल और सर्विस सेक्टर में जो गतिविधि हो रही है उसके डेटा को एनालिसिस करती है और उनके आधार पर क्लेम डेटा डिक्लेयर करती है। ये क्लेम डेटा एनालिसिस होता है 1980 से, और यही डेटा का जब हम विश्लेषण करें तो 2004 से 2014 एक दशक में केवल देश में 2.9 करोड़ 9 लाख जॉब क्रिएट हुए थे। और रिजर्व बैंक ने कहा कि 2014 से 2024 एक दशक में, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देश के युवाओं के लिए 17 करोड़ जॉब निर्माण करके देश के युवाओं को हाथ में काम दिया है, और उसका नतीजा है कि प्रधानमंत्री जी, 2014 के पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में 6% था, लेकिन यही आपका प्रयासों से आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.1% है, जो ग्लोबल एवरेज 4.8% है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जॉब भी निर्माण करा, आपने इंडस्ट्रीज को भी आगे बढ़ाया और उनके साथ आपने सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करी, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा भारत में 2014 के पहले 19% लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलती थी, यानी कि 25 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी के कवरेज में थे। आज आपके प्रयासों से 12 साल के बाद देश में 64.3% यानी कि 94 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी कवरेज में ऑलरेडी आए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी दूरंदेशी दृष्टि से आपने देश के युवाओं के हाथ में रोजगार आए। मेरे देश के कोई युवा प्रतिवर्ष 1 से 1.5 करोड़ युवा वर्कफोर्स में आते हैं जिसको जॉब चाहिए, और आप तो पहले से उसकी तैयारी करते हैं। आपने जब तीसरी बार भारत में सरकार बनाई और 2025 के बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी आपने देश के युवाओं के रोजगार के लिए भी सुनिश्चितता करी, और बजट में ही आपने प्रधानमंत्री पैकेज फॉर स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अनाउंस करा। ये पैकेज क्या था? 2 लाख करोड़ का ये पैकेज 5 साल में 4 करोड़ जॉब निर्माण के लिए आपने निश्चय करा, उसका ही नतीजा है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपया का आउटलेट है, जो 2014 के पहले की 20 साल की सरकार का लेबर मिनिस्ट्री का बजट का हिसाब करे तो भी 1 लाख करोड़ नहीं हो रहा है। मेरे देश के युवाओं के लिए, उसकी रोजगार की बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री जी आपने 1 लाख करोड़ रुपया का अनाउंसमेंट करके
साढ़े तीन करोड़

0: जो यही योजना से आपने सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना बनाई है, उसका फलस्वरूप आज देश के 15 लाख एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज दोनों को प्रोत्साहित करने के लिए आप 2400 करोड़ रुपया सभी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के अकाउंट में आज सुनिश्चित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम में आप उपस्थित रहे, हम सबका हौसला बढ़ाया, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं।
1: श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, सभी अतिथियों का विधिवत स्वागत किया आपने। और अब एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर, कुछ एक पलों में, है ना?
2: स्क्रीनिंग ऑफ अ शॉर्ट फिल्म ऑन द प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत रोजगार योजना।
3: देवियों और सज्जनों, अब हम आपको प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर आधारित एक विशेष फिल्म दिखाने जा रहे हैं, जो शब्दों को चेहरों में, जिंदगियों में और सच में बयां करती है।
4: भारत अपनी समृद्ध युवा शक्ति के साथ विश्व के सबसे अधिक युवा देशों में से एक है। तेजी से बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई या सर्विस सेक्टर हो, या फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते युवा धुरंधर, हमारे सामूहिक प्रयास भारत को ग्लोबल स्टेज पर नित नई ऊंचाई दे रहे हैं। इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए औपचारिक कार्यबल को कौशल विकास के साथ मजबूत करना और उद्योगों को अधिक भर्ती के लिए प्रोत्साहित करना विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की।
5: आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की योजना हम लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हो रही है।
4: इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई 2027 तक खुला रहेगा। इसका उद्देश्य 3,50,00,000 से अधिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। योजना में पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 1 महीने के वेतन के बराबर 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में दी जाती है। इसके लिए कम से कम 6 महीने लगातार रोजगार में बने रहना होगा। 1,00,000 रुपए तक वेतन वाले कर्मचारी ही इस योजना के पात्र होंगे। इसके साथ ही सरकार रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ता को भी प्रोत्साहित कर रही है। अब यदि कोई नियोक्ता नया रोजगार सृजित करता है तो उसे 1,00,000 तक की मासिक सैलरी वाले हर नए कर्मचारी के लिए 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ता को ये राशि 4 साल तक मिलेगी और इसका लाभ लेने हेतु नियोक्ता को ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होना तथा कर्मचारियों को भी ईपीएफ सदस्य बनाना अनिवार्य है। इससे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
6: हमारे व्यवसाय के विस्तार के लिए नई प्रतिभाओं को जोड़ना आवश्यक था। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ने अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहन दिया, जिससे हम अधिक युवाओं को अवसर दे सके। इससे हमारे व्यवसाय की उत्पादकता भी बढ़ी और रोजगार के नए अवसर भी बढ़े।
7: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत मिले लाभ और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम ने मुझे पैसे को बेहतर प्रबंध करना सिखाया। आज मैं अपने करियर को लेकर पहले से कहीं अधिक आश्वस्त हूँ।
4: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सिर्फ इंसेंटिव देने की योजना नहीं है, ये योजना है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नए अवसरों से जोड़ने की, युवाओं की रोजगार क्षमता और वित्तीय समझ बढ़ाने की। आज ये योजना रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता का अभियान बन चुकी है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार।
2: And that was a screening of a short film on the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana. And...

0: That was a short film. And now very shortly, the Prime Minister will be distributing the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana benefits to the beneficiaries. And the people are waiting anxiously, and the button is coming right in front. That is a remote control button. And the Prime Minister will be pressing the button. As soon as he presses it, well, about 15 lakh people all over the country will be getting their appointment letters, and they'll be getting the money. And the Prime Minister presses the button, and you can see the people cheering.
1: तालियों से स्वागत किया सबने इस बेहतरीन क्षण का और भारत के माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित हो गई।
2: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि डिस्पर्स करने के लिए। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की इंसेंटिव की इस इकाई से 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार मिला है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
0: What a time, what a moment. The Prime Minister just pressed the button and all the beneficiaries, they've got the benefits.
2: कृपया अपने अमूल्य विचारों से हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों की गूंज के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें।
1: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।
2: तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए।
1: डाइस पर
3: मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री मनसुख मांडविया जी, बहन शोभा जी, देश के विभिन्न हिस्सों के अलग अलग कार्यक्रमों में जुड़े, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी महानुभाव, और जैसा अभी मंच संचालक बता रहे थे कि 200 स्थान पे करीब 2 लाख लोग अभी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका भी दूर से ही सही लेकिन दिल से आप सबको मेरी शुभकामनाएं देता हूं। उद्योग जगत से भी जुड़े हुए बहुत सारे महानुभाव मैं आज देख रहा हूं यहां पर, और युवा साथियों का उत्साह तो ध्यान में आता ही आता है। इतनी बड़ी तादाद में आज यहां इस कार्यक्रम से जुड़े युवा साथियों में मुझे भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर दिखाई दे रही है। मैं आपसे कुछ ही घंटे पहले ही फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा से लौटा हूं। G7 में विकसित देशों के दिग्गज नेताओं से मिला हूं। दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है, भारत के टैलेंट, स्किल और पोटेंशियल की चर्चा सब दूर हो रही है। दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है, और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके, और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को

शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। साथियों, आमतौर पर योजनाएं या तो कर्मचारी के लिए बनती हैं या तो फिर उद्योगों के लिए बनती हैं, लेकिन ये एक योजना ऐसी है, इस योजना में भारत के सामर्थ्यवान मेरे युवा, समृद्ध युवा भविष्य की ओर और उद्योग विकास की ओर और इन दोनों को साथ लेकर चलती है। जो युवा अपनी पहली नौकरी शुरू करता है, सरकार उसके साथ खड़ी होती है और इसलिए उद्योगकार को भी लगता है कि अकेला मेरे यहां नहीं आया है, इसके पीछे पूरी सरकार आई है और इसके कारण ऐसे युवकों की तरफ देखने का उस उद्योगकार का भी नजरिया बदल जाता है। और जो संस्थान नए रोजगार का सृजन करता है, सरकार उनका भी उत्साह बढ़ाती है। हमारे यहां पहले कुछ नियम व्यवस्था ऐसी थी कि लोगों को बड़े होने में थोड़ा डर लगता है, यार बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये बंधनों में फंस जाऊंगा, तो उसको लगता था छोटा ही रहना अच्छा है और कभी बड़े होने की संभावना, उसको लगता है ऐसा करो एक दूसरा छोटा और कर दो। आज वो सोच बदली है, हर किसी को बड़ा बनने का हौसला मिलना चाहिए, उसकी उम्मीदों को पंख मिलने चाहिए और ये उद्योग को भी जरूरत होती है और इस योजना से वो द्वार भी खुला है। और यही इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है। अभी कुछ देर पहले मैं कुछ लाभार्थी नौजवानों के साथ बैठा था, उनके अनुभव में सुन रहा था। उसमें कुछ लोग वो थे जिनको पहली बार नौकरी मिली है और कुछ लोग वो थे जिन्होंने इस योजना के तहत अपने यहां कुछ लोगों को काम दिया है। मैं वाकई कहता हूं, इतना कॉन्फिडेंस था उन बच्चों में और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दुनिया जीत ली है। उनके सपने, उनका विश्वास, ये सचमुच में हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है, करीब 70 लाख फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को सोशल सिक्योरिटी का कवच भी मिला है, करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है। यह उनके उज्जवल भविष्य पर देश के विश्वास की अभिव्यक्ति है। साथियों, मुझे उतनी ही खुशी

उन संस्थानों के लिए भी है जिन्होंने हमारे इन नौजवानों को अवसर दिए, उनके अंदर भीते हुए सामर्थ्य को पहचाना। और इसलिए ये अवसर देने वाले भी उतने ही अभिनंदन के अधिकारी हैं। इन्हीं संस्थानों ने बीते महीनों में लाखों नौकरियों का सृजन किया है। और अभी मनसुख भाई जो आंकड़े बताते थे, मैं आशा करता हूं कि मीडिया के लोग इन आंकड़ों पर ध्यान करेंगे। देश के लोगों को खुशी की लहर छा जाएगी कि कितना बड़ा काम हो रहा है। ये आंकड़े और अनुभव यही बताता है कि जब सरकार

देश के लोगों को खुशी की लहर छा जाएगी कि इतना बड़ा काम हो रहा है। ये आंकड़े और अनुभव यही बताता है कि जब सरकार, युवा और उद्योग एक साथ आगे बढ़ते हैं तो रोजगार निर्माण की गति कई गुना बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इसी नए भारत की पहचान है। एक ऐसा भारत जहां युवा को अवसर मिले, उद्योग को प्रोत्साहन मिले और रोजगार निर्माण एक राष्ट्रीय अभियान बन जाए। साथियों, भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले। मेरा स्पष्ट मानना है भारत जैसे युवा देश में अवसरों के स्रोत जितने अधिक होंगे युवाओं के सपनों को उतनी ही अधिक उड़ान मिलेगी। इसी सोच के साथ बीते 12 वर्षों में रोजगार के हर रास्ते को मजबूत किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इनोवेशन तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिजिटल इकोनॉमी तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, हर क्षेत्र में नए अवसर तैयार किए गए हैं। मेक इन इंडिया अभियान, वोकल फॉर लोकल, लोकल को ग्लोबल ले जाने का अभियान, मिशन मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी योजनाएं देश में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही है। आज गाड़ियों से लेकर मेट्रो कोच, ट्रेन के डिब्बे और डिफेंस के साजो सामान तक अनेक सेक्टर में निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ये तभी हो पा रहा है क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं और इसमें काम करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की जो नीतियां रही हैं, जो निर्णय लिए गए हैं, उन्होंने देश में निरंतर रोजगार के नए सेक्टर्स बनाए हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश लाखों युवाओं का आधार बन रहा है। मुद्रा योजना के तहत 33 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता ने करोड़ों करोड़ युवाओं को अपना काम

शुरू करने का अवसर दिया है। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बन चुकी हैं। स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा जैसी पहलों ने छोटे उद्यमियों, रेहड़ी पटरी वालों और पारंपरिक कारीगरों को नई टेक्नोलॉजी दी है, नई आर्थिक सहायता दी है और नई ताकत से भर दिया है। मैं अभी जिन नौजवानों से बात कर रहा था उसमें एक नौजवान आईटीआई से निकल करके ड्रोन बनाने में लगे हैं, तो बड़े उमंग से बता रहे थे वो। मैं भी आपको ड्रोन सेक्टर का ही एक उदाहरण दूंगा। दवाइयों की सप्लाई हो या पेस्टिसाइड का छिड़काव, स्वामित्व योजना में ड्रोन से मैपिंग हो या फिर रक्षा क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग, ड्रोन्स का उपयोग देश में लगातार बढ़ रहा है और ड्रोन्स का ये बढ़ता हुआ उपयोग युवाओं को नई नौकरियां दे रहा है। वो नौजवान तो आईटीआई करके निकला है लेकिन वो कह रहा था कि वीडियो ड्रोन का मत देखो, खुद ड्रोन बनाना शुरू करो, बना लोगे, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा था। हमारी सरकार ने स्पेस सेक्टर को खोलने का जो निर्णय लिया उसका भी बड़ा लाभ युवाओं को मिला है। साथियों, पिछले दशक में डिजिटल इकोनॉमी ने भी अवसरों की एक नई दुनिया बनाई है। गिग इकोनॉमी हो, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी हो, कंटेंट क्रिएशन हो या टेक्नोलॉजी सर्विसेज, रोजगार के नए क्षेत्र तेजी से उभर रहे हैं। आज जिन अवसरों की कल्पना भी मुश्किल थी वे करोड़ों युवाओं की आय का माध्यम बन चुके हैं। यही बदलाव स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी दिखाई देता है। एक समय देश में लगभग 500 स्टार्टअप हुआ करते थे, आज 2 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप और वो भी देश के हर जिले में आपको स्टार्टअप नजर आएंगे। ये आंकड़े विश्वास देते हैं कि भारत का युवा आने वाले वर्षों में दुनिया की ग्रोथ, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का नेतृत्व करेगा। साथियों, आज दुनिया में हर कोई भारत के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित है, हर कोई भारत की युवा शक्ति के सामर्थ्य को लेकर के बहुत आश्वस्त है। आपने भी देखा होगा फ्रांस में भारत इनोवेट्स का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, एआई, स्पेस, ग्रीन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे कई क्षेत्रों में भारत के स्टार्टअप्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स, यानी मैं देख रहा था वो एक नई ताकत के रूप में उभर रहे हैं, वो एक साथ काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। आज भारत दुनिया के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है, ऐसे समझौते जो भारत के उद्योगों के लिए नए बाजार खोल रहे हैं, ऐसे समझौते जो भारत के प्रोफेशनल्स के लिए नई संभावनाएं बना रहे हैं। पिछले महीनों में भी यूरोप के अनेक देशों के साथ महत्वपूर्ण समझौते हुए।

हुए हैं। ये समझौते भी देश में लाखों की संख्या में नए रोजगार का बढ़ाने का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, दुनिया भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हो रही है और भारत भविष्य की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। दुनिया फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की ओर आगे बढ़ रही है और भारत अपने युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाने में जुटा है और यही भारत के युवाओं के लिए सबसे बड़ा अवसर है और हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत के रोजगार परिदृश्य में एक और बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अक्सर इसकी चर्चा कम होती है लेकिन विकसित भारत की यात्रा में इसका महत्व बहुत बड़ा है। ये परिवर्तन है रोजगार के साथ सुरक्षा और सम्मान को जोड़ने का। हमारी सोच सिक्योर एम्प्लॉयमेंट की है, हमारी सोच सोशल सिक्योरिटी फॉर एवरी वर्कर की है। इसलिए आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ईपीएफओ की व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया है, पेंशन व्यवस्था को भी सरल और सुलभ बनाया गया है, लाखों नए कर्मियों को हेल्थ इंश्योरेंस और सस्ते उपचार की व्यवस्था से भी जोड़ा गया है। साथियों, हमने श्रम सुधारों को भी इसी दृष्टि से आगे बढ़ाया है। नए लेबर कोड्स का उद्देश्य कामगारों को अधिक सुरक्षा, अधिक पारदर्शिता और अधिक अधिकार देना है। अपॉइंटमेंट लेटर को कानूनी मान्यता देना हो, फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को सम्मान सुविधाएं सुनिश्चित करना हो या फिर मिनिमम वेज के दायरे का विस्तार करना हो, हर प्रयास का उद्देश्य यही है कि श्रमिक का सम्मान और सुरक्षा दोनों मजबूत हो। साथियों, हमारी नारी शक्ति भी आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही है, इसलिए महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और अधिक अवसरों वाला वातावरण तैयार किया जा रहा है। नाइट शिफ्ट से जुड़े पुराने प्रतिबंधों में बदलाव हो, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा हो या सुरक्षित कार्यस्थल की व्यवस्था, हम महिलाओं की भागीदारी को और अधिक मजबूत कर रहे हैं। साथियों, आज यहां बड़ी संख्या में मेरे उद्योग जगत के साथी भी उपस्थित हैं। आप सबसे भी मेरा एक आग्रह है, 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के पास जाएंगे जिनके पास स्किल टैलेंट होगा, जिनके पास इनोवेशन होगा, जिनके पास क्वालिटी होगी। और आज भारत के पास इन तीनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने की अभूतपूर्व क्षमता है और इसलिए मैं भारत के उद्योग जगत से भी कहना चाहता हूं, आज जो अवसर हमारे सामने हैं उन्हें हमें पूरी शक्ति से अपनाना होगा, हमें नए बाजारों तक पहुंचना होगा, हमें नए उत्पाद बनाने होंगे, हमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, क्योंकि आज दुनिया भारत के लिए दरवाजे खोल रही है,
पहले खिड़की

भी खोलने नसीब नहीं था दोस्तों, आज दरवाजे खुल रहे हैं। भारत ने करीब 40 देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, हमें इसका भी पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। ये एग्रीमेंट्स नए बाजार बना रहे हैं, नए मार्केट्स को उपलब्ध करा रहे हैं, दुनिया में मेक इन इंडिया ब्रांड्स के लिए नए अवसर पैदा हो ही रहे हैं, और इसलिए हमें इन अवसरों को गंवाना नहीं है दोस्तों। साथियों, जब लक्ष्य बड़े होते हैं तो उपलब्धियां भी तो बड़ी होती हैं, जब सोच वैश्विक होती है तो सफलताएं भी, सीमाएं भी अपने आप विस्तृत हो ही जाती हैं। और इसलिए ट्रेनिंग, मेंटरशिप और इंटर्नशिप अब वैकल्पिक नहीं है, वो ये 21वीं सदी की आवश्यकता है। भारत के उद्योग जगत को अपने लिए स्किल्ड वर्कफोर्स को भी तैयार करना ही करना है, और भविष्य के लिए नए अवसर भी तैयार करने हैं, क्योंकि विकसित भारत का रास्ता केवल निवेश से नहीं बनेगा, वह टैलेंट, स्किल और इनोवेशन की शक्ति से बनने वाला है। और इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी कसौटी एक ही है, और मैं उद्योग जगत के साथियों को बार बार कह रहा हूं, इन सारी परिस्थितियों का फायदा लेने की एक सबसे बड़ी सफल जड़ी बूटी एक ही है, और वो जड़ी बूटी है क्वालिटी। शिक्षा की क्वालिटी, स्किल की क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, इवन पैकेजिंग की क्वालिटी। दुनिया में टिकना है तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मानकों पर खरा उतरना ही होगा। दुनिया में आगे बढ़ना है तो उत्कृष्टता को अपनी पहचान बनाना होगा। आज दुनिया भारत से बहुत अपेक्षाएं रखती है, लेकिन मुझे विश्वास है भारत का युवा उन अपेक्षाओं को पूरा ही नहीं करेगा, बल्कि उनसे भी आगे निकल करके दुनिया को दिखा देगा और डंके की चोट पर दिखाएगा। और यही विकसित भारत की शक्ति है, और यही मेरे नौजवान साथियों की, मेरे युवाओं की, उनके सामर्थ्य की, युवा शक्ति की पहचान है, यही उनका सामर्थ्य है। साथियों, सपने वही बड़े होते हैं जहां वो साकार होते हैं। एक सपने का पूरा होना उससे बड़े सपने का रास्ता खुलता है, और यही आज भारत में हो रहा है। मैं भारत के युवाओं की अधीरता समझता हूं, और मैं युवा शक्ति से एक ही बात कहूंगा, आपके सपने ही, मैं फिर कहता हूं मेरे नौजवान साथियों, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। कामयाबी की तरफ बढ़ता आपका हर कदम, ये मेरी भी प्रेरणा है। और हां, असफल होने पर भी आपको हताश होने की कोई जरूरत नहीं है, हर असफलता में हमें कुछ न कुछ तो सीखने को मिलता ही मिलता है। और मैं तो खेल जगत के लोगों को मैं हमेशा कहता हूं, जो खेल के मैदान में उतरते हैं ना, कोई हारता नहीं है, एक जीतता है तो दूसरा सीखता है।

0: हारता कोई नहीं है। युवा मन की एक ही कसौटी है जो असफलताओं से निरंतर नया सीखने का आदि हो, जो सपनों को सिद्ध करे और हर सिद्धि के बाद नए सपनों को जन्म दे। मुझे भारत की युवा शक्ति पर विश्वास है, मुझे भारत की उद्यमिता पर भरोसा है। इसी भरोसे के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विकसित भारत 2047 जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हिंदुस्तान विकसित होके रहेगा। ये हम सबका सपना भी है, हम सबका संकल्प भी है। और मैं मानता हूं दोस्तों, मेरे नौजवान साथी, हम अपनी आंखों से खुद देखेंगे, विकसित भारत खुद देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: What a fantastic speech by our Prime Minister.
2: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री।
1: Full stress on the youth of the country. And he says that they are the future pillars of our country and the country rests on their shoulders. That's why he has been putting so much of stress on the youth. And he said that their dreams is what my oath is. My oath is the fulfillment of your dreams.
3: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति एवं प्रेरक उद्बोधन ने देश के युवाओं में नए उत्साह और आत्मविश्वास का संचार किया है। और ये जो राशि आज हस्तांतरित हुई है, ये राशि युवाओं के परिश्रम का सम्मान है, ऐसा उन्होंने कहा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा कि आप सपने देखिए, उन्हें साकार करने का संकल्प हम लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना एंड्रू। और माननीय प्रधानमंत्री अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ विज्ञान भवन से प्रस्थान कर रहे हैं। इन ऐतिहासिक क्षणों को समेटे मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू, ओबी टीम इंचार्ज, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वीके तोमर, इंजीनियरिंग स्टाफ अशोक कुमार मिश्र, बाबूलाल मीणा और कार्यक्रम के ओवरऑल इंचार्ज प्रमोद कुमार के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूँ। नमस्कार।
4: FM 102 और साथ 103.6 MHz मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण है। हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, युवाओं और उद्योगों के एक साथ आगे बढ़ने से रोजगार निर्माण को गति मिलेगी। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त कल जारी की जाएगी। 9,44,00,000 से अधिक पात्र किसानों के खातों में लाभ राशि हस्तांतरित की जाएगी। राज्य सरकार ने सरकारी कार्मिकों के स्थानांतरण पर लगा प्रतिबंध हटाया। तृतीय श्रेणी शिक्षक और चिकित्सा विभाग में ट्रांसफर पर रोक रहेगी। और आरपीएससी ने एसआई भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने नए रोजगार सृजित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, साथ ही व्यवस्था में भी कई बदलाव किए हैं। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने साथ आगे बढ़ने से रोजगार निर्माण को गति मिलती है। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से पिछले एक दशक में शुरू की गई विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इन योजनाओं ने बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजना युवाओं और उद्योगों के

0: बीच मजबूत सेतु का काम कर रही है।
1: यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। इस योजना में भारत के सामर्थ्यवान मेरे युवा
2: समृद्ध
1: भारत के सामर्थ्यवान मेरे युवा समृद्ध युवा भविष्य की ओर और उद्योग विकास की ओर और इन दोनों को साथ लेकर चलती है।
0: प्रधानमंत्री ने युवाओं से संवाद भी किया। वहीं देशभर में 200 स्थानों पर समानांतर क्षेत्रीय कार्यक्रम हुए। प्रदेश में ये कार्यक्रम जयपुर सहित जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अलवर, पाली और भीलवाड़ा में आयोजित हुआ। जयपुर के सीतापुरा में हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त कल जारी की जाएगी। इसके माध्यम से 9 करोड़ 44 लाख से अधिक पात्र किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। इस किस्त के जरिए 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी कार्यक्रम के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इसमें अधिक से अधिक किसानों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 2,000 रुपए की 3 किस्तों में कुल 6,000 रुपए सालाना की आर्थिक सहायता दी जाती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कानूनी प्रक्रिया के हर चरण में प्रौद्योगिकी को प्रभावी ढंग से एकीकृत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को प्राप्त करने का उपयुक्त साधन बनाया जाए। आज नई दिल्ली में 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली का जिक्र किया। श्री शाह ने कहा कि ऐसे कई मामले हैं जहां इस प्रणाली ने सबसे जटिल मामलों को भी सरल बनाने में बहुत मदद की है। वर्तमान में इसकी क्षमता का केवल 10% ही उपयोग होता है। गृह मंत्री ने कहा कि ये प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है, लेकिन ये तभी सफल हो सकती है जब व्यापक डेटा लगातार उत्पन्न किया जाए।
3: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान के तहत 3 महीनों में लगभग 50 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। ये उपलब्धि युवा जीवन की सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि अभियान में तेजी आई है। मध्य प्रदेश और गुजरात में 100% टीकाकरण हो चुका है। मंत्रालय ने कहा कि ये प्रगति भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की मजबूत और देशभर में अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों के अथक प्रयासों को उजागर करती है। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज विधानसभा परिसर में सामूहिक योग कार्यक्रम योगोत्सव का आयोजन हुआ। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के नेतृत्व में हुए इस योगाभ्यास में विधायक, विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर श्री देवनानी ने कहा कि योग स्वस्थ शरीर, संतुलित मन और सकारात्मक जीवन दृष्टि प्रदान करता है, साथ ही शारीरिक समन्वय, मानसिक एकाग्रता और आत्मविश्वास को बढ़ाता है।
4: योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहीं, बल्कि शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा चारों का समन्वित रूप से ठीक रखने के लिए हम इस योग को करते हैं। और योग से एक नई ऊर्जा का भी संचरण होता है। इसको हम केवल एक दिन न करके इसको अपने दैनंदिन जीवन का अंग बनाएं, ताकि हम लोग निरोगी रह सके, नई ऊर्जा के साथ देश और समाज के भी उत्थान में अपनी पूरी एनर्जी का हम कंट्रीब्यूट कर सकें।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी आज अपने आवास पर विश्व योगासन चैंपियनशिप के पदक विजेताओं के साथ योगाभ्यास किया। राज्य में अन्य स्थानों पर हो रहे योग कार्यक्रमों के तहत आज जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान परिसर में जुम्बा रैली का आयोजन

0: किया गया। इसके बाद संस्थान की ओर से हवा महल तक योगा रैली निकाली गई। इसमें संस्थान के शिक्षकों और विद्यार्थियों ने भाग लिया। उधर पाली में आयुर्वेद विभाग की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक योगाभ्यास करवाया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगी रोक को अस्थायी रूप से हटा दिया है। प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार आज से अगले महीने की 5 तारीख तक के लिए तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटाया गया है। इस अवधि में राज्य सरकार के विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण किए जा सकेंगे। हालांकि शिक्षा विभाग की तृतीय श्रेणी वेतन श्रृंखला के अध्यापकों के लिए स्थानांतरण प्रतिबंध पर फिलहाल यथावत रहेगा। इसके साथ ही वर्षा काल में संभावित परिस्थितियों को देखते हुए चिकित्सा विभाग के कार्मिकों पर भी स्थानांतरण प्रतिबंध अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगा। आदेशों में कहा गया है कि गंभीर बीमारी से पीड़ित कार्मिकों और पति पत्नी के मामलों में प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज राज्य उन्नति की बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई बैठक में विभिन्न परियोजनाओं, योजनाओं और परिवेदनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए, साथ ही अन्य कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि जवाबदेही तय करते हुए लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे होने के अवसर पर आज जयपुर के भामाशाह टेक्नो हब में सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास, अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा की गई। इस सेमिनार में वरिष्ठ अधिकारियों ने युवा उद्यमियों से संवाद किया। कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अतीश कुमार सिंह ने सरकार के 12 वर्ष और स्टार्टअप इंडिया पहल के 10 वर्ष विषय पर विचार रखे। उन्होंने कहा कि राजस्थान ने नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। कार्यक्रम के बाद उन्होंने मीडिया से भी संवाद किया। श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश में 8,000 से ज्यादा स्टार्टअप हैं और यहां के युवा एक से बढ़कर एक नए आइडियाज पर काम कर रहे हैं।
1: राजस्थान में करीब 8,000 के करीब स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं, रिकग्नाइज हैं जो DPIIT से। पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए राजस्थान सरकार ने यहाँ पे कोवर्किंग स्पेस है, यहाँ पे टिंकरिंग लैब्स है, यहाँ पे इंटरनेट है, यहाँ पे 5G कनेक्टिविटी है, यहाँ पे स्लीपिंग पॉड्स तक हैं। तो यहाँ पे बहुत ही एक बढ़िया किस्म का इंक्यूबेशन सेंटर बना रखा है। आई थिंक इट्स ग्रेट फॉर द स्टार्टअप एंड इनोवेटिंग पीपल ऑफ द स्टेट।
0: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आज SI भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि इसमें 20,798 अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चयन हुआ है। इन अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक जयपुर द्वारा समय पर सूचित कर दिया जाएगा। इन अभ्यर्थियों की पात्रता संबंधी जांच साक्षात्कार के समय की जाएगी। आयोग ने कहा है कि अभ्यर्थी ये सुनिश्चित कर लें कि वे वर्तमान नियमों के तहत पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं या नहीं। गौरतलब है कि 1,086 पदों के लिए ये लिखित परीक्षा 5 और 6 अप्रैल को आयोजित की गई थी। जयपुर पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर निगरानी और कार्रवाई को और सख्त कर दिया है। पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल के निर्देश पर शहर के 15 स्थानों पर लगे 47 कैमरों के माध्यम से वाहन चालकों पर ऑनलाइन निगरानी रखी जा रही है। पुलिस उपायुक्त यातायात योगेश गोयल ने बताया कि तेज गति से वाहन चलाने और लाल बत्ती का उल्लंघन करने जैसे मामलों में नियमित ई चालान जारी किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने प्रोबेशन पीरियड वाले राज्य कर्मचारियों को भी राज्य बीमा योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। विभाग द्वारा जारी प्रावधानों के अनुसार इन कर्मचारियों के पारिश्रमिक से भी राज्य बीमा प्रीमियम के रूप में हर महीने 800 रूपये की कटौती की जाएगी। ये व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। विभाग के संयुक्त निदेशक प्रहलाद कुमार मीणा ने बताया कि इस निर्णय से कर्मचारियों को सेवा के प्रारंभिक चरण से ही सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय संरक्षण उपलब्ध हो सकेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, युवाओं और उद्योग के एक साथ आगे बढ़ने से रोजगार निर्माण को गति मिलेगी। पीएम के

0: किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त कल जारी की जाएगी। 9,44,00,000 से अधिक पात्र किसानों के खातों में लाभ राशि हस्तांतरित की जाएगी। राज्य सरकार ने सरकारी कार्मिकों के स्थानांतरण पर लगा प्रतिबंध हटाया। तृतीय श्रेणी शिक्षक और चिकित्सा विभाग में ट्रांसफर पर रोक रहेगी। और आरपीएससी ने एसआई भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से बांसवाड़ा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख राजेश सोनी ने तैयार किया है। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार बांसवाड़ा जिले में ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिला कलेक्टर डॉ. इंद्रजीत यादव ने कुशलगढ़ पंचायत समिति की बड़वास, छोटी, निशानावट और टिमेड़ा बड़ा ग्राम पंचायतों में आयोजित शिविरों का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को प्रकरणों का समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में भी शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में लोगों को विभिन्न विभागों की योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आयुर्वेद विभाग के तत्वावधान में बांसवाड़ा शहर में जागरूकता रैली निकाली गई। ये रैली चंद्रपोल गेट से शुरू हुई। जिला परिवहन अधिकारी पंकज शर्मा और आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक डॉ. राजेश दत्त पांडे ने रैली को रवाना किया। इसमें स्काउट और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चिकित्सा विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. खुशपाल सिंह राठौड़ के निर्देश पर जिला प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार भाबूर ने तलवाड़ा ब्लॉक का दौरा किया। उन्होंने चित्रा डूंगरी आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया और एएनएम आशा सहयोगिनियों तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने और सभी पात्र लोगों तक सेवाएं पहुंचाने के निर्देश दिए। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं तथा उपलब्धियों पर आधारित 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन सूचना केंद्र बांसवाड़ा में किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन जिला कलेक्टर डॉ. इंद्रजीत यादव, पूर्व मंत्री धन सिंह रावत और समाजसेवी पूंजीलाल गायरी ने किया। प्रदर्शनी में विभिन्न योजनाओं की जानकारी आमजन को दी गई। जिला कलेक्टर ने छोटी सरवन पंचायत समिति क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों का दौरा कर पेयजल व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर हैंडपंपों, टैंकरों और जल स्रोतों की स्थिति की जानकारी ली। जिन क्षेत्रों में भूजल स्तर कम होने से समस्या सामने आई है, वहां टैंकरों के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। खराब हैंडपंपों की मरम्मत भी कराई गई है। जिला प्रशासन, महिला अधिकारिता विभाग, महिला और बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में नारी चौपाल लगाई गई। कार्यक्रम में लाडो प्रोत्साहन योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की लाभार्थी महिलाओं को सहायता राशि के चेक बांटे गए। बांसवाड़ा में युवा संबल मेले का आयोजन भी किया गया। इसमें जिले के दूर दराज के क्षेत्रों से आए 812 युवाओं ने भाग लिया। इनमें से 431 युवाओं का प्रारंभिक चयन किया गया, जबकि 174 युवाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण के लिए चुना गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कृषि विभाग ने आत्मा प्रशिक्षण हॉल में प्राकृतिक खेती कार्यशाला आयोजित की। किसानों को प्राकृतिक खेती और राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की जानकारी दी गई। इसके अलावा जिले की सभी ग्राम पंचायतों में भी प्राकृतिक खेती विषय पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें प्रगतिशील किसानों, स्वयंसेवी संस्थाओं और किसान उत्पादक संगठनों का सहयोग लिया गया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का जिला स्तरीय समापन समारोह जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। अभियान के दौरान जिले में जल संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी प्रस्तुत की गई। अधिकारियों ने लोगों को वर्षा जल संचयन और जल स्रोतों के संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जिले की 9 पंचायत समितियों में चित्रकला, निबंध और वाद विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। इनमें लगभग 450 विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यार्थियों ने जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। जनजातीय क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को प्रशिक्षण देने के लिए खेल स्टेडियम बांसवाड़ा में 6 जून से 26 जून तक आवासीय खेल प्रशिक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं। शिविर में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और प्रतापगढ़ जिलों के 262 खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं। इनमें 120 बालिकाएं और 142 बालक शामिल हैं। खिलाड़ियों को वॉलीबॉल, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, कबड्डी, हॉकी, खो खो और

0: फुटबॉल, हैंडबॉल तथा बास्केटबॉल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बांसवाड़ा जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो, नौजवान और उद्योगन एक सागे आगे बढ़वाऊं, नौकरी धंधारा मौका बनबारी गति बधैला। पीएम किसान सम्मान निधि री 23वीं किस्त काल जारी करी जावेला। 9,44,00,000 बत्ता पात्र किसाना रा खाता माए रकम भेजी जावेला। राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों रा तबादला माथे रोक हटाई। थर्ड ग्रेड अध्यापकों रा और चिकित्सा विभाग माए तबादला माथे रोक रहवेला। और आरपीएससी एसआई भर्ती 2025 री लिखित परीक्षा रो नतीजो जारी कीनो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि हमारा राज माए नौकरी धंधा रा नुआ मौका बनावन सारू कई योजनावां चलाई ची है और व्यवस्था माए जरूरी बदलाव करी चिया है। प्रधानमंत्री पीएम विकसित भारत रोजगार योजना रा तहत आज करीब 2,400 करोड़ रूपया री रकम जारी कीनी। ई मौके श्री मोदी कहो कि नौजवाना और उद्योगों रे एक सागे आगे बढ़वाऊं, नौकरी धंधा रा मौका बधे है। वह केंद्र सरकार का न्यू लाडला 10 साल में चलाई जी न्यारी न्यारी योजनावां रो जिक्र करता था का कहो के ए योजनावां मोटी तादाद में नौकरी धंधा रा मौका बनाया। प्रधानमंत्री कहो के आ योजना नौजवाना और उद्योगों बीच मजबूत पुल रो काम कर रही है।
2: ये युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। इस योजना में भारत के सामर्थ्यवान मेरे युवा, समृद्ध युवा भविष्य की ओर और उद्योग विकास की ओर, और इन दोनों को साथ लेकर चलती है।
1: प्रधानमंत्री नौजवाना सागे बातचीत कीनी। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अलवर, पाली और भीलवाड़ा समेत आखा देश माए 200 ठोड़ा क्षेत्रीय कार्यक्रम ही राखी चिया। जयपुर माए फिया राज्य स्तर रा कार्यक्रम माए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ही शिरकत कीनी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि री 23वीं किस्त काल जारी करी जावेला। इन जरिए 9,44,00,000 बत्ता पात्र किसाना रा खाता माए 18,880 करोड़ रूपये बत्ती रकम भेजी जावेला। प्रदेश रा न्यारा न्यारा जिला में आई ई कार्यक्रम सारू तैयारियां चल रही है। पीएम किसान सम्मान निधि रा तहत किसाना ने हर साल 2,000 रूपया री 3 किस्ता माए कुल 6,000 रूपया री माली मदद दी जावे है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कानूनी प्रक्रिया रा हर दौर माए प्रौद्योगिकी ने असरदार तरीकों काम लेवन री जरूरत माथे जोर दिनो है। वे आज नई दिल्ली माए 26वां अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन 2026 माए बोल रहा है। गृह मंत्री राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली रो जिक्र करता था का कहो कि आपराधिक न्याय प्रणाली ने देश रा हर रहवासी ने संविधान माए दिया जे हक हासिल करण रो उपयुक्त जरियो बनावन रो भगत आग्यो है। श्री शाह कहो कि आ प्रणाली कई मुश्किल मामला नई आसान बनावन माए घनी मदद कीनी है। गृह मंत्री कहो कि फिलहाल इरा बूता रो केवल 10% ही काम लियो जा रियो है। श्री शाह कहो कि आ प्रणाली अपराधियां रे पिछाण करण माए घनी असरदार है।
3: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
1: 21 जून ने मनाया जावन वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रा सिलसिला में आज विधानसभा परिसर में योग कार्यक्रम रखी चियो। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी री अगुवाई में करी जाए ई योगाभ्यास में विधायक, विधानसभा सचिवालय रा अहलकार और कर्मचारी शामिल फिया। ई मौका देवनानी कहो कि योग स्वस्थ

0: शरीर संतुलित मन और सकारात्मक जीवन रो नजरियो बतावे है व सगलाऊ योग ने रोजमर्रा रो हिस्सो बनावन रे अरज कीनी।
1: योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहीं बल्कि शरीर मन बुद्धि और आत्मा चारों का समन्वित रूप से ठीक रखने के लिए हम इस योग को करते हैं और योग से एक नई ऊर्जा का भी संचरण होता है। इसको हम केवल एक दिन न करके इसको अपने दैनंदिन जीवन का अंग बनाएं ताकि हम लोग निरोगी रह सके, नई ऊर्जा के साथ देश और समाज के भी उत्थान में अपनी पूरी एनर्जी का हम कंट्रीब्यूट कर सके।
0: मुख्यमंत्री बचनलाल शर्माई आज वारा रहवास में थे विश्व योगासन चैंपियनशिप में तमगा जीतन वाला सागे योगाभ्यास कीनो। इस आगे राज्य में चल रहा योग कार्यक्रम तहत जयपुर रा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान परिसर में जुम्बा रैली निकाली ची। इन पाछे संस्थान रा शिक्षक और विद्यार्थियों री ओरों हवा महल ताई योग रैली निकाली ची। पाली में आयुर्वेद विभाग री ओरों सामूहिक योगाभ्यास करवाई चियो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रे मौके भारतीय वायुसेना देशभर में योग सत्र राखेला। रक्षा मंत्रालय रे मुजब वायुसेना रा कर्मचारी वाना परिवार वाला सागे योग सत्र में शामिल भेला। वहां सागे स्कूली बच्चा और एनसीसी कैडेटी आखा देश में न्यारा न्यारा वायुसेना टेसना माथे रखा जावन वाला योग सत्र में शिरकत करेला। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। राज्य सरकार सरकारी अहलकारा और कर्मचारियों का तबादला माथे रोक फिलहाल हटा देनी है। प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग री ओर जारी हुक्म रे मुजब 5 जुलाई ताई तबादला कराया जा सकेला। हालांकि शिक्षा विभाग रा थर्ड ग्रेड अध्यापकों का तबादला फिलहाल नहीं कराया जावेला। इस आगे चौमासा में बीमारियों ना पसारा री शंका न ध्यान रखता थका चिकित्सा विभाग में तबादला माथे रोक रहवेला। हुक्म रे मुजब घना मांदा कर्मचारियों और लोग लुगाई रा मामला माथे खास ध्यान दियो जावेला। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग रा अतिरिक्त सचिव अतीश कुमार सिंह नवाचार और उद्यमिता हलकाओं जुड़िया खास लोगों सागे आज जयपुर रा भामाशाह टेक्नो हब में बातचीत कीनी। इन दौरान राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम रा विकास मौका और चुनौतियां बारा में चर्चा करी ची। कार्यक्रम में श्री सिंह सरकार के 12 वर्ष और स्टार्टअप इंडिया पहल के 10 वर्ष मुद्दा माथे चर्चा करता थका कहो के राजस्थान नवाचार और उद्यमिता ने बढ़ावो देवन में खास काम कीनो है व स्टार्टअप इकोसिस्टम रो फायदो मोटा शहरां सागे दूर राजिना और समुदायां ताई पुगावन माथे जोर दीनो। कार्यक्रम पाछे खबर नवीसा सागे बातचीत करता था कांशी सिंह कहो के प्रदेश में 8000 बत्ता स्टार्टअप है और नौजवान नुवी नुवी जुगत लगा रहा है। वह कहो के स्टार्टअप रा मामला माए राजस्थान देश रा अगाड़ी राज्य माए शामिल है।
2: राजस्थान में करीब 8000 के करीब स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड है, रिकग्नाइज है जो DPIIT से। पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए राजस्थान सरकार ने यहाँ पे कोवर्किंग स्पेस है, यहाँ पे टिंकरिंग लैब्स है, यहाँ पे इंटरनेट है, यहाँ पे 5G कनेक्टिविटी है, यहाँ पे स्लीपिंग पॉड्स तक है। तो यहाँ पे बहुत ही एक बढ़िया किस्म का इंक्यूबेशन सेंटर बना रखा है। आई थिंक इट्स ग्रेट फॉर द स्टार्टअप एंड इनोवेटिंग पीपल ऑफ द स्टेट।
0: राजस्थान लोक सेवा आयोग आज SI भर्ती 2025 री लिखित परीक्षा रा नतीजा रो ऐलान कर दिनो। आयोग रा सचिव राम न्यास मेहता बतायो के 20,798 उम्मीदवार शारीरिक दक्षता परीक्षा सारू पास करी चिया है। पास व्या उम्मीदवार ने शारीरिक दक्षता परीक्षा सारू जानकारी देती जावेला। आ उम्मीदवार री पात्रता संबंधी जांच इंटरव्यू री भगत करी जावेला। ध्यान जोग है कि 1086 ओहदा माथे भर्ती सारू आ लिखित परीक्षा 5 और 6 अप्रैल 2026 ने ली री ची ही। जयपुर पुलिस यातायात नियम तोड़बा वाला ने खिलाफ निगरानी और कार्रवाई और कड़ी करती नी है। शहर में 15 ठोड़ा लगाई जिया 47 कैमरा रे जरिए वाहन चलावन वाला माथे ऑनलाइन तरीका निगरानी रखी जा रही है। यातायात पुलिस रा उपायुक्त योगेश गोयल बतायो कि तेज गति वाहन चलावन और लाल बत्ती पार करन वाला रा खिलाफ लगातार ई चालान जारी करिया जा रहा है। तजमाई प्रोबेशन पीरियड वाला सरकारी कर्मचारियां नहीं राज्य बीमा योजना रो फायदो दियो चावेला बीमार प्रावधान

0: निधि विभाग कानून मिली जानकारी रे मुजब आ कर्मचारियां रे तनख्वाह हुई राज्य बीमा प्रीमियम रातौरों हर महीना 800 रुपये रे कटौती करी जावेला। आ व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 हूँ लागू मानी जावेला। रेलवे जोधपुर चेन्नई बीच हर सप्ताह खास रेलगाड़ी चलावन रो फैसलो किन्नो है। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन बतायो कि आ गाड़ी 27 जून नु 25 जुलाई ताई हर थावर न जोधपुर रवाना वेर सोमवार सिंजा चेन्नई पुगेला। वापसी माए आ गाड़ी 30 जून नु 28 जुलाई ताई हर मंगलवार न चेन्नई रवाना वेर गुरुवार न जोधपुर पुगेला। आगाड़ी जयपुर सवाई माधोपुर भोपाल नागपुर और विजयवाड़ा समेत कई खास स्टेशन माथे रुकेला। राज्य में अब अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग रा विद्यार्थियों सारू छात्रवृत्ति री योजना वारा तहत अर्जी देती बगत निवास प्रमाण पत्र देवन री जरूरत नहीं रहेला। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग रे मुजब इन फैसला रो मकसद विद्यार्थियों सारू अर्जी देवन री प्रक्रिया ने आसान बनावनो है। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग रा उम्मीदवारा सारू प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनावां रो हर साल करीब 1,20,00,000 विद्यार्थियों ने फायदो मिला है। हाल ताई वजीफा सारू निवास प्रमाण पत्र जमा कराउनो जरूरी हो। आखिर माए खास समाचार एक फेर सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो नौजवाना और उद्योगों रे एक सागे आगे बढ़वाऊ नौकरी धंधारा मौका बनवारी गति बधैला। पीएम किसान सम्मान निधि री 23वीं किस्त काल जारी करी जावेला। 9,44,00,000 बत्ता पात्र किसाना रा खाता माए रकम भेजी जावेला। राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों रा तबादला माथे रोक हटाई। थर्ड ग्रेड अध्यापकों रा और चिकित्सा विभाग माए तबादला माथे रोक रहवेला। आरपीएससी एसआई भर्ती 2025 री लिखित परीक्षा रो नतीजो जारी कीनो। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार यार कोई है।
1: एफएम 102 और साथ 103.6 मेगाहर्ट्ज मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण है। आइए श्रोताओं सुनते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज कोटा। किसान भाइयों और बहनों, सभी फसलों को रोगों से बचाने के लिए ट्राइकोडर्मा फफूंद नाशक का प्रयोग करें। इसे विभिन्न प्रकार की फसलों जैसे चना, मसूर, मूंग, उड़द, मूंगफली, मिर्च, टमाटर और आलू में लगने वाले बीज जनित एवं भूमि जनित उकटा, जड़ गलन, तना गलन, अंकुर गलन, कंद सड़न आदि रोगों के प्रबंधन में प्रयोग किया जाता है। साथ ही किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा से बीजोपचार, कंद उपचार, नर्सरी उपचार करें। ये पौधे में रोग कारकों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता की क्रिया विधि को सक्रिय करता है। ये मृदा में कार्बनिक पदार्थों की अपघटन की दर बढ़ाता है। साथ ही किसान भाइयों, बीज और पौध उपचार का कार्य छायादार सुरक्षित स्थान पर करें। ट्राइकोडर्मा के साथ अन्य कवकनाशी रसायनों का प्रयोग न करें।
1: राम राम जी, राम राम। चौपाल सुन वाला संदय कृषाण भयार बेण्या के तई श्रवण भाई की घनी घनी राम राम। भाई बनाऊ, खूब सारी बातें, खूब सारो आछू आछू संगीत और जानकारियां लेर आपन चौपाल में रोजनाई श्याम के साथ बजा मिला। घनी सारी बातें हो।

0: या जो समस्या च या जो संभावना च वो यहाँ कोई ना,
1: मधुमक्खी के साथ या कोई नहीं, क्योंकि अगर हर किसी की भी हवा चलेगी तो मधुमक्खी अंदर आ जाओगी,
0: बिल्कुल
1: बाहर न रहेगी,
0: सुरक्षित हो जाओगी,
1: प्रकृति से सुरक्षा खुद की हुआ खुद ही करे जो अपने काई न करना।
0: बहुत अच्छी बात है। तो देखो कतनो बढ़िया काम धंधो छे, और जाके पास खेती छे वहाँ के लेकर तो और भी बढ़िया बात छे कि भाई अपना ही जो खेत छे वहाँ पे वो बक्सा लगा सके
1: नहीं, पर यूं चाहिए मैं अगर भूमिहीन किसान भी होगा ना वो भी लगा सके छे, क्योंकि मधुमक्खियां उड़ जाओगी तो वह तो कहां पे भी 3 किलोमीटर था जहां भी फसल होगी।
0: अच्छा, वहां

0: पर यूं चाहिए मैं, अगर भूमिहीन किसान भी होगा ना वो भी लगा सकता है, क्योंकि मतलब मैं क्या ऑर्डर जाओगी तो वह तो कहाँ पे भी 3 किलोमीटर था, जहाँ भी फसल होगी वहां से जाओगी, वहां तक जाओगी मकरंद लेर आ जाओगी, क्योंकि वो या न देखेगी कहीं ओके तो अपना धनी कुछ दूसरा कुछ फसल मिलेगी वहां पर चल जाओगी। और एक और बात है कि जी फसल पर जाओगे ना वो भी यू ना कर सके भाई मारी मारा खेत में आई जो मैं क्या बोल पशु तो कोई खेत में चल जाओ तुमको पाचा पाचा आ जाओ मारा खेत में आ गयो तो जिनके पास जमीन कोई ना वो भी कर सके छे और बढ़िया मुनाफा कमा सके।
1: डॉक्टर साहब बाबा आपने की कि भाई जैसे कोई को पशु कोई का दूसरा का खेत में चल जाओ या खुद को पशु खुद का ही खेत में चल जाओ तो वो तो नुकसान कर रही होगो।
0: हाँ।
1: तो मधुमक्खी पालन का क्षेत्र में ऐसी कोई संभावना तो कोई ना के मतलब छे अगर मक्खियां कहीं अपना खेता में जा रही छे और वहां से जैसे मकरंद लेर आ रही छे तो अपनी फसलों का कोई नुकसान वाली स्थिति तो कोना
0: नहीं कतई नुकसान कोई नहीं। देखो सर उन भाई पहले कहीं से लोग भ्रांति है जब मधुमक्खी या जो एपिस मेलिफेरा चाहिए या अटी अड़ी पाल वाला गया चाहिए शुरुआत में तो लोग भ्रांति ची कही भी एक कीड़ो छो तो मैं फसल नुकसान कर रही होगा
1: जी बिल्कुल।
0: और मैंने भी यहाँ कृषि अनुसंधान केंद्र पर प्रैक्टिकल कर देखा है फसल में यह नुकसान न करे बल्कि परागण करे और फसल में उपज बढ़ावे
1: क्योंकि
0: पोलिनेशन को एक बढ़िया साधन चाहिए
1: जी। एक फोन से बात करा चाहे अपन। हेलो
2: नमस्कार राम राम।
1: हाँ राम राम साहब कई नाम आपको कहाँ से बोल रहे थे?
2: पिंटू बोल रहे कोटा से
1: जी। पिंटू जी बहुत बहुत स्वागत है आपको चौपाल कार्यक्रम में। कई प्रश्न पूछबो चाह रहा मधुमक्खी पालन से जुड़ी हुई हो?
2: मधुमक्खी पालन को जैसे आपनो आज विषय है ना
1: जी
2: तो यू पूछबो चाहूंगा कि जैसे आपने एक खेत में कितना बॉक्स लगाओ और कई इको अर्निंग को सोर्स है आपने?
1: अच्छा अच्छा
2: मधुमक्खियों को
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब आपको
0: देखो ये सोर्स को मतलब यूं एक खेत को मतलब तो जगह एक बक्सा ही आपने रखा ना तो 3-4 फीट की दूरी पर रखा चा तो आपने देख लिया कि आपने पास जितना बक्सा चाहे वो हिसाब से जगह आपने पास होनी चाहिए 3-4 फीट की दूरी एक बक्सा का ही माना चाहे आपने क्योंकि उसको कम दूरी रखना ना तो मक्खियां आओगी ना तो वो फिर एक दूसरा में घुसने की कोशिश करेगी।
2: अच्छा।
0: और ज्यादा दूरी रखना तो फिर वो फालतू वेस्टेज जगह को क्योंकि ज्यादा खराब
1: बिल्कुल
0: जगह खराब होगी।
1: सही बात है।
0: तो और इमा अर्नी को जो साधन वो तो यू है एक मधुमक्खी की कॉलोनी 30 किलो का लगभग शहद बना दीजिए कम से कम 3-4 एक महीना में तो कब को मतलब जो अपना पीसा लगे चे वो वापस हो जाओ चे
1: जी।
2: तो आपन जैसा एक बीघा आपने मान लो
0: आपने मैंने की ना आपके पास तो भला एक बीघा भी मत हो जमीन भूमिहीन किसान भी कर सके चे क्योंकि मक्खियां 3 किलोमीटर का एरिया में जहाँ भी फूल होगा ना वहां से ले आ जाओगी आपने खुद की जमीन हो वो जरूरी कोई ना क्योंकि मक्खिया मैंने किया ना ये ना देखे कि भाई आपना धनी की तो भाई चलना चरवा
1: बिल्कुल
2: सही से बात। तो जैसा बॉक्स लगाया आपने कि 4 महीना में कितनी अर्निंग हो सके
0: 30 किलो शायद बनोगे और वो कम से कम 125 से 150 रुपए किलो भी बकोगे तो 4000 रुपए को शायद बिक जाओगे आपको 4-1 महीना में
1: बिल्कुल।
0: और उसके बाद में फिर अगर आप कहीं दूसरी जगह ले जाओ चाहो तो फिर माइग्रेशन को खर्चो लगे वो सब खड़िया हो क्योंकि वहाँ पे आपके मक्खियां भी बढ़ेगी शायद भी मिल जाओगे बाहर ले जाओगा तो और भी ज्यादा फायदा हो क्योंकि आपने देखा था ना सर्दी का टाइम पर यहाँ कहीं कहे बहुत सारा बीकीपर आ जाओ चार बनो गर्मी में कोई ना दिख रहा तो सर्दी में वो उठी का भी सब अटी आ जाओ चार अब बनो आपने का भी गया उठी
1: बिल्कुल।
2: और आप मधुमक्खी की
0: उपलब्धि तो ये कि आप यहाँ कोटा में जो भी मधुमक्खी पालक वहाँ से खरीद लो।
2: अच्छा।
0: हाँ बाकी टेक्निकल गाइडेंस की तो वहाँ कृषि अनुसंधान केंद्र पर मधुमक्खी की परियोजना चले चे वो आपको प्रैक्टिकल आप सीखाऊंगा तो वो सीखा
1: प्रशिक्षण प्राप्त
0: प्रैक्टिकल
1: बिल्कुल। पिंटो जी आपने फोन करे चौपाल में आपको बहुत बहुत धन्यवाद साहब। डॉक्टर साहब आपने बार की बेचना जो एक बॉक्स सु 3 से 4 महीना में वो 30 किलो के लगभग शहद मिल जाओगे। अब अगर मान लो जिन्हें जितना ज्यादा बॉक्स लगाए थे उनकी जो क्षमता उसे बढ़ती चली जाओगी
0: उतनी बढ़ जाओगी
1: साल भर में अपन कितनी बार चना जो मतलब शहद ले सका चा।
0: देखो इनको तो कई सारा कारण रहे शहद ले बाखा मधुमक्खियों की संख्या भी रहे छे रानी की उम्र भी रहे छे मौसम की वह भी रहे छे के मौसम कशोक छे फूला की उपलब्धता रहे छे फूला की दूरी रहे छे तो कई सारा कारण पर निर्भर करे छे। और यू मानना चाहे अपने के सरसों का सीजन में 8-10 दिन से 15 दिन तक में एक बार शायद निकल जाओ कभी 8-10 दिन में भी निकल जाओ कभी 15 दिन भी लग जाओ मौसम के हिसाब से
1: तो भी जैसे मतलब अगर औसतन अपन यू अंदाजो लगावा तो फिर भी कम से कम 4 बार तो अपन शायद साल में आराम से निकाल ही सकते
0: नहीं ज्यादा
1: बार
0: मतलब 6 बार तो लगभग सरसों
1: निकल ही
0: जाओ अगर मौसम सही रहे तो।
1: अच्छा अच्छा अच्छा तो अगर 6-7-8 बार भी शायद अपन ने निकाल लियो तो अपन तो
0: 25-30 किलो शायद आराम से निकाल।

0: किसी भी तरीका से नुकसान में कोना,
1: नुकसान में तो कोई ना यूं चाह अपन। फिर ये में एक और बात है सरवण भाई, कि मधुमक्खी पालन में मुनाफो कम हो सके जाए पर घाटो ना लगे।
0: अच्छा अच्छा,
1: क्योंकि आपने जो पीसा लगाया ऐसा न हो कि आपने जो पीसा लगाया आपने नुकसान हो गया। मान लो 30 किलो ने 20 किलो भी हो गया तो भी कहीं कहीं फायदा ही आपने। मधुमक्खियां तो एक बार खरीदनी, चार बार खरीदनी ना, फिर पल साल में तो अपन यू मानेगा कि अपने पास में बचत कहीं ना हुई, पर लेकिन आपने मूलधन जो लगायो आपने वो तो पाचो आ गयो,
0: तो आ गयो।
1: फिर उनके बाद अपने पास जो भी आओगे वो बचत ही है। और यो एक और जिम्मे खेती के साथ साथ करो जा सके। तो आपने मान लो आपने जो पैतृक धन तो कर रहे हैं चाहे खेती चाहे दुकान चाहे कहीं भी कर रहे हैं चाहे उनके साथ मधुमक्खी पालन करेंगे, तो आपने अगर ये 25 किलो से 1 लाख रुपए भी आ गया तो अपना अतिरिक्त आमदनी होगी ना, 50,000 भी आएगा तो भी बढ़िया चाहे अपना।
0: हाँ मतलब बढ़िया, तो भाई कहीं ना से कहीं तो चे है ना, तो वो हिसाब से करियो जा सके।
1: खेती के साथ साथ
0: जी। अच्छा, शुरुआत कसिया करनी हो?
1: शुरुआत में तो यही जगह थोड़ा प्रायोगिक प्रशिक्षण लेनी पड़े, क्योंकि मधुमक्खी पालन तो और कोई कर बचाओ
0: जी,
1: और लेकिन थोड़ी सी दिक्कत यही आओ कि यह डंक मारेगी।
0: हाँ।
1: डंक का डर सुन लोग डर पचे,
0: बिल्कुल डर तो लागे छे सब। ये बात सही छे। एक फोन से बात कर ला। हेलो हेलो, राम राम साहब, कहीं नाम कहाँ से बोल रहे थे? जितेंद्र जी स्वागत है चौपाल में। पाचे आपके रेडियो की आवाज आ रही है, थोड़ा सो को कम कर दो आवाज ना, फिर अपना प्रश्न पूछो। कहीं पूछ पूछ रहे थे
2: जी सर। जी सर से पूछ बजे शाम को या सरसियों की जय मतलब मधु या मधु मक्खी कर सकते को पालन है या फिर दूसरे फसलों में हो सके?
0: बिल्कुल
1: कैसे बजट छपा होता का जो। हाँ देखो सरसों की हिम्मत कहीं से कई सारी फसल से जम कर सके, जब सब में तो न कर सके। मान लिया अपने सोच लिया गुआ के पास मोल दिया कि गुआ में तो न हो, पर सरसों से धनियो छे या में तो वो जाओ छे। और ये एक परदेशी बबूलो छे हमें भी बढ़िया शहद आओ छे। एक आपने जो पटना के आस पास बरसी में हो छे, बरसी में भी बढ़िया शहद आओ छे, तो यहाँ पे तो मिल जाए शहद।
0: बिल्कुल
1: तो यूँ चे ना भाई साहब, मैंने अपने बताई ना कई नाम सु भाई, ये बाहर का लोग भी तो यहाँ आओ, तो माइग्रेशन करो ना, दूसरी जगह ले जाओ जहाँ सरसों छे ना
0: जी जी,
1: जहाँ फूल छे वहाँ ले जाओ
0: भाई। फूल किसी भी तरीके फसल को हो, वो चाहो सरसों को हो, धनिया को हो या और कोई हो भाई, सब्जी वाला
1: जो सब्जी वाला पे भी मिले,
0: सब्जी वाला में भी फूल
1: को खावा कोई काम चले चाहे अतरो ज्यादा इकट्ठो न करन शहद हो।
0: कहीं जंगल के पास में भी,
1: जंगल के पास में भी बढ़िया आओ जब बबूल में बढ़िया शहद आओ
0: जी। बिल्कुल
1: तो आप कहीं कहीं माइग्रेशन करनी पड़ेगा, मतलब मधुमक्खी पालन करेंगे ना अपने, तो जहाँ फूल छे ना वहाँ ले जाऊंगा, उनका 3 किलोमीटर का एरिया में जहाँ भी होगा सर तो वहाँ से ले रहा जाओगी वो, पर वहाँ तो अपनी रखनी पड़ेगी।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: दो बीघा में तो आपके 2 कॉलोनियों को काम चालक हो
0: आसपास के क्षेत्र में
1: भाई, आसपास उस काम न चाह रहे हो ना, अपनी सो अपनी सीख सो काम न चाह रहे हो ना, शहद न बनाओगी वो, ये मतलब लंबा चौड़ा एरिया में होनी चाहिए सरसों, मतलब 1 बीघा में 1 कॉलोनी माना चाह अपने तो अपनी तो होनी चाहिए, मतलब आपने अगर 20 कॉलोनी है तो 20 बीघा की सरसों तो वो हुआ अपने को।
0: हाँ भाई, जब चारों तरफ जब चारों तरफ सरसों का खेत होगा वहाँ वहाँ जाकर अपना जो काम
1: सर ज्यादा।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो जितेंद्र जी आपने फोन करियो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम। डॉक्टर साहब जैसे यहाँ की अबाणु आपने बात चली थी कि भाई साल में अपन 6-7-8 बार भी शहद निकाल सका था। अब बाजार में जब शहद अपन बेचबा की बारी आओ तो लोग बाग या जो अपना मधुमक्खी पालक है वो ज्यादातर उन्हें कच्चा रूप में ही बेच दे।
1: देखो देखो सर वन भाई कहीं से बेचवा का 2 तरीका है, या तो कच्चो बेच दो या प्रोसेस कर बेच दो। कच्चो छद तो ये जो आवे ना ट्रेडर्स, ये बाल्टी की बाल्टी ऐसे ही उठा
0: ले जाओ छे,
1: वहाँ की रेट अलग रहे छे
0: जी।
1: तो एक तरीको तो है जैसे मान लो वहाँ बेचनो तो उसे बेच दे, पर मर तो यो कहो जैसे जो मधुमक्खी पालन कर रहा है या जो करेगा वासु मार ताई तो यो कहो कि आधो तो आप आधो पर दो तो बेचो आप ट्रेडर नहीं कच्चो से।
0: अच्छा,
1: आधो पर दो आप रखानो ताकि आपको खर्चो भी चाल जाओ ट्रेडर नहीं बेचे जिसू, और फिर आधो पर दो प्रोसेस करा बेचो अपने खुद को लेबर लगा डब्बा में बंद कर, तो उमें कहीं से आपने फायदा ज्यादा होगा, क्योंकि आपने देखा होगा डिब्बा में पेक हो या शायद 400 रुपए किलो ताई बिके छे।
0: हाँ, ये बात
1: तो वो 125-150 रुपए किलो ले जाओगा
0: भाई।
1: तो इके लिए प्रोसेसिंग के लिए कृषि अनुसंधान केंद्र पर प्रोसेसिंग प्लांट लाग रही
0: है,
1: वहाँ पर प्रोसेसिंग करार अपना नाम से लेबल लगा बेच सके
0: जी। बिल्कुल, एक फोन ले लें डॉक्टर साहब।
1: हाँ।

0: हेलो। हाँ,
1: हेलो। मैं
0: राम राम साहब, कहाँ से बोल रहे थे? कई नाम आपको? हाँ
1: तलिया,
0: बोलो, आवाज
1: मेरा
0: आवाज थोड़ी कट रही है आपकी, स्पष्ट।
1: नाम
0: आपकी आवाज़ पूरी तरह से ना पहुंच पा रही। आप दोबारा प्रयास करेगा तो हो सका आपकी आवाज़ पहुंचे। तब तक डॉक्टर साहब से बात करा चाह।
2: तो प्रोसेसिंग करके भी बेच सके छे, और प्रोसेसिंग को चार्ज केवल 8 रुपए के लाख हो छे। जितनी सी को गे सर जो लाइट चले छे ना, केवल उतनो सो खर्चो ले जा 8 रुपए के लाख हो।
0: अच्छा,
2: तो वो 8 रुपए के लाख में प्रोसेस कर और अपना खुद का ब्रांड का नाम से बेच सके छे,
0: तो जैसे
2: ज्यादा फायदा हो।
0: कोई किसान भाई के अगर मान लो अपनो शहद प्रोसेस करानो छे तो उनके लिखे कागजी कार्यवाही कहीं पूर्ति करनी पड़ेगी
2: ना? सीधो ले आओ कागजी।
0: अच्छा।
2: सीधो ले आओ।
0: तो पहली या तो पहली यह चीज को पतो करे कि भाई आपने जो वहाँ प्रोसेसिंग प्लांट से उमा मतलब
2: फोन कर रहा जाओ
0: व्यवस्था। हाँ भाई, सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगा ना। एक तो मान लो वहाँ पहली से ही कोई और को प्रोसेसिंग चल रही हो,
2: फोन कर रहा जाओ
0: ना, तो एक बार पूछ ले वहाँ की भाई मैं ले रहा था और लगभग कतनो शहद लेकर आ रहा था, ताकि
2: कम से कम 1 क्विंटल तो लानी पड़े, क्योंकि उनकी कैपेसिटी 1 क्विंटल की। अगर कम लाओ ना तो फिर वो कहेंगे खाली चाले जो मशीन, तो
0: जी बिल्कुल
2: 1 क्विंटल लाओ ना एक बार में तो ठीक रहे। और एक प्रश्न आप जो पूछ लिया था कि ये नुकसान करे छे फायदो करे छे, तो ये फायदो करे छे क्योंकि परागण के द्वारा मतलब की उपज बढ़ाओ छे
0: जी।
2: पहली प्रांति चीज भाई रस चूसे छे।
0: हाँ।
2: लेकिन अब तो प्रैक्टिकल से पता लग गया कि ये फायदो करे,
0: फायदो ही हो छे। खैर, ये बात तो बहुत अच्छी बात छे और करनी चाहिए अपन ने। हेलो। हाँ राम राम, अब आवाज आ रही है आपकी, आप अपनो प्रश्न पूछ सके छे। नाम बताओ पहली। अच्छा, कहाँ से बोल रहे थे? ठीक छे, अपनो प्रश्न पूछो।
1: मुझे पूछ रहे थे
0: दोबारा पूछो, आराम से थोड़ो धीमा धीमा पूछो। कहाँ बिक? शहद कहाँ बेचे हुए?
2: शहद कहाँ बेचे? तो मैंने बताई थी ना, एक तरीको तो बेचो कच्चो शहद बेचेगा तो था कि वहां से ले रहा ले जाओगा वो खरीद वाला, और जो प्रोसेस करार बेचेगा तो वो कहेंगे तो फिर था कि खुद का नहीं प्रयास करनी पड़ेगा बेचवा खान तो।
0: अच्छा, मतलब अपना जो मिलवा जुलवा या कोई जैसे बाजार में दुकाना सो भी अपन बंद सका।
2: हाँ, बंद सका था। देखो कहीं से था, अगर ओरिजिनल था कि वहां से शहद बेचेगा ना तो सब लोग विश्वास करेगा भाई ये तो आपका गाँव अपने गाँव का चाहे अपने शहर का जाने पहचाने चाहे, तो यहाँ से लेवा तो ये अच्छी चीज मिलेगी अपने।
0: तो भाई आजकल देखो सब असली चीज छाऊ मिलाई छाओ, दूध खरीद पर जाओगा तब भी प्योर छाओगा।
2: हाँ।
0: शहद लेगा तब भी आंखें देखी वाली लेगा कि भाई हाँ इमें कान का मिलावट तो कोई ना, तो जान पहचान वाला सू परिचित। हाँ, सू
2: तो आप सु ज्यादा ले बचाओगा शहद आप अगर वहाँ
0: है ना, तो अगर अपन प्रयास करेंगे तो बिग बाग में कोई समस्या ना होगी।
2: और देखो शहद की तो कहीं शहद को यू है ना रेट यू रह जाए आपने दिक्कत यू कोई ना यू खराब ना हो, और चीजें तो अच्छी जगह खराब हो जाओ। मान लिया अपने टमाटर कर लिया वो 2-4 दिन रह गया तो कहीं करेंगे फिर पाकनी पड़ेगा।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
2: शहद तो आपके बेचवा की इच्छा ना हो तो अगले साल बेचो, फर्क ना पड़ो। मैं तो
0: डॉक्टर साहब एक मन में प्रश्न आई चो जरा सो, जैसे मतलब आपने की कि भाई अब न बेचो तो आगे के लेकर रख दो है ना, सुरक्षित रखान सका चाह अपन ना, लगभग कितना समय तक सुरक्षित रह सके?
2: देखो 3 साल तो कहीं ना बिगड़े।
0: अच्छा,
2: और अगर आप प्रोसेस कर रखना तो फिर काफी लंबा समय तक रखान सका चाह।
0: हाँ।
2: क्योंकि इमें कहीं हो चे वेक्स गुड़े हुए रहे चे और पानी की मात्रा रहे चे।
0: जी।
2: तो प्रोसेस करवा से ये दोनों अलग हो जाओ चे, शहद में नमी रहे चे 18 से 20%।
0: अच्छा, एक फोन ले ला। हेलो। हाँ जय राम जी के साहब, कई नाम कहाँ से बोल रहे थे?
3: सरवनलाल योगी बोल रहे थे, मांग रोड।
0: बहुत बहुत स्वागत योगी जी, कई प्रश्न पूछ पूछ रहे थे।
3: जैसे आप ये मधुमक्खी का जो शहद उनकी सप्लाई के बारे में आप बात कर रहे जब आप।
0: जी बिल्कुल।
3: तो मारो सवाल ये हो जाएगा, जैसे आपने मधुमक्खी पाला था तो गाँव से कितनी दूरी होनी चाहिएगी
0: मधुमक्खी जहाँ बक्सा रख रहे थे आप?
3: बच्चा रखा था ना अपन, तो वो गांव से आपने कितनी दूरी को नहीं जाएगी?
0: अच्छा,
2: गांव से दूरी, गांव से दूरी को तो यूं छे के बोला गांव के पास में रख दियो, पर एक तो रोड के पास में न होनी चाहिए।
3: अच्छा,
2: क्योंकि रोड के पास में होगी ना तो फिर वह मधुमक्खियां भी मरेगी और आवाजा बढ़ाई भी काट

0: बैठने की, तो फिर वो कहेगा किसी यहाँ से दूर मर लो। तो रोड के पास में न होनी चाहिए, और एक लाइट की गांव का जो लाइट की रोशनी डायरेक्ट वहाँ का बक्सा पर न पड़नी चाहिए, मधुमक्खी का बक्सा पर। तो वो कहीं से अगर डायरेक्ट लाइट की रोशनी पड़ेगी ना, तो उसे वो मधुमक्खियां वहाँ उन लाइट पर जाओगी।
1: अच्छा
0: हाँ, तो ये दो चीज आपको अपनी ध्यान रखनी पड़े, बाकी गाँव के पास में भी रख सको जो।
1: बिल्कुल
2: धन्यवाद
1: साहब, आपने ही फोन करियो चौपाल में, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब टेम से बंधे रहा था, हालांकि अगर कोई फोन आओगे तो आप हम बात करेंगे वहाँ से, पर चलता चलता आपसे यह सलाह के तौर पर पूछ हूँ कि जैसे मधुमक्खी पालन अगर आपने परिवार में आप कर रहे छा, तो लगभग कितना व्यक्ति जो छे वह अगर खुद परिवार वाला छे तो कितना व्यक्ति कम से कम चाहो छे, और अगर समूह में कर रहे छे तो कितना बड़ो समूह बन सके छे।
0: देखो मधुमक्खी पालन में एक आदमी की जरूरत पड़े छे।
1: अच्छा,
0: पर लेकिन जैसे आप माइग्रेशन करा चाह या शहद निकालना चाह या आर्टिफिशियल फीडिंग दे चाह, जब ज्यादा आदमी की जरूरत पड़े छे, जैसे आर्टिफिशियल फीडिंग दे चाह तो दो आदमी हो जाओ तो ज्यादा आसानी से काम हो जाओ छे।
1: बिल्कुल,
0: शहद निकालना चाह जब पांच छह आदमी की जरूरत पड़े छे, और माइग्रेशन करा जब दो तीन आदमी की जरूरत पड़े छे, ताकि वो बक्से उठावा मलवा में दिक्कत ना हो। बाकी तो एक आदमी कर सके छे,
1: सो मनक भी कर सके,
0: हाँ अकेलो मनक सो आदमी सो कॉलोनी ताई संभाल सके छे।
1: बहुत बढ़िया बात।
0: पर लेकिन अगर चार पांच लोग से समूह में करेगा ना, तो उमे कहीं होगो कि मान लो एक आदमी मधुमक्खियां संभाल ली, बाकी और अपनो काम कर लियो, फिर उतना फ्री कर दियो, दूसरो आदमी चल जाओ, फिर तीसरो चल जाओ, फिर चौथो चल जाओ,
1: काम को बंटवारा हो जाओ।
0: हाँ, काम को बंटवारा हो जाओ, और अपनो जो काम कर रहे वो भी वो तो रहे, और जब शहद निकालना चाहिए माइग्रेशन करना चाहिए या फीड देनी चाहिए, वो टाइम सारा एक साथ हो जाओ
1: जी,
0: तो ऐसा कर सके।
1: तो चलता चलता सलाह कहीं देगा, मतलब यो जो व्यवसाय चाहिए इन्हें जरूर अपनाओ।
0: देखो श्रवण भाई, मारो यही संदेश है यहाँ आड़ोती का, कृष्ण वर्ण भाई कहते हैं कि खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन भी कर अपनी आय बढ़ाओ, क्योंकि इमें कम लागत से और मुनाफा अधिक है, और इमें मधुमक्खी पालन से शहद के अलावा और भी कई सारा उत्पाद मिले छे, जिसे आपने प्रोपोलिस छे, रॉयल जेली छे, बी वेनम छे, पराग छे, ये चीजें भी ले अपनी आय और अधिक बढ़ा सके छे, और यहाँ से ज्यादा मतलब परागण के द्वारा उपज बढ़े छे, तो वो भी एक बहुत बड़ा महत्व छे। और मारो एक संदेश यो भी छे कि जो मधुमक्खी पालन कर रहा है वहीं तो ये सब चीजों को फायदो में लगो, और जो न कर रहा है वहां के ताई भी फायदो में लगो, कहीं एरिया में मधुमक्खी पालन होगा तो वहां की भी फसलों में परागण होगो और उपज बढ़ेगी। ये वजह से हिमाचल प्रदेश में पोलिनेशन सर्विस का नाम से वो लोग मधुमक्खी पालकों के ताई उल्टा पीसा दे और अपनी सेव का बगीचा में मधुमक्खियां रखवाओ, क्योंकि वहां ताई उनको महत्व पतो लागो। तो हाटो टीका कृष्ण बन में यही भी संदेश है कि आप अपना खेता के आसपास मधुमक्खियां के ताई रखवा देव करो।
1: बिल्कुल डॉक्टर हरि प्रसाद मेघवाल जी, आप सह आचार्य कीट विज्ञान कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज कोटा सु आज चौपाल में आया, और सजीव फोन इन कार्यक्रम को विषय कृषि आय बढ़ावा में मधुमक्खी पालन को महत्व, ये विषय पर अतनी बढ़िया सुझाव जानकारी और समाधान बताया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।
0: राम राम।
1: और भाई बनाओ, अभी के साथ साथ ही चौपाल में आज टेम बिल्कुल पूरो हो चुके थे, तो चाल बासु पहली खाल की चौपाल में कई लोगों को बारे में बताऊं। खाल चर्चा होगी भाई बनाऊ विश्व शरणार्थी दिवस पर, और एक साथ साथ ही खाल शनिवार से, तो आकाशवाणी गांव में का क्रम में आपन सब चालांगा ग्राम नागदा की झोपड़ियां तहसील अंता जिला बारा, और वहां का जो लोग बाग है वहां का जनजीवन पर आधारित यू कार्यक्रम सुनेगा। एक साथ साथ ही जानकारी सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना पर भी सुनवा मिलेगी। भाई बनाओ चालता फटाफट सु आपन कृषि उपज मंडी समिति कोटा का बाजार भाव पर नजर डाल लिया। आज गेहूं बकिया 2345 रुपए से 2632 रुपए प्रति क्विंटल, सरसों बकी 6902 से 7501, सोयाबीन को भाव रियो 6330 से 6751, धान बग्गी 3765 रुपए से 4667 रुपए, धनिया को भाव रियो भाई बनाओ 11601 रुपए से 15400, मेथी बकी 5000 से 6331, मक्का को भाव 1650 से 2218, अड़सी बकी 8281 से 8433, चना बगिया 4811 रुपए से 5575, और लसन बकी 7150 से 17900 रुपए प्रति क्विंटल ताई। और अब एक साथ ही आज तो चौपाल यही पूरी हो रही है, श्रवण भाई के ताई इजाजत दियो, आगे फिर मिलांगा, चला छा सब्या के ताई राम राम।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज कोटा। किसान भाइयों और बहनों, सभी फसलों को रोगों से बचाने के लिए ट्राई

कोडरमा फफूंद नाशक का प्रयोग करें। इसे विभिन्न प्रकार की फसलों जैसे चना, मसूर, मूंग, उड़द, मूंगफली, मिर्च, टमाटर और आलू में लगने वाले बीज जनित एवं भूमि जनित जैसे उकटा, जड़ गलन, तना गलन, अंकुर गलन, कंद सड़न आदि रोगों के प्रबंधन में प्रयोग किया जाता है। साथ ही किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा से बीजोपचार, कंद उपचार, नर्सरी उपचार करें। ये पौधे में रोग कारकों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता की क्रियाविधि को सक्रिय करता है। ये मृदा में कार्बनिक पदार्थों की अपघटन की दर बढ़ाता है। साथ ही किसान भाइयों, बीज और पौध उपचार का कार्य छायादार सुरक्षित स्थान पर करें। ट्राइकोडर्मा के साथ अन्य कवकनाशी रसायनों का प्रयोग न करें।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, सुनते हैं भेंट वार्ता का कार्यक्रम। विषय है, हम मना रहे हैं विश्व योग दिवस। डॉक्टर नित्यानंद शर्मा इनसे भेंट करता रहेंगे, बातचीत करेंगे राजेश महावर।
1: तो श्रोताओं, एक बार फिर से नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं आपका। पुनः स्वागत इसलिए कि अब बहुत खास बात हम कर रहे हैं और हमारे साथ में विशेष अतिथि हैं डॉक्टर नित्यानंद शर्मा साहब। आप प्राचार्य हैं राजकीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय कोटा में। और श्रोताओं, अब जो हम बात करेंगे वो ये कि हमारे देश के गौरव की बात है। आप जानते हैं 21 जून आ रहा है और हम सब योग दिवस मना रहे हैं और भारत की विश्व को ये देन है। श्रोता भी ये पंक्ति कहते कहते अत्यंत हर्ष होता है। और आज हमारे साथ में डॉक्टर नित्यानंद शर्मा जी हैं और क्यों ना योग पर और जानकारी प्राप्त की जाए। नमस्कार, बहुत स्वागत है साहब आपका।
2: नमस्ते। नमस्ते
1: जी। जैसे कि 21 जून आ रहा है और ऐसा नहीं कि केवल 21 जून बल्कि जब से योग दिवस भारत ने संसार भर को दिया तब से भारत की ये देन है कि विश्व भर, जैसे कि हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा जो संसार हमारा घर है वो सभी स्वस्थ रहे, हमारा ये भाव होता है। आज के दिन आपका हम बहुत स्वागत करते हैं। और क्या कहेंगे आप इस बात पर कि हम वसुधैव कुटुंबकम भी मानते हैं और सबको स्वस्थ रखने का प्रण भी लेते हैं।
2: ये बहुत ही अच्छा विषय है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। और इस अवसर पर हमारी जो भारतीय प्राचीन संस्कृति है उसके अंदर वसुदेव कुटुंबकम के साथ साथ सर्वे भवंतु सुखीना
1: जी,
2: इस प्रकार का हमारा एक भाव है। हम पूरी दुनिया को व्यापार की दृष्टि से नहीं देखते अपितु उसको हम परिवार भाव से हम संपूर्ण विश्व के देशों को मानते हैं, अपनाते हैं और उनके प्रति हमारा एक वैश्विक संबंध है। वह हमारी भारतीय संस्कृति का जो व्यापक उदार एक दृष्टिकोण है, सोच है मानव कल्याण के लिए, उसमें योग की महती भूमिका है। और उसमें आदि योगी भगवान शिव को जैसे हम मानते हैं
1: जी,
2: और फिर हमारे कुछ संहिता काल में महर्षि पतंजलि को योग का प्रवर्तक आचार्य माना है
1: जी।
2: वर्तमान में 21 जून 2015 से पहली बार हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री मान नरेंद्र जी मोदी साहब ने जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए संपूर्ण विश्व को एक आह्वान किया और उस आह्वान को विश्व के 178 देशों ने एक साथ स्वीकार किया और 21 जून 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्वीकारोक्ति के बाद संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने लगा। इस बार ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है यह 12वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है
1: जी।
2: और इस योग दिवस का मुख्य जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कोलकाता में होगा। बाकी संपूर्ण देश में विश्व योग दिवस का कार्यक्रम जो है उस दिन मनाया जाएगा। अभी 14 जून को हमारे CCRYN मोरारजी देसाई योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, आयुष मंत्रालय भारत सरकार, इनके द्वारा एक ऑनलाइन जो है योग का एक सेशन चला था और उसमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया अभी 14 तारीख को
1: जी।
2: उसमें 435,831 ऑनलाइन योग साधकों ने एक साथ प्रातः सवा

0: 6 बजे से 7:15 बजे तक योग प्रोटोकॉल का ऑनलाइन अभ्यास किया। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है।
1: वाकई जी, क्या बात है साहब, जो दुनिया भर में देश से फैला तो देश में भी तो इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। ये आपने बताया कि इतने तादाद में योग का, 1 घंटे तक का जो योगाभ्यास किया गया, आपने 1 घंटे का ये जो वर्णन किया, क्या प्रत्येक व्यक्ति को क्या प्रतिदिन 1 घंटे का अभ्यास करना चाहिए?
0: निश्चित रूप से न्यूनतम कम से कम 1 घंटा तो जरूर योग का अभ्यास करना चाहिए, और यदि समय का अभाव हो तो शरीर में इस योग प्रोटोकॉल के अंदर कुछ सूक्ष्म व्यायाम, माइक्रो एक्सरसाइज का वर्णन है
1: जी।
0: अगर उसका भी हम वार्म अप करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो भी हमें काफी हमारे शरीर के सारे जॉइंट्स के लिए सूक्ष्म क्रियाएं होने से संपूर्ण शरीर में लाभ प्राप्त होता है। अभी हमारे देश के जो आयुष सचिव हैं राजेश कोटेचा जी, उन्होंने भी अपने उस दिन मुख्य जो है भाषण में यही कहा था कि योगा फॉर 365, इसका तात्पर्य है कि वर्ष पर्यंत 365 दिन हमें योग करना है, न कि 21 जून को एक दिन ही, क्योंकि योग एक साधना है, योग एक आध्यात्मिक अनुशासन है, योग हमारे इस मानव शरीर से उस परमात्मा को प्राप्त करने की एक आध्यात्मिक अनुशासनात्मक साधना है। तो इस साधना के लिए नियमितता जरूरी है और तप करना जरूरी है। तो यदि व्यक्ति निश्चित रूप से अगर नियमित योग अभ्यास को अपनी जीवनचर्या में शामिल करेंगे तो उन्हें आरोग्यता के साथ न ही शारीरिक अपितु मानसिक लाभ प्राप्त होंगे, और ज्यादा अधिक इसमें योग में अभ्यास करने से, प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से, और साथ ही और अनेक प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि मेडिटेशन ध्यान करने से हमें आध्यात्मिक उन्नति और उसके भी आरोग्यता की प्राप्ति मिलेगी।
1: क्या बात है, बहुत ही सुंदर बात आपने कही। आपने कहा कि ये केवल 1 दिन की बात नहीं, जब हम सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करते हैं तब हम उत्साह हर दिन मनाते हैं, और जब पर्व की बात आती है तब उत्साह और उमंग का पर्व, जैसे होली होता है
0: जी,
1: और हम आनंद में डूबे रहते हैं, लेकिन उसका एक कारण होता है कि हम वर्ष भर इस तरह के कार्य करें कि हम पर्व मना सकें। जब हम 21 जून का ये जो वैश्विक पर्व मना रहे हैं, भारत की जो दुनिया भर को देन है, उसमें आपने ये बताया कि प्रतिदिन हमें अभ्यास करना चाहिए। आपने योग का अर्थ ही बताया कि न केवल भौतिक बल्कि हम आध्यात्मिक उन्नति भी इससे प्राप्त करते हैं। जब तक हम अपने मनस को स्वस्थ न रख सकें तब तक हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ नहीं रह पाते। ये नहीं दिखने वाली मनस की स्थिति क्या है, ये हमारे श्रोताओं को आप बताएंगे कृपया?
0: देखिए, आजकल ऐसा है कि व्यक्ति बाहर से तो उसका शारीरिक सौष्ठव काफी सुंदर और स्वस्थ नजर आता है
1: जी,
0: लेकिन अंदर से व्यक्ति प्रज्ञा अपराध के कारण से वह मानसिक रूप से बीमार होता है।
1: ये क्या है एक बार?
0: ये मानसिक रूप से जो बीमार है ये प्रज्ञा अपराध के कारण होता है। प्रज्ञा अपराध के बारे में आयुर्वेद के जो आचार्य हैं हमारे महर्षि चरक, वो ये कहते हैं कि धी धृति स्मृति विभ्रंशम यह कुरुते अशुभम कर्मम प्रज्ञा अपराधम तम विद्यात सर्व दोष प्रकापणम। आयुर्वेद में 3 दोष बताए हैं, वात पित्त कफ, जब इनका असंतुलन हो जाता है तब रोगों का शरीर में प्रारंभ होता है। प्रज्ञा अपराध उसको कहते हैं, सामान्य भाषा में बोले तो बुद्धि का अपराध।
1: बिल्कुल,
0: जैसे एक सिगरेट का पैकेट है उसके ऊपर वार्निंग लिखी हुई है कि ये इंजीरियस है आपकी हेल्थ के लिए, फिर भी व्यक्ति सिगरेट पीता है। ऐसे ही गुटखे के ऊपर भी बहुत कुछ वार्निंग लिखी रहती है, फिर भी आदमी गुटखे का व्यसन करता है। यहाँ तक कि अगर किसी को पढ़ना नहीं आए तो उसपे छिपकली का चित्र है, केकड़े का चित्र है, कैंसर का डायग्राम बना हुआ होता है, मुंह कटा हुआ और जो है ओरल कैंसर का उसमें डायग्राम बना होता है,
1: बहुत चेहरा दिखाया जाता है, लेकिन
0: चेहरा उसमें पुड़िया के ऊपर छपा रहता है। उसके बाद भी व्यक्ति उसका सेवन करता है, एल्कोहल के ऊपर भी वार्निंग लिखी रहती है
1: जी।
0: उसके बाद भी आदमी उसका सेवन करता है और नशे में गाड़ियां वगैरह चलाते हैं, उससे आए दिन क्या दुष्परिणाम होते हैं, जनहानि होती है, वह तो चला जाता है
1: जी,
0: लेकिन अपने परिवार को, सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को, और आर्थिक दृष्टि से, शारीरिक रूप से, जैसे अल्कोहल पीने से लीवर खराब हो जाता है, गुटखा खाने से इनसे हमारे इंटेस्टाइना की प्रॉब्लम्स होती है, हमारे मुंह का कैंसर हो जाता है, ऐसे बहुत सारे, तो ये चीजें जानते हुए भी व्यक्ति उस क्रिया को बार बार करता है। अपने आसपास में वो महसूस भी

0: करता है कि दारू पीने से इसका लीवर खराब हुआ और इसकी डेथ हो गई, जिसको गुटखा खाने से इसका मुंह का कैंसर हुआ और फिर इसका जबड़ा काट दिया और फिर इसका इसकी डेथ हो गई। जानते हुए भी व्यक्ति उस व्यसन को बार बार करता है या उस गलती को बार बार दोहराता है, दैट इज कॉल्ड प्रज्ञा अपराध। आयुर्वेद में इसका बहुत विशेष वर्णन है। और रोगों का ये सबसे बड़ा कारण है कि डायबिटीज वाले आदमी को मीठा नहीं खाना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए, आलू नहीं खाना चाहिए, उसके बावजूद भी वो उन चीजों का बार बार प्रयोग करता है। ठीक है, एक गोली और अलग से अंग्रेजी की खा लेंगे या इंसुलिन की डोज बढ़ा लेंगे, तो ये जो जो प्रज्ञा अपराध होता है इसके कारण से रोग उत्पन्न होते हैं। मैं एक छोटा सा एक आपको हाड़ौती में कोटेशन बताना चाहता हूँ।
1: हाड़ौती में क्या बात है, अवश्य कहिए।
0: कि चखो पर चरो मत,
1: वाह,
0: चखो पर चरो मत, और चरो तो फिर फरो, यानी घूमो,
1: बिल्कुल,
0: और न फरो तो मरो।
1: तो सही बात, ये बहुत सुंदर, बहुत
0: जो है इसके ऊपर
1: सार्थक बातें,
0: बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ तो बड़े बूढ़ों ने जो उक्तियां कही है, सुक्तियां कही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति को अपने हिसाब से सामान्य संतुलित सुपाच्य हल्का आहार का प्रयोग करना चाहिए। यदि वो अधिकता करेगा खड़े होकर और जो है गलत तरीके से भोजन का सेवन करेगा, गलत तरीके से पानी पिएगा, तो निश्चित रूप से, और बेमेल भोजन करेगा, किसको किसके साथ खाना है
1: जी,
0: यानी वो दूध के साथ यदि नमक वाली या मूली के साथ दूध या पीतल के बर्तन में खटाई की चीज या रात को दही खाना, ऐसे ऐसे अगर वो उठपटांग बेमेल चीजें करेगा तो निश्चित रूप से उसको स्किन डिजीज होगी, एलर्जी होगी और उसके कारण से वो परेशान रहेगा
1: जी। हालांकि ये जब आधुनिक जो ज्ञान है ये इन बातों को नहीं मानता, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म है और पुरातन समय से हमारी जो भारत की खोज रही है उसी के आधार पर ये जो जानकारियां आपने दी हैं इनका अभी भी बहुत महत्व है, किंतु ये जो ज्ञान है ये विलुप्त सा होता जा रहा है। संभवतः बिल्कुल वैसे जैसे हम जब सड़क पर अपनी रफ्तार तेज कर लेते हैं तब छोटे मोटे गड्ढे वो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो हमें प्रभावित जरूर करते हैं। आपने साहब योग की बात कही, आप योग के प्राचार्य भी हैं और प्राकृतिक चिकित्सा के जो अर्थ हैं वो भी आपने अभी तक की अपनी वाणी में हमारे श्रोताओं को बताया। ये जो हम जब बात करें युवाओं की तो शारीरिक सौष्ठव की भी बात आती है, और ऐसे में ये कहते हैं कि शरीर बनेगा कैसे अगर खाएंगे नहीं, लेकिन आपने बताया कि हमें जो आहार है वो भी बहुत चयनित रूप से करना चाहिए।
0: ऐसा है जी, अभी वर्तमान में मैं आपसे एक और युवाओं से ये विनती करना चाहता हूँ कि ये ऑनलाइन जितनी भी ये जो डिलीवरी होती है भोजन वगैरह की सामग्री की, आप आश्चर्य करेंगे सुनकर के कि ये दिन में बहुत कम मात्रा में सप्लाई होती है और रात को 10 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक ऑनलाइन जो है युवा लोग या परिवार के लोग जो है वो खाने की चीजें मंगाते रहते हैं। अब रात्रि सोने के लिए है, आचार्यों ने आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य ये तीन चीज स्वास्थ्य के लिए तीन स्तंभ बताए, और रात्रि जागरण करता है व्यक्ति तो उससे भी रोग उत्पन्न होते हैं। अब रात हमारे जो है भोजन को पाचन के लिए होती है, हमें शाम को 7 या 8 बजे के बाद आयुर्वेद की दिनचर्या के अनुसार भोजन नहीं करना चाहिए, जबकि आज वर्तमान में युवा क्या कर रहे हैं ये बड़ा बहुत गड़बड़ हो रहा है, और इस कारण से बहुत कम आयु में लोग डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं, मोटापे के शिकार हो रहे हैं, जोड़ों के दर्द के शिकार हो रहे हैं, बच्चियों को थायराइड हो रहा है, जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, हर घर में आपको इस तरीके के पेशेंट मिल जाएंगे। इसका कारण यही है कि जो गलत खान पान और हमारी जो आदर्श जो पुरानी पुरातन संस्कृति की जो आयुर्वेद की विशेष देन है दिनचर्या, उसको पालन नहीं करना, उसके कारण से ये लाइफ स्टाइल डिजीज हो रही है। आज डायबिटीज में मॉडर्न मेडिकल साइंस के डॉक्टर्स भी स्पेशलिस्ट भी ये कहते हैं कि भाई ये हम आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं लेकिन फिर भी आपको लाइफ स्टाइल मैनेज करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले ये डायबिटीज लाइफ स्टाइल डिजीज में नहीं था, लेकिन अब लाइफ स्टाइल डिजीज में डायबिटीज है, मोटापा है, हाइपर टेंशन है, थायराइड है, जॉइंट्स पेन है, ऐसी चीजें, ऐसे जो रोग जो जिंदगी भर जिनकी दवाई खानी पड़ती है, उसके लिए आधुनिक चिकित्सा विशेषज्ञ भी कहते हैं कि जब तक आप अपनी जीवन शैली को कंट्रोल नहीं करेंगे
1: जी,
0: उसको प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करना है, गर्म

0: पानी पीना है, मॉर्निंग वॉक करना है, कुछ शरीर के लिए कुछ आसन करने हैं, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है ताकि आपको एंजाइटी तनाव इससे छुटकारा मिले। ये सब वो अपने औषधि के साथ साथ वो खुद बताते हैं कि आप जीवन शैली को सुधारिए तो आपको ये हमाम जो दवा दे रहे हैं ये ज्यादा लाभकारी प्रभावकारी होगी।
1: हमारे शहर के परिप्रेक्ष्य में भी आपसे हम कुछ पूछना चाहेंगे। जब बात युवाओं पर आई है तो युवा यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। हमारे भारत वर्ष में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधित्व यहाँ छात्रों के आधार पर हम देख पाते हैं। ऐसे में जब पढ़ने ही वो यहाँ आए हैं तब उनके लिए योग के माध्यम से आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो अपने 24 घंटों को किस तरह से शिक्षा के लिए अनुकूल बना लें?
0: इसमें बहुत ही अच्छा तरीका है। मैं सबसे पहले तो युवा जो हमारे विद्यार्थी हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर आते हैं उनसे एक विनती करना चाहता हूँ कि सामान्यतः उनकी जो जीवनचर्या है उसके अंदर वो रात को 10 बजे से 2 बजे तक पढ़ाई करते हैं
1: जी।
0: ये 4 घंटे उनको सोने चाहिए थे, वो ऑनलाइन रहते हैं। और ये विद्यार्थियों में एक पता नहीं क्या एक सोच है कि हम उस समय पढ़ाई करेंगे और फिर होता क्या है कि सुबह वो 8-9 बजे उठते हैं। मेरा उन सभी युवा साथियों से विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठिए और आप 8 बजे तक अध्ययन करिए। वो भी 4 घंटे हैं, ये भी 4 घंटे हैं, लेकिन सुबह का जो अध्ययन करने का आपका जो समय रहता है उसमें हमारे शरीर के अंदर प्रसन्नता के हार्मोन्स ज्यादा रहते हैं, यानी सेरोटोनिन जो हार्मोन है वह अधिक मात्रा में ऑक्सीजन के कारण से, ऑक्सीजन की बहुलता से, अच्छी मात्रा में रहने से हमारी स्मरण शक्ति उससे अच्छी होती है। और रात को ये जितना भी टाइम है जो सोने का टाइम है उस समय ये जाग के जो पढ़ाई करते हैं उससे स्ट्रेस का जो कार्टिसोल हार्मोन है वो बढ़ता है। अब ये विद्यार्थियों को थोड़ा समझ में आना चाहिए कि भाई वो 4 घंटे आप रात को पढ़ रहे हैं उससे अच्छा है कि सुबह 4 आप रात को 9 या 10 बजे सो जाइए और सुबह 4 से 8 पढ़िए ब्रह्म मुहूर्त में। वो आपको स्मरण शक्ति भी अच्छा रखेगा, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा और उसमें जब आप छोटा मोटा अपना योग प्राणायाम करेंगे, आपके पास समय की माना कमी है, बहुत कमी है, आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार के जो 12 स्टेप है, 12 आसन है, वो वर्ल्ड की एकमात्र ऐसी एक्सरसाइज है जिसको सूर्य नमस्कार के 12 आसन एक चक्र में करने पर 13.90 कैलोरी बर्न होती है। इससे अच्छी कोई दुनिया में जिम वगैरह किसी भी एक्सरसाइज से कैलोरी बर्न नहीं होती। तो एक 5 मिनट में लगभग जो है 10-12 सूर्य नमस्कार बड़े आराम से किए जा सकते हैं, तो वो विद्यार्थियों को करना चाहिए जिससे कि हमारे शरीर को हम ऊपर तानेंगे, आगे मरोड़ेंगे, साइड में मरोड़ेंगे, तो जो भी हम होल बॉडी स्ट्रेचिंग करेंगे, फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, बैक बेंडिंग करेंगे, साइड बेंडिंग करेंगे, ट्विस्टिंग करेंगे, तो उससे हमारे संपूर्ण शरीर के अंदर रक्त का संचार बढ़ेगा और रक्त के माध्यम से ही ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और उसके कारण से हमारे शरीर के अंग अवयव जॉइंट्स वगैरह सब स्वस्थ रहेंगे।
1: आप प्राचार्य हैं साहब और ऐसे में आपसे हम विषय से थोड़ा सा इतर लेकिन आपका अभी तक का जो ज्ञान है उसी के आधार पर एक प्रश्न और करते हैं। युवाओं को प्रातः उठना चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए लेकिन ये ट्रेंड आखिर युवाओं के द्वारा क्यों अपनाया जाता है कि वो रात में ही पढ़ाई करते हैं? उनका जो मानना है इसको योग के माध्यम से हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं?
0: उनको धीरे धीरे अपने आदत में जो सुधार करना चाहिए, जैसे रात को 2 बजे सो रहे हैं तो उनको 1 बजे सोना है, फिर 12 बजे सोना है, फिर उधर जल्दी उठना है। इस तरीके से यदि वो नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में धीरे धीरे सुधार लाएंगे तो उनको इसका महत्व तो पता चलेगा। आजकल ऑनलाइन सब पता चलता है कि आपने रात को जगने से, देर रात जगने से क्या बीमारियां होती है, दिन में सोने से भी क्या बीमारियां होती है। तो युवाओं को ये चाहिए कि वो धीरे धीरे प्रयास करें। रात को क्या होता है कि उनका ऐसा मानना होता है कि शायद एकांत रहता है, आवाज नहीं होती, शोरगुल नहीं होती, लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि वो जब अपना नेट और स्क्रीन टाइम पे जब चालू होते हैं तो उनके दूसरे साथी लोग भी उस समय ऑनलाइन रहते हैं, फिर वो बीच में आपस में वार्तालाप भी करते हैं, डिस्टर्बेंस भी होता है, पर इस बात को वो बताते नहीं है।
1: जी
0: तो जबकि ये होता ये है कि सुबह 4 से 8 में अगर पढ़ेंगे तो उस समय ऑनलाइन बहुत कम उनके मित्र लोग रहेंगे, तो उस समय पूरा ही समय उनके स्वास्थ्य के अनुकूल अध्ययन के लिए बहुत ही आवश्यक है
1: जी। और फिर थोड़े में बहुत हम पा सकते हैं अगर

0: ब्रह्ममुहूर्त का
1: बिल्कुल वो भी है। दूसरा योग में हम सब जैसे हमें काजू किशमिश खाने की जरूरत नहीं है, बादाम खाने की जरूरत नहीं है, योग में केवल भ्रामरी प्राणायाम को करते हैं तो उससे हमारी मेमोरी एनहांसमेंट हो जाती है। केवल गाय का घी या सरसों का तेल या जो भी आपके पास लुब्रिकेंट है उसको हम नाक में लगाएंगे तो उससे अणु तेल होता है
0: जी,
1: नाक में लगा के खींचते हैं, उससे स्मरण शक्ति अच्छी होती है, सेंस ऑफ ऑर्गन्स अच्छे होते हैं और हमारा नर्वस सिस्टम बहुत अच्छा होता है, मेमोरी भी बहुत अच्छी होती है, मानसिक स्वास्थ्य सुधरता है।
0: बहुत सुंदर।
1: आयुर्वेद में ये कहा गया है, मैं मेरा एक कोटेशन है कि जीभ का टेस्ट,
0: हाँ,
1: जीभ का टेस्ट पेट में डाले वेस्ट, रोग बने गेस्ट, डॉक्टर कराए टेस्ट, मनी होवे वेस्ट, योग इज बेस्ट।
0: क्या बात है,
1: योग इज बेस्ट।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये बात हमारे श्रोताओं को अवश्य याद रह जाएगी और इसी के सहारे हमें ऐसा लगता है कि जिन्होंने योग नहीं अपनाया वो भी योग अपनाएंगे। अब आपसे आज के लिए बहुत बातें और करने का आशय है, बहुत करने का मन कर रहा है, लेकिन समय की भी अपनी एक सीमा है। जिस तरह की आपने समय का महत्व बताया बिल्कुल वैसे ही आज की ये बातें हमारे श्रोताओं के लिए बहुत लाभकारी हो। अब चलते चलते हमारी बहनों के लिए भी कुछ कहते हुए आप अपनी बातों का समापन करें।
1: जी, जो हमारी बहनें हैं, मातृशक्ति है, वस्तुतः भारतीय संस्कृति में हमारी परिवार व्यवस्था ऐसी है कि उसमें महिला जब तक बहुत ज्यादा किसी रोग से पीड़ित नहीं हो जाती तब तक वो स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान नहीं देती। परिवार में जैसे माना वो अस्वस्थ है और उसको दिखाना था, लेकिन उस समय कोई रिश्तेदार आ गया, बच्चों ने कोई डिमांड कर दी, पति का कोई काम आ गया, तो वो अपने स्वास्थ्य को, अपने बीमारी को लेकर के, और जो वो तो तुरंत कुछ करना चाह रही थी उस पर उसको वो डिले करती जाती है, ऐसे में रोग बढ़ता जाता है
0: जी।
1: तो बहुत आवश्यक है कि हमारी जो मातृशक्तियां हैं वो अपने दैनिक दिनचर्या में योग को समाहित करें। और अब जागरूकता आ भी रही है, हम जगह जगह पार्कों में भी देखते हैं कि मातृशक्तियां बहुत अच्छी तादाद में बैठ करके सामूहिक योगाभ्यास भी करती है, प्राणायाम भी करती है। और ये जो कपाल भाती और अनुलोम विलोम है
0: जी,
1: और स्पेशली बद्ध कोणासन, ये महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। और आयुर्वेद की दृष्टि से योग के साथ साथ यदि महिलाएं शतावरी चूर्ण का प्रयोग रात को दूध के साथ करती हैं तो उनके वो शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं और उनसे संबंधित जो रोग होते हैं महिलाओं में उन सबको भी आरोग्यता प्रदान करती है।
0: क्या बात है, आपने अपनी बातों में सब समस्याओं का हल बता दिया है। और अब क्योंकि आप प्राचार्य भी हैं, अगर किसी को योग से संबंधित कोई प्रश्न होता है या वो कुछ समाधान चाहते हैं वो आपसे किस तरह से संपर्क कर सकते हैं?
1: हमारे यहाँ राजकीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय का ही अपना एक संबद्ध चिकित्सालय है
0: जी,
1: जो पूर्णतः राजस्थान सरकार का है, वहाँ पर योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र चलता है। उसमें दो हमारे यहाँ योग के जो शिक्षक हैं नेचुरोपैथी के, वो चिकित्सक वहाँ पर लगे हुए हैं। सुबह 7 बजे से प्रतिदिन 8:30 बजे तक निशुल्क 365 दिन योग क्लास चलती है। साथ ही जो मिट्टी पानी, फास्टिंग थेरेपी, उपवास पद्धति और जो ये अपने जल नीति, रबड़ नीति, कटी स्नान, भाप स्नान, हाइड्रोकोलोन और एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, सुजोग थेरेपी, ये जितने भी वैकल्पिक जो चिकित्सा पद्धतियां हैं हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति की मूलभूत प्राचीन जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, इन सबका हम योग नेचुरोपैथी के माध्यम से निशुल्क वहाँ चिकित्सालय में सरकार ने व्यवस्था की हुई है। हमारे यहाँ प्रतिदिन उस ओपीडी में बहुत से रोगी आते हैं और साथ ही जो बिना दवाइयों के ठीक होना चाहते हैं
0: जी,
1: वो योग प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान की उस यूनिट में परामर्श करते हैं, योगाभ्यास करते हैं। और 40 बेड हमारे हॉस्पिटल में सुरक्षित हैं, उसमें इससे संबंधित रोगी वहाँ भर्ती भी रहते हैं जिन्हें निःशुल्क जो है आहार विहार, योगासन और ये सब षटकर्म पंचकर्म की सुविधाएं वहां पर उपलब्ध कराई जाती
0: है। जी जी, आपकी सभी जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी, प्रसार भारती आकाशवाणी कोटा का मुझे यहाँ अवसर दिया बोलने का, उसके लिए बहुत बहुत प्रसार भारती आकाशवाणी कोटा का हृदय से आभार।
0: जी तो श्रोताओ, आज की इस बातचीत से आप अवश्य लाभान्वित हूँ, इसी आशा के साथ अब हम अपने अतिथि के साथ विदा चाहते हैं। नमस्कार।
2: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे

0: ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
4: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

वार्ता विषयता हम मना रहे हैं विश्व योग दिवस। बातचीत कर रहे थे डॉक्टर नित्यानंद शर्मा से राजेश महावर। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं।

0: FM 102 साथ 103.6 मेगाहर्ट्ज, मीडियम वेव 212.3 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, ये आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण है। आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत।
1: तुम ऐसा करो, ये गाओ मेरे नैना।
0: तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं FM 102 पर चित्रपट संगीत के सफर का पहला गीत सुरेश वाडकर अनुराधा पौडवाल की मधुर आवाजों में फिल्म भ्रष्टाचार।
1: मीठी मीठी।

0: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
4: जब एक परिवार को अपना घर मिलता तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस और सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम यानी कि चित्रपट संगीत में आप सभी हैं अपनी रेडियो दोस्त नीतू कुमावत के साथ, और हम साथ मिलकर के करेंगे हिंदी सिनेमा यानी कि बॉलीवुड के उन मधुर से गीतों का सफर, जिन्होंने न जाने कितने दिलों को छुआ है, कितनी यादों को संजोया है और कितने रिश्तों को सुरों में पिरोया है। तो चलिए ऐसे ही एक सुरों में पिरोया हुआ रिश्ता देखते हैं फिल्म बॉर्डर से, रूप कुमार राठौर की मधुर आवाज में ये गीत, जिसे लिखा जावेद अख्तर ने, संगीत अनु मलिक का।

ऐसा ही एक गीत फिल्म बंटी और बबली से। श्रोताओं, इनमें मधुर आवाजें हैं सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की। इस गीत को लिखा है गुलजार ने और संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

फिल्में बदलती रहती है, कलाकार भी बदलते रहते हैं, समय भी बदलता रहता है, लेकिन अच्छे गीत कभी नहीं बदलते। वो कभी पुराने ही नहीं होते। उनकी मिठास, उनकी फीलिंग्स, उनके बोल हमेशा हमारे दिलों में बसे रहते हैं।

संगीत वो जादू है जो बिना कुछ कहे दिल की बात कह देता है, कभी मुस्कान बनकर, कभी याद बनकर और कभी किसी अपने की आवाज बनकर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। कुमार सानू, अलका याग्निक की मधुर आवाजों में फिल्म चमत्कार इस गीत को लिखा है, नहीं लिखेंगे नहीं, हम इस गीत को सिर्फ सुनेंगे। तो चलिए सुनते हैं पहले ये गीत, फिर बताएंगे आपको इसकी डिटेल।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
4: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस और सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: श्रोताओं, फिल्मी गीतों की सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है कि इनमें जिंदगी के हर रंग समाये होते हैं। कभी प्यार, कभी दोस्ती, कभी उम्मीद, कभी इंतजार, कभी खुशी और कभी कभी थोड़ा सा दर्द भी। और शायद इसी वजह से हर श्रोता का कोई ना कोई पसंद का गीत जरूर होता है। और हमें उम्मीद है कि फिल्म संगीत के सफर में आपको सभी गीत पसंद आ रहे होंगे। तो चलिए सुनते हैं लता मंगेशकर, सोनू निगम की मधुर आवाज में ये सभी का पसंदीदा गीत।

मोहब्बत और संगीत का रिश्ता भी ना बड़ा ही अनोखा होता है। जब दिल की बातें शब्दों में न समा पाए तो गीत उन्हें बड़ी खूबसूरती से बयां कर देता है। इसी एहसास के साथ सुनते हैं एक प्यारा सा गीत, पंकज उदास अनुराधा पौड़वाल की मधुर आवाजों में। श्रोताओं, इस गीत को लिखा है इब्राहिम अश्क ने और संगीत से सजाया राजेश रोशन ने फिल्म बाहर आने तक।

दोस्तों, सुरों का ये खूबसूरत सा सफर अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, लेकिन संगीत की दुनिया में सफर कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि गीतों की यादें हमेशा हमारे साथ रहती है। सुनते हैं सफर का आखिरी गीत, फिल्म बरसात। आवाज़ें अलका याग्निक, कुमार सानू का इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत है नदीम श्रवण का।

0: श्रोता, उम्मीद है कि फिल्मी गीतों की ये शाम आपके दिल को जरूर छू हुई, आपके चेहरे पर मुस्कान कहीं ना कहीं आई होगी। मैं नीतू कुमावत आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, शुभरात्रि। और हाँ, याद रखिए, जिंदगी में अगर संगीत है तो हर दिन एक खूबसूरत कहानी जरूर बनेगा। फिर मिलेंगे कुछ नए गीतों और नई यादों के साथ में। लेकिन हाँ, रात्रि 9 बजे सुनना न भूले SMS के बहाने चंबल चैनल के तराने। श्रोताओं, ये आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल

0: के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। और चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
1: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
2: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र

0: 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था, इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूरदराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
2: As our foreign policy,
3: हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
2: Remains a matter of right, not as a struggle.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
4: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
5: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, तो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
4: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
6: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
4: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
7: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए

0: सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है तथा उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
2: This is the country.
3: यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
1: लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए, हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पौष अधिनियम के अंतर्गत व्यापक उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए 18 उपायों की सिफारिश की है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को 24 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिनसन को हराया। चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राची और मीनाक्षी ने अंतिम 4 में स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग में दीपक और निखिल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: FM 102 और साथ ही 103.6 MHz मीडियम वेव 212.3 एक मीटर यानी 1413 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण है। श्रोताओ, इस समय स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम SMS के बहाने चंबल चैनल के तराने।

आकाशवाणी के चंबल चैनल पर रात के ठीक 9 बज चुके हैं और मैं आपकी रेडियो दोस्त नीतू कुमावत लेकर हाजिर हूँ आपका अपना पसंद का कार्यक्रम SMS के बहाने चंबल चैनल के तराने। एक ऐसा कार्यक्रम जहाँ पर जुड़ते हैं आपके संदेश, आपकी यादें,

आपकी फीलिंग्स और आपके वही सदाबहार गीत। दोस्तों, संगीत केवल सुरों का संगम नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने वाला एक खूबसूरत सा एहसास है, और जब इस एहसास में आपके संदेशों की मिठास घुल जाए या शामिल हो जाए तो वाकई में कार्यक्रम और रंगीन हो जाता है। तो देर किस बात की, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। और हाँ, जल्द से जल्द आपको क्या करना है, फोन उठाना है, मैसेज टाइप करना है, अपना नाम, अपने शहर का नाम और वो गीत जो आप सुनना चाहते हैं, और भेज देना है सिर्फ इस नंबर पर 9530012020 9530012020।

FM 102 पर आप बने हुए अपनी रेडियो दोस्त नीतू कुमावत के साथ। श्रोताओं, आप अपने संदेश भेजिए, अपना नाम बताइए, अपना शहर बताइए और हमें बताइए कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं। हम आपके संदेश पढ़ेंगे और आपकी पसंद के गीतों को इस कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं संगीत और संदेश के इस खूबसूरत से सफर की। तो चलिए, फाजिलका पंजाब से हमारे पास में एक खत भेजा है, संदेश भेजा है भूषण विशु विशाल शालनी टिवांची, और इन्होंने कहा है कि आपकी पसंद का कोई भी गीत सुना दीजिए। साथ ही में भटिंडा से मैसेज आया है राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित और तानिया ने मैसेज भेजा है, और साथ ही में हनुमानगढ़ राजस्थान से सचिन, सतीश, योगेश, युद्धव और साथ ही में विक्रम। अगला मैसेज भेजा है सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा और साथ ही में माही मलिक ने। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक, और इन्होंने भी कहा है कि आप अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनाइए। और दूसरा मैसेज है भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल मेहरा और साथ ही में कुणाल मेहरा। जी नमस्ते, बिल्कुल इन्होंने हमें नमस्ते भी कहा है। और अगला जो मैसेज है वो आया है चंडीगढ़ से, क्या बात है, राजस्थान के बाहर से मैसेज आ रहा है, सतीश अनेजा और साथ ही में विमला अनेजा। अगला मैसेज आया है वापस से छत्तीसगढ़ से, भेजा है ये भेजने वाले हैं जी दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। तो चलिए, वैसे तो जितने भी मैसेज आए हैं, संदेश आए हैं, उन्होंने सभी ने कहा है कि आप अपनी पसंद का कोई सा भी गीत सुना दीजिए। तो चलिए सुनते हैं आपकी उद्घोषिका की पसंद का ये गीत फिल्म जब वी मेट, मोहित चौहान की मधुर आवाज में। और हाँ, नंबर जरूर याद रखिएगा 9530010020।

संगीत संगीत वाकई में जीवन की जो भाग दौड़ रहती है ना उसके बीच में एक बिल्कुल मीठा सा विराम है। विराम यानी कि स्टॉपेज, एक थके हुए मन को सुकून देता है और खुशियों को नई उड़ान देता है। फिल्म संगीत की दुनिया में कुछ ऐसी ही होती है जहां पर हर गीत अपने अंदर एक कहानी यानी एक स्टोरी लेकर के बैठा होता है। अब देखिए ना कितना सरल है, अभी आप कार में हैं तो FM सुन सकते हैं, कहीं काम कर रहे हैं, रसोई में है, किचन में है, तो बस FM ऑन किया, 102 लगाया और सुन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी पसंद का गीत सुन सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि कार्यक्रम चल रहा है SMS के बहाने चंबल चैनल के तराने, और आपकी रेडियो दोस्त नीतू कुमावत इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही है। तो जल्द से जल्द अपना फोन उठाइए, मैसेज बॉक्स खोलिए, व्हाट्सएप खोलिए और अपना मैसेज भेज दीजिए नंबर 9530012020। चलिए पढ़ते हैं अगले संदेश। पंजाब से भेजा है विनोद, सीमा, लक्षिता, यशिका और साथ ही में यशिका की मदर यानी कि उनकी माँ विद्या देवी और उनकी पूरी फैमिली मेंबर्स ने ये मैसेज भेजा है। अगला है सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा, सार्थक शर्मा, इन सभी ने ये संदेश भेजा है। बूंदी से संदेश आया है पीयूष का, रिया का, संजू और नितेश का। अगला हिसार से राजकुमार डुडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र सिंह। और अगला संदेश है हमारे पास में हांसी से आया है राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष, योगी और डब्बू और साथ ही में बब्बू भी। अरे वाह, बहुत बढ़िया नाम है। तो चलिए इन सभी की पसंद पर सुनते हैं ये गीत जो भेजा है इन्होंने अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए। अलका याग्निक, सोनू निगम की आवाजें हैं फिल्म जीत। इस गीत को लिखा समीर ने और संगीत है नदीम श्रवण का, सिर्फ FM 102।

जिंदगी की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमें ठहर करके जीना सिखाते हैं। संगीत उन्हीं खूबसूरत पलों का नाम है। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम यानी कि SMS के बहाने चंबल चैनल के तराने में आपके साथ है आपकी रेडियो दोस्त नीतू कुमावत। शुद्ध फिल्मी गीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि हमारी भावनाओं के सच्चे साथी हैं। कभी इनमें कुछ प्यार होता है तो कहीं उम्मीदें होती हैं, कहीं पर सपने होते हैं तो कहीं पर जिंदगी की सच्चाई होती है। तो आइए सुरों के इस कारवां के साथ निकल पड़ते हैं एक यादगार सफर पर। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ अपने मैसेजेस भेजने हैं। तो चलिए लेते हैं अगला मैसेज। भेजा है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से और इन्होंने कहा है, सप्रेम नमस्कार जी, आप कैसे हैं? हम अच्छे हैं, बिल्कुल बढ़िया है। भेजने वाले हैं महाराजा कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी जोगेशपुरी, ट्विंकल मीनाक्षी, डिंपल निशा तुलसी और साथ ही में दिशा गोस्वामी और साथ ही में श्री गंगानगर से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति और साथ ही में भूमिका। अगला जो मैसेज हमारे पास में आया है वो भेजा है श्री गंगानगर राजस्थान से राम कुमार रिवाड़ और साथ ही में चंद्रकला रिवाड़ ने। तो चलिए सुनते हैं इन सभी की पसंद पर ये गीत।

पता है गीतों की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या होती है? ये कि वो भाषा, उम्र और दूरियों की सीमाओं को बिल्कुल पार करके सीधे दिल तक पहुंचता है। जी हाँ, और ऐसे ही दिलों तक गीत पहुंचाता है FM 102 यानी कि आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल। तो चलिए पढ़ते हैं हमारे अगले संदेश। भेजने वाले हैं उत्तराखंड से निसार नौशाद, बेबी आलिया और साथ ही में अयान बाबू। सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता, तुषार और साथ ही में रिंकी शेखावत। अगला मैसेज जो हमारे पास में आया है वो है पंजाब से, भेजा है मिंटू, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा ने। और एक मैसेज हमारे पास में आया, उन्होंने कहा कि आप हमारे इस मैसेज को जरूर शामिल करिएगा, सप्रेम नमस्ते कबूल करें, कोई भी गीत शामिल करें, गंगानगर से भेजा है। और भेजने वाले हैं सर्वजीत सिंह जॉसन, कौर जॉसन, गुरमन और साथ ही में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से, उनके पास में मैसेज आया है कि आप हमारा ये मैसेज राजस्थान कोटा में ज़रूर पहुंचाएं। और वो भेजने वाले हैं आदर्श पाल सिंह जॉसन और साथ ही में वैंकूवर कनाडा से रॉबिन सिंह जॉसन। तो चलिए कोटा, राजस्थान, अलग अलग स्टेट यानी कि अलग अलग राज्य और साथ ही में कनाडा और ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न से भी ये मैसेज आया है। तो अब सुनते हैं सभी की पसंद का ये गीत FM 102 पर।

रात की खामोशी में जब हवाएं धीमे धीमे गुनगुनाने लगती है, जब दिन भर की थकान सुकून तलाशती है, तब संगीत बन जाता है हमारा सबसे प्यारा साथी। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम SMS के बहाने चंबल चैनल के तराने में मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त नीतू कुमावत। दोस्तों, फिल्मी गीत केवल धुनों का संगम नहीं बल्कि हमारे जीवन की अनगिनत एहसासों का आईना होता है। कुछ गीत मुस्कुराहट के साथ में चलते हैं तो कुछ याद बनकर के दिल में बसते हैं और कुछ उम्र भर के लिए कहानी बन जाते हैं। ऐसे ही संदेशों को हम शामिल करते हैं हमारे SMS के बहाने चंबल चैनल के तराने कार्यक्रम में। आपको करना क्या है, सिर्फ अपना फोन उठाना है और अपना संदेश टाइप करना है, भेज देना है इस नंबर पर 9530012020। अगला संदेश हमारे पास में आया है भटिंडा पंजाब से, भेजा है प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर, करणवीर करण, दीपेंद्र, कुलदीप, एकम, दमन, अभिजीत और साथी में वरिंदर ने। अगला मैसेज है जाखूद राजस्थान से, भेजा है शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदर, योगेश, दीपक और साथी में पूजा खटक ने। तो चलिए सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत जिसे गाया है अलका याग्निक, उदित नारायण ने।

दोस्तों संगीत यानी कि गीत कितने अलग होते हैं ना, न किसी परिचय की जरूरत होती है और न किसी भाषा की, सीधे दिल से निकलता है और दिल तक पहुंच जाता है। फिल्मी गीतों की दुनिया में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहां पर हर एक धुन में छिपी होती है एक कहानी और एक एक शब्द में उसका एहसास। तो चलिए सुनते हैं, पढ़ते हैं अगला संदेश। उत्तर प्रदेश से आया है, भेजने वाले हैं मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, काजल, तन्वी, मानवी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर जी। इन्होंने कहा है नमस्कार। नमस्कार आप सभी को, और हमारा कोई भी गीत आप इसमें शामिल करिए। अगला मैसेज है हरियाणा से, भेजा है संजय, प्रियंका और दारा पंडित ने, और इन्होंने बताया है कि अपना आप ये जो गीत है ये आप जरूर शामिल करिए, और हाँ हमारे नेम जो है वो जरूर आपके कार्यक्रम में शामिल करिए। देखिए कितनी खुशी होती है ना जब किसी का नाम हम सुनते हैं, वो भी एफएम से, रेडियो से। तो चलिए ऐसे ही आपके नाम और आपके संदेश हम सुनाते रहेंगे। आपको करना क्या है, सिर्फ अपने संदेश और अपना नाम

दोस्तों, कहा जाता है कि शब्द सोच को बताते हैं, लेकिन संगीत भावनाओं को बताता है। और जब शब्द और संगीत मिल जाते हैं तो जन्म होता है गीत का, जो पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में बसा रहता है। आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त नीतू कुमावत। आज के संगीत में प्रस्तुति में हम सुन रहे हैं ऐसे गीत जिन्होंने समय की सीमाओं को पार करके अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो चलिए पढ़ते हैं, हमारा अगला संदेश भेजा है श्री गंगानगर राजस्थान से। भेजने वाले हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और साथ ही में खुशी गोस्वामी। हरियाणा से एक मैसेज आया है जिला सिरसा से, भेजा है सतवीर सिंह देवेंद्र।

हर दौर का अपना संगीत होता है, लेकिन कुछ धुनें ऐसी होती है जो हर दौर की हो जाती हैं। वर्षों बीत जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, मौसम बदल जाते हैं, लेकिन वो गीत आज भी उतने ही ताजा लगते हैं जितने पहली बार हमने सुने थे। रात की नीरवता में संगीत की वो मिठास कुछ और ही बढ़ जाती है, जैसे चांदनी किसी नदी पर उतर आई हो, वैसे ही मधुर धुनें मन के कोनों को रोशन कर देती है। अगला गीत सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं आज के संदेश। श्रोताओं, ये संदेश भेजा है जयपुर से, भेजने वाले हैं पंकज, प्रभा, आराध्या और हर्षिल। साथ ही में एक हरिद्वार से एक संदेश आया है, भेजा है भारती, देवांश और देव ने। कोटा महावीर नगर से एक संदेश आया है, भेजा है इशिका, दिलीप, विकास, इशु और पल्लवी ने। और इन्होंने अपना एक मैसेज भी दिया है और कहा है कि 21 तारीख को हमारा एग्जाम है, लेकिन हम पढ़ भी रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा जब हम गीत सुनते हैं, संगीत सुनते हैं, तो हम अपने आप को तरोताजा सा महसूस करते हैं। बिल्कुल, फिल्मी गीतों में केवल मनोरंजन नहीं होता, बल्कि सपने होते हैं, उम्मीद होती है। और जहां हम इतनी पढ़ाई करते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, वहीं हमारे दिमाग को थोड़ा सा तरोताजा करने की जरूरत भी होती है। और कहते हैं कि संगीत एक ऐसी यात्रा होती है जिसका कोई अंतिम पड़ाव नहीं होता है। तो चलिए, सभी को हम तरोताजा करते हैं और सुनवाते हैं एक बेहतरीन सा गीत आप सभी के FM 102 पर।

श्रोताओं, पता है आप सभी के संदेश पढ़ते पढ़ते और गीत सुनाते सुनाते अभी नजर गई घड़ी पर, और पता है उसने क्या कहा कि अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। वाकई में बीते एक घंटे में आपके संदेशों ने शब्दों का रूप लिया और आपकी भावनाओं ने सुरों का और आपकी फरमाइशों ने गीतों का। यही अपनापन, यही जुड़ाव और यही स्नेह इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी पहचान है। उम्मीद है कि आज का ये संगीतमय मुलाकात आपके दिल के किसी कोने में एक मीठी सी याद को छोड़ करके जाएगी। अनुमति दीजिए, नीतू कुमावत आपसे विदा चाहती हूँ। फिर होगी मुलाकात, फिर आएंगे आपके संदेश, फिर सजेंगी आपकी पसंद के तराने। तब तक के लिए नमस्कार।

0: गीत के सुनने वालों को राजुल का नमस्कार। ये रात की चादर में छिपी आसमान से झरती हुई चांदनी का लहजा, ये रुक रुक कर चलती हवाओं के झोंकों की महक, चाहतों के नीड़ में कुछ बुने कुछ अधबुने से ख्वाब, और उनमें कुछ लरसते जज्बातों की मीठी सी चहक, कहती है वो दिल की जुबां जिस पर कुर्बान है ये सारा जहां।
1: जब मोहब्बत जवान होती है

एक साथ जिसके होने से वीराने भी गुलजार हो जाते हैं, दिल में महक उठते हैं कितने अरमा, और खुशबू आंखों में उतर आती है। बातों के सिलसिले में अक्सर वो एक नाम बार बार आता है और जिंदगी कितनी खूबसूरत नजर आती है।

एक वादा धड़कनों में सुनाई देता है, एक इल्तिजा बांधी है सांसों की डोर से। तुम्हारी खुशबू आती है हवाओं में, तुम्हारा नाम गूंजता है फिजाओं में।

0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत।
1: तेरे दिल में जिस दिल से

रात हर रोज सजाती है एक नया ख्वाब, और इन आंखों ने किया है सिर्फ उस रात का इंतजार, जिसके ख्वाबों में हो बस तेरा ख्याल, धीरे से बयां हो जाए वो शबनमी एहसास। आज तो वही मन्नतों की रात आई है, संग उन्हीं कदमों की आहट लाई है।

वो पाक जज्बा जिसके कदमों में छुप जाता है आसमां, यही है वो सबसे अजीम लफ्ज जिसमें सातों समंदर और ये पूरी दुनिया समा जाती है। अगर सिमट जाए तो एक नन्हा सा दिल काफी है, जिसकी हर धड़कन पर लिखा हो तो सिर्फ मोहब्बत।

ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं।

ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं।

0: भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, ये आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की

0: आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्ण ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री कृष्ण ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक गतिविधियों का अभिन्न अंग बन गई हैं। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण ने निक्सी की 4 नई डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया। IX पोर्टल, MyIRINN पोर्टल, .IN ऑक्सन पोर्टल और एक AI संचालित हुज स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने, परिचालन दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भारत इंटरनेट इकोसिस्टम में निगरानी के लिए डिजाइन किए गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi today disbursed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This dispersal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said in the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation and uphold the highest standards of quality. He said India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in the years to come. Mr. Modi said the PM Vikasit Bharat Rozgar Yojana is about empowering first-time employees and building a bridge between youth and the industry.
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है।
1: Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone of a coal gasification project worth over 25,000 crore rupees at Lakhanpur in Jharsuguda district of Odisha tomorrow. The Ministry of Coal informed that the project marks a historic milestone as the country's first commercial-scale coal-to-ammonium nitrate facility. President Draupadi Murmu today inaugurated AIIMS Bhubaneswar Satellite Centre and Mega Health Camp at the Subdivisional Hospital in Rai Rangpur. The initiative is expected to enhance access to quality healthcare.

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं पत्रकार सौरभ शुक्ला।
1: आकाशवाणी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्र प्रथम के मुद्दे पर। तो प्रोफेसर अंशु जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि जो एक 12 साल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा रही है और इसमें राष्ट्र प्रथम की अवधारणा और खास तौर पर हम जो पॉलिसी मेकिंग या नीति निर्माण की प्रक्रिया होती है उसे आप किस तरह से देखते हैं कि वैश्विक परिवेश में, परिदृश्य में किस तरह से इसे एक नई दिशा दी गई है।
2: विगत 12 वर्षों में हमने भारत की यदि विदेश नीति और आंतरिक नीति की दृष्टि से देखें तो वैश्विक राजनीति में एक अलग पहचान बनाई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ साथ हमने वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा दर्शन है, जो सदियों पुराना है, उसको भी वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है और एक रणनीतिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखते हुए उसका इस्तेमाल करते हुए विश्व बंधुत्व की भावना के साथ हमने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े परिवर्तन किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब नीति निर्माण की हम दृष्टि से देखते हैं तो हमने भारत की यदि हम ब्रांड इमेज को देखें तो वो एक विगत 12 वर्षों में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर ये इमेज वैश्विक स्तर पर बनी है, जिसमें भारत को ग्लोबल साउथ का प्रणेता दूसरे देश मानने लगे हैं और इसके पीछे कारण है। उदाहरण स्वरूप जब 2023 में हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी थी, जिसे कि पश्चिम के शक्तिवान देशों का एक मंच माना जाता था, उसका एक डेमोक्रेटाइजेशन करते हुए हमने अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट मेंबर के रूप में G20 से जोड़ा। तो इस प्रकार से ग्लोबल साउथ की नेतृत्व की भूमिका में एक महत्वपूर्ण योगदान हमारी पॉलिसी मेकिंग की वजह से अंतरराष्ट्रीय

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा जो पश्चिम के तमाम शक्तिवान देश हैं और ग्लोबल साउथ के विकासशील और अविकसित देश हैं, उनके बीच संतुलन बनाए रखने का एक पुल का काम भारत ने किया है, लेकिन इसके साथ साथ अपने राष्ट्रीय हितों को भी सर्वोपरि रखा है। तो जब बात आई कोविड की, कोविड के काले समय के दौरान हमने न सिर्फ अपने लिए 140 करोड़ हमारी आबादी के लिए हमने टीके बनाए, होम ग्रोन वैक्सीन बनाए, हमने दुनिया भर के देशों को, लगभग 150 देशों को हमने जीवन रक्षक दवाएं और टीके भेजे और वैश्विक स्वास्थ्य

0: अलाए वर्षों से हैं, उस यात्रा को हम जारी रख पाए और दूसरी ओर अमेरिका जैसे देश के साथ हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया सफल अध्याय शुरू किया। हम इसराइल के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं लेकिन हमारी विदेश नीति में पैलेस्टीन को भी मान्यता है। तो इस प्रकार से उधर यूक्रेन के साथ भी संवाद जारी रखा, क्वाड के माध्यम से अमेरिका के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी की, तो ब्रिक्स की भी हमारे पास महत्वपूर्ण मेंबरशिप है। वैश्विक सम्मान में वृद्धि हुई इस नीति की वजह से, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में 30 से अधिक देशों के द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान से नवाजा गया है। और इसी से समझ में आता है कि कूटनीतिक दृष्टि से, नीतिगत दृष्टि से भारत किस तरह से एक सफल देश के रूप में आगे बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल श्री, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब हम इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, तो विदेश नीति के मोर्चे पर भारत के पारंपरिक और नए साझेदारों के साथ संबंधों को किस तरह से प्रभावित किया गया, क्या लगता है आपको, कैसा बदलाव रहा है, ये अच्छा बदलाव रहा है या कुछ चुनौतियां भी रही हैं?
0: ये एक बड़ा और सफल बदलाव मैं मानती हूँ। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब शीत युद्ध चल रहा था जिसमें दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। तब की स्थितियों को देखते हुए भारत ने नॉन अलाइन रहने का निर्णय लिया और तब की स्थितियों के हिसाब से वो महत्वपूर्ण था, जिसमें हम न यूएसएसआर के ब्लॉक के साथ न अमेरिका के ब्लॉक के साथ अटैच हुए, बल्कि जो विकासशील देश थे एशिया के, लैटिन अमेरिका के, अफ्रीका के, उनके साथ हमने एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया। लेकिन पिछले 12 वर्षों में जिस प्रकार से भू राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, इसमें यह आवश्यक हो जाता है कि अलग अलग विषयों को लेकर जहां जिसके साथ हमारी एक साझा हमारे इंटरेस्ट्स हैं या हित हैं, वहां पर उन सकारात्मक हितों को ध्यान में रखते हुए हम हाथ मिला हैंडशेक करें। तो भारत विगत 12 वर्षों में एक बड़ा परिवर्तन ये रहा कि नॉन अलाइंड से ऑल अलाइंड देश बना, और यही कारण है कि एक और रशिया के साथ हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो है ही, हम नेचुरल अलाय है रशिया के, दूसरी और अमेरिका के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें कि काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स को लेकर हमने विशेष तौर पर काम शुरू किया। और वहीं एक इशू बेस्ड इंगेजमेंट भी हमने कूटनीति में जोड़ा, और वो क्या है, तो अलग अलग जो मुद्दे हैं जैसे कि ऊर्जा सुरक्षा का क्षेत्र हम देख लें, स्वास्थ्य का क्षेत्र देख लें, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या तकनीक की दुनिया को देख लें, कृषि का क्षेत्र देख लें, शिक्षा का क्षेत्र देख लें या सामरिक क्षेत्र देखें, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों के साथ हम जुड़े। हम लैटिन अमेरिका के देशों के साथ विगत 12 वर्षों में पहली बार इतना करीब गए, हम अफ्रीका के देशों के पास गए। इन देशों के पास बड़ी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज हैं लेकिन ये अविकसित देश है, तो इनके साथ भारत ने एक रोड मैप बनाया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स अलग अलग देशों के साथ शुरू की। एशिया में हमने अपने पड़ोसियों के साथ और चीन जैसे देश के साथ में रिश्तों को सामान्य करने का प्रयास किया, हालांकि चीन की तरफ से जिस तरह से हमारी सीमाओं पर लगातार चुनौतियां प्रस्तुत की, तो वहां पर फिर हम चुप भी नहीं रहे। तो सबसे हमारी यदि विगत 12 वर्षों में मैं विदेश नीति की सफलता बताऊं तो वो ये है कि हम एक तरफ राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ लेकिन विश्व बंधुत्व का दर्शन रखते हुए अलग अलग देशों के साथ अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी मल्टीपोलैरिटी को, मल्टी अलाइनमेंट को, वैश्विक सुरक्षा शांति को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर चीन जैसे देश जब आकर हमारी सुरक्षा के लिए कोई खतरा उत्पन्न करते हैं या पाकिस्तान जैसा देश जो आतंकवाद को लगातार पल्लवित पोषित करता है, तो फिर वहां पर भारत सक्षम, समर्थ और सशक्त रूप से जवाब भी देता है। तो इसमें चुनौतियां तो निश्चित तौर पर आती हैं जब पाकिस्तान जैसा देश हमारे सामने हो जो अपने प्रॉक्सीज को या आतंकवादी संगठनों को लगातार एक्टिव करके आगे बढ़ाते हुए भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां उत्पन्न करने का काम करता हो, लेकिन दूसरी ओर द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर हमने जो साख बनाई, जो सफलता आ गई, जिस तरह से दूसरे देशों की सहायता की जब उन पर जरूरत पड़ी, तो फिर यहाँ पर इन चुनौतियों का समाधान भी हम निकाल पाने में सफल रहे हैं।
1: बिल्कुल, जाहिर है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कामयाबी भारत को हासिल हुई उसके बारे में अंशु जोशी जी बता रही थी। अब हम रुख करते हैं एमपी नथैलस आपका। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर अगर हम बात करें, इंटरनल सिक्योरिटी के मसले पर, तो पिछले 12 सालों में हुए बदलावों को आप किस तरह से आंकते हैं और उसका श्रेय किसे देना चाहेंगे?
2: जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो अभी एनवायरमेंट है, ये आप देखेंगे पहले काफी डिस्ट्रिक्ट में माओइस्ट का काफी प्रभाव पड़ा हुआ था, जिसके वजह से वहां पर डेवलपमेंट बिल्कुल रुका हुआ था। लेकिन अब जो है, पिछले कुछ सालों में इतना जोर दिया गया माओइस्ट को खत्म करने के लिए, और सबसे बढ़िया बात तो ये रहा कि हमारे गृह मंत्री ने एक आदेश जारी कर दिया कि 31 मार्च तक 2026 में एक बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। तो इसको मद्देनजर रखते हुए सीआरपीएफ और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस ने काफी जोर लगाकर, खासकर छत्तीसगढ़ में झारखंड

0: में और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में जितने भी आतंकवादी थे, इनके पीछे बड़े पैमाने पर ऑपरेशन लगाए और उन ऑपरेशन में कई माओवादियों को मार गिराया, और उनको मार गिराने की वजह से इनका मनोबल इतना नीचे गिर गया कि करीबन 5000 माओवादी पिछले 2 साल के अंदर अपने आप खुद आके सरेंडर कर गए। और सबसे बढ़िया ये इसका प्रभाव रहा कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम निकाला, स्कीम निकाला, जिसमें कि उनको 50,000 रुपये दिए जा रहे थे, उसके अलावा उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी और मकान दिए जा रहे थे। इनके वजह से काफ़ी तादाद में माओवादी अपना जो जंगल में रिहाइश थी वो छोड़ के बाहर आए और सरेंडर कर दिए फोर्सेस के सामने, जिसके वजह से माओवादी का बिल्कुल खात्मा हो गया है। और यहाँ इनके नेता भी जो थे, वो भी कई नेता, बड़े बड़े नेता जो कि पहले बड़े कट्टर आतंकवाद थे, उन्होंने आगे आकर अपने आप आत्मसमर्पण किया और इसके वजह से माओवादी तकरीबन ख़त्म ही हो गए। अभी केवल एक ही बचा हुआ है झारखंड में, जो कि पॉलिट ब्यूरो का मेंबर है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में वो भी मारा जाएगा या वो खुद सरेंडर कर लेगा, क्योंकि अब उनको भी पता है कि अब ये चलने वाला नहीं है। उन्हीं के कई फॉलोअर्स सरेंडर कर चुके हैं और ये मिसर बेसरा के पास केवल कुछ ही आदमी बच गए होंगे जो कि सेरेंडा फॉरेस्ट के जंगलों में घूम रहे हैं, और ऑपरेशंस भी कोबरा के बड़े जोरों से जारी है और कुछ दिनों में ये मारे जाएंगे या खुद सरेंडर कर देंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में करीबन 8000 जो मिलिटेंट्स थे, इंसर्जेंट्स थे, उन्होंने खुद सरेंडर किया, जिसमें कार्बी अंगलोंग के इंसर्जेंट्स थे, बोडोस के इंसर्जेंट्स थे और आसाम के भी इंसर्जेंट थे, और उसके अलावा मणिपुर में जो UNLF के इंसर्जेंट थे, सब ने सरेंडर किया है। और उनके सरेंडर करने के बाद काफ़ी मात्रा में वहाँ पर हथियार ख़त्म हो गए और इंसिडेंट भी ख़त्म हो गए, और उस वजह से काफ़ी वहाँ पर शांति फैलाया गया उस इलाके में, और उसके वजह से डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है, और इन डेवलपमेंट्स के वजह से लोगों को बहुत फ़ायदा चल रहा है। पहले यह डेवलपमेंट वगैरह रुके हुए थे क्योंकि आतंकवाद ने काफ़ी ज़ोरों से वहाँ पर कब्जा मार के रखा हुआ था, और इसको ख़त्म करने के बाद अब डेवलपमेंट जारी हो गई है, सड़कें बन रही हैं हर जगह, कनेक्टिविटी बढ़िया बन रहा है, और करीबन 70 से 80 एयर स्ट्रिप्स भी रिवाइव कर दिए गए हैं कई जगहों में, और जिनके वजह से अब वहाँ पर एयर फ्लाइट्स भी शुरू हो गए हैं। अब लोगों को काफ़ी सुविधा पहुँच रही है कि वो एक जगह से दूसरे जगह, नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं दूसरे जगहों में भी आराम से सफर कर सकते हैं।
1: इसके अलावा आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि घरेलू मोर्चे पर अपने रक्षा उत्पादों में हम किस तरह से और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में डिफेंस सेक्टर का जो बजट है वो बड़े पैमाने पर बढ़ा है, तो उत्पादन किस तरह से हो रहा है जो भारत को और मजबूती की तरफ आगे बढ़ा रहा है?
0: इसमें तो कोई शक नहीं है कि कई जो इक्विपमेंट्स है वो इंडिया में ही बनाए जा रहे हैं, और वो आत्मनिर्भर को अपने फोकस में रखते हुए तकरीबन 38,400 करोड़ का जो है एक्सपोर्ट, वो अब जो है शुरू कर दिया गया है। हमारे यहाँ से हथियार बन रहे हैं और ये एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। उसके अलावा पहले जो हम हथियार मंगा रहे थे बाहर से, उसमें भी काफ़ी गिरावट आई है। करीबन 5,500 डिफेंस आइटम्स जो पहले हम बाहर से मंगाते थे, वो हमने मंगाना बंद कर दिया और अपने ही देश में इन सब का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया। तो इससे बहुत बड़ा फायदा हमारे देश के इकोनॉमी को हो रहा है, और उस वजह से जो युवक हैं उन लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। और हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में, तो इस तरीके से काफ़ी नौकरियां अभी लोगों को मिल रहे हैं। 15 लाख जवानों को इससे काफ़ी फायदा हो रहा है। आज ही के दिन करीबन 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल, अब रुख करते हैं प्रोफेसर जोशी का। मैम, आपसे समझना चाहेंगे कि पिछले 12 सालों में

0: भारत को एक रिएक्टिव नेशन के बजाय एक प्रोएक्टिव नेशन के तौर पर देखा जा रहा है। तमाम उदाहरणों का जिक्र किया आपने कि एक जो ग्लोबल साउथ की एक प्रभावशाली आवाज बन रहा है भारत, साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की भी पहल भी मानवीय दृष्टिकोण से एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो इन सब चीजों का एक फायदा अगर हम एक राष्ट्र के तौर पर देखें भारत को, तो वो किस तरह से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है?
1: आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु चर्चा में जोड़ा, क्योंकि अक्सर हम अपनी विदेश नीति की सफलता की बात करते हैं, हमने किस प्रकार के की नीतियां बनाई और किस तरह से विश्व के अलग अलग कोनों में जाकर के किस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर मित्रता के नए प्रतिमान स्थापित किए, हम इस पर तो बात करते हैं, पर इसके जो आउटकम्स हैं उसकी चर्चा करना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुछ ऐसे टेंजिबल आउटकम्स हैं जो हमने अर्जित किए। उदाहरण बताती हूँ कि किस प्रकार से यूरोपियन यूनियन ने पिछले दिनों भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन की, जिसमें बड़ा महत्वपूर्ण FTA है और इसके साथ साथ एक हिस्टोरिक डिफेंस पैक्ट भी यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ साइन किया और ये एशिया में भारत दूसरा देश है जिसके साथ ये डिफेंस पैक्ट EU ने साइन किया है। अब इस FTA के अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग प्रकार से सकारात्मक टेंजिबल दृष्टि से आउटकम्स इसके निकल के आएंगे और इससे हमारे एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफिकेशन को तो बहुत उछाल मिलती हुई दिखाई पड़ती ही है। प्रोफेशनल मोबिलिटी की दृष्टि से भी हमारे पास, हम इस वक्त दुनिया की जो यूथ आबादी है, हमारे पास 22% जो यूथ पॉपुलेशन है उसका हमारे पास शेयर है। यदि हम प्रोफेशनल्स की दृष्टि से देखें तो स्किल्ड प्रोफेशनल्स का और यंग फोर्स का हम देश है, वी आर अ यंग नेशन। तो यूरोप के इन देशों को इसी प्रकार के स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत है। तो आप देखिए, अपने एक्सपोर्ट्स में इजाफा, इन्वेस्टमेंट्स में इजाफा, हमारा जो बायलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड है EU के सदस्य देशों के साथ उसमें इजाफा, तो निश्चित तौर पर रेवेन्यू जनरेशन में और FDIs में इजाफा, तो इससे ओवरऑल GDP में बढ़ोतरी। और फिर इसके साथ साथ जो एक रोजगार की बात आती है, क्योंकि हम एक बहुत हेविली पॉपुलेटेड देश है, तो उसमें फिर हमको एक सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ती है। और ऐसा हम अलग अलग, यदि आप UAE के साथ के अपने FTA को और हमारी व्यापारिक डील को देखें तो वहां पर भी प्रोफेशनल मोबिलिटी इज इन द सेंटर। आप यदि अभी हमारे साथ, हमारी मर्कोसुर के साथ जो कि लैटिन अमेरिका का एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग ब्लॉक है, उनके साथ भी FTA को लेकर के बातचीत लगभग फाइनलाइज्ड है। पश्चिम एशिया के संकट की वजह से GCC के देशों के साथ भी हमारा FTA लगभग फाइनलाइज था, थोड़ा सा वो मुझे लगता है थमता हुआ नजर आता है वहां की स्थितियों की वजह से, पर उसमें भी प्रोफेशनल मोबिलिटी और इन्वेस्टमेंट्स एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ। तो ये तो टेंजिबल आउटकम्स की बात हुई, मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे अनेकों उदाहरण है। तो अब जैसे यदि मैं डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में जाऊं, तो पहले हम एक नेट इम्पोर्टर देश के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अपनी सफल विदेश नीति के चलते आज हम एक एक्सपोर्टर देश बनके इस एक डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में उभरे हैं, जिसमें अपने आसपास के कई ऐसे देश हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में विशेषकर हमारे होम ग्रोन जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको देख करके और चमत्कृत थे, और भारत से उन्होंने हमारे जो होम ग्रोन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो दूसरे इक्विपमेंट हैं, वो लेना शुरू किया है। बहुत सुखद समाचार है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कुछ हमारा जो मेक इन इंडिया का और विकसित भारत 2047 का रोड मैप है, तो कुछ इस प्रकार के आउटकम्स हैं। उदाहरण स्वरूप वैक्सीन मैत्री, जब हमने 150 देशों को अपने यहां के वैक्सीन भेजे, तो उस समय के ब्राजील के, ये उदाहरण है, ब्राजील के जो राष्ट्रपति थे जैर बोल्सोनारो, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने संजीवनी ले जाते हुए हनुमान जी का चित्र लगाया और हमारे प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हुए कहा कि आप नहीं जानते आपने ब्राजील के लिए क्या किया। इसके बाद ब्राजील के साथ हमारा एक अलग स्तर पर स्ट्रेटेजिक डायलॉग और पार्टनरशिप शुरू हुई। तो हमने जब सोलर अलायंस और बायोफ्यूअल अलायंस की स्थापना की, इसको पायनियर किया, तो ब्राजील उसमें हमारा सबसे बड़ा सहयोगी देश बनकर के सामने आया। तो ये कुछ इस प्रकार के उदाहरण है कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं अपने वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन के साथ, पॉजिटिवली किसी दूसरे देश के लिए अच्छा करते हैं, तो उसके कुछ ऐसे आउटकम्स आते हैं जो फिर हमारी जो ये लंबी सुदीर्घ विकसित भारत की यात्रा है उसमें हमें योगदान करते हुए नजर आते हैं। मैं अमेरिका का उदाहरण दूं, अमेरिका के साथ बहुत महत्वपूर्ण डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में लेमोवा, कॉमकासा और बेका नाम के लॉजिस्टिक सप्लाईज को लेकर के हुए बड़े महत्वपूर्ण समझौते हैं, और अमेरिका ने अपना रियल टाइम सैटेलाइट एक्सेस भारत को देना शुरू किया, जो कि ऐतिहासिक है। तो ये काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म्स की दृष्टि से देखें या अपने सामरिक क्षेत्र में अपर हैंड की दृष्टि से देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चाहे क्वाड का मंच हो, ब्रिक्स का मंच हो, SCO का मंच हो, इप्सा हो, तो I2U2 की हम बात करें, तो भारत जिस प्रकार से अलग अलग अपने इनिशिएटिव्स के चलते आगे बढ़ा है, तो उसमें ग्लोबल साउथ की हमने आवाज मजबूत की, एक पुल के रूप में हम पश्चिम के देशों के और ग्लोबल साउथ के देशों के बीच में एक साथी बन करके आए, और इसके अलावा हमने हमारे मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हुए

0: विकसित भारत 2047 की यात्रा के लिए बहुत सारे माइलस्टोन्स जो हैं वो अकम्प्लिश किए हैं।
1: और शायद यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में G7 की बैठक के दौरान जब प्रधानमंत्री से मुलाकात की तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पीएम मोदी को एक टफर निगोशिएटर कहा, क्योंकि जब तमाम बायलेटरल ट्रेड समझौतों की जब बातचीत हो रही तो भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि भारतीय निर्यातकों के साथ जो है किसी भी तरह के लिए उनके लिए नुकसानदायक ये डील नहीं होनी चाहिए और भारत का सामान मेक इन इंडिया सामान जो है बिकना वही प्राथमिकता रही है प्रधानमंत्री मोदी की।
0: बिल्कुल निश्चित तौर पर, और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, आपने इस बिंदु को भी चर्चा में जोड़ा और यही कारण है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में हम देख सकते हैं कि 30 से अधिक दुनिया के देशों ने सर्वोच्च उनके राजकीय सम्मान से नवाजा है। भारत की क्या साख है, भारत का क्या परचम लहरा रहा है दुनिया में, इस बात का ये प्रतीक है। और बिल्कुल टफ नेगोशिएटर है, तो मैं आपको उदाहरण दूं कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील की जब हम बात करते हैं तो उसमें लगातार अमेरिका की तरफ से दो बिंदुओं पर हम पर प्रेशर बनाया गया कि एक तो हम रशिया से तेल और गैस लेना बंद करें और दूसरा ये कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए खोल दें। तो चाहे आप पश्चिम एशिया के देशों या मंचों के साथ अपने FTAs को देखें, आप हाल ही में हुए EU के साथ के अपने FTA को देखें, आप दूसरे जो एक दर्जन भर के लगभग अपने FTAs हैं और अलग अलग जो सेपा है कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक हमारे जो अग्रीमेंट्स हुए हैं कई देशों के साथ में, तो हमने इस बात को जब नेगोशिएशन के लिए स्टेक होल्डर्स बैठते थे तो इस बात को हमने स्पष्ट किया था कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल सेक्टर किसी के लिए नहीं खोल सकते हैं क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव सेक्टर है। हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स और इससे जुड़े हुए जो हमारे भाई बहन हैं या जो कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे भाई बहन हैं, फिशरीज से जुड़े हुए जो भाई बहन हैं, उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ लघु और मध्यम उद्योग और विशेषकर जो भारतीय कला से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे नए नए बाजार मिल सके, उनको कैसे हम प्रमोट कर सके, ये भी जब भी हमने आर्थिक और तकनीकी कूटनीति के हमने समझौते किए हैं या इसको लेकर हम आगे बढ़े तो वहां प्रधानमंत्री ने इसकी बात की है। तो आखिरकार जब अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील अनाउंस हुई तो उसमें फिर ये बात स्पष्ट होकर के आई कि इन दोनों बिंदुओं पर भारत ने किसी प्रकार का नेगोशिएशन नहीं किया। और वहीं जैसे रूस से जो तेल और गैस लेने की बात है, सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड रेट पे हमें रूस से तेल और गैस मिल रहा था, तो हमको उर्सुला वॉन ने भी 2 या 3 साल पहले लगभग ये चेताया था कि हम रूस से तेल और गैस लेना बंद करें, लेकिन तब भी हमारे विदेश मंत्री ने इस बात को स्पष्ट किया था कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को केंद्र में रखते हुए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करते हुए वही डिसीजन लेता है जो भारतीयों के हित में है। जब हम पर प्यूनिटिव टैरिफ्स लगाए गए डोनाल्ड ट्रंप ने जब घोषणाएं की तो हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि भारत के लोगों को मैं इसका नुकसान नहीं उठाने दूंगा और मेरा व्यक्तिगत इसमें नुकसान हो सकता है, मुझे कीमत चुकानी पड़ सकती है, मैं इसके लिए तैयार हूं। और इसके बाद भारत ने लगातार अपने जो ये तमाम सफल विदेश नीति से मित्र बनाए हैं, तो हमने इन सबसे सहायता ली, अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई किया, अपने एक मैक्रो इकोनॉमिक रेजिलियंस को फिर हमने बढ़ाया और इसके चलते देखिए हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई ऐसा इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टा हम पर जब प्यूनिटिव टैरिफ्स लगे और बड़ा हल्ला मचा था कि अब क्या होगा और नुकसान होगा और अब हम क्या करेंगे, लेकिन आप देखिए कि हमने 7% से ज्यादा और फिर 8% की क्वार्टरली हमने GDP ग्रोथ रजिस्टर की थी जो अपने आप में एक ऐतिहासिक ग्रोथ रही। तो ये इस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ में इस प्रकार के अलग अलग अकम्प्लिशमेंट्स के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
1: अब हम रुख करते हैं MP नथालस आपका, उनसे पूछते हैं कि सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जिक्र किया कि तमाम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रेड कॉरिडोर से ग्रीन जोन में बदलने की रणनीति अपनाई गई थी और वहां भी कामयाबी हासिल लगी, नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा संवाद और समन्वय के भी परिणाम सामने आए, तो आपसे जानना चाहेंगे जो एक और 3 बड़े ऑपरेशन हुए थे, उरी का हम जिक्र करें, बालाकोट का जिक्र करें या ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों का, तो ये 3 जो बड़े एक्शन रहे हैं इसको भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन ऑपरेशंस ने किस तरह से परिभाषित किया और क्या मायने आप देखते हैं यहां पर जो एक एक्शन रहा?
2: इसमें सबसे बढ़िया चीज ये था कि जैसे ही वो कहीं इस तरह के वारदात कर रहे थे, जैसे कि अटैक किया उन्होंने कॉन्वॉय CRPF के कॉन्वॉय पर उरी में अटैक किया और उसके बाद जो पहलगाम में अटैक किया, हमने तुरंत उसका जवाब दिया। ये नहीं कि हम रुके रहे सोचते रहे क्या करना है, लेकिन तुरंत अटैक करके हमने उनको साबित कर दिया कि इस तरीके के हरकत अगर आप करेंगे तो हमारा कार्रवाई एकदम जवाबदारी होगी। और इसमें खासकर जो पहलगाम अटैक हुआ था जिसके बाद ऑफ सिंदूर चला, उसमें करीबन 100 जो आतंकवाद टॉप के उन लोगों को मार गिराया और कई उनके आतंकवाद के जो बेस अक्रॉस द बॉर्डर थे वो भी खत्म कर दिए गए। हमारे एयरक्राफ्ट ने जाके वहां पर अटैक किया और

0: उनका खात्मा किया जिसके वजह से उनमें काफी ढील पना आ गया, अब वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। और इसके अलावा ये भी है कि जब भी वो कोशिश करते थे पहले बॉर्डर से क्रॉस करने के लिए, काफी बार सफल हुए। मैं खुद वहाँ श्रीनगर में रहा हूँ, गए दिन हमारे एनकाउंटर होते रहते थे। अब जो है हालात काफी सुधर गए हैं, और सुधरने की वजह से ये है कि वहाँ पर डेवलपमेंट भी शुरू हो गया है, और यहाँ तक कि डेवलपमेंट ट्रेन भी चलने लगे हैं, राइट फ्रॉम जम्मू से लेकर बारामूला तक चल रही हैं। पहले ये सब हम सोच नहीं पाते थे। और उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में भी अगर आप देखें तो मिजोरम कनेक्ट हो गया रेलवे से। पहले हमें सिलचर जाना पड़ता था, सिलचर से फिर बाई रोड जाना पड़ता था। अब जो है रोड कनेक्टिविटी इतना बढ़िया हो गया थ्रू रेलवे कि लोग सीधे ऐजवाल तक पहुंच सकते हैं, दिल्ली से लेकर वहां तक। तो ये जो कनेक्टिविटी है इससे काफी बड़ा फायदा हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, लोगों को आने जाने में काफी इसमें सुविधा पहुंची है। इसके अलावा ये है कि जब भी वहां से कोई कार्रवाई हो रही है तो उसका हमारा इंटेलिजेंस जो है इतना रोबस्ट हो गया है कि हमें सब पता चल रहा है कि वहां पर अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है, और उसी वक्त कार्रवाई कर दी जा रही है ताकि उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो इससे काफी लाभ पहुंच रहा है, और आने वाले दिनों में ऑलरेडी हमारे गवर्नमेंट कह रही है कि कश्मीर में काफी पीसफुल सिचुएशन है, अभी अमरनाथ यात्रा भी होने वाला है, काफी तादाद में फोर्सेस पहुंच रहे हैं वहां पे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वहां पर कई जिलों में जहां आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ है वो भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि इतना वहां पर शांति फैल चुका है कि AFSPA की बाद में जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
1: सर, क्योंकि आपने तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहाज से अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं, इसलिए आपसे ये जानना जरूरी हो जाता है कि आतंकवाद और आतंकवाद को जो लोग पालते पोसते थे उस दौर में, या आज से एक दशक पहले की अगर हम बात करें, 12 साल पहले की बात करें, तो उस रुख को आप किस तरह से बदला हुआ आज पाते हैं?
0: पहले ये था कि हमारे पास इंटेलिजेंस का थोड़ी सी कमी थी, लेकिन अब जो है इंटेलिजेंस इतना हमारा रोबस्ट हो गया है कि जैसे ही उनका कोई कार्रवाई वो वहां से करने की कोशिश करते हैं उससे पहले ही हम उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि वो हमारे जवानों पे या हमारे इलाके के अंदर आके हमला ना कर पाए।
1: इतने दिनों में भारत की एक नई डिफेंस कैपेबिलिटी भी सामने आई है, हम चाहे मेक इन इंडिया की बात करें या जिस हिसाब से डिफेंस इक्विपमेंट भारत में बनाए जा रहे हैं, तो ये अब इनका निर्यात भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों में होने लगा है, क्योंकि भारत की शक्ति पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है। इस पे आप कितना ज्यादा जो है इजाफा मानते हैं कि दुनिया के देशों में निर्यात कितना ज्यादा बढ़ा है, उस मोर्चे पर कितनी सफलता मिली है?
0: ये जो ऑपरेशन हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, इसमें पाकिस्तान ने भी काफी अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इनके जितने भी अटैक करने की कोशिश की गए वो सब विफल कर दिए, क्योंकि हमारे पास जो था एयर डिफेंस सिस्टम काफी रोबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसके वजह से उनके जितने भी अटैक हो रहे थे वो विफल कर दिए गए और हमें ज्यादा उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अगर ये हमारे पास डिफेंस सिस्टम इतना रोबस्ट नहीं होता जो कि शील्ड जैसे बन गया था तो हमारे लिए काफी मुश्किल हो सकता था, लेकिन इस एयर डिफेंस सिस्टम के वजह से हम लोग उनको रोक पाए और वो नुकसान नहीं कर पाए।
1: प्रोफेसर जोशी, आपसे समझना चाहेंगे कि जो भारत की उभरती हुई वैश्विक भूमिका विकसित भारत की तरफ है, इसमें आपको क्या लगता है कि विकसित भारत के लक्ष्य को किस तरह से गति मिल रही है, और आने वाले दिनों में जो एक लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनने का, उसे हम किस तरह से पूरा होते हुए देखेंगे?
2: देखिए, जब हम अपने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को देखते हैं तो हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से भारत की जो सफल विदेश नीति है, विगत 12 वर्षों में हम जिस तरह से एक ऑल अलाइंड पॉलिसी पर चले हैं, इसने कैटलिस्ट की भूमिका निभाई है। तो भारत के यदि हम आर्थिक विकास की ओर देखें, तकनीकी प्रगति की ओर देखें, वैश्विक सुरक्षा, अपनी आंतरिक सुरक्षा की बात करें, तो हमारी विदेश नीति जो है इसके माध्यम से हम इनसे जुड़े हुए लक्ष्यों की पूर्ति करते हुए लगातार अपने विकसित भारत 2047 के रोड मैप पर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी जब कूटनीति को हम देखते हैं तो वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर बेस्ड है, मल्टी अलाइनमेंट पर आधारित है। हम किसी एक देश की हेजेमनी की नहीं बल्कि मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे वैश्विक राजनीति में लोकतंत्र को बनाए रखना है और साथ साथ हमारे देश का विकास हो और नागरिकों के हितों को प्राथमिकता मिले। तो यदि हम अपने आर्थिक मोर्चे पर जाएं और अपनी आर्थिक कूटनीति की बात करें तो विकसित भारत 2047 को यदि हम देखते हैं तो हमारी विदेश नीति का एक बड़ा जो फोकस एरिया रहा है वो FDI रहा है। किस तरह से हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा दे सकते हैं, मैंने लगातार अलग अलग FTAs का उदाहरण दिया जिनके माध्यम से इस दिशा में हम आगे

0: बढ़ रहे हैं द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर। फिर यदि हम तकनीक की दुनिया में चले तो चाहे AI की बात करें या हम डिजिटलाइजेशन की बात करें, तो AI समिट का ग्लोबल साउथ का भारत पहला देश है जिसने इस बार होस्ट करते हुए एक बड़ा कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया, जिसमें देश विदेश से कई राष्ट्राध्यक्षों ने शिरकत की और AI को लेकर के जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाने की बात चल रही है उसमें भी भारत एक प्रणेता की भूमिका निभा रहा है। फिर आप सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में चले, क्रिटिकल मिनरल्स की दुनिया में चले, तो इन सब में अपनी विदेश नीति के माध्यम से हमने जो नई मित्रताएं लैटिन अमेरिका और अफ्रीकन देशों के साथ जोड़ी है, आगे बढ़ाई है, उसके माध्यम से हम इस लक्ष्य की पूर्ति कर पा रहे हैं, क्योंकि ये विकसित भारत की यात्रा का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो इसके जरिए हमारे जो भारतीय उद्योग हैं वो मजबूत होते हैं और जो हमारी ग्लोबल वैल्यू चेन है उससे हम अपने उद्योगों को जोड़ते हुए एक यहां पर अपना एक बड़ा लक्ष्य हासिल कर पाते हैं। फिर हम ग्लोबल साउथ की आवाज प्रणेता बन के जो उभरे, तो उसमें जो लगातार हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों का डेमोक्रेटाइजेशन हो और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में वो रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इसमें जो ग्लोबल साउथ की इमर्जिंग इकोनॉमीज है उसके नेतृत्व की बात करते हैं, इसको आज पूरी दुनिया अपना समर्थन दे रही है, चाहे यूरोप के शक्तिवान देशों को आप देखें या लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के हमारे समकक्षी देशों को देखें। तो UNSC जैसे संस्थानों में भारत लगातार भारत जैसे देशों के नेतृत्व की मांग कर रहा है और अपनी स्थायी सदस्यता के लिए तो अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर गए, तो वहां स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ने इस बात को फिर पुरजोर तरीके से रखा कि भारत को UNSC में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। तो एक वैश्विक समर्थन जो है वो आज हमें हासिल हुआ है और ये विकसित भारत 2047 का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है हमारे लिए कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी नेतृत्व की भूमिका बढ़े। फिर यदि हम अपनी सुरक्षा की बात करें, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें, तो आसपास एक फ्लक्स की सिचुएशन है, दो युद्ध चल रहे हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी लगातार तनाव बना रहता है, इन सब के बीच हमारी जो विदेश नीति है वो किस प्रकार से लगातार हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रहे, और अभी पश्चिम एशिया की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जिस तरह से ईरान ने बंद किया और पूरी दुनिया ने संकट को झेला, 40% लगभग तेल गैस और LPG पूरी दुनिया को सप्लाई होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से और कुल जरूरत का 80-90% अपना तेल गैस और LPG चीन, जापान, साउथ कोरिया जैसे देश मंगाते हैं। हमने लगातार 27 देशों की बजाय 41 देशों से तेल गैस और LPG मंगाने का हमने पिछले 12 वर्षों में ये काम किया और अपनी जो ऊर्जा आयात हमारा जो है उसको हमने डाइवर्सिफाई किया। तो हमने अपनी इस प्रकार की डायनामिक ऊर्जा पॉलिसी के चलते ऊर्जा सुरक्षा हम बरकरार रख पाए, तब जबकि दूसरे देशों में 40-60-70% तक की मूल्य वृद्धि हुई। आप देखिए कि भारत में 140 करोड़ की आबादी वाले देश में हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रही, ऑयल गैस की हमारी निर्बाध आपूर्ति लोगों को मिली। फिर मैरिटाइम सिक्योरिटी जो है उस पर एक विशेष हमारा ध्यान है, हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनके उभरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में और हिंद महासागर क्षेत्र में। हमारे प्रधानमंत्री ने मॉरिशस की धरती से पहले सागर डॉक्ट्रिन प्रस्तुत किया जो कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल था। फिर जब दोबारा मॉरिशस की यात्रा की तो उन्होंने महासागर नीति रखी जो कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल है। तो तमाम हिंद महासागर के जो लिटोरल देश हैं और जो इंडायरेक्टली जुड़े हुए देश हैं वो सब आज भारत को प्रणेता मानते हुए भारत से जुड़ रहे हैं और हम इन देशों के साथ साझा विकास भी कर रहे हैं। और फिर विदेशों में जो अपने भारतीय प्रवासी हैं जो हमारे लिए, हमारी GDP के लिए एक बड़ा कहीं ना कहीं योगदान तो करते ही है, हमारी संस्कृति के वाहक हैं, एम्बेसडर्स हैं, तो उनकी सुरक्षा, उनके सशक्तिकरण को भी हमने एक प्राथमिकता दी है। तो आप देखिए जब जब अलग अलग विश्व में हमने संकट देखे वहां भारत ने तुरंत इवैक्यूएशन प्लान्स लॉन्च करके भारतीयों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया और जो भारतीय वहां पर रह रहे थे, उदाहरण स्वरूप रशिया यूक्रेन वॉर में, उनको तुरंत भारत वापस लाने की पहल और सफलतापूर्वक इसका भी अकम्प्लिशमेंट हमारी विदेश नीति की वजह से हो पाया। जब हम विकसित भारत 2047 के सामरिक लक्ष्यों को देखें, आर्थिक लक्ष्यों को देखें, तकनीकी लक्ष्यों को देखें, वैश्विक मंचों पर आगे बढ़ने के लक्ष्य को देखें, तो अपनी विदेश नीति के माध्यम से हम लगातार अपने विकसित भारत के विजन को, मिशन को साकार कर पा रहे हैं।
1: आखिर में आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि जो राष्ट्र प्रथम की नीति रही है भारत की, वो शायद वही एक वजह है जिसकी वजह से दुनिया भर में जहां भी प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं अपने नागरिकों की बात करते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, तो ये एक नीति इसने देश के नागरिकों में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गौरव की भावना को किस तरह से और कितना मजबूत किया है, क्या मानते हैं?
0: ये जब हम इस नीति को देखते हैं या इस पूरे फिनोमेना को देखते हैं तो ये हमारी विदेश नीति का एक आधार स्तंभ है जिसमें हम राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और नागरिक कल्याण की बात करते हैं। तो हमारे जो लोग हैं वो हमारी डिप्लोमेसी के एपिसेंटर में हैं और इसके माध्यम से हम किसी के दबाव में नहीं आते, स्वतंत्र निर्णय लेते हैं और विश्व मंच पर अपने हित की तो बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भी बात करते हैं, लेकिन हम इस बात को सुनिश्चित रखते हैं कि देश विदेश में जो अपने लोग रह रहे हैं, भारतीय प्रवासी जो हैं, उनकी सुरक्षा और उनके विकास को हम आगे बढ़ा सके। और इसमें फिर हम देखिए एक

0: संतुलन बना के रखते हैं और इसके जरिए हम अलग अलग जो स्वभाव के देश हैं उनके साथ अपने पारंपरिक और नए तरीके के संबंधों को आगे ले जा रहे हैं। संकट के समय हम दूसरे देशों की तो सहायता करते हैं लेकिन इस बात को भी सुनिश्चित करते हैं कि हमारे लोग किसी संकट में ना फंसे। तो ये हमारी नेशन फर्स्ट की प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि संकट में फंसे हुए भारतीयों को हम सुरक्षित रूप से स्वदेश लेकर के आते हैं। सबसे बड़ा बिंदु आतंकवाद पर जिस प्रकार का रुख पिछले 12 वर्षों में भारत ने अपनाया है, जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स टेररिज्म, तो ये अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता है। ये नेशन फर्स्ट की बात है, ये पीपल फर्स्ट की बात है और इसमें एक बहुत ही गजब का समन्वय हमने अपनी डिप्लोमेसी और अपनी रक्षा शक्ति के बीच में एस्टेब्लिश किया है और इसके चलते, इस नेशन फर्स्ट की बात के चलते आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको हमने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी बड़ी दृढ़ता से रखा है।
1: बिल्कुल, तो अंशु जोशी जी और एमपी नाथाले साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे CRPF के पूर्व महानिरीक्षक MP नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

102.7 और साथ ही 103.6 मेगाहर्ट्ज मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, ये आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:45 हो चुके हैं। अब हमारी ये प्रसारण सभा यहीं पर संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर हम आपसे पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभरात्रि। जय हिंद।